ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम

0: यह आकाशवाणी का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर प्रातः के 6 बजने को हैं। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। दोनों प्रधानमंत्री के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डर लाइन भी यूरोपीय उद्योग जगत के गोलमेज सम्मेलन को संबोधित करेंगी। यह यूरोपीय उद्योगपति

0: का एक प्रमुख मंच है। इस वर्ष जनवरी में भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी की यूरोप की ये पहली यात्रा है। यात्रा का उद्देश्य द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करना और तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों का समाधान तलाशना है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
1: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
2: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
1: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: इससे पहले कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत और नीदरलैंड वैश्विक संकटों से निपटने के लिए भरोसेमंद, पारदर्शी और भविष्य की आपूर्ति व्यवस्था तैयार करने के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। पांच देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
3: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। उन्होंने कहा कि दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान भी करना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय की न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय रॉय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। इस मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो कर रही है। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सकी। सुनील नरेन को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। वहीं दिल्ली में शाम 7:30 बजे डेल्ही कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेटो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो सी फेई और नूरिजुद्दीन को हराया। मौसम विभाग ने आज अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। Prime Minister Narendra Modi will reach Gothenburg today on a two-day visit to Sweden, marking a historic milestone in the deepening alliance between New Delhi and Stockholm. Mr. Modi will hold bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson to review the entire gamut of bilateral relations and explore new avenues of cooperation to enhance bilateral trade as well as collaboration in green transition, AI,

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। ये समय है कार्यक्रम वंदना का। लीजिए सुनते हैं वंदना कार्यक्रम के अंतर्गत हरिओम शरण के स्वर में ये पहला भक्ति गीत।

अभी आपने सुना पंडित भीमसेन जोशी के स्वर में वंदना की ये प्रस्तुति, और लीजिए अब सुनते हैं गुरदास मान के स्वर में ये गीत।

अभी आपने सुना भाई गुरदयाल सिंह के स्वर में ये शब्द। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वंदना, भक्ति गीतों पर आधारित था ये कार्यक्रम। और अब समय है हमारे अगले कार्यक्रम का, लेकिन उससे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि 6:45 पर सुनना ना भूलिएगा रामचरितमानस बाल कांड भाग 58। और उसके बाद समय रहेगा कार्यक्रम संगीतिका का, लेकिन 7 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार और फिर 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। 7:10 पर सुनेगा कार्यक्रम संगीतिका, इसमें आप सुनेंगे सोमा मुखर्जी और के गाए रविंद्र संगीत। संगत कलाकार होंगे सलीम अहमद तबला पर, विनय प्रसन्ना बांसुरी पर, दामोदर लाल घोष हारमोनियम पर। 7:30 पर रहिएगा हमारे साथ यानी कुसुमलता और सुषमा के साथ गीतों भरी गुड मॉर्निंग में। जी हाँ, गुड मॉर्निंग लेकर आएंगे हम आपके लिए गीतों भरी। वैसे तो गुड मॉर्निंग हो चुकी है बहुत देर पहले ही, लेकिन गीतों से भरी होगी हमारी ये गुड मॉर्निंग। और उसका समय रहेगा 7:30, जिसमें आप अपनी बातें भी हमसे साझा कर सकते हैं कि आज आपने सुबह उठकर अपनी सुबह की जो पहली गुड मॉर्निंग है किसको कही या किससे कही या किसने आपको कही। जी हाँ, और 8 बजे आप सुनेगा हिंदी में समाचार और 8:15 पर अंग्रेज़ी में समाचार, और 8:30 का समय रहेगा उर्दू में समाचार का। 8:45 का समय रहेगा कार्यक्रम साहित्यिकी का, जिसमें परिचर्चा होगी प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत सुमित्रा नंदन जयंती पर। प्रतिभागी होंगे श्री रामकिशोर उपाध्याय वरिष्ठ साहित्यकार, श्री प्रियदर्शन वरिष्ठ लेखक और पत्रकार, श्री मदन कश्यप वरिष्ठ कवि और समालोचक, श्री दिनेश कांडपाल संचालनकर्ता होंगे, और साहित्य की गतिविधियां श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव युवा पत्रकार के मार्गदर्शन पर आधारित होंगी। तो लीजिए, अब समय हो चला है हमारे अगले कार्यक्रम का। जी हाँ, 6:40 होने को है। लीजिए सुनते हैं राहुल संस्कृतायन के जीवन पर आधारित चिंतन।

0: राहुल सांकृत्यायन एक बार रेल से तत्कालीन कलकत्ता यानी कोलकाता जा रहे थे। रेल में चढ़ते ही उन्हें उनके बचपन के एक मित्र मिल गए। दुआ सलाम के बाद उनके मित्र ने पूछा, कलकत्ता में कोई खास काम है? नहीं, बस यूं ही, राहुल सांकृत्यायन ने कहा। नहीं, कुछ तो काम होगा? दोस्त ने फिर पूछा। अरे भाई, कुछ काम नहीं है, बस काफी दिन से कलकत्ता नहीं जा पाया था, सो इच्छा हो गई। दोस्त मन ही मन ये सोचकर चुप हो गया कि कोई बहुत बड़ा काम है जो मुझसे छुपाना चाहते हैं। चलते चलते अचानक रेल बीच जंगल में रुक गई और काफी देर तक रुकी रही। राहुल सांकृत्यायन और उनके दोस्त रेल से उतरकर रेल चालक के पास गए और उनसे रेल रुकने का कारण पूछा, तो पता चला कि रास्ते में पटरी में कुछ खराबी आ गई। ये भी पता चला कि अभी कम से कम 2 घंटे लग जाएंगे। चलो तब तक इस पास वाले गांव तक होकर आते हैं, राहुल सांकृत्यायन ने अपने मित्र से कहा। क्यों, क्या करेंगे? उनका दोस्त बोला। अरे भाई, तब तक यहां भी क्या करेंगे? ना, मुझे नहीं जाना, दोस्त ने कहा। राहुल सांकृत्यायन अकेले ही उस गांव की ओर चल दिए। ठीक 2 घंटे बाद वापस आए तो मित्र ने पूछा, क्या देखा है गांव में? कुछ भी कहो दोस्त, सारे गांव एक से नहीं होते। सांकृत्यायन जी बस इतना कहकर चुप हो गए। हैरान परेशान उनका दोस्त फिर रेल चालक के पास गया और खबर लाया कि पटरी ठीक होने में अभी उतनी ही देर और लग सकती है। चलो तब तक एक और गांव में होकर आता हूँ। इस बार दोस्त से इतना कहकर सांकृत्यायन जी दूसरी दिशा की ओर चल दिए। करीब आधा घंटे के बाद रेल अपने गंतव्य की ओर बढ़ चुकी थी। दोस्त खिड़की से दूर तक राहुल सांकृत्यायन को निहारे जा रहा था। इस बार सांकृत्यायन जी वक्त से बहुत पीछे रह गए थे। दोस्त ने उनका बैग देखा तो पाया 3-4 जोड़ी कपड़े और एक डायरी उसमें रखी थी। उसमें 2 दिन पूर्व के पुणे यात्रा के कुछ संस्मरण लिखे थे। रेल सरपट भागी जा रही थी। दोस्त बार बार उनके संस्मरण पढ़े जा रहा था। 9 अप्रैल 1893 को आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के 15 गांव में जन्मे राहुल सांकृत्यायन जब 3री कक्षा में पहुंचे तो उर्दू की पाठ्य पुस्तक में एक शेर पढ़ने को मिला। सैर कर दुनिया के गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ, जिंदगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ। शायद यहीं से उनके बाल मन में कोई बात घर कर गई और पूरा जीवन घुमक्कड़ी में बिता दिया। राहुल सांकृत्यायन को नियमित शिक्षा का अवसर प्राप्त न हो सका, पर स्वाध्याय से उन्होंने भारतीय संस्कृति, इतिहास, संस्कृत, वेद, दर्शन और विश्व की अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। बाल्यकाल से ही भ्रमण के लिए निकले राहुल जी जीवन भर कहीं भी जमकर नहीं रह सके। देश में ही नहीं, विदेशों में नेपाल, तिब्बत, लंका, रूस, इंग्लैंड, यूरोप, जापान, कोरिया, मंचूरिया, ईरान और चीन में इतना घूमे कि कई परिंदे भी इनकी उड़ान के आगे नतमस्तक थे। श्रीलंका में 19 महीने, तिब्बत में 1.25 बरस और नेपाल में लंबे समय तक अज्ञातवास में रहकर राहुल सांकृत्यायन ने साहित्य को अनगिनत अमिट रचनाएं दी।
1: लीजिए अब सुनते हैं श्री रामचरितमानस बाल कांड का भाग 58।

श्री राम अवतार की कई कथाओं में एक कथा आदि पुरुष मनु तथा उनकी पत्नी शत्रुपा से संबंधित है, जिन्हें प्रभु ने एक अद्भुत वरदान दिया था। हजारों वर्षों की कठोर तपस्या के फलस्वरूप मनु को भगवान के दर्शन प्राप्त हुए। भक्त ने भगवान से अपनी मनोकामना प्रकट करते हुए उनके चरणों में ऐसी प्रीति मांगी जैसी पिता के हृदय में पुत्र के लिए होती है। उन्हें ये वांछित वरदान मिला। वर देते हुए श्री हरि ने कहा, स्वर्ग के बहुत से सुख भोग कर कुछ काल बीत जाने पर आप अवध के राजा होंगे और तब मैं आपके पुत्र के रूप में जन्म लूंगा। एक अन्य कथा राजा प्रताप भानु की है। उसके दो पुत्र हुए, प्रताप भानु और अरिमर्दन। राजा ने ज्येष्ठ पुत्र प्रताप भानु को राज्य सौंपकर भगवत भजन के लिए वन की राह ली।

0: कार्यक्रमस्य प्रसारणम् आकाशवाण्याः एफएम गोल्ड प्रवाहिकातः अद्य मध्याह्ने सार्धैकवादनतः भविष्यति। भवन्तः सर्वे यथाकालं श्रोतुं प्रभवन्ति। अन्ते क्रीडावार्तासु, बैंकॉक नगरे थाईलैंड ओपन बैडमिंटन क्रीडा मालिकायाः पुरुष युगल वर्गीय निर्णायक द्वंद्वे अद्य भारतस्य सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी च इंडोनेशिया देशस्य लियो रॉली कार्नांडो डेनियल मार्थिनाभ्याम स्पर्धिष्येते। इंडियन प्रीमियर लीग क्रिकेट स्पर्धा मालिकायां गतरात्रौ कोलकातायाः ईडन गार्डन्स क्रीडांगणे आयोजिते द्वंद्वे कोलकाता नाइट राइडर्स दलेन गुजरात टाइटन्स दलम् 39 धावनांकैः पराजितम्। आदोपणं विजित्य गुजरात टाइटन्स दलं क्षेत्ररक्षणं कर्तुं निर्णीतवत्। अद्यतने द्वंद्वद्वये प्रथमं धर्मशालायाम् अपराह्णे 3:30 पंजाब किंग्स दलं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु दलेन स्पर्धिष्यति। ततः सायं 7:30 दिल्ल्यां दिल्ली कैपिटल्स दलं राजस्थान रॉयल्स दलं सम्मुखीकरिष्यति। इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच हेग के व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। यह यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिन बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से बढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति मुक्त से प्रतिबंधित में संशोधित कर दी गई है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। विभाग के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने बताया कि हिंदुओं को अपनी प्राचीन परंपराओं के अनुसार परिसर में पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति होगी। उच्च न्यायालय ने इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर

नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया है। कोलकाता नाइट राइडर्स ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन बनाए। जवाब में गुजरात टाइटंस 4 विकेट पर 218 रन ही बना सका। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु से होगा। दिल्ली में शाम 7:30 बजे डेल्ही कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स आमने सामने होंगे। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कानेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। इससे पहले भारतीय जोड़ी ने कल सेमीफाइनल में मलेशिया के गो ज़ीफेई और नूरुज़्ज़दीन को हराया था। मौसम विभाग ने आज अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्रों और सिक्किम में तेज बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। केरलम, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र के कुछ हिस्सों में ऐसी ही स्थिति रहेगी। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम संगीतिका। संगीतिका में आज आपने सुना सोमा मुखर्जी का गाया रविंद्र संगीत। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे थे सलीम अहमद, बांसुरी पर साथ दे रहे थे विनय प्रसन्ना और हारमोनियम पर संगति कर रहे थे दामोदर लाल घोष। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे कार्यक्रम गीतों भरी गुड मॉर्निंग।

0: बदलो बदलो, आदत बदलो।
1: मशीन में कपड़े डालने से पहले चेक नहीं किया था क्या?
0: बदलो बदलो, आदत बदलो। अब नजदीकी बैंक जाकर फटे पुराने नोट्स बदलिए। अगर बैंक मना करे तो RBI के ओम्बुड्समैन से शिकायत करें। RBI कहता है, जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: गुड मॉर्निंग सुषमा।
3: गुड मॉर्निंग
2: भाई। आज मौसम कैसा लग रहा है आपको, ये बताओ सबसे पहले।
3: मौसम तो बहुत ही खूबसूरत है, सुहाना सा है। और सुबह सुबह की बात कर रही हूँ, लेकिन दिन में ऐसे लग रहा है कि सूरज चाचू बहुत तपाने वाले हैं।
2: वही मैं हैरान हो गई जब आपने कहा मौसम बहुत सुहाना है। मैंने कहा अरे

0: भाई इतनी चमक हो जाती है उनके अंदर दिन में कि उनकी तरफ देखना तो दूर, घर से निकलना मुश्किल है।
1: बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि इतनी तेज गर्मी हो रही है और जिसने अभी जरा सी लापरवाही की तो बस उसी को सूरज चाचू जी ने ले लिया अपनी चपेट में।
0: हाँ बिल्कुल, तो हम यही कहेंगे, देखिए सुबह सुबह से हम आपको पानी के लिए कहना शुरू कर देंगे, क्योंकि हाइड्रेट रहना ही सबसे बड़ी इस गर्मी को सहने और इससे दूर रहने का एक मात्र उपाय है।
1: जी हाँ, और इसके साथ साथ भी पता है एक चीज़ और देखिए, हम आसपास भी देख रहे हैं कि हम जैसे तरबूज खाते हैं, खरबूजा खाते हैं, जो आजकल के फल हैं, लेकिन हम ये ध्यान नहीं रखते कि पानी हमें कब पीना है, कितनी देर में पीना, और जिसकी वजह से लोगों को अपच हो जाती है। डिसेंट्रीज कहते हैं ना कि उनको पेट खराब हो गया, उनका डाइसेंट्रीज शुरू हो जाती है, वॉमिटिंग शुरू
0: बिल्कुल
1: हो रही है,
0: बिल्कुल
1: उल्टियाँ आना शुरू हो जाती है, तो ये सब चीज़ें ना हो इसका भी ध्यान रखना होगा साथियों, क्योंकि खाने पीने की गड़बड़ी से ही बहुत सारी और प्रॉब्लम्स भी हो जाती हैं।
0: हाँ, लेकिन यही कहेंगे कि बेशक आप खाना कम खाएं लेकिन पानी पीना ना भूलें।
1: जी हाँ, क्योंकि कहते हैं ना, जल है तो जीवन है और
0: बिल्कुल,
1: इसे बचाना भी है।
0: जल है तो कल है।
1: बिल्कुल सही, और श्रोताओं बचाना भी है ये, इस बात पे मैं इसलिए जोर दे रही हूँ, पानी की इतनी बर्बादी हमारे आसपास होती है और हम देखते हैं कि लोग पानी को बहुत वेस्ट करते हैं, तो एक एक बूंद को सहेजिए, उसे बचाइए और अपने पानी का जो आपको पीना है उसका ध्यान आप जरूर रखें।
0: मुझे लगता है सुषमा, आपका जो हाथ है माउस पर टिका हुआ है और स्क्रीन पर बार बार आप उसे लेकर जा रही है। मुझे लगता है पहले हम एक गीत सुन लें ताकि आपकी इच्छा भी पूरी हो जाए, और हमारे जितने भी लिसनर्स हैं जो गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, हम उन्हें गीतों भरी, तो गीत से अब शुरुआत कर दी जाए।
1: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत गीत है, ये लम्हे ये पल
0: और
1: ये
0: ये है
1: हरिहर।
0: हरिहरन के स्वर में।
1: जी
0: हाँ
1: हाँ, इनकी आवाज़ मतलब दिल तक छूती है, कानों में एक मधुर सा संगीत घोल देती है,
0: जी
1: और
0: बिल्कुल,
1: सुबह को भी हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही खूबसूरत बनाएंगी हमारे साथ साथ, हमारे सभी साथियों के भी। तो सुनते हैं इस गीत को, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से सबको नमस्कार, गुड मॉर्निंग।
0: गीतों भरी।
1: जी।

0: बहुत ही खूबसूरत गीत। कुसुम आप बताएं आपको कैसा लगा ये गीत?
1: मुझे बहुत अच्छा लगा और हमारे जो लिसनर्स हैं उम्मीद करते हैं उनको भी बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि भाई उठते उठते और इतना प्यारा संगीत जब कानों में पड़ जाए तो क्या कहने।
0: बिल्कुल सही। और वैसे मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे श्रोता जो है ना वो काफ़ी पहले उठ चुके होंगे, क्योंकि आजकल हर कोई, जैसे हमने बात की सूरज चाचू जी की तपिश से बचना चाहता है, तो हर कोई सुबह जो है अपनी 5, 5:30 या 6 बजे तक कर लेते हैं, उठ जाते हैं। जो मुझे लगता है
1: जो काम दिन में करने होते हैं कुछ लोग तो उनको सुबह ही कर देते हैं या फिर शाम को, क्योंकि दिन में नहीं कर सकते। लेकिन हम कहेंगे जो दिन में हमारे आसपास का वातावरण है और उसमें कुछ लोगों को निकलना पड़ता है, जीव जंतुओं को निकलना पड़ता है, उसमें हमारे जो पक्षी जगत के हैं, प्राणी जगत के और भी प्राणी हैं, तो उनको निकलना पड़ता है, तो उनका भी ध्यान रखें। पक्षियों के लिए कुछ ऐसा प्रबंध करें, कहीं एक जो है छोटा सा सकोरा कहते हैं या कटोरा
0: जी।
1: कहते हैं, वो सब पानी के लिए रखें, क्योंकि उनको भी हाइड्रेट रखना ज़रूरी है, नहीं तो उनके जीवन के लिए भी बहुत परेशानी खड़ी हो सकती है। उनके लिए दाना पानी ऐसे रखें जो छाया में हो और वो आराम से उसका सेवन कर पाएँ। ऐसे ही हमारे पशु हैं, जो हमारे पालतू पशु हैं हमारे घरों में, उनका भी ध्यान रखें, हवा पानी का उनका अच्छे से प्रबंध करें, क्योंकि उनको भी गर्मी लग सकती है और उनको गर्मी और जो भी वातावरण है उसको साफ शुद्ध करके रखें, जिससे कि हमें उनसे जो प्राप्त होता है, जैसे दूध प्राप्त होता है, और क्या कहते हैं आप, पक्षी हैं जो हमारे वातावरण से एक बीज को लेकर कहीं दूसरे उसमें उड़ जाते हैं, तो उनके लिए भी वातावरण को साफ शुद्ध रखें, जिससे कि वो अच्छे से अपना जीवन जी पाएँ।
0: बिल्कुल सही। कुल मिलाकर बात कुसुम जी आप तक यही कहना चाहती हैं कि जो हमारे आसपास जितने भी जीव जंतु हैं हमें सब उनका भी ध्यान रखना है, गर्मी है तो उनको भी बचाना है।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: क्योंकि हर एक जीव, हर एक पक्षी, हर एक जंतु का अपना एक महत्व है, क्योंकि उनके द्वारा ही हमारी इस प्रकृति का एक जो संचालन होता है,
1: भी
0: है बिल्कुल सही। इस संचालन में सबका एक छोटा छोटा योगदान मिलता है, जो कि एक बड़ा योगदान बन जाता है, जिसकी वजह से हमारा जीवन है। तो हम अपनी अपनी भूमिका, उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अपना अपना योगदान अपने तरीके से जरूर देंगे। और मुझे इस बात से याद आया कुसुम, आपको बता दूं कि पता है बहुत सारे ऐसे लोग हैं, हम सोच भी नहीं सकते, दिल्ली की ही बात बता रही हूँ आपको, अभी एग्जैक्ट नाम मैं उनका नहीं याद कर पा रही हूँ, लेकिन ये सच है कि जब कुछ साल पहले, आज से 15-20 साल पहले, एक महाशय हैं जिन्होंने देखा कि गुरैया पक्षी जो है वो बहुत कम हो गई है, गुरैया चिड़िया, तो उन्होंने धीरे धीरे करके अपना ही इनिशिएटिव लेकर।
1: हाँ बिल्कुल, वो मैंने भी पढ़ा है अखबार में और कई जगह पर उनका जिक्र हुआ है। ऐसे ही मैं आपको बताऊंगी, एक बार मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हुआ, मतलब पर्सनल इंसिडेंट है ये, लेकिन मैं साझा करना चाहूंगी कि आप भी ऐसा करें, क्योंकि हर एक जीवन हमारे लिए जरूरी है, इस प्रकृति के लिए, इसमें हर कोई समाहित है और एक दूसरे से जुड़ा हुआ है।
0: बिल्कुल सही।
1: ऐसा हुआ सुषमा कि एक बार मैं अपने एक साथी मित्र के साथ थी और हम लोग बाइक पर थे, लेकिन हमने देखा हमारी बाइक के आगे एक छोटा सा पक्षी जो है वो इधर उधर हो रहा था, शायद हमें लगा कि उसे दिख नहीं रहा, तो हमने क्या किया, हम रुके, आसपास का ट्रैफिक भी हमने रुकवाया और उस पक्षी को, कबूतर था वो, उसको पक्षी को लेकर हम यहीं पास में करोल बाग में एक जगह है जहाँ उनको दाना पानी दिया जाता है जब तक उनका जीवन है, और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है वो, वहाँ पे कोई आपको किसी तरह की असुविधा नहीं होती। हमने उस पक्षी को ले जाकर, हालांकि बहुत ज़रूरी काम से थे, लेकिन हमने कहा नहीं, सब कामों से ज़रूरी एक जीवन को बचाना है, तो हम उन्हें, उस पक्षी को, कबूतर को वहाँ लेकर गए और हमने उसे जब वहाँ दे दिया तो हमें इतनी अपने मन को शांति मिली, मैं बता नहीं सकती कि चलिए कि हमने उसे सही हाथों में सुपुर्द कर दिया।
0: क्योंकि जो संतुष्टि होती है ना इस तरह के काम करने से, उसके उसका कहते हैं ना कोई सानी नहीं है, उसका कोई और उपाय, उसका कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, बिल्कुल भी नहीं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: तो साथियों आप सुन रहे हैं गीतों भरी गुड मॉर्निंग कार्यक्रम अपने साथी सुषमा और कुसुम के साथ।
1: जी बिल्कुल, और यही कहेंगे, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और साथ में व्यस्त रहिए।
0: जी हाँ।

0: और जाते और एक मेल, हाँ हम आप जरूर कहेंगे कि मैं आपको मेल आईडी बता रही हूँ इस कार्यक्रम के साथ जुड़ने के लिए, iprradiodelhi@gmail.com, आप इस पर अपना संदेश भेज सकते हैं और इस कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। और एक बहुत ही खूबसूरत गीत आप सबके लिए, टू स्टेट्स फिल्म से है ये गीत,
1: और मस्त मगन हो जाइए सुनकर इसको, क्योंकि गीत भी है मस्त मगन।
0: जी हाँ, अरिजीत सिंह और चिन्मयी श्रीपदा की आवाज में ये गीत।

सुषमा, आपने गाना तो बहुत अच्छा हमें सुनवाया और हमारे जो लिसनर्स हैं उनको भी सुनवाया, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जो इस मौसम में हम अपने पशु पक्षियों के बारे में जब बात कर ही रहे हैं,

0: तो हमें उनसे रिलेटेड कुछ गीत भी चलाने चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और कुछ हमारी फरमाइश भी आ चुकी है इस बात को लेकर।
1: जी हाँ, फरमाइश भी आई है, साथी भी हमारे जुड़ चुके हैं, और अपना जो मनपसंद गीत है जिसे सुबह सुबह हम कहते हैं ना चाय की चुस्कियों के साथ, अब गर्मी हो या सर्दी चाय तो हम सभी पीते हैं
0: हाँ,
1: ना।
0: और हमारा ये भी ध्येय रहता है कि चाहे हम किसी भी सिचुएशन में हो, कैसे भी मौसम में हो और कैसे भी परिस्थिति में, हमें सोचना चाहिए और वैसा काम भी करना चाहिए कि सब कुछ ठीक ठाक रहे।
1: बिल्कुल सही। और चाय का मैं बात इसलिए कर रही थी क्योंकि हमें पता है हमारे बहुत सारे श्रोता जो ना हमारा कार्यक्रम सुन रहे होते हैं चाय की चुस्कियों लेते हुए,
0: लेकिन लेकिन लेकिन सुषमा, मैं
1: और
0: आपको टोकना चाहूंगी, समय बदल चुका है। जो ये सूरज चाचू अपनी इतनी कृपा
1: क्या।
0: बरसा रहे हैं ना, इसमें आजकल लोग चाय की जगह कुछ और भी पेय पदार्थ इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे कि छाछ,
1: जी
0: लस्सी, दलिया, मतलब सुबह के टाइम उसकी जगह और भी चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि चाय तो हैबिट कह लीजिए या एक पेय पदार्थ
1: जी
0: तो है ही हमारा कॉमन, लेकिन उसके साथ साथ हमें, क्योंकि गर्म उसकी तपिश होती है और उसकी नेचर भी गर्म होता है,
1: जी जी
0: तो अपने आप को ठंडा रखने के लिए हम कुछ ठंडे पदार्थ भी लेने लगे हैं, जैसे सुबह सुबह
1: जैसे
0: नींबू पानी,
1: जी
0: दलिया, या फिर
1: ठंडाई,
0: हाँ ठंडाई।
1: गोंद कतीरा
0: जी बिल्कुल,
1: दूध
0: रूह
1: में
0: अफ़ज़ा।
1: घोल के हम जानते हैं, हमारे श्रोता भी, हमें लगता है कि इस तरह की कुछ कुछ श्रोता तो चाय के पर्टिकुलर लेते ही
0: हाँ
1: होंगे,
0: हाँ
1: लेकिन
0: हाँ
1: बहुत सारे श्रोता अब जागरूक भी हुए हैं, कोई रूह अफ़ज़ा ले रहा होता है सुबह सुबह, कोई गुलाब का शरबत और ऐसी बहुत सारी चीज़ें।
0: हाँ और कुछ लोग ना अपना घर में ही कुछ पेय पदार्थ बना लेते हैं, जैसे छाछ में अच्छी तरह जीरा भून कर डाल लिया, हरा धनिया डाल लिया, थोड़ा सा प्याज
1: जी
0: डाले, और उसके बाद वाह।
1: मेरे मुंह में पानी आ रहा है। तो हम
0: मतलब
1: यही कहेंगे
0: ये सब चीजें किसके लिए है सुषमा, जानते हो, कि सब कुछ ठीक रहे,
1: जी,
0: है ना, यानी कि ऑल इज
1: सेहत ठीक
0: वेल।
1: रहे, फैमिली ठीक रहे, और हमारा हमारा घर परिवार सब स्वस्थ रहे, काम धंधा सही चलता रहे, है ना।
0: हाँ, क्योंकि हम जब ठीक रहेंगे तो सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, तो इसलिए यही कहना चाहेंगे कि ऑल इज
1: ऑल
0: वेल।
1: इज वेल, जी हाँ। और देखिए मैंने आप सबके लिए गीत भी ढूंढा है, सोनू निगम,
0: और
1: सदानंद किरकिरे की आवाज में, और भी साथी हैं साथ में।
0: तो लीजिए सुनते हैं इस गीत को, और हमारे साथ आप भी गुनगुनाइए ऑल इज वेल।
1: जी, थ्री इडियट फिल्म से ये बहुत ही खूबसूरत गीत।

0: पीपल ऑल इज वेल।
1: जी बिल्कुल, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, और उम्मीद आप भी रखें, हम भी रखेंगे, और उसके साथ काम भी करते रहेंगे कि सब रहे ऑल इज वेल। हम चाहेंगे कि आप अपने आप को सुबह उठकर एक छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा एक काम करें अपने लिए, एक गर्म पानी का ग्लास जरूर पिएं, क्योंकि सुबह का जो ये गुनगुना पानी होता है ना, पूरे दिन के लिए बहुत ही अच्छा होता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि सेहत को दुरुस्त रखना है, तंदुरुस्त रखना है अपने आप को, तो ये बहुत ज़रूरी है कि सुबह उठते ही पानी ज़रूर
1: जी
0: पिए।
1: बिल्कुल,
0: और दिन में जैसे कि हमने कहा, बहुत सारे पेय पदार्थ आप अपने खाने में, अपनी दिनचर्या में शामिल करें, ताकि आप स्वस्थ रहें और इस चिलचिलाती धूप और गर्मी से बच सकें।
1: जी हाँ, खुद तो पिए ही, लेकिन अपने नियरेस्ट डियरेस्ट जितने भी हैं, हमारे ह्यूमन बीइंग हैं, या फिर हमारे एनिमल्स हैं, हमारे पशु पक्षी जो जितने भी हैं, उनको भी हम हाइड्रेट रखें, ये भी हमारा कर्तव्य बनता है। और कहीं भी किसी को भी प्यासा ना रहने दें, अपने साथ में एक छोटी सी बॉटल जरूर रखें। यदि आप घर से बाहर निकल रहे हैं, अपने लिए तो रखें ही, लेकिन एक बॉटल और रखें, जिससे कि यदि रास्ते में किसी को प्यास लग जाए और आपसे पानी मांगे, तो आप दे पाए। देखो सुषमा, मैं तो ऐसा ही करती हूँ, हमेशा अपने पास दो बॉटल रखती हूँ, क्योंकि
0: जी
1: कई बार ऐसा हुआ कि जैसे मैं अपनी गाड़ी में होती हूँ और जा रही होती हूँ, तो रेड लाइट पर कई बार कुछ, आपने देखा होगा, बच्चे होते हैं,
0: जी जी
1: उन्होंने मुझसे पानी की डिमांड की, जानते हैं, उन्होंने कहा कि दीदी सिर्फ पानी पिला दीजिए। तो मैं हमेशा अपने साथ, मतलब गाड़ी में होती हूँ तो दो चार बॉटल डाल लेती
0: तो
1: हूँ,
0: ये तो बहुत
1: और
0: अच्छी बात है, आप
1: हाँ,
0: इतना नेक कार्य करते हैं भाई, ये जरूरी भी है। और
1: सभी को ये
0: जी
1: करना चाहिए कि अपने तो ध्यान रखें, लेकिन साथ में एक कैरी कर ले छोटी सी बॉटल, ताकि कोई अगर प्यासा है तो वो प्यासा ना रहे, किसी को भी पानी की ज़रूरत है तो आप पिला पाएं।
0: जी बिल्कुल सही। और साथ ही अगर आपके आसपास पौधे हैं, मुझे सबसे ज़्यादा तरस आता है पौधों पर, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि पार्क में पौधे तो लगा देते
1: हाँ,
0: हैं लेकिन उनमें पानी नहीं
1: ध्यान नहीं
0: देते हैं।
1: रखते।
0: अपने घर की छत पर भी जब भी आप पौधों में पानी दें, तो कोशिश करें कि पानी को भी बचाएं, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लोग हाँ कहते हैं ना कि इतना सारा पानी बर्बाद करते हैं, तो पानी को बचाते हुए अपने आसपास जितने भी पेड़ हैं उनमें भी आप थोड़ा थोड़ा, मतलब जो छोटे पौधे हैं जिन्हें लगता है कि
1: जी
0: पानी की ज़रूरत है, तो उन्हें भी पानी आप जरूर
1: देखिए,
0: डालें।
1: जैसे घर की बालकनी में आजकल सभी छोटे छोटे जो है गमले रखते हैं, और साथ ही एसी का पाइप होता है जिसका पानी वेस्ट होता रहता है, आप उस का पाइप जो है किसी गमले
0: जी
1: में कर सकते हैं, जिससे कि उसको पानी मिलता रहे। और एक बात और, जो हमारे सभी के घरों में, ऑलमोस्ट सभी के घरों में फिल्टर के लिए, फिल्ट्रेशन के लिए RO या जो भी है फिल्ट्रेशन के लिए लगे हुए पानी के,
0: उससे
1: तो
0: भी पानी
1: उसका,
0: बहुत वेस्ट
1: हाँ,
0: होता है।
1: बहुत वेस्ट होता है,
0: हाँ
1: उसको
0: जी
1: भी आप एक, मतलब, बास्केट वहाँ रख सकते हैं, जिससे वो पानी आप इस्तेमाल कर सकते हैं सफाई में, पौधों को पानी देने में, और अपने आसपास जैसे आपके व्हीकल्स होते हैं उनको साफ करने में। तो पानी बचाने की ये तरकीब भी मुझे लगता है अच्छी है।
0: बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल अच्छे अच्छे टिप्स दिए हैं आज अपने इस कार्यक्रम में अपने श्रोताओं को, और उम्मीद करती हूँ कि हमारे श्रोता इतने जागरूक हैं और हमारी बात को भी मानते हैं, तो ज़रूर इन टिप्स को फॉलो करेंगे, अपने पर्यावरण को, अपने आसपास को भी बचाने के
1: जी
0: लिए,
1: बिल्कुल,
0: उसे सहेजने में, मदद करने में पूरी मदद करेंगे और अपना भी ध्यान
1: और
0: रखेंगे।
1: इसी के साथ हम कर देंगे।

0: ये सुषमा और मैं गुड मॉर्निंग भरेगी तो के इस कार्यक्रम को अब गुड बाय।
1: जी हाँ, क्योंकि अगला जो गीत है बहुत ही खूबसूरत, और मैं चाहती हूँ हमारे श्रोता सुने ए आर रहमान का म्यूजिक और सिंगिंग, मतलब उनका गाया हुआ और शंकर महादेवन की आवाज में ये गीत, हम है मुकाबला, हमसे है मुकाबला फिल्म से ये गीत
0: बिल्कुल।
1: है। तो दीजिए इजाजत,
0: कुसुम और सुषमा को
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम गीतों भरे गुड मॉर्निंग, और अब कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं लवलीन निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी दो दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टरबाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। और थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटिन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए।

0: संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों को नवाचार, निवेश, सतत विकास और रक्षा क्षेत्रों में अपने सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की आवश्यकता है। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। 5 देशों की यात्रा के दूसरे चरण में श्री मोदी ने नीदरलैंड्स के हेग में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि दुनिया पिछले कुछ समय से कोविड महामारी, वर्तमान में जारी संघर्षों और ऊर्जा संकट जैसी कई बड़ी चुनौतियों का सामना कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि 21वीं सदी में भारत अवसरों की भूमि बनकर उभर रहा है।
2: 21वीं सदी का भारत अवसरों की भूमि है। भारत टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है और ह्यूमैनिटी ड्रिवन भी है। भारत जितना एंशियंट है उतना ही मॉडर्न बन रहा है और विकसित भारत की जर्नी में भागीदारी का भी है। मैं नीदरलैंड्स में भारतीय समुदाय के सभी साथियों से कहूंगा, आप भारत में ज्यादा से ज्यादा सहयोग बढ़ाएं। इससे भारत का सामर्थ्य भी बढ़ेगा और आपके इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा।
0: प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत होते गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। इस यात्रा का एक विशेष आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री का संबोधन है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ करेंगे। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है, जिससे वस्त्र, लेदर, इंजीनियरिंग जैसे क्षेत्रों को व्यापक बाजार पहुंच मिलने की संभावना है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गोथेनबर्ग यात्रा ऐतिहासिक विश्वास और भविष्य की साझेदारी के बीच एक महत्वपूर्ण सेतु का कार्य कर रही है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी।
4: We have a very long-standing partnership with Sweden on defense.
5: रक्षा क्षेत्र में स्वीडन के साथ हमारी साझेदारी बहुत पुरानी है, लेकिन अब ये रिश्ता सिर्फ खरीदार विक्रेता के संबंध से आगे बढ़कर रक्षा साझेदार के रिश्ते में बदल गया है। अब दोनों देश और दोनों देशों की कंपनियां मिलकर रक्षा उपकरण बनाने और उनके उत्पादन करने की दिशा में काम कर रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल जैसे आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया और साथ ही देश में हुए बुनियादी ढांचे के विकास से इस प्रयास को और भी अधिक गति मिली है।
4: एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट दैट हैज हैपेंड।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, पूर्व मुख्यमंत्री वीरप्पा मोइली और भारतीय जनता पार्टी तथा अन्य पार्टी के नेताओं ने विचार साझा किए। उन्होंने कहा कि कई राज्यों की यात्रा के दौरान समिति आपत्तियां और सुझाव एकत्रित कर रही है। इससे जुड़ी चुनौतियों पर उन्होंने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा और दल बदल विरोधी कानून, अविश्वास प्रस्ताव तथा राष्ट्रपति शासन के माध्यम से समस्याओं का निदान करना पड़ेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
6: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
7: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
6: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के धार में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए निर्बाध प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के आदेश का हवाला देते हुए एक अधिकारी ने कहा कि भोजशाला एक मंदिर होने के साथ साथ संस्कृत भाषा, व्याकरण और साहित्य के अध्ययन और अनुसंधान का केंद्र भी है। हिंदू समाज को प्राचीन परंपरा के अनुसार माँ देवी सरस्वती की पूजा अर्चना और अध्ययन के लिए इस परिसर में बिना किसी रोक टोक के आने का अधिकार होगा। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के उस 7 अप्रैल 2003 के आदेश को भी रद्द कर दिया जिसमें मुस्लिम समुदाय को हर शुक्रवार भोजशाला परिसर में नमाज पढ़ने की अनुमति दी गई थी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग जमीन के आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में पुणे से एक अन्य अभियुक्त प्रोफेसर मनीषा मंधारे को गिरफ्तार किया है। वे पुणे के एक कॉलेज में वनस्पति शास्त्र के अध्यापक हैं। सीबीआई के अनुसार राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने मंधारे को परीक्षा प्रक्रिया में विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त किया था। इससे पहले सीबीआई ने 14 मई को पुणे से ही मनीषा वाघमारे को गिरफ्तार किया था। पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज दुष्कर्म और हत्या मामले की सुनवाई कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति शंपा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ करेगी। इससे पहले न्यायमूर्ति राजा शेखर मंथा और न्यायमूर्ति राय चट्टोपाध्याय ने 11 मई को इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। इसमें एकमात्र दोषी संजय राय को जनवरी 2025 में आजीवन कारावास की सजा हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अध्यादेश 2026 के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के अलावा न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने की मंजूरी दे दी है। इस अध्यादेश के माध्यम से सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन किया गया है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा कि सोने और प्लैटिनम से मणि हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। और अब खेल जगत की खबरों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
5: जी लवलीन, खेल खबरों में सबसे पहले बात बैडमिंटन की। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रोली कॉर्नेडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और अगर बात करें टेनिस की तो भारत के सिद्धांत बंथिया और बुल्गारिया के अलेक्जेंडर डोंस्की की जोड़ी ने पुर्तगाल में ओइरास 4 ATP चैलेंजर 100 टूर्नामेंट में पुरुष डबल्स का खिताब अपने नाम कर लिया है। और टेनिस में ही इटली ओपन टूर्नामेंट में विश्व के नंबर एक खिलाड़ी इटली के यानिक सिनर फाइनल में पहुंच गए हैं। फाइनल में आज सिनर का सामना कैस्पर रूड से होगा। उधर बेंगलुरु में भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान सलीमा टेटे ने आगामी ऑस्ट्रेलिया दौरे से पहले टीम की तैयारियों पर जोर दिया है। भारतीय टीम 26 से 30 मई के बीच पर्थ हॉकी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 4 मैच खेलेगी। और अगर बात करें क्रिकेट की तो IPL में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज धर्मशाला में दोपहर 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा और 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। जी लवलीन, खेल जगत से बस आज इतना ही।
0: मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और अंडमान द्वीप समूह के कई हिस्सों और पूरे निकोबार द्वीप समूह में आगे बढ़ चुका है। विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मॉनसून के 26 मई को केरलम तक पहुंचने की संभावना है।

0: अगले 3 से 4 दिन के दौरान अंडमान निकोबार द्वीप समूह, हिमालय के तराई क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकल, केरल, माहे और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में कुछ स्थानों पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार।
1: धन्यवाद लवलीन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दशक को आपदाओं का दशक बताते हुए इस स्थिति को बदलने की अपील की है। लोक सत्य की सुर्खी है, मानवता के सामने कई बड़ी चुनौतियां, हालात नहीं बदले तो गरीबी के दलदल में फंसेगी दुनिया। प्रधानमंत्री की चेतावनी शीर्षक से दैनिक जागरण ने संपादकीय में लिखा है, एक ऐसे समय जब भारत पिछले कुछ वर्षों में करोड़ों लोगों को गरीबी से उबारने में सफल हुआ है, तब इससे अधिक चिंता की बात कोई और नहीं हो सकती कि फिर से न सिर्फ भारतीयों के बल्कि पूरी दुनिया के सामने आर्थिक संकट तेजी से बढ़ रहा है। भोजशाला में अब बिना रोक टोक के 365 दिन हो सकेगी पूजा। दैनिक जागरण ने इसे पहली खबर बनाते हुए लिखा है, प्रवेश और पूजा की नई व्यवस्था, भोजशाला में लौटा आस्था का उल्लास। नीट यूजी पेपर लीक मामले में दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, रक्षक ही भक्षक। पत्र के अनुसार एनटीए ने 4 नए अफसरों की नियुक्ति हुई, कथित सरगना कुलकर्णी को 10 दिन की हिरासत में भेजा। नवभारत टाइम्स की खबर है, जुलाई से सीबीएसई के अंतर्गत 9वीं और 10वीं के विद्यार्थी पढ़ेंगे तीसरी भाषा, इनमें 2 भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। पत्र के अनुसार नए नियम 1 जुलाई से प्रभावी हो जाएंगे। आज विश्व दूर संचार दिवस पर राजस्थान पत्रिका लिखता है, धरती के संसाधनों को निचोड़ रहा आपके फोन में पड़ा डार्क डेटा। पत्र के अनुसार हर दिन अनावश्यक फाइल और चैट से बढ़ रहा है डार्क डेटा, जिसे संभालने में खर्च हो रही है बिजली और पानी। मॉनसून के अंडमान पहुंचने की खबर हिंदुस्तान में है। पत्र के अनुसार अगले हफ्ते दक्षिण पूर्वी अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में पहुंचने के आसार।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री के बीच विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन की स्वीडन यात्रा पर आज गोथेनबर्ग पहुंचेंगे, स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टेंसन के साथ बातचीत करेंगे। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले के बाद भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने भोजशाला परिसर में हिंदुओं के निर्बाध प्रवेश की अनुमति दी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगाया, इसे मुक्त से प्रतिबंधित श्रेणी में रखा गया है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट को 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम सुनील वर्मा। द हेडलाइंस, इंडिया एंड द नेदरलैंड्स एलिवेट देयर टाइज टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फॉलोइंग टॉक्स बिटवीन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड हिज डच काउंटर पार्ट रॉब येटन। प्राइम मिनिस्टर मोदी टू रीच गोथेनबर्ग टुडे ऑन अ 2-डे विजिट टू स्वीडन to hold talks with his Swedish counterpart, Ulf Kristersson. Archaeological Survey of India allows Hindus unrestricted access to Bhojshala temple after Madhya Pradesh High Court verdict. Government imposes curbs on import of silver, moves it to restricted category. Delhi government decides to reduce value-added tax on aviation turbine fuel in national capital from 25% to 7%. And in badminton, Indian duo of Satvik Sairaj Ranki Reddy and Chirag Shetty to face Indonesian pair in men's doubles final of Thailand Open in Bangkok today. India and the Netherlands agreed to elevate their bilateral relationship to the level of a strategic partnership following wide-ranging discussions between Prime Minister Narendra Modi and Dutch Prime Minister Rob Jetten in The Hague. During the talks, the two leaders reviewed cooperation across sectors, including trade, defense, technology, water management, clean energy, healthcare, and education. Several agreements were also signed to deepen collaboration in priority areas. Announcing the elevation of ties to a strategic partnership, Prime Minister Modi said,

0: बिहेवियर, ये हमारी साझी सोच का हिस्सा है। हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए।
1: नीदरलैंड के वजीर आजम रॉब जिटन ने भारत के साथ बढ़ते हुए ताल्लुकात की अहमियत पर भी जोर दिया और माशी और कलीदी शोबों में मजबूत तआवुन की हिमायत की। वजीर आजम नरेंद्र मोदी स्वीडन के दो रोजा दौरे पर आज गोटेनबर्ग पहुंचेंगे। ये दौरा भारत और स्वीडन के दरमियान वसत पा रहे इश्तराक के लिए एक तारीखी संगे मील साबित होगा। जनाब मोदी बाहमी ताल्लुकात के तमाम पहलुओं का जायजा लेने की खातिर स्वीडन के अपने हम मनसब उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत करेंगे और बाहमी बातचीत को तिजारत को बढ़ाने के साथ साथ मसनूई जहानत, AI, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, स्टार्टअप्स, रेजिलियंट सप्लाई चेन्स, दिफा, खला, आबो हवा से मुतालिक कार्रवाई और अवाम के दरमियान रिश्तों और कार्रवाई माहौल दोस्त बदलाव की जानिब मुंतकली को बढ़ाने के लिए तआवुन के नए मौके तलाश किए जाएंगे। दोनों मुल्कों के वज़राए आज़म सनद के लिए यूरोपियन गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस से भी खिताब करेंगे, जो यूरोपियन कमीशन की सदर उर्सुला फॉन डर लायन के साथ एक सरकर्दा पैन यूरोपियन सरबराहों का फोरम है। ये बातचीत वजीर आजम के वसी यूरोपी दौरे के तीसरे मरहले का एक हिस्सा है और जनवरी 2026 में हुए भारत यूरोपियन आज़ाद तिजारती मुआहदे FTA के बाद से खित्ते का ये पहला दौरा है। ये दौरा बाहमी ताल्लुकात का जायजा लेने की गरज से तैयार किया गया है और इसका मकसद तेजी से बढ़ती हुई तब्दीलियों और पेचीदा जोग्राफियाई चैलेंजों के दौर में तआवुन का पता लगाना है। ये दौरा इक्तिसादी सरगर्मियों में तेजी के रुझान के बाद हो रहा है, जहां दो तरफा तिजारत साल 2025 में रिकॉर्ड 7.75 अमरीकी डॉलर हो गई और साल 2000 से 2025 के दरमियान भारत में स्वीडन के रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी का हजम 2.825 अरब डॉलर्स रहा। मजीद तफसील हमारे नामा निगार से।
2: स्वीडन, जो दुनिया की सबसे ज़्यादा इख्तराई मईशतों में से एक है, भारत के डिजिटल पूल के साथ कुदरती हम आहंगी तलाश कर रहा है। फिलहाल 280 से ज़्यादा स्वीडिश कंपनियां भारत में काम कर रही हैं, जबकि 75 भारतीय फर्म स्वीडन में कायम हो चुकी हैं। इस दौरे की एक ख़ास बात वज़ीरे आज़म की यूरोपीय कमीशन की सदर के साथ यूरोपीय गोलमेज़ कॉन्फ्रेंस बराए सनद से मुश्तरका तौर पर खिताब है। दिफाई और सिक्योरिटी ताउन सनती इंजमाम की तरफ बढ़ते हुए एक मरकजी सतून में तब्दील हुआ है। इन ताल्लुकात की जड़ें 2009 के दिफाई ताउन के माहदे और 2019 के जनरल सिक्योरिटी माहदे में पेवस्त हैं। मसनू जहानत, AI और उभरती हुई टेक्नोलॉजीज़ में ताउन इस शराकत दारी की बुनियाद फराहम करता है। इसके अलावा दोनों ममालिक खलाई तहकीक में भी ताउन कर रहे हैं। स्वीडिश इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस फिजिक्स इसरो के वीनस ऑर्बिटर मिशन के लिए आलात फराहम कर रहा है। आखिर में वजीर आजम का गोटेनबर्ग का दौरा तारीखी एतमाद को मुस्तकबिल के लिए तैयार अहदाफ से जोड़ता है। गोटेनबर्ग स्वीडन से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं हुसैन अख्तर।
1: भारत और स्वीडन के दरमियान तिजारत और अवाम से अवाम के दरमियान राब्तों की विरासत है, जो एक सदी से ज़्यादा अरसे पर मुहित है और इसकी जड़ें बाहमी एहतराम, पुरअमन बका और अहिंसा के नज़रिए में पेवस्त हैं। इस गहरे ताल्लुक़ की निशानदेही नोबेल इनाम याफ्ता रविंद्रनाथ टैगोर के साल 1926 के स्वीडन दौरे के 100 साल मुकम्मल होने से होती है। आज ये ताल्लुकात सकाफती बुनियादों से आगे बढ़कर जामे सनती इक्तिसादी शराकत दारी में बदल रहे हैं। कीमती धातुओं पर इजाफी कस्टम ड्यूटीज आयद करने के कुछ ही दिनों बाद हुकूमत ने अब चांदी की दरामद में कटौती की है। गैर मुल्की तिजारत के डायरेक्टोरेट जनरल DGFT ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि चांदी पर सोने का पानी चढ़ी चांदी और प्लेटिनम समेत चांदी पर दरामदी पॉलिसी को फौरी तौर से आज़ाद से पाबंदी शुदा के जुमरे में तब्दील किया गया है। हुकूमत ने बुध के रोज कीमती धातुओं पर दरामदी ड्यूटी 6% से बढ़ाकर 15% कर दी थी। पाबंदियां आयद किए गए जुमरे की अशिया की दरामद के लिए हुकूमत की लाइसेंस की जरूरत होती है। दिल्ली हुकूमत ने एक अहम कदम उठाते हुए कौमी दारुल हुकूमत में एविएशन टर्बाइन फ्यूल पर वैल्यू एडिड टैक्स को 25% से घटाकर 7% करने का फैसला किया है। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि ये फैसला वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से कनेक्टिविटी और माशी सरगर्मियों को मजबूत बनाने पर जोर

0: करने से मुताबकत रखता है, जिसका मकसद शहरी हवाबाजी के शोबे को राहत फराहम करना, सियाहत और लॉजिस्टिक्स से मुतालिक सरगर्मियों को फ़रोग देना है। वज़ीर आला ने बताया कि ये रियायती शरह आइंदा 6 माह तक नाफिज रहेंगी। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। महकमा आसार कदीमा ASI ने मध्य प्रदेश के धार ज़िले में वाक़ भोजशाला कॉम्प्लेक्स इमारत में हिंदुओं को पूजा पाठ और दीगर मकासद के लिए बिला रुकावट रसाई की इजाज़त दे दी है। महकमा आसार कदीमा का ये फ़ैसला मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के उस फैसले के एक दिन बाद आया है, जिसमें मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने धार ज़िले में भोजशाला को सरस्वती देवी का मंदिर करार दिया है। तफसील हमारे नामा निगार से।
1: महकमा आसार कदीमा के हुक्मनामे का हवाला देते हुए एक अफसर ने बताया कि भोजशाला मंदिर के अलावा संस्कृत जबान, कवायद और अदब सीखने सिखाने और तहकीक का मरकज़ भी रही। अफसर ने मज़ीद बताया कि हिंदू बिरादरी के सरस्वती देवी की पूजा और सीखने सिखाने के कदीम तरीक़ेकार से ताल्लुक़ की बिना पर उन्हें कॉम्प्लेक्स में बिला रुकावट रसाई की इजाज़त होगी। इससे पहले जुमे के रोज़ मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने धार ज़िले के भोजशाला कॉम्प्लेक्स को सरस्वती देवी का मंदिर करार दिया था और कहा था कि मरकज़ और ASI इसके इंतज़ाम व इंसराम तय कर सकते हैं। हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने 7 अप्रैल 2023 के महकमा आसार कदीमा के उस हुक्मनामे को भी कलअदम करार दिया, जिसमें मुसलमानों को हर जुमा को भोजशाला कॉम्प्लेक्स में जुमे की नमाज अदा करने की इजाज़त थी। दलाइल की समाअत कर रही बेंच ने यह भी कहा कि मुसलमान बिरादरी जो ASI के तहफ़ वाली 11वीं सदी की इमारत को कमाल मौला मस्जिद मानती है, वो ज़िले में मस्जिद की तामीर के लिए अलहदा ज़मीन अलाटमेंट की खातिर रियासती हुकूमत से रुजू कर सकती है। भोपाल से अभिनव गोयल की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए ज़मीर रज़वी।
0: CBI ने नीट पेपर लीक केस के सिलसिले में पुणे से एक और अहम मुलजिमा को गिरफ्तार किया है। मुलजिम प्रोफेसर मनीषा मंधारे पुणे में एक कॉलेज में बॉटनी के उस्ताद हैं। CBI के मुताबिक कौमी जांच एजेंसी ने इम्तिहान के अमल में एक एक्सपर्ट के तौर पर उनका तकर्रुर किया था। इससे पहले 14 मई को एक और मुलजिमा मनीषा वाघमारे को भी पुणे से गिरफ्तार किया गया था। दोनों मुलजिमान को पुणे की एक अदालत में पेश किया गया था और बाद में मजीद तफ्तीश के लिए उन्हें दिल्ली लाया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस शंपा सरकार और जस्टिस तीर्थांकर घोष की एक डिवीजन बेंच की जानिब से RG कर मेडिकल कॉलेज असमत दरी और कत्ल केस की समाअत की जाएगी। इससे पहले इस हफ्ते जस्टिस राजा शेखर मांथा और जस्टिस राय चट्टोपाध्याय ने ज्यादा मसरूफियत का हवाला देते हुए खुद को इस केस से अलग कर लिया था। इस केस में संजय राय जनवरी 2025 में उम्र कैद की सजा पाने वाले वाहिद मुजरिम हैं। मुतवफ़ी डॉक्टर की वालिदैन ने कोलकाता की सियालदा अदालत में एक केस दायर किया था, जिसमें उन्होंने TMC के साबिक MLA निर्मल घोष, संजीव मुखोपाध्याय और घोला पुलिस स्टेशन के उस वक्त के इंचार्ज की गिरफ्तारी की अपील की थी। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद से मुतालिक तरमीमी ऑर्डिनेंस 2026 के निफाज के जरिए भारत के चीफ जस्टिस को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट में जजों की तादाद 33 से 37 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। कानून और इंसाफ की वजारत की तरफ से शाया करदा एक गेजेट नोटिफिकेशन के मुताबिक इस ऑर्डिनेंस में सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद से मुतालिक एक्ट 1956 में तरमीम की गई है। एक मुल्क एक चुनाव बिल से मुतालिक मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी ने कल सियासी पार्टियों, कानूनी बिरादरी और सिविल सोसाइटी के साथ बेंगलुरु में वसी तर तबादला ख्याल किया। बाद में अखबार नवीसों को जानकारी देते हुए कमेटी के चेयरमैन PP चौधरी ने बताया कि मुख्तलिफ रियासतों के अपने दौरे के दौरान मुश्तरका पार्लियामानी कमेटी की तरफ से एतराजात और सिफारिशात जमा की जा रही हैं। बैडमिंटन में बैंकॉक में जारी थाईलैंड ओपन के मर्दों के डबल्स के फाइनल में आज सत्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लियो रॉली कॉर्नेंडो और डेनियल मार्टिन से जोड़ी से होगा। इससे पहले कल सेमीफाइनल मुकाबले में भारतीय जोड़ी मलेशिया के गो ज़ीफी और नूर इजुद्दीन को हराकर फाइनल में पहुंची है। टेनिस में आलमी नंबर एक खिलाड़ी यानिक सिनर इटालियन ओपन के फाइनल में पहुंच गए हैं। उन्होंने सेमीफाइनल मुकाबले में रोम के कैंपो सेंट्रेल में डेनियल मेदवेदेव को हराकर फाइनल में जगह बनाई है। आज फाइनल में सिनर का मुकाबला कैस्पर रूट से होगा। ये थी खबरें, अब अखबारात के आईने के साथ हैं ज़मीर रज़वी।
1: शुक्रिया आसिया। कौमी राजधानी दिल्ली से शाये होने वाले ज़्यादातर उर्दू अखबारात ने मुख्तलिफ खबरों को नुमाया तौर पर जगह दी है। रोज़नामा इंकलाब ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के नीदरलैंड

0: की खबर को सफ़े अव्वल की शह सुर्खी बनाया है। वज़ीर आज़म कल एम्स्टरडेम पहुँचे, जहाँ भारतीय बिरादरी ने उनका पुरतपाक खैर मकदम किया। इस दौरान वज़ीर आज़म ने कहा कि मशरक़ वस्ती में जंग और बढ़ती आलमी गैर यकीनी कई दहाइयों की तरक्की को उलट सकती है और बड़ी आबादी को दोबारा गुरबत में ढकेल सकती है। रोज़ामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने तमिलनाडु में वज़रा में कलमदानों की तकसीम से मुतालिक खबर को नुमाया तौर पर जगह दी है। अखबार के मुताबिक वज़ीर आला जोसेफ विजय ने दाखला और आम इंतजामिया जैसे अहम महकमे अपने पास रखे हैं। रोज़नामा प्रताप ने दिल्ली की वज़ीर आला रेखा गुप्ता के उस बयान को अपनी चैसुर्खी बनाया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बेटियों की तालीम सिर्फ ख़ानदान ही नहीं बल्कि समाज और मुल्क के रोशन मुस्तकबिल की बुनियाद होती है।
1: आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के उनके हम मनसब रॉब जेटन के दरमियान बातचीत के बाद दोनों मुल्कों ने अपने ताल्लुकात को स्ट्रेटेजिक शराकतदारी में बदल दिया है। वजीर आजम मोदी स्वीडन के अपने दो रोजा दौरे पर आज क्वेटनबर्ग पहुंचेंगे। इस दौरान वजीर आजम स्वीडन के अपने हम मनसब उल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत करेंगे। महकमा आसार कदीमा ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के फैसले के बाद हिंदुओं को भोजशाला मंदिर में बिला रुकावट दाखिले की इजाजत दे दी है। हुकूमत ने चांदी की दरामद में कटौती करते हुए इसे पाबंदी वाली अशिया के जुमरे में डाल दिया है। दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी में हवाई जहाजों के ईंधन पर वैल्यू एडिड टैक्स में कटौती करते हुए इसे 25% से घटाकर 7% कर दिया है। इसके साथ ही ये खबरनामा खत्म हुआ।

0: आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम साहित्य की। आज के इस अंक में प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत की जयंती के अवसर पर आप सुन सकेंगे परिचर्चा। परिचर्चा का संचालन कर रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार श्री दिनेश कांडपाल।
1: नमस्कार, सभी श्रोताओं का स्वागत है इस खास परिचर्चा में। आप इस परिचर्चा को आज सुन रहे हैं और आगे भी कई बार कई मौसमों में सुनेंगे, लेकिन जिस मौसम में ये परिचर्चा रिकॉर्ड की जा रही है और जिनके लिए ये परिचर्चा रिकॉर्ड की जा रही है, उसकी शुरुआत मैं एक कविता से करना चाहूंगा। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्त्र दीर्घ सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल, गिरिका गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत द्वारा रचित इस कविता का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि इस वक्त तपती गर्मी पड़ रही है, और अगर कहीं सुमित्रानंदन पंत ने इस गर्मी का एहसास लिया होता तो अवश्य वो अपने कौसानी को याद करके इस कविता को बार बार दोहरा रहे होते जो उन्होंने ही रची थी। मेरा नाम है दिनेश कांडपाल। हमारे साथ आकाशवाणी के स्टूडियो में बहुत ही प्रबुद्ध विद्वान इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारे साथ हैं श्री मदन कश्यप जी, आप वरिष्ठ कवि और समालोचक हैं।
2: नमस्कार।
1: हमारे साथ हैं श्री प्रियदर्शन जी, आप वरिष्ठ लेखक और पत्रकार हैं। और हमारे साथ हैं श्री रामकिशोर उपाध्याय जी, आप वरिष्ठ साहित्यकार हैं।
3: नमस्कार।
1: आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। मदन जी, जिस कविता से मैंने कार्यक्रम की शुरुआत की थी, इस तपते मौसम से आप भी अभी बाहर से स्टूडियो के अंदर आ रहे हैं, तो पंत जी की कोई कविता झलक रही थी या कोई उनकी बात याद आ रही थी?
2: प्रकृति का जो चित्रण उनके, हालांकि यह कविता उस तरह से जिस तरह से सुकुमार की बात कर रहे हैं, तो इसमें सुकुमार जी कहाँ है, ध्वनि तो ये तो निराला की ध्वनि है जो सुपरिचित ध्वनि है, तो असल में ये होता है, लेकिन है तो प्रकृति ही, प्रकृति का चित्रण है, तो ये उस दृष्टि से देखिए तो आ ही रही है। असल पे एक बात अब मुझे कहनी है, सबसे पहले अगर मुझसे आपने शुरू किया है तो थोड़ी परेशानी भी हो रही है कि मैं ये कहूँ कि नहीं कहूँ। किसी भी कवि के बारे में या किसी भी रचनाकार के बारे में जब इस तरह का एक मुहावरा बना दिया जाता है, जैसे केदारनाथ सिंह बिम्बो के कवि हैं, पंत प्रकृति के सुकुमार कवि हैं, तो इसका होता क्या है कि उसकी एक खास विशिष्टता की ओर तो हमारा ध्यान चला जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं, निसंदेह है ये बात, लेकिन बहुत सारी विशेषताएँ तब दब जाती है और आदमी उसी पर अपने को केंद्रित करने लगता है कि वो इस तरह के कवि हैं। इसलिए ऐसे मुहावरे से कवि को अगर व्यापक रूप में समझना है तो ऐसे मुहावरे से बचाना चाहिए। और फिर ये भी देखिए कि क्या मूल योगदान क्या था, यही कि प्रकृति का चित्रण है उनके यहाँ, बहुत सुंदर चित्रण है, तो वो जितना उनके यहाँ है उतना प्रसाद के यहाँ भी है, निराला के यहाँ भी है। निराला के यहाँ वो ध्वनि और ज्यादा कुछ पौरुष, हालांकि ये गलत शब्द है, पौरुष

0: कुछ अगर कुछ अलग से होता है विशिष्ट को बना दिया जाए और कुछ अलग से स्त्री, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन उद्वाणी है, फिर भी प्रकृति है और माधुरी भी है। आप गीतिका के गीतों को देखें आप तो वहाँ पर वो माधुर्य भी है। फिर उसी तरह से पंत जी के यहाँ भी उस तरह की ध्वनि है, परिवर्तन जैसी कविता भी है जहाँ पर हमें वो ध्वनि दिखाई देती। तो असल में जब हम ऐसा करते हैं तो एक पक्ष है कि हम एक खास दिशा में केंद्रित करके उस रचनाकार की विशेषताओं को सीमित कर देते हैं, पहली बात तो ये है। बावजूद इसके ये सही है कि वो प्रकृति का चित्रण जितना सुंदर उनके यहाँ हुआ है बहुत कम, और शुरुआती दौर में देखिए आप वो दुर्लभ है हिंदी की जो परंपरा है। लेकिन उससे भी ज़्यादा जो महत्वपूर्ण है कि पंत वो कवि हैं, पहले कवि, अकेले पहले कवि, निराला बाद में, और प्रसाद तो और भी बाद में, क्योंकि प्रसाद अपने शुरुआती दौर में ब्रजभाषा में लिख रहे थे। प्रसाद जी ज़्यादा ट्रेडिशनल थे, ट्रेडिशनल को तोड़ने वाला कवि, जिसने हर युग में और हर कवि, अच्छे कवि के आने के बाद कविता का नया शिल्प तो आता है, लेकिन शिल्प ही नहीं बदला, शिल्प तो सबका है, निराला के भी है, प्रसाद कविता के स्थापत्य को बदल दिया, संरचना को। दो ही बार हिंदी 20वीं शताब्दी में कविता का स्थापत्य बदलता है, एक बार छायावाद में, उसके पहले पूरी तरह कविता परंपरागत है भक्ति काल से लेके, और आप मैथिली शरण गुप्त तक चले आइए तो वो स्थापत्य बदलता है, और फिर नई कविता के समय। तो अब हम व्यापक में नहीं जाएंगे, लेकिन उस स्थापत्य को बदलने का श्रेय अगर किसी को है सबसे पहला तो पंत का है। पंत ने वो काम किया, और उस महत्वपूर्ण काम को लोग भूल जाते हैं हम, कि हिंदी कविता में छायावाद ने जो स्थापत्य को बदला है उसमें ज्यादा नाम निराला का इसलिए आ जाता है कि उन्होंने छंद को तोड़ा।
1: महत्वपूर्ण बात कही, और जब उनकी जयंती पर जब ये बात कर रहे हैं तो ये मदन कश्यप जी ने एक बहुत सही दिशा दी है पूरी बातचीत को।
2: बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप मुझे लगता है मेरी राय जानना चाहते हैं,
1: जी जी,
2: जब भी हम पंत के बारे में बात करते हैं तो उनको निराला से, महादेवी से और प्रसाद से अलग करके विचार करना बहुत मुश्किल काम होता है। निछायावाद की ये जो चार बहुत प्रमुख कवि हैं, इनके बिना एक तो हिंदी कविता की बात असंभव है, और पंत के बिना छायावाद की बात असंभव है। प्रकृति के सुकुमार कवि का वास्ता मुझे लगता है असल में शायद उनके जीवन से था, उनकी कविता से कम था। मतलब निराला में जो दुर्धर्षता है या प्रसाद में जो स्वच्छंदता है, उसके मुकाबले पंत जो हैं
0: वो सुकुमार तो थे,
2: सुकुमार थे, तो सुकुमार कवि वहां से बने। अच्छा, दूसरा है कि उनकी कविता का सफर, जो उन्होंने कहा कि शुरुआत उन्होंने की प्रकृति से होता हुआ आध्यात्मिक चिंतन की ओर, कहीं कहीं बौद्धत्व की ओर भी जाता है। प्रकृति चित्रण में उनकी जो सबसे खास बात मुझे लगती है, प्रकृति उनके यहाँ जड़ बहुत कम मिलती है, यानी वो चित्रमयता पे नहीं जाते हैं, प्रकृति लगातार उससे संवाद करते हैं। लगता है कि हर चीज, जैसे मैं उनकी कविताओं को देख रहा था तो पा रहा था कि हमेशा कुछ तरंगित होता हुआ, कुछ हिलता डुलता
1: बहता हुआ।
2: और संवाद में कुछ कविताएं उनकी लेके आया था
1: जी।
2: जैसे प्रथम रश्मि का आना रंगिणी, तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया तूने यह गाना। अब मैं पूरी कविता नहीं सुना रहा हूँ, लेकिन आप कहीं से भी उनको उठा लीजिए। एक कविता उनकी धेनुए है, ओ रंभाती नदियों बेसुध कहाँ भागी जाती हो, वंशी रव तुम्हारे ही भीतर है, ओ फेन गुच्छ लहरों की पूछ उठाए, भाव दौड़ती नदियों इस पार उस पार भी देखो, जहाँ फूलों के कूल सुनहले धान के खेत हैं, कल कल छल छल अपनी ही विरह व्यथा, प्रीति कथा कहते मत चली जाओ, सागर ही तुम्हारा सत्य नहीं, वह तो गतिमय स्रोत की तरह गतिहीन स्थिति भर है, तुम्हारा सत्य तुम्हारे भीतर है, राशि का ही अनंत अनंत नहीं, गुण का अनंत बूंद बूंद में है। तो अचानक आप पाते हैं कि संवाद तो वो कभी नहीं छोड़ते हैं, उनके यहाँ चित्र भी है प्रकृति के, बहुत सुंदर चित्र हैं, और वो भी कहीं मैं खोज निकालूंगा। लेकिन जहां भी आप उठाइए, काले रंग का दुकुल, माँ काले रंग का दुकुल न वो मुझको बनवा दो सुंदर, जिसमें सब कुछ छिप जाता है, रहती नहीं धूली की डर। तो संवाद के बिना प्रकृति से वो कम टकराते हैं, हमेशा वो संवाद की मार्फत प्रकृति के हलचल के बीच उसको देखते हैं। तो जो गतिमयता है जीवन की, निराला के पास वर्षा के जितने गीत हैं, लगता है कि वो वर्षा को लेकर या वसंत को लेकर कई लोगों ने लिखा है।
1: और नदियों की कलकल बहती ध्वनि तो हम सब रमणाती नदियां, क्योंकि नदियों का जो पानी बहरा होता है तो उसके लिए जो बिंब गढ़ा गया, जो ध्वनि चयनित की गई, वो कलकल बहती
0: नदियां।
2: चांद उनकी एक छोटी सी कविता है, टूटी चूड़ी सा चांद, न जाने निर्जन नभ में किसकी मृदुल कलाई से गिर पड़ा, हाय दूज की चांद कौन जग से अदृश्य गोरी होगी वह। अब ये बड़ी छोटी सी कविता है, लेकिन इसमें इतने बिंब हैं, और एक तरह की, जिसको मैं बार बार बोल रहा हूँ, सजीवता, वो शायद पंत को अपने समय के स्थिर बिंबों वाले दूसरे कवियों से थोड़ा अलग बनाती है। पंत को इसलिए पढ़ना भी मुश्किल होता है, शायद चारों कवियों में जिनकी बात हम बार बार कर रहे हैं पंत को सबसे कम श्रेय मिला। वाकई उनकी टक्कर बहुत बड़े कवियों से थी, प्रसाद बहुत बड़े कवि हैं। महादेवी को हम लोग आंसू आंसू की मार्फत याद करते हैं, लेकिन महादेवी में प्रलय भी है, मोती भी है। आज जिस पर प्रलय विस्मित में लगाती चल रही नित मोतियों की हाट और चिंगारियों का एक मेला, तो मोती की हाट और चिंगारी का मेला लगाने वाली कवित्री के मुकाबले पंत लेकिन जिस तरह की उपमाएं चुनते हैं, जिस तरह से प्रकृति से संवादरत रहते हैं, जिस तरह उसको देखते निहारते हैं, वो अनूठा है।
1: रामकिशोर जी,
3: मैं मदन कश्यप जी की बात से अपना सूत्र ग्रहण करता हूँ कि सुमित्रानंदन पंत जी को सिर्फ प्रकृति के सुकुमार कवि कहने तक सीमित रखना शायद उनके साथ अन्याय होगा। जैसे बायोलॉजी में कहते हैं मेटामॉर्फोसिस होता है, कायांतरण होता है, वैसे ही जो जो हम पंत जी को पढ़ते हुए जाते हैं, उनकी रचनाओं को पढ़ते हुए जाते हैं, तो हम उनका एक क्रमिक विकास देखते हैं। वो प्रकृति के चित्रण से आते हैं, फिर वो धीरे धीरे समाजवाद की भी बात कर, जैसे जैसे व्यक्ति प्रौढ़ होने लगता है और जीवन के यथार्थ से वो सामना करने लगता है, वैसे ही उसके अंदर परिवर्तन आने लगता है। हालांकि उन्होंने प्रकृति को बहुत सुंदर दृष्टि में देखा, उन्होंने प्रकृति को कभी कठोरता की दृष्टि से व्यक्त किया, लेकिन जीवन की कठोरता से वो मुक्त कहाँ हो पाए। तभी तो उन्होंने अंत में आते आते समाजवाद की भी बात करने लगे, मानववाद की भी बात करने लगे, राष्ट्रवाद की भी बात करने लगे, मार्क्सवाद की भी बात करने लगे। वो गांधी पर भी कविता लिख रहे हैं, अरविंद पर भी कविता लिख रहे हैं। वो एक ऐसे कवि हैं जिसको बहुत व्यापक रूप से हमें देखना चाहिए कि वो सिर्फ प्रकृति तक ही सीमित नहीं है, कि वो अलग अलग रूपों में, अलग अलग स्वरूपों में, जैसे जैसे उनका विकास होता गया वैसे वैसे उनकी कविताओं का भी विकास होता गया। तो प्रकृति का तो जो उनका सुंदर चित्रण है, पल्लव जो उनकी बहुत ही प्रौढ़ कृति है और उसमें जो चित्रण है वो तो अद्भुत है। उनके पास जो शब्द है, जो उनके पास चित्रात्मकता है, लाक्षणिकता है, वो अद्भुत है, वो दूसरे में नहीं मिलती। और इसी जैसे निरालाकार उनके साथ विवाद ही भी इसी बात पर हुआ कि प्रांजलता की जो बात करते थे वो पंत जी करते थे, वो प्रांजलता की एक विवाद भी हुआ उनका और उन्होंने उस पर लिखा भी, और उन्होंने अबेओ गुलाब जो है, निराला ने उस पर ही लिखा, अबेओ गुलाब जो है वो सुमित्रानंदन पंत को अप्रत्यक्ष रूप से संबोधित करते हुए कहा।
1: लेकिन एक चीज जो मुझे कहनी भी चाहिए, क्योंकि उनका परिचय भी बीच बीच में थोड़ा सा आता रहे, जब सुकुमार कवि की हमने बात की और आपने इसको इतना बड़े पैमाने पर इसको खींचा, उत्तराखंड की उस जगह पे उनका जन्म, कौसानी के किसी भी हिस्से में आपका घर हो तो आप सुबह उठते हुए त्रिशूल की चोटी देखते हैं हिमालय की, और आपके सामने जो सूर्योदय होता है वो स्वर्णिम हिमालय दिखता है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में कौसानी है, मैं वहीं का रहने वाला हूँ। 7 वर्ष की आयु तक वो उत्तराखंड के उस भूभाग में, उसके बाद वो अल्मोड़ा आ गए, वहां पर भी उन्होंने हिमालय देखा। माताजी कमोवेश जन्म के वक्त ही चल बसी, तो ये एक ट्रॉमा भी रहा जीवन में, एक कमी तो कहीं ना कहीं खड़ी होगी। तो मदन जी, क्या किसी व्यक्ति के जीवन का एक ट्रॉमा उन्हें प्रकृति के इतने करीब ले गया कि उन्होंने जब अपने बिंब चुने तो उन्हें प्रकृति अपनी माँ के रूप में दिखाई दी, या वही अपनी जो पहली चेतना माँ से मिलती है वो उन्हें वहां से मिलती हुई दिखी?
0: बिल्कुल है। देखिए, होता क्या है कि इस हद तक प्रकृति जहाँ सुंदर हो कि जिसके आकर्षण से नहीं बचा जा सकता है, तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं स्वाभाविक रूप से। एक संवेदनशील कवि तो लाता है, तो जहाँ के वो थे और वहाँ के जितने कवि अच्छे आए हैं पहाड़ से, वहाँ से लेके मंगलेश डबराल तक, सबने उस प्रकृति को अलग से देखा है। और कई चीज़ें हैं, जैसे मंगलेश जी की एक जो कविता है वसंत, जिसमें वो कहते हैं कि मुसाफिर की तरह गुजरता चला जाएगा अंधकार। यह अच्छा बिंब था, लेकिन इसको मैं ठीक से समझता नहीं था कि यह कैसे होता है। जब मैंने बारिश के मौसम में नैनीताल को देखा और बादल जब पहाड़ी से गुजरता है तो लगता है कि अंधकार जो है वो अंधकार जा रहा है, उसकी छाया, बादल की छाया। तो वह जो दृश्य है, अनूठा दृश्य वहां पर बनता है, उस अनूठे दृश्य को सबसे पहले शब्दबद्ध करने का काम पंत जी ने शुरू किया, उसके पहले कोई ऐसा कवि नहीं है। बाद में बहुत सारे कवि आए हैं वहां भी। तो एक तो ये बात थी, दूसरी बात यह है कि गतिशीलता की बात बहुत अच्छी कही हमारे मित्र प्रियदर्शन जी ने, लेकिन उसमें एक और चीज देखिएगा कि छायावाद का जो एक सूत्र बना कि प्रकृति का मानवीकरण, यानी प्रकृति का ऐसा रूप जो मनुष्य जैसा हो, तो यह फॉर्मुलेशन जो बना है ये भी पंत के कारण बना है। वो बाद में और कवियों में भी है, निराला में भी है, जूही की कली जो कविता है वो पूरी तरह से एक स्त्री पर लगता है लिखी हुई कविता है। लेकिन शुरुआत मैं इसे पे ही कर रहा था कि ये जो नया बन रहा था सब कुछ, भाषा नई बन रही थी, संवेदना की एक नई बनावट थी, प्रकृति को, जीवन को देखने का एक नया नजरिया था, ये सब कुछ नया नया था। जो परंपरागत हिंदी कविता है सरापा से लेके मैथिली शरणगुप्त तक, जो पूरी परंपरा है हमारी कई भाषाओं और कई काल की, उससे बिल्कुल अलग। इसी को मैं कहता हूँ कि कविता का स्थापत्य बदल रहा था, सिर्फ शिल्प नहीं बदल रहा था। तो ये काम पंत ने वहां से शुरू किया था। तो प्रकृति को भी मनुष्य के रूप में देखना, जीवन के रूप में देखना। हाँ, ये बात जरूर थी कि मनुष्य के रूप में जब निराला देखते हैं तो ताकतवर मनुष्य दिखाई देता है, संघर्षशील मनुष्य दिखाई देता है। पंत जी के यहाँ थोड़ा

0: कोमल, थोड़ा संकुचित, कुछ अलग तरह का है, ये भी है। लेकिन आप किसी भी दृष्टि से शुरुआती तीन संग्रहों तक जब देखेंगे ना, पल्लव वीणा वगैरह तक पंत को पढ़ेंगे, तो पंत किसी भी दृष्टि से कमतर नहीं, किसी भी बड़े कवि यानी निराला से कहीं पीछे नहीं। उसके बाद जो एक विकास की यात्रा निराला की शुरू होती है वो बिल्कुल विकासमान है, बहुत दूसरी तरफ चली जाती है। और पंत जी ग्राम्या वगैरह में आते हुए गांव के जीवन का जब लिखने लगते हैं तो वहाँ उनकी कविताएं थोड़ा यांत्रिक, थोड़ा दबती है अलग। और वहाँ से लेके जब वो अरविंद दर्शन में जाते हैं तब, और फिर अंत में जब महाकाव्य जो लिखा उन्होंने, तो वहाँ तक आते आते चीजें अलग तरह की हुई हैं, उस पर बात होती रहती है। और वहाँ तक आते आते निराला बहुत ऊंचाई पर चले जाते हैं, लेकिन शुरुआती दशक में निराला और प्रसाद दोनों से बड़े कवि, और सबसे पहले भाषा की संरचना को, नए शिल्प रचने की प्रवृत्ति को, सब चीज को विकसित करने का काम पंत ने किया। तो पंत की यह जो अग्रगामी भूमिका है, एक समय के परिवेश को बदल देने की भूमिका है, वो बहुत बड़ी है। इस रूप में उनका रेखांकन नहीं किया।
1: मुझे लगता है प्रियदर्शन जी को अच्छी कविता खोज के
2: नहीं, क्योंकि बात हो रही थी पंत जी के आगे के दौर की, जिसमें उन्होंने नेहरू पे कविता लिखी, तिलक पे लिखी, महात्मा गांधी पे लिखी। बल्कि मैंने पाया ये कि निराला की वो कविताएं तो बड़ी चर्चित हुई, जैसे वह तोड़ती पत्थर और ये सब। पंत जी ने जिन समुदायों का नाम लेना वर्जित है उन अनुसूचित जातियों पे कविताएं लिखी हैं, लेकिन इसमें एक प्रयत्न दिखता है। वो जो उनकी सहजता, जो नैसर्गिक गति उनकी है, वो पुरानी प्राकृतिक कविताओं में ही दिखती है। जैसे बहुत अच्छी कविता है बापू के प्रति, मुझे लगा कि हम लोग बापू स्टूडियो में बैठे हैं। हाँ, और सब तरफ बापू की तस्वीरें भी हैं। तो कविता तो बहुत लंबी है, लेकिन तुम मांसहीन, तुम रक्तहीन, हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल, हे चिर पुराण हे चिर नवीन, तुम पूर्ण इकाई जीवन की जिसमें असार भव शून्य लीन, आधार अमर होगी जिस पर भावी की संस्कृति समासीन। ये लंबी कविता है, तिलक पे कविता है, विवेकानंद पे कविता है। तो लगता है कि अपने समय के मूर्धन्यों पे, जिन व्यक्तित्वों ने भारत की राष्ट्रीयता का निर्माण किया, उन सब पे पंत लिख रहे हैं। कई बार वो प्रयोग भी करते हैं
0: दायित्व की तरह,
2: यानी गुलाब को लेकर अगर निराला ने लिखा तो पंत ने तो कहा कि ताज का, मृत्यु का ऐसा पूजन हम क्यों करें। और वो कविता मुझे तो थोड़ी विस्मय में डालती है, क्योंकि ताज को मुझे याद है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने तो कहा था कि काल के कपोल पे आंसू की बूंद है, और साहिर ने उसका दूसरे ढंग से कहा था कि एक शहंशाह ने कि हम गरीबों की मोहब्बत का उड़ाया है मजाक। पंत इसको क्या देखते हैं? हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषण निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन, स्फटित सौध में हो श्रृंगार मरण का शोभन, नग्न क्षुधातुर वास विहीन रहे जीवित जन, मानव ऐसे भी विरक्ति क्या जीवन के प्रति, आत्मा का अपमान प्रेत और छाया से रती, प्रेम अर्चना यही करें हम मरण को वरण, स्थापित कर कंकाल करें जीवन का प्रांगण, और विलमिषों को दे हम रूप रंग आदर मानव का, मानव को हम कुत्सित चित्र बना दे शव का। ताजमहल को लेकर किस मिजाज में उन्होंने ये कविता लिखी होगी, यहाँ वो सिकुमार नहीं बिल्कुल एक तरह के कि आक्रामक वैचारिक मुद्रा में दिखाई पड़ते हैं,
0: कठोर कवि,
2: बहुत कठोर दिखाई पड़ते हैं। तो शायद अपने आप को बदलने की कोशिश है, शायद कुछ नए चिंतन की कोशिश है, जो कई बार विफल भी रहती है। विफलता कोई ऐसी चीज है जिस पर किसी को शर्मिंदा होना चाहिए, विफलता से ही सफलता का रास्ता बनता है। लेकिन जहां पंत अपने सबसे सुंदर रूप में दिखाई पड़ते हैं, वो वही हिस्सा है जिसको आप बताते हैं कि वो प्रकृति के सुकुमार कवि हैं। वहां प्रकृति से लगातार बतियाती उनकी कविताएं, और प्रकृति के मानवीकरण की जो बात मैं भूल गया था उन्होंने ठीक याद दिलाई। तो उस छायावादी कविता का चरम पंत के यहाँ यहाँ मिलता है।
1: थोड़ा मैं आपके इस बात पे भी दृष्टि चाहूंगा रामकिशोर जी, आपसे चाहूंगा कि आप इस बात की शुरुआत करें कि भाषा और शिल्प की जब हम बात करते हैं, तो आज जब हम इंग्लिश के दौर में गुजर रहे हैं, जैसा कि मदन जी ने कहा कि साहसिक कार्य उन्होंने किया वहां पे, खड़ी बोली से फिर हिंदी की तरफ आने का जो साहस था, तो उसे फिर हम अब आज थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि इसे आप आज वर्तमान समाज के हिसाब से जरा समझाएं कि उनकी भाषा आज कितनी अब प्रासंगिक रह गई है और क्या क्रांति थी वो।
3: देखिए, पंत का जब जन्म हुआ तो हम लोग औपनिवेशिक काल में जी रहे थे, और द्वितीय युग के बाद ये कार्य शुरू हुआ। रोमांटिसिज्म की जिसको बात करते हैं, स्वतंत्रतावाद की बात करते हैं, उस समय का एक काल आया। उस समय जो हिंदी लिखी जा रही थी, या उसमें जैसे कि अक्सर कहा भी जाता है कि शुरू में रविन्द्रनाथ टैगोर का उन पर प्रभाव रहा, और वो अंग्रेजी कवियों से भी प्रभावित हुए, शैली या कीट्स से तो वो ज़्यादा प्रभावित रहे, और उस समय के वो उनके पूर्ववर्ती थे, तो उनकी कई रचनाओं पर आरोप भी लगता है,
2: शैली की छाया
3: दिखाई पड़े, शरीर

0: पूरी एक
1: हाँ
0: किताब ही निराला ने लिख दी,
1: हाँ
0: पंथ और पल्लव।
1: तो उनकी जो एक टिंटर्न एबे जो है,
2: टिंटर्न
1: एबे वो, और अगर आप नौका विहार को आप अध्ययन करते तो उसमें वही आध्यात्मिकता, वही रहस्यवाद आपको उसमें देखने को मिलता है। तो हर काल की अपनी एक आवश्यकताएं होती है, हर काल की परिस्थितियां बदलती हैं। तो उस समय जब हम लोग विकास के क्रम में थे, तो जैसी आवश्यकताएं मनुष्य की बदल रही हैं कि अंग्रेजी का प्रभाव बढ़ रहा है, हम लोग वैश्विक होते जा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि भाषा पर हमारा प्रभाव नहीं आएगा, हम अन्य भाषाओं के बहुत सारे शब्द ग्रहण करते जा रहे हैं। तो प्रांजलता पर जहां तक बात है, क्योंकि पंत जी की शिल्प बहुत प्रांजलता, बहुत शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया, और उन्होंने ऐसे ऐसे बिंब गढ़े, जैसे नक्षत्र को कहा उन्होंने शशि शावक। तो शशि शावक जब आज का बच्चा पढ़ेगा तो शशि शावक को समझ ही नहीं पाएगा कि वो नक्षत्र की बात कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूं कि समय की आवश्यकताओं के अनुसार कविता होनी चाहिए, और कविता वही है कि जो सरल भाषा में पाठक के हृदय तक पहुंच जाए। किसी भी साहित्य को पढ़ने के लिए अगर पाठक को शब्दकोश उठाना पड़े, उसका अर्थ ढूंढना पड़े, तो मैं समझता हूं कि कविता का प्रवाह कहीं ना कहीं अवरुद्ध होता है, क्योंकि वो सहज मन में नहीं जाती। जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय की कविता है एक बूंद, अब एक बूंद कविता को पढ़े तो आप उसको आत्मसात कर सकते हो कि जो निकल कर बादलों की गोद से एक बूंद थी आगे बढ़ी, तो बहुत प्रभावी रचना है, लेकिन उनमें कोई ऐसा प्रांजलता का कोई उसमें आग्रह नहीं है। तो आप एक आम पाठक भी उस कविता को पढ़ करके अपने जीवन में ग्रहण कर सकता है कि जीवन में चुनौतियां आती हैं, और जब वो अपने घर को छोड़ता है या जब किसी नए कार्य को करता है तो उसमें कठिनाइयां आती हैं, लेकिन उन कठिनाइयों को सोच करके व्यक्ति पढ़ना छोड़ दे। लेकिन जहां तक इंग्लिश वाली बात जो है, उस बात को भी हम नकार नहीं सकते कि वो आज ऐसा हो रहा है, लेकिन इंग्लिश लिखना वो मैं समझता हूँ हिंदी के लिए अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात ये होगी अगर हम अपनी हिंदी में हम भारतीय भाषाओं के शब्दों का प्रयोग अधिक बढ़ाएं अंग्रेजी भाषा के बजाय, तो हमारे उससे जो है ना राष्ट्रीय एकीकरण में, राष्ट्रीयता की भावना में भी विकास होगा। लेकिन अंग्रेजी तो इस मामले में रुकती नहीं, अंग्रेजी तो और दूसरी भाषाओं के शब्द भी बाकायदा ग्रहण करती
2: है, हर
1: वर्ष वो अपने नए शब्दों का स्वीकार करती है।
2: भाषा पे आपको जोड़ना चाह रहे हैं मदन जी?
0: देख, भाषा तो निरंतर विकसित होती रहती है, आगे बढ़ती रहती है, और हमेशा वो आगे ही जाती है। और जो पुराणपंथी लोग होते हैं उनको हमेशा लगता है कि भाषा का पतन हो रहा है। जब प्रसाद निराला लिख रहे थे तब भी उनके पूर्ववर्तियों को लग रहा था कि ये कविता का भी पतन है, भाषा का भी पतन है। तो पीछे के लोगों को हमेशा लगता है, होता है कि अपने समय में भाषा सामाजिक जीवन और उसकी संवेदना से कितनी जुड़ी हुई है, यही महत्वपूर्ण होता है। तुलसीदास की भाषा आज की भाषा कहाँ से है, कौन समझता है? एक अवध में छोड़ दीजिए तो, लेकिन पूरे हिंदी प्रदेश में तुलसीदास पढ़े भी जाते हैं, समझे जाते हैं, सम्मानित हैं। उनकी भाषा तो है नहीं, हमारी समझ के बाहर की वाली भाषा है वो, फिर भी अपने समय में वह भाषा अपने समाज से गहरे जुड़ी हुई थी। आप देखिएगा कि पंत का जो प्रारंभिक लेखन है, प्रारंभिक जिन कविताओं की हमने चर्चा की है, वो कविताएं अपने समय से वो जुड़ती है और समाज में संवेदना की नई बनावट का उद्घाटन करती है, इसलिए वो महत्वपूर्ण है। लेकिन बाद में दिक्कतें पैदा होने लगी थी, जैसा कि हमारे प्रियदर्शन जी ने बताया कि बाद में बहुत बार ये लगता है कि प्रयत्निक है मामला, बहुत कुछ प्रयत्न करके वो लिख रहे हैं, इसमें ऐसा लगने लगता है, तो ये एक अलग चीज हो जाती है इसलिए। लेकिन जब पंत पर हम बात करते हैं तो हमें प्रारंभिक पंत और उनका जो मौलिक योगदान है उसी पर बात करनी चाहिए, वो महत्वपूर्ण है। ऐसा कई बार हुआ है, विदेश में भी वर्ड्सवर्थ के साथ हुआ है, उन्होंने 30 वर्ष तक जो कविताएं लिखी वही महान कविताएं थी, उसके बाद भी तो लिख रहे थे, उनको कोई अकाउंट्स में नहीं रखता। तो बाद का जब आप रखेंगे ना, लोकायत को जब आप रखेंगे, तो लोकायत में तो छंद भी लगता है कि बहुत कोशिश करके बना रहे हैं। सबसे बड़ी समस्या वहाँ यही है कि वो लग रहा है कि कविता कोशिश करके बनाई जा रही है, जहाँ निराला में बिल्कुल नहीं लगता है राम की शक्ति पूजा में कि कोशिश कर रहे हैं, वो एक प्रवाह है, एक उद्यम। तो वो बाद की चीजें हैं। इन चीजों को भूलकर मैं ये मानता हूँ कि पंत को हमें इसीलिए याद रखना चाहिए कि पंत ने हिंदी की कविता के पूरे स्थापत्य को, हिंदी समाज की संवेदना की नई बनावट को समझते हुए बदलने का प्रयत्न किया, और ये एक ऐतिहासिक कोशिश थी। उसके बाद ही वो निराला है, उसके बाद ही प्रसाद है, दोनों उनसे बड़े कवि हैं टोटलिटी में, लेकिन वो शुरू करने वाले वही हैं।
2: जिस हिमालय की गोद में सुमित्रा नंदन पंत पैदा हुए, इतना विशाल है कि उनके बारे में चर्चा करना भी के लिए बहुत समय चाहिए, लेकिन प्रदर्शन जी मैं चाहूंगा कि आप इसमें कुछ जोड़ना चाह रहे हैं तो संक्षिप्त।
3: देखिए, भाषा को लेकर उनकी एक कविता है, वाणी वाणी मेरी तुम वहन कर सको जनमन में मेरे विचार, वाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार। ये शायद बाद की उनकी कविता है, जब उनको लगता है कि वाणी को आभरण मुक्त होना चाहिए, अलंकार मुक्त होना चाहिए। क्योंकि भाषा पे हमने बात की तो जो मदन जी ने कहा वही ठीक है कि बिल्कुल सहज होनी चाहिए। शुद्धतावाद तो भाषाओं का शत्रु होता है, वो जान ले लेता है भाषाओं की, और भाषाओं में सिर्फ भारतीय भाषाओं की नहीं, अंग्रेजी की भी कई ऐसे शब्द है जो इतने सहज हिंदी में हो गए हैं। साइकिल अंग्रेजी का शब्द है, उसका अर्थ बदल गया है। अंग्रेजी में साइकिल का अर्थ चक्र है, हमारे यहाँ वो बाइसिकल के अर्थ में साइकिल है।

0: और कई कविता संग्रहों के नाम, केदार जी के संग्रह का नाम साइकिल है, साइकिल से जुड़ता है, टॉलस्टॉय साइकिल, साइकिल, साइकिल। नीलेश रघुवंशी के उपन्यास का नाम है साइकिल।
1: ऐसे बहुत सारे शब्द आ गए,
0: तो बहुत सारे शब्द शमशेर के यहाँ आपको बहुत सारे अंग्रेजी शब्द मिलेंगे, मुक्ति बोध भी मिलेंगे, पार्टनर तुम्हारी पॉलिटिक्स क्या है, तो कई शब्द ऐसे होते हैं जो आपकी भाषा में घुल मिल जाते हैं और भाषा उससे खिल जाती है। पंत ने जो काम किया, हालांकि हम छायावाद की समूची भाषा के बारे में बात कर सकते हैं, कि जो स्वच्छंदता हिंदी को दी, हिंदी के सौष्ठव को लेकर उसके पहले थोड़ा संदेह था, लेकिन एक अलग तरह की उदात्तता, एक अलग तरह की विराटता, एक अलग सी प्रांजलता छायावाद ने और पंत ने हिंदी कविता को दी, जहां तक आज भी पहुंचना बहुत मुश्किल काम है।
2: इन रंभाती नदियों के विचार के प्रवाह को रोकने का मेरा कोई इरादा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि नदियों का जल वाष्पित हो के वो बादल बने, और बादल बन के बरसे। तो इन पंक्तियों के साथ पहले मैं आप सबका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, और श्रोताओं के लिए इन पंक्तियों के साथ मैं आपको छोड़े जाता हूँ। झमझम झमझम मेघ बरसते हैं सावन के, छम छम छम गिरती बूंदें तरुओं से छन के, चम चम बिजली चमक रही रे उर्मे घन के, थम थम दिन के तम में सपने जगते मन के, ऐसे पागल बादल बरसे नहीं धरा पर, जल फुहार बौछारें धारें गिरती झरझर, आंधी हर हर करती दल मरमर तरु चरचर, दिन रजनी और पाख बिना तारे शशि दिनकर। नमस्कार,
1: बहुत नमस्कार आपको, नमस्कार। भी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
3: प्रगति के सुकुमार कवि सुमित्रानंदन पंत, अभी आप इस विषय पर परिचर्चा सुन रहे थे। प्रतिभागी विशेषज्ञ थे वरिष्ठ कवि और आलोचक श्री मदन कश्यप, वरिष्ठ साहित्यकार श्री राम किशोर उपाध्याय, वरिष्ठ लेखक और पत्रकार श्री प्रियदर्शन। परिचर्चा का संचालन कर रहे थे वरिष्ठ पत्रकार श्री दिनेश कांडपाल। और आइए अब सुनते हैं सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियाँ। प्रस्तुत कर रही हैं युवा पत्रकार श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव।
4: रविवार दिनांक 10 मई को प्रतिष्ठित संस्था साहित्य उपवन रचनाकार के तत्वाधान में एक ऐतिहासिक साहित्यिक आयोजन किया गया। इस अवसर पर कवि डॉक्टर आर डी गौतम विनम्र द्वारा रचित कृति शब्दों की विनम्रता का भव्य विमोचन देश प्रदेश के ख्याति लब्ध रचनाकारों और सैकड़ों सुधीजनों की उपस्थिति में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता अंतर्राष्ट्रीय कवि डॉक्टर राकेश सक्सेना ने की। विमोचित कृति शब्दों की विनम्रता पर चर्चा करते हुए वक्ताओं ने इसे साहित्य जगत के लिए एक अनमोल थाती बताया। कार्यक्रम को सफल बनाने में श्री नवीन कुमार, श्री सुरेंद्र कुमार श्रोत्री एवं श्री किशन लाल भारती का विशेष योगदान रहा। समारोह के समापन पर संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर रोहित रोज एवं डॉक्टर आर डी गौतम विनम्र ने सभी साहित्य प्रेमियों का हृदय से आभार व्यक्त किया। दिनांक 11 मई शिलोंग साहित्य महोत्सव का दिल्ली में पूर्वाभ्यास किया गया। मेघालय सरकार द्वारा आयोजित यह कार्यक्रम बीकानेर हाउस में जारी रहा, जिसमें पूर्वोत्तर की संस्कृति, साहित्य और स्वदेशी परंपराओं पर विशेष ध्यान दिया गया। दिनांक 12 मई मंगलवार को दिल्ली के हिंदी भवन में वैश्विक हिंदी परिवार की साहित्यिक गतिविधियों के संबंध में विशिष्ट कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। वैश्विक हिंदी परिवार एवं अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के संयुक्त तत्वाधान में डायस्पोरा से संवाद कार्यक्रम श्री सुभाष शर्मा के साथ आयोजित किया गया। भारत की प्रतिष्ठित साहित्यिक संस्था साहित्य अकादमी ने 14 मई को वर्ष 2026 के लिए अपने वार्षिक साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की। ये पुरस्कार 24 भारतीय भाषाओं में उत्कृष्ट साहित्यिक कृतियों को प्रदान किए जाते हैं, जिसमें उपन्यास, कविता संग्रह, लघु कथाएं और आलोचना शामिल हैं। इस वर्ष युवा और क्षेत्रीय लेखकों को मान्यता मिली है, जो भारतीय साहित्य की बढ़ती विविधता और समृद्धि को दर्शाता है। पुरस्कार समारोह दिसंबर 2026 में आयोजित किया जाएगा। साहित्य अकादमी में दिनांक 14 मई बहुभाषी कवि सम्मेलन और बाल साहित्य से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए गए। यह कार्यक्रम साहित्य अकादमी

0: संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में आयोजित किया गया। इन बहुभाषी सम्मेलनों में विभिन्न भाषाओं के कवि अपनी मातृभाषा में कविता पाठ करते हैं। इस सत्र में कुल 12 भारतीय भाषाओं में काव्य रचना प्रस्तुत की गई। सांस्कृतिक संगम के इस अवसर पर अनेक साहित्यकारों ने भाग लिया। ऐसे आयोजन राष्ट्रीय स्तर पर कवियों की प्रतिभा को मंच देने के लिए किए जाते हैं। दिनांक 15 मई को दिल्ली के मंडी हाउस स्थित रवींद्र भवन में मुख्य रूप से संगीत नाटक अकादमी का विशेष सत्र रवींद्र प्रणति आयोजित किया जा रहा है। यह सत्र गुरुदेव रवींद्रनाथ ठाकुर की साहित्यिक, सांगीतिक एवं सांस्कृतिक विरासत को समर्पित है, जिसमें पुस्तक लोकार्पण और व्याख्यान भी शामिल किए गए हैं। दिनांक 16 मई को ढाई आकर साहित्योत्सव का आयोजन किया गया। यह दिल्ली में हिंदी भवन सहित अन्य संस्थानों के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित महत्वपूर्ण साहित्य उत्सव है। यह 16 मई 2026 में होने वाला एक प्रमुख साहित्यिक संगम है। यह कार्यक्रम विरासत से भविष्य तक की थीम पर आधारित है, जिसमें साहित्य, कविता और सांस्कृतिक संवाद शामिल है।
1: अभी आप सप्ताह की प्रमुख साहित्यिक गतिविधियां सुन रहे थे। प्रस्तुत कर रही थी युवा पत्रकार श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव। इसी के साथ साहित्यिकी का ये अंक अब यहीं संपन्न होता है। प्रस्तुति सहयोग कीर्ति बैद, प्रस्तुतकर्ता श्रवण मीणा।
2: हमारे अतिथि कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं।
3: सूरज हूँ चमकते हुए मंजर की तरह हूँ, सूरज हूँ चमकते हुए मंजर की तरह हूँ, माथे पे जमाने के मुकद्दर की तरह हूँ। नमस्कार, सभी का स्वागत। मैं हूँ आपके साथ आपकी दोस्त काजल। और आज हमारे साथ इस वक्त जो शख्सियत हैं, उन्हें कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री जैसे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में प्रोफेसर रह चुकी हैं। तहे दिल से आपका इस्तकबाल करना चाहूंगी, आपको खुशामदीद कहना चाहूंगी। प्रोफेसर विदुषी रीता गांगुली जी आज हमारे साथ हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत।
4: सामान की खिदमत में मैं रीता गांगुली आदाब पेश करना चाहती हूं, और बहुत खुशी होती है जब भी आकाशवाणी मुझे बुलाती कोई भी खिदमत के लिए, क्योंकि मैं आज जो भी हूं आकाशवाणी के लिए हूं। मैं बचपन से अचानक गाने लगी, नाचने लगी, पेंटिंग करने लगी, और आकाशवाणी लखनऊ के उन्होंने हमको ढूंढ के निकाला। तब तो कुछ भी नहीं, पहला यानी जिंदगी में पहली जो कमाई मेरी हुई जी, वो 5 रुपए।
3: क्या बात,
4: एक चेक। लेकिन तब 5 रुपए बहुत होते थे
3: जी।
4: ओहो, मैं भूल नहीं सकती हूँ, सबको हमने आइसक्रीम खिलाया। आई वाज वेरी प्राउड। ऑल इंडिया रेडियो में मेरी जो भी ग्रेजुएशन हुई, घुसी थी बी होकर, उसका बी हाई हुई, उसके बाद ए हुई, फिर ए प्लस हुई, उसके बाद टॉप ग्रेड हुई, ये सब न मैं जानती हूँ किसने दे दिया, मैं भूल नहीं सकती। ये एक महकमा है जिसको मैं सल्यूट करती हूँ।
3: मैम, आपने अपना सफ़र जब शुरू किया कला के क्षेत्र में, तो किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा आपको? फैमिली का कितना सपोर्ट रहा?
4: देखिए, फैमिली ऑर्थोडॉक्स थी या ख़राब थी ऐसा नहीं
3: जी।
4: बात ये है कि हमने एक्सीडेंटली कहीं पर, हमारे शहर के बड़े बड़े लोग सब मिलके एक थिएटर कर रहे थे
3: जी,
4: कुछ रिलीफ फंड के लिए
3: जी।
4: मिसेस टैगोर आई हुई थी, रविंद्रनाथ की पुत्रवधु, और 3 महीने रह के मेहनत करी सबको लेके। उसमें मेरी माँ भी बहुत खूबसूरत थी, वो उनको एक रोल मिला हुआ था, वो भी हमको भी तैयार ऐसे करके लेके गई और खुद मेकअप रूम में चली गई, और जो स्क्रीन के इंचार्ज था उसको दे दिया, भाई बहुत नटखट है
3: जी।
4: 2 साल 4 महीने 5 महीने की थी मैं
3: जी,
4: बहुत हाथ मत छोड़ना। पर नहीं नहीं क्यों छोड़ेंगे, जब चाहे स्क्रीन खोलना है और बंद करना और क्या
3: जी।
4: तो पहला आइटम हो गया, दूसरा आइटम के वक्त वो बहुत बड़ी बात है, वो मैहर बैंड का प्रोग्राम था। मैहर बैंड मतलब तब बाबा अलाउद्दीन कंडक्ट कर रहे हैं, अली अकबर, रविशंकर
3: जी,
4: निखिल बनर्जी नहीं थे तब, शरण रानी बकरीवाल, तिमिर वरन, ऑल द टॉप परफॉर्मर्स, पन्नालाल घोष, ये सब बजा रहे थे।

0: अचानक वो स्क्रीन नहीं खुला, तो उसको जाना ही था ठीक करने के लिए. उस जमाने ऑटोमेटिक स्क्रीन नहीं होता कि बटन दबाया खुल गया.
1: जी जी.
0: तो वो क्या, हमको लेके गए, उन्होंने कहा था छोड़ेंगे नहीं तो कहीं भाग जाएंगे, खो जाएंगे. हमको ले गए, फिर दोनों हाथ इस्तेमाल करना, नहीं तो खुलता नहीं था.
1: जी.
0: वो दोनों हाथ इस्तेमाल करके साइड में गए, मैं बीच में रुक गई थी. बहुत आदाब से मैं नमस्कार करके खड़ी थी और दुरुद विंक से सब लोग बहुत गुस्सा करने लगे. कोई लॉलीपॉप दिखा रहा है, कोई चॉकलेट दिखा रहा है. मैं हिलने वाली नहीं हूँ. मैंने जब तक चला ऑर्केस्ट्रा मैं नाचती रही. उस ज़माने में टाइम्स ऑफ इंडिया, स्टेट्समैन, पायनियर ये अखबार होते थे.
1: जी.
0: तो उसके फ्रंट पेज में मेरी तस्वीर थी और मिसेस टैगोर क्रिएट्स वंडर बाय ट्रेनिंग अ 2-year-old चाइल्ड. हमको वो नशा लग गया. उस प्रोग्राम में सरोजिनी नायडू आई हुई थी क्योंकि वो फंड रिलीफ का था. तो जो भी रेज हुआ वो फंड रिलीफ के लिए किसी को दिया उन्होंने, इसलिए उनको बुलाया गया. अब उन्होंने जो मुझे देखा, वो तो जहाँ जाती थी हमें ले जाती थी. मैंने कहा वो जो बहुत बुजुर्ग आदमी है वही बजाएंगे तो होगा, नहीं तो नहीं नाचूंगी. अब वो इतनी बड़ी स्टेट्समैन, वो किसी को बुलाए ना कैसे करे वो. तो उसके बाद मैं काफी दिन नाचती रही. बेबी जीता कुछ जानती वानती थी नहीं, सीखा होखा कुछ नहीं. कोई छोटी सी लड़की हो, लंबे लंबे बाल हो, बड़े आँख हो, तो उसको अच्छे ही लगता लोग, छोटी बच्चे नाच से ही फुदक रही है. लेकिन जब मैं 5-6 साल की हो गई, मेरे पिताजी ने बुलाया, कहले बेटा बहुत हो गया
1: जी,
0: तुम पढ़ो क्योंकि यही काम है
1: जी,
0: तुम विद्या दान करो. उसके लिए तुमको खुद पहले विद्वान होना, विदुषी होना पड़ेगा.
1: बिल्कुल.
0: पढ़ो तुम. तो मैंने कहा ठीक है, अब जो कह रहे ठीक है, अगर डांस तो नहीं छोड़ूंगी मैं. तो थोड़ी जिद्दी थी बचपन में से. मेरे माँ ने कहा कि काय को उसके पीछे बोले, छोड़िए अपने आप छोड़ दिए खराब. पिताजी ने कहा अच्छा चलो शर्त लगाते हैं, जिस दिन तुम सेकेंड हो जाओगी उस दिन खुद ब खुद छोड़ दो. तो इन्होंने सोचा कि हम बड़े होंगे आज सब सब टाइम पे फर्स्ट रहेंगे, कोई ज़रूरी नहीं. हम भी सेकेंड नहीं आए और उन्होंने भी छोड़ने के लिए नहीं बोला. पढ़ाई में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी. जिस वक्त बच्चे खेलते कूदते हैं उस वक्त मैं बहुत सिंसियरली वेरी कन्विक्शन के साथ मैं पढ़ती थी.
1: कला अपने आप में एक साधना है और पढ़ाई जो तालीम है वो भी अपने आप में एक साधना है. और आप दोनों को साथ लेकर चली और दोनों पे में आप टॉप पे रही हैं. ये एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है आने वाली जो जनरेशन है या जो जनरेशन हमें इस वक्त सुन रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है.
0: शांति निकेतन में हमारा दाखिला हुआ
1: जी,
0: बहुत छोटी उम्र में थे, इसलिए हमारी शर्त ये रखी गई कि हम नाच भी सीखेंगे, एक गाना भी सीखेंगे, उसके अलावा ग्रेजुएशन करेंगे.
1: जी.
0: इस तरह से हमारी गाना भी शुरू.
1: ये जानना चाहूंगी कि मौसीकी की पहली तालीम ध्रुपद से आपने शुरू की, तो क्या कहेंगे इस बारे में आप?
0: उसकी वजह ये थी कि पिताजी ने मेरी बड़ी बहन जो अपने भी बहुत मशहूर बंगाल की लता मंगेशकर कहा जाता है, उनके लिए पिताजी ने घराने के तानसेन जी हैं
1: जी,
0: गौड़ी घराने का उसका गोपेश्वर बंदोपाध्याय घर बुला के रख, और उन्होंने हमको तालीम दी. हमको भी तालीम लेने के लिए कहा गया
1: जी.
0: हमको तो बहुत बोरिंग लगती थी, तो दो लेकिन लेकिन बैठना पड़ता था. बहरहाल इस तरह से हमारा शुरुआत तो गोपेश्वर बंदोपाध्याय से तालीम मिली. फर्क सिर्फ ये है जो नींब है हम लोगों की परफॉर्मिंग आर्ट की, उसके नींब रहा भक्ति और प्रेम, रोमांस. रोमांस खो गया है, वो इश्क का इंटरप्रिटेशन बदल गया है, क्योंकि ये विरह था जो बेस था हमारे गाने का. जैसे बाबा फरीद ने कहा बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, जिस तन बिरहा न उपजे वो तन जान मसान. यानी बिरहा अगर है तो उसको सजो के भी रखना पड़ता है. खूबसूरत चीजें हैं, भावनाएं हैं, समझ है, उसको सजो के रखना पड़ता है ताकि वक्त आने से उसका आप इस्तेमाल कर सकें
1: जी.
0: यही इमोशनल मेमोरी करके बाद में सांस्लाविस्की ने थिएटर में बताया.
1: आपने 2 साल की उम्र में डांस की परफॉर्मेंस दी, जिस तरह से अभी हम बात कर रहे थे, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर भी. फिर आप संगीत की तरफ से मुड़ी, जिस तरह से आपने बताया. हाँ. फिर आप थिएटर की तरफ आई. ये सब आपने कैसे किया? क्योंकि डांस अपने आप में बहुत एक रियाज और साधना, उसके बाद संगीत और फिर रंगमंच थिएटर.
0: डांस में भी हमारे देश के तीनों किस्म के डांस हमने सीखा है
1: जी,
0: और उसमें टॉप लोगों से सीखा है
1: जी.
0: कुंजू ग्रुप में एकमात्र महिला कथकली डांसर हूँ जिन्होंने मंदिर में नाचा. हमारी गुरु

0: की कृपा रही। एक ही चीज मेरे पिताजी ने हमको सिखाया था कि बेटा अगर गुरु है, बहुत कुछ क्वालिफिकेशन एक गुरु के होने चाहिए, उसकी समझ अच्छी होनी चाहिए, बोलने का अंदाज अच्छा होना चाहिए, पैर साफ होना चाहिए, आंखें खूबसूरत होना चाहिए, आवाज ठीक होनी चाहिए, ऐसे 32 गुण चाहिए
1: जी
0: एक गुरु को। और शिष्य को सिर्फ दो चीज, फेथ एंड सरेंडर। गुरु अगर आपने आपको मिल गया और मान ली, तो उसमें विश्वास रखिए और अपने को कंप्लीटली उनके चरणों में न्योछावर करिए, अपने आप आ जाएगा। नहीं तो मेरी एक पीढ़ी के गाना नाचना कैसे हो सकता है, ये तो उन लोगों की देन है, इसमें मेरी कोई तारीफ की बात नहीं है। हाँ, मेहनत करी विश्वास के साथ। मणिपुरी में यही सीख गई थी शांतिनिकेतन में
1: जी,
0: हमारा नाच देख के और गाना सुन के स्टेज पे शंभू महाराज जी आए हमको सिखाने लगे, फिर उनसे सीखने को मिला। अरे भीमसेन जोशी जी की पहली तालीम तो उनके अंडर ही हुआ है, बहुत अच्छा सीखा हमने उनके पास
1: जी।
0: फिर उसके बाद में जब अमेरिका गई तो वहाँ मार्था ग्राम से सीखा, तो बहुत अच्छा सीखा वहाँ। वो उसका परफॉर्मेंस के लिए मुझे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में उन्होंने बुलाया।
1: मल्लिकाई ठुमरी सिद्धेश्वरी देवी जी के साथ भी, उनसे भी आपने तालीम हासिल की, कैसा अनुभव रहा?
0: वो भी देखिए, ये तीनों लोगों को, शंभू महाराज जी, सिद्धेश्वरी देवी जी और बेगम अख्तर साहिबा, बात सच है कि तीनों के पास मैं नहीं गई, ये किस्मत कहते हैं। मैं महाराज जी के पास जब सीखती थी
1: जी,
0: भाव कौन गली गए और सब, वहीं पर अम्मा आई हुई थी, उनको स्पेशली बुलाया गया था बनारस से दिल्ली कि वो एक दो स्टूडेंट को सिखाए
1: जी,
0: ताकि वो बनारस घराना जीवित रहे, और जिनको सिखाना सिखाएंगी उनको भी स्कॉलरशिप था
1: जी,
0: अच्छा था
1: जी।
0: तो उस ज़माने में आप सोचिए, मालविका कानन, एटी कानन, क्या कहते हैं, माणिक वर्मा, ये लोग सब आए थे
1: जी,
0: रोज परफॉर्म होता था, सिलेक्शन में बैठती थी।
1: तो मल्लिका, ये गज़ल बेगम अख्तर जी से आपका उस्ताद और शागिर्द का बहुत ही खूबसूरत रिश्ता रहा, बहुत ही गहरा रिश्ता रहा, जानना चाहेंगे इस बारे में आपसे ज़रूर।
0: ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। क्या हुआ कि मेरे शौहर गए हुए थे उनको बुलाने के लिए, बहुत बड़ा प्रोग्राम था हिंदुस्तान में, शायद वो सबसे बड़ा प्रोग्राम, जितने भी गालिब के स्कॉलर थे
1: जी,
0: उनका कुछ एनिवर्सरी था जिसमें ये लोग आए हुए थे, बड़े बड़े जितने भी क्लासिकल गाने वाले उस्ताद उस ज़माने में आए हुए थे, सबको एक एक गज़ल गाना था
1: जी,
0: और वो गज़ल संगीत नाटक एकेडमी ने दिया था। आखिरी में इंटरवल के बाद बेगम अख्तर का प्रोग्राम शेड्यूल था, तो उनको मधु करने के लिए हमको डायरेक्टर थे जिन वो ले गए, आप आना चाहती हैं? मैंने कहा बिल्कुल, बेगम अख्तर कौन नहीं जाना चाहता। उनके पास मैं गई, आवाज़, इससे पहले एक प्रोग्राम में गई हुई थी मैं लखनऊ
1: जी,
0: जिसमें अहमजान थिरकवा हमारे
1: जी जी
0: तबले में थे
1: जी,
0: हमारे साथ
1: जी जी,
0: अम्मा गारी
1: आकाशवाणी से ही थे वो भी,
0: हाँ, श्रेष्ठतम तबला वादक बनने, और ये अपने राजन साजन जी के पिताजी हनुमान मिश्रा
1: जी
0: वो सारंगी पे थे। उसमें क्या हुआ कि अम्मा का थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया, मैंने गला फंस गया छालियों से
1: जी,
0: तो उन्होंने कहा बेटा गाते रहो, तो मैं गाती रही। उसके बाद जब हो गया, बेगम साहब ने हमको सुन रखा था।
1: तो अब मैं रंगमंच की तरफ आती हूँ।
0: मैं सारा श्रेय इब्राहिम अलकाज़ी साहब को देती हूँ, मुझे मेरे ख्याल से वो सचमुच हिंदुस्तान के सबसे बड़े विद्वान ऋषि हैं जिन्होंने थिएटर को हमारे देश में रिवाइव किया और हमें साथ लिया। इंट्रोडक्शन हुआ उनके नए एक सिलेबस का, उसमें उन्होंने मेरे से काम लिया। उसके बाद नाट्य शास्त्र उन्होंने पढ़ाया, हमको सारे हिंदुस्तान घुमाया, सारे हिंदुस्तान में मूवमेंट देख के मैंने खुद एक कोर्स तैयार किया। तभी से मेरा इंटरेस्ट था
1: क्लासिकल
0: थिएटर को रिवाइव करना।
1: आपने किताबें भी लिखी और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान साहब पर भी आपने पहली किताब लिखी, बेगम अख्तर साहिबा पर आपने किताबें लिखी, उन पर पहली डॉक्यूमेंट्री भी आपने बनाई
0: जी,
1: क्या कहेंगे इस?
0: बिस्मिल्लाह खान एंड शहनाई, द सीट ऑफ शहनाई, बिस्मिल्लाह खान एंड बनारस
1: जी,
0: द सीट ऑफ शहनाई, इस तरह से वो किताब लिखी गई
1: जी।
0: फिर अम्मी पे कि उनकी जो ये सोच है, जो समझ है
1: जी,
0: उसको हम बरकरार रख

0: सकते हैं और उनके बारे में रिसर्च करके।
1: बहुत ही खूबसूरत ही बातों का सिलसिला चलता रहा है, लेकिन वक्त हमसे कह रहा है कि हमें समेटना होगा, बहुत कुछ है पूछने के लिए। चलते चलते ये ज़रूर कहना चाहूँगी, हम खुद तराशते हैं मंजिल के संगे मील, हम वो नहीं जिनको ज़माना बना गया। और ये बात प्रोफेसर विदुषी रीता गांगली जी पर बिल्कुल सही बैठती है, और हम बहुत खुश नसीब हैं कि आज वो हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहूँगी तहे दिल से कि आप हमारे स्टूडियोज़ में आई और अपने अपना जो अनुभव हमसे बांटा, बहुत बहुत शुक्रिया।

0: हमारे अतिथि कार्यक्रम में आज हमारी अतिथि थी विदुषी रीता गांगुली, इनसे बातचीत कर रही थी काजल सूरी, प्रस्तुतकर्ता काजल सूरी।
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम हमारे अतिथि रीता गांगुली, पद्मश्री, जानी मानी रंगकर्मी और गायिका, भेंटकर्ता व प्रस्तुति काजल सूरी की। आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। और अब समय है मिट्टी दी महक का। कंपेयर संदीप कौर।

0: पंजाबी प्रोग्राम मिट्टी दी महक लेके हाजरा मैं संदीप कौर। अज दे प्रोग्राम विच असी तुहानू सुना रहे हां एक वार्ता बुजुर्गां प्रति हिंसा दी रोकथाम। साडे अज दे वार्ताकार होणगे प्रतिभा सानी। इस तों इलावा एक आवाज़ विच असी सुणांगे जाणे पछाणे गायक अमरिंदर गिल दे कुछ गीत। दोस्तो, अज लहू दे तेज़ दबा यानी हाइपर टेंशन बारे विश्व दिवस से ए दिन खून दे तेज़ दबा दे संबंध विच जागरूकता वधाउण अते इस दी रोकथाम पछाण अते कंट्रोल दी महत्ता नूं दर्शाउण लई मनाया जांदा है। अक्सर जद भी असीं किसे गल्लों अत दे परेशान हुंदे हां तां साडे खून दा दबा वध जांदा है जां साडी जीवन शैली भी इस दा कारण हो सकदी है। ए अजिही नामुराद बीमारी है कि खून दा दबा वधेरे वधण नाल दिल फेल हो सकदा है, दिमाग दी नस फट सकदी है जां साडे गुरदे भी नष्ट हो सकदे ने। सो इस बीमारी दे लक्षण पता लगदिआं ही सानूं चाहीदा है कि डॉक्टर दी सलाह लईए, अपने जीवन दे ढंग तरीकियां नूं बदलीए अते खाण पीण दा खास ध्यान रखिए। पहलां तां इस दे लक्षण आम करके उमर दे चढ़न नाल नज़र आउंदे सन, पर अज कल बच्चे अते नौजवान भी इस दा शिकार हो रहे ने। जिथों तक बुजुर्गां दा संबंध है, इन्हां दा खास ध्यान दी लोड़ हुंदी है, पर अक्सर असीं कई वार देखदे हां कि बुजुर्ग अपने परिवार दे ही निकट संबंधियां दे हत्थों हिंसा दा शिकार हो रहे ने। अजिहे बुजुर्गां दी हालत तों जाणू करवाउण लई असीं अज तुहानूं सुणा रहे हां एक वार्ता बुजुर्गां प्रति हिंसा दी रोकथाम। वार्ताकार ने प्रतिभा सानी।
1: फिल्मां दे विच विलन बुजुर्गां ते पैसे जायदाद लई जुल्म करदे ने, कई अपशब्द भी बोलदे ने। फिल्मां दे इह डायलाग केवल फिल्मां तक ही नहीं, अज दी जिंदगी समाज दा सच बनदे जा रहे ने। अज दे समें दी इह बदरंग हकीकत पूरी दुनिया विच महामारी वांग वधदी फुलदी जा रही है। कल्ले घरां विच कैद बुजुर्ग पूरा दिन रोटी अते दवा दी उड़ीक विच बैठे तुहानूं अपने गुआंढ वी दिस जांदे ने। जे उहनां कोल अपना कोई वसीला होए ते वृद्ध आश्रमां विच उहनां दी जिंदगी बीत जांदी है। साडे देश विच कुछ दहाकियां तों इह रवाज ही बन गया है कि युवा पढ़ लिख के विदेश दा रुख कर लैंदे ने। बच्चा होण ते माँ प्यो इन्नियां सदरां नाल आंढ गुआंढ लड्डू वंडदे ने कि साडे बुढ़ापे दी लाठी रब ने झोली पाई है, पर सच्चाई विच ते बुढ़ियां हड्डियां फोन ते दरवाजे दी घंटी सुनन दी उड़ीक ही करदियां रह जांदियां ने। गौरां शिवानी।

जी की एक कहानी याद आती है पूतों वाली। वह पांच पुत्रां की माँ की चिताई चो पुत्र ने अपनी सिगरट बाली सी। वह पिंड की पहाड़ की कहानी सी, पर अज शहर की सच्चाई भी यही है। नवी पीढ़ी नू बुढ़े माँ प्यो तरक्की की राह दे पत्थर लगते ने। बीमारी च उन्हां कोल बैठना या दवा देना जरूरी नहीं समझते। किट्टी

ऑफिस दी गेट टूगैदर ज़्यादा जरूरी हो गई है। ज़्यादा मेहर करन ते नौकर दे परोसे छड के तुर जाते ने। जिन्हां बच्चियां नू दफ्तरों मैडिकल एक्सपेंस मिल जाता है वह हस्पताल छड देंदे ने बजुर्गों नू। घर दी या बजुर्गों की जिम्मेदारी वेखिए कि अपनी नौकरी वेखिए, खर्चे की जिंदगी किवें चलेगी। बजुर्गों नाल हिंसा के कई रुख ने, जिदा शारीरिक शोषण, भावनात्मक हिंसा, मनोविज्ञानिक दुर्व्यवहार, आर्थिक शोषण, गाली गलोच, तानेबाजी, खाना ना देना, दवा ना देना। कानूनी भाषा च कहिए तो इनू घरेलू हिंसा कहिंदे ने। बजुर्गों नाल होंदी है घरेलू हिंसा हुण सभ्यक समाज, सिखियत असिखियत, विकासशील या विकसित, पिंड या शहर, हर समाज च प्रतख या अप्रतख दिस जांदी है। घरां दे बंद दरवाजियां दे पिछे यह हिंसा पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत बनती जा रही है। छोटे छोटे परिवारां विच बजुर्गों की इच्छा होंदी है कि कोई उन्हां कोल बैठे, कोई गल सुने, रिश्तेदार मित्र मिलन आन। उत्थे नौकरी पेशा बच्चियां नू हर कदम घड़ी की सूई नाल चलाना पैंदा है। ऐसे हालात विच बजुर्ग बोझ लगते ने। घरेलू हिंसा कानून विच स्वास्थ सुरक्षा अते मानसिक हानि नू भी शामिल किया गया है। इतों निपटन लई सरकारां देश अते अंतरराष्ट्रीय स्तर तक कानून बनते रहते ने, पर वो किन्ने कारगर होंगे और किन्ने बजुर्गों नू उदी जानकारी होंदी है यह सोचना है। कानून समाजिक सोच अगे भी प्रभाव खो देंदे ने। घर दे बजुर्ग सहन दी हद तक बंद दरवाजियां च रहिंदे ने कि हाए लोग की कहणगे। एकल परिवारां दे कारण घर च जे दादा दादी होण ते उन्हां कोलों रसोई, बच्चे, बाजार दे काम कराना ते किसी गिनती च ही नहीं लैंदे। ते जे कदे बहु कामकाजी होई तां ते बजुर्गों दा हाल कई वारी बदतर हो जांदा है। ज़्यादा कमाई वाले बच्चे कई वारी धोखे नाल ले जा के घर दे वड्डियां नू वृद्धाश्रम छड्ड के चले जांदे ने। माँ बाप दे होण नाल देर रात दीआं पार्टियां विच विघन ना आए ते कोई लोग मापिआं नू घर दे आउट हाउस विच या सर्वेंट क्वार्टर विच रहण नू मजबूर कर देंदे ने। जिन्हां माँ बाप ने अपने शौक चाह खत्म करके बच्चियां नू इंजीनियर डॉक्टर आदि बनाया है, उन्हां दीआं जरूरतां ते भी उन्हां नू ताने मिलदे ने कि बुढ़े हो गए हो पर जवानी नहीं गई, नखरे और जीव दे चस्के नहीं रुकदे, भगवान दा नां लैण दी उमर है, शांति नाल बाकी दिन कट लो। कई माँ बाप पुत्र मोहिच अपनी जीवन भर की कमाई जायदाद जींदे जी पुत्रां नू दे देंदे ने, बाद चों फिर दाने दाने नू मोहताज हो जांदे ने। कई ऐसे भी होंदे ने कि माँ बाप नू मकान जायदाद लई मार कुट के घरों कढ देंदे ने। एहो जे हादसे रोकण लई सरकार ने 2017 विच सीनियर सिटीजन एक्ट दा सुधार कीता सी। इस दे बाद बजुर्ग माँ बाप अपनी जायदाद कानूनन वापस भी लै सकते ने। असी कई बंदियां नू बहुत नकारात्मक वेख्या है, उदा कारण डॉक्टर यही दसदे ने कि घरेलू हिंसा विच मानसिक उत्पीड़न दा शिकार व्यक्ति ज़्यादातर मामले विच अपने डर तो बाहर नहीं निकल पाता, अपना मानसिक संतुलन खो बैंदा है, अवसाद दे मरीज हो जांदे ने। साडे समाज दी ये रवायत जई है कि माँ बाप बच्चियां दी परवरिश करदे होए उन्हां तो बहुत उम्मीदां पालदे ने, पर जदों बुढ़ापे च बच्चे उन्नी देखभाल नहीं करदे, अपने परिवार बच्चियां विच रम जांदे ने, तो उन्हां दे अहम नूं ठेस लगदी है। बजुर्ग ये सच्चाई स्वीकार नहीं कर पाते कि अगली पीढ़ी का अपना भी वजूद हो सकता है। जीवन दियां जरूरतां हैगियां ने। वडेरे बच्चियां नू सदा अपने हुक्म नाल चलाना चाहते ने। जदों उन्हां दी हुक्म उदूली होंदी है ते थाई थाई बच्चियां दी बुराई करना, उन्हां नू ताने मारना, बेवजह बहस करना, गलत जिद्दां फड़ के बह जाना, कई बार तो घर दियां इह माड़ी मोटियां गल्लां कोर्ट तक पहुँच जांदियां ने। सब तो दुखद पहलू यह है कि बजुर्ग अपना मानसिक संतुलन खो देंदे ने। करीबी और खून दे रिश्तियां दा धोखा उन्हां नू कला कर देंदा है। कई

0: आत्महत्या तक कर लेंदे ने, सही गलत सोचना बंद कर देंदे ने। समाज विच हर चीज़ उन्हां नूं गलत और दुश्मन लगती है। साढ़े आस पास अज भी ऐसे हालात नूं रोग नहीं मनते, मानसिक बीमारी नहीं मनते, बस घर विच ही एक दूजे नूं ताने तिशने दे के इस कड़वाहट नूं होर वधांदे रहिंदे ने। बजुर्गां दी इस परिस्थिति नूं समझना होएगा। इन्हां समस्यावां दा हल ढूंढण लई डाक्टरां ते माहिरां दी मदद लैनी पएगी। यह अनदेखा नहीं किया जा सकता। बजुर्गां दी तकलीफ नूं उम्र दा तकाजा कह के छड़ना गलत गल है। समाजिक दायरे निश्चित करने जरूरी ने। एक दूजे दी जरूरत और भावना दा सत्कार जरूरी है। बजुर्गां दी समस्या नूं जान के पेशेवर माहिरां दी सलाह लैनी चाहीदी है। वैश्विक एकीकरण दे चलदे एकल परिवार भी अज टुट रहे ने। ऐसे माहौल च बजुर्गां नूं भी अपनी संकीर्ण सोच और अहम तो बाहर आना पएगा। बच्चों नूं ताने देने की जगह सोचना होएगा कि उन्हां दी नौकरी जिंदगी बजुर्गां दी पसंद अते आराम नाल नहीं चुनी जा सकती। हुण ए वक्त दी जरूरत हो गई है कि समूहिक तौर ते इस विषय ते चर्चा की जाए और दोनों पीढ़ियां मिल के इस समस्या का हल खोजन। एक विचला राह चुनना जरूरी है। बेशक घरेलू हिंसा एक्ट 2005, सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 अते 2017 सरकार वालों बनाए गए ने बजुर्गों की सुरक्षा लई ने, पर समाजिक नज़रिए नाल एक राह होर भी माहिर दसदे ने कि बजुर्गों नूं अपनी रिटायर्ड लाइफ समाजिक कम्मां विच बितानी चाहीदी है। अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहीदा है। घरां दे बच्चियां नूं अपने अनुभव सिखाने, अपनी हाबी पूरी करनी, सैर करना, घर दे छोटे छोटे अपने काम आप करना जरूर चाहीदा है। इहदे नाल ओह मसरूफ रहणगे और खुश रहणगे। स्वस्थ सुचारू दिनचर्या होण नाल बजुर्ग भी खुश अते परिवार भी खुश। कहिंदे ने ना, ताली दोवें हत्थां नाल वजदी है। कुछ बजुर्ग अपनी सोच बदल लैन, कुछ बच्चे उन्हां नूं समय देन ते हर समस्या हल हो जाएगी। घर समाज फिर तो स्वस्थ खुशहाल होणगे।
1: हुणे तुसीं प्रतिभा सानी होरां तों एक वार्ता सुन रहे सी, बजुर्गां प्रति हिंसा दी रोकथाम। ते आओ हुण सुनदे हां अमरिंदर गिल दा गाया एक गीत, कदे मिले ओ कुड़ी।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम मिट्टी दी महक और लीजिए सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। ये यात्रा भारत और स्वीडन के बीच मजबूत गठबंधन में ऐतिहासिक उपलब्धि होगी। श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वार्ता करेंगे। इसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: दुनिया की सबसे नवाचारी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल स्वीडन को भारत की डिजिटल प्रतिभा और तकनीकी क्षमता के साथ स्वाभाविक साझेदारी मिलती है। वर्तमान में भारत में 280 से अधिक स्वीडिश कंपनियां सक्रिय हैं, जबकि लगभग 75 भारतीय कंपनियों ने स्वीडन में अपनी उपस्थिति स्थापित करी है। भारत यूरोपियन संघ फ्री ट्रेड समझौता भारतीय निर्यात के लिए एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। रक्षा और सुरक्षा सहयोग भी अब दोनों देशों की साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बन चुका है। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
1: आकाशवाणी से विशेष बातचीत में स्वीडन में भारतीय राजदूत अनुराग भूषण ने कहा कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन के बीच हेग में व्यापक विचार विमर्श के बाद दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग को और मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
3: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
1: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आर्थिक और रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया, जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। पीठ ने कहा कि मुस्लिम समुदाय जिले में मस्जिद निर्माण के लिए अलग से भूमि आवंटन के लिए राज्य सरकार से संपर्क कर सकता है। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिन बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कहा कि सोने और प्लेटिनम से बड़ी मड़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के लिए लिया गया है। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रोली कॉर्निलो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। और IPL क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। शाम 7:30 बजे से दिल्ली में राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। प्रतियोगिता में कल रात कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हरा दिया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Tanvi Khurana. India and the Netherlands agreed to elevate their bilateral relationship to the level of a strategic partnership following wide-ranging discussions between Prime Minister Narendra Modi and Dutch Prime Minister Rob Jetten in The Hague. During the talks, the two leaders reviewed cooperation across sectors including trade, defence, technology, water management, clean energy, healthcare and education. Several agreements were also signed to deepen collaboration in priority areas. Announcing the elevation of ties to a strategic partnership, PM Modi said that India and Netherlands ties had witnessed significant progress over the last decade and described the Netherlands as one of India's key European partners. Prime Minister Modi will reach Gothenburg today on a two-day visit to Sweden, marking a historic milestone in the deepening alliance between New Delhi and Stockholm. Mr. Modi will hold bilateral talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson to review the entire gamut of bilateral relations and explore new avenues of cooperation to enhance bilateral trade as well as collaboration in green transition, AI, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defence, space, climate action and people-to-people ties. The two prime ministers will also address the European Roundtable for Industry, a leading pan-European business leaders forum, along with the president of the European Commission, Ursula von der Leyen. Within days of levying high customs duties on precious metals, government has imposed import curbs on silver. The Directorate General of Foreign Trade in a notification said the import policy for silver, including silver plated with gold and platinum, are revised from free to restricted with immediate effect. The government on Wednesday had hiked import duty on precious metals from 6% to 15%. The goods under restricted category needs government license for imports. Delhi government has taken a significant decision to reduce the value-added tax on aviation turbine fuel in the national capital from 25% to 7%. Delhi Chief Minister Rekha Gupta said that the decision has been taken in line with the Prime Minister Narendra Modi's emphasis on strengthening connectivity and economic activity with the objective of providing relief to the aviation sector, promoting tourism and logistics activities. The Chief Minister informed that the concessional rate will initially remain in force for a period of 6 months. The United States and Nigerian forces carried out a joint military operation on Friday night that killed senior Islamic State commander Abu Bilal al-Manuki and other ISIS leaders in Nigeria's Lake Chad Basin. Nigerian President Bola Ahmed Tinubu confirmed the elimination of the wanted ISIS senior leader Abu Bilal al-Manuki, who was also known as Abu Manok, along with several of his lieutenants. U.S. Secretary of War Pete Hegseth said that the elimination of top ISIS leaders in Nigeria will help protect Christians in the country. Congo has warned that the newly declared

0: आप हैं आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। समय है आपके हमारे दोनों के पसंदीदा कार्यक्रम। जी हाँ, आपकी पसंद का। आप कहें आपकी पसंद और मैं कहूँगी आपकी पसंद। और आपकी पसंद लेकर आपके साथ हैं आपके दो दोस्त। जी हाँ, कुसुम लता और मेरे साथ हैं
1: सुषमा। और दोस्तों, एक बार फिर से हम आ गए हैं अपनी चहकती हुई आवाज़ सुनाने के लिए और करेंगे ढेर सारी बातें। और आपको ध्यान होगा, कुसुम ने आपसे पूछा था एक सवाल।
0: जी हाँ, लेकिन इन्होंने बताया नहीं।
1: तो हमने भी, आपने भी यही कहा था कि जो 10:10 पर आप जुड़ेंगे तो आप इस सवाल का, इस कार्यक्रम में देंगे पूरा जवाब।
0: जी हाँ बिल्कुल। और हम सवाल एक बार फिर से दोहरा देते हैं कि आज सुबह उठकर किसने आपके साथ मिलाई आपकी ताल से ताली, आपने ताल मतलब आपने किसको की गुड मॉर्निंग सबसे पहले, अपने नियरेस्ट डियरेस्ट को या आपको किसने की, किस तरह से की, मोबाइल पर आमने सामने या फिर डिजिटल चिट्ठी के माध्यम से। डिजिटल चिट्ठी यानी कि वही संदेश। और डिजिटल चिट्ठी से मुझे याद आया कि सुषमा, हमें तो अपना ईमेल आईडी भी अपने दोस्तों को बताना है।
1: जी हाँ, तभी तो डिजिटल चिट्ठी हमारे पास आएगी। हमारा ईमेल आईडी है ipradiodelhi@gmail.com। और श्रोताओं, वैसे देखा जाए कुसुम, आपने भी ऑब्जर्व किया होगा कि हम में से बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो सबसे पहले उठ के ना अपना फोन देखते हैं।
0: हाँ वही,
1: और
0: इसीलिए तो मैंने कहा ना, किसने आपको गुड मॉर्निंग
1: जी
0: कहा,
1: जी
0: किसने,
1: जी
0: किससे आपने कहा।
1: बिल्कुल। और उनको यही रहता है कि देखिए किसका मैसेज सबसे पहले आया हुआ है। तो बस ये भी साथ में जरूर बताएं कि क्या आप भी सुबह सबसे पहले उठकर फोन ही चेक करते हैं।
0: हाँ देखिए ना सुषमा, जैसे कई बार ये रात को हम कोई पोस्ट डालते हैं और सुबह सुबह आंख खुलते ही देखते कितने लोगों ने हमें देखा, कितने लोगों ने हमें हाय कहा, कितने लोगों ने हमें कॉन्ग्रेचुलेट किया है ना।
1: जी
0: मतलब
1: जी जी
0: वही कि
1: जी
0: किसने सबसे पहले हमसे मिलाई ताल।
1: जी बिल्कुल सही। और ताल से ताल मिलाना तो भी बहुत ही अपने आप में एक अनोखा काम है और मुश्किल भरा काम भी है वैसे देखा जाए, क्योंकि हर किसी के साथ ताल से ताल नहीं मिलती है।
0: नहीं लेकिन अगर हम चाहें तो मिला सकते हैं।
1: हाँ, थोड़े से एफर्ट्स करने
0: देखिए
1: पड़ते
0: ना,
1: हैं।
0: हम हैं दो, यानी सुषमा और मैं, हम दो ही हुए, लेकिन आप जितने भी लोग हैं हम उन सब से एक साथ ताल से ताल मिला सकते हैं। कैसे?
1: बिल्कुल, ये बहुत ही खूबसूरत गीत जो अलका याग्निक की आवाज में आपने लगा के रखा है, ताल फिल्म से ही इसी को सुनवाना चाह रही हैं आप, मैं देख रही हूँ काफी देर से।
0: जी बिल्कुल, तभी तो ताल ताल ताल।
1: ताल। तो श्रोताओं, आप देश भर में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी हमें सुन रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम में आपके संदेशों का बहुत सारा प्यार थाल भरकर हमें
0: जी बिल्कुल, और आप ताली देंगे
1: मिलेगा।
0: अपने संदेशों के माध्यम से,
1: जी
0: डिजिटल चिट्ठी के माध्यम से। पता हम आपको बता ही चुके हैं और एक बार फिर से बता देते हैं, हमारा जो डिजिटल चिट्ठी पाने का माध्यम है यानी कि आपके भेजने का माध्यम है, वो है ipradiodelhi@gmail.com।

0: जी हाँ, ताल से ताल मिला सुषमा, ताल मिल चुकी है। देखिए ना, इतने सारे संदेश आ चुके हैं और सबने शायद बताना शुरू कर दिया कि गुड मॉर्निंग उन्होंने कैसे की, किसको की और उन्हें कैसे गुड मॉर्निंग हुई। टीडी
1: जी
0: मल्होत्रा
1: हाँ
0: जी ने संदेश भेज दिया है हमें, कहते हैं प्लीज इंक्लूड अ रिक्वेस्ट ईमेल इन द सॉन्ग गिवन इन दिस सब्जेक्ट और यू कैन इंक्लूड दिस मेल इन एनी सुटेबल सॉन्ग। क्या बात है। और इनके साथ हैं
1: सेक्टर
0: सुषमा
1: 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक प्रतीक, अनिल शर्मा और जयवीर सिंह, डॉक्टर अमनदीप जी हैं साथ में।
0: साथ में कालका से हैं शुभचंद्र।

0: बजाज, साहिल बजाज और बिट्टा बजाज। और संदेश की झड़ी लग चुकी है, मतलब एक संदेश के बाद दूसरे संदेश पे जाना मुश्किल हो गया है भाई। विश्वनाथ साहू ने ये संदेश भेजा है लछनपुर छत्तीसगढ़ से। इनके साथ है पंकज साहू और तिरुपति साहू।
1: साथ ही हमारे पास अगला मेल जो हम देख पा रहे हैं, ये है दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से। मोहम्मद यासिन अनजान और साइमान हसन नवाज अहमद हैं, अहद हैं, मिफ्रा हैं और बेबी चाहत, इन सब की तरफ से इन्होंने अपने पसंद का गीत सुनना चाहा है। अपनी फरमाइश भेजी है हमें।
0: ताज मोहम्मद जी संदेश भेज रहे हैं, कहते हैं किसी भी गीत में शामिल कीजिए, तहे दिल से शुक्रिया। इनके साथ है गुलाम साबिर राही, महराज जहां और आज़ाद नगर लक्सर हरिद्वार से। अनिल कुमार गवानकर जी संदेश भेज रहे हैं, मेहर नगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से।
1: और इन्होंने भेजा है अपने साथी सरिता सिद्धांत और टुक टुक गवहानकर की तरफ से भी। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि हाइलाइट्स बहादुरापुरा नागपुर से भी इनके कुछ साथी हैं, जिनका भी इन्होंने नाम साथ में लिख के भेजा है। वैशाली, एकांश, सुमित और ध्वनि, इनकी तरफ से भी अपनी ही पसंद का गीत इन्होंने सुनना चाहा है। अपनी फरमाइश हम तक पहुँचाई है। और अगला संदेश हम देख पा रहे हैं, ये है ऊपरकोट मोहल्ला चुकंठी चौखुंटी बुलंदशहर से। मोहम्मद सईद आवासी, निगहत परवीन आवासी, शहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान, अरजान, आबान और आवासी परिवार के सभी
0: सभी
1: सदस्य।
0: सदस्य मांगे राम जी ने संदेश भेजा है चौधरीवास हरियाणा से। इनके साथ हैं रितु सिंह, हिमानी, शुभम, यश कुमार। कहते हैं हार्दिक धन्यवाद, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करते हैं, पसंद का कोई भी गीत सुनवा दीजिए, शुक्रिया, मेहरबानी होगी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए, संदेश भेजने के लिए। लेकिन सुषमा, हमारा जो प्रश्न था किसी ने आंसर नहीं दिया, क्योंकि देखिए ना, हमने पूछा था किसने आपको गुड मॉर्निंग किया और आपने किसको सबसे पहले सुबह, लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। कुसुम और सुषमा हैं आपके इस प्रश्न के जवाब के लिए, डिजिटल चिट्ठी से भेज दीजिए ना एक संदेश कि आपने किसको किया गुड मॉर्निंग सुबह।
1: और आपकी पसंद का प्रोग्राम, आपकी पसंद, फिर आपकी फरमाइश, फिल्मी गीतों पर आधारित ही
0: हाँ
1: कार्यक्रम हम आप लेकर लेकर आते हैं आपके लिए। और मैं और कुसुम, यानी सुष्पा और कुसुम, आपका इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे कुसुम जी ने भी कहा, हम उम्मीद करते हैं कि आप बहुत सारे और संदेश हम तक पहुंचाएंगे। और साथ ही साथ आप ये भी ज़रूर बताएं कि गर्मी का मौसम है, जैसे हमने पहले भी एक कार्यक्रम में बात की थी कि इस गर्मी के मौसम में ऐसे पेय पदार्थ लेने चाहिए जिससे हम
0: गर्मी से लू
1: गर्मी
0: से
1: से
0: बचे
1: बचे।
0: रहें और हमारा शरीर हाइड्रेट रहे। तो आप जिस जगह से हैं वहाँ का क्या पेय पदार्थ ऐसा मशहूर है जो सुबह सुबह परिवार में या आप
1: अपने
0: आपके
1: परिवार में
0: आसपास?
1: करते हैं
0: हाँ
1: और उस गर्मी में उसे ले सकते हैं,
0: हाँ
1: तो जरूर हमें बताएं, हम साथ में ये भी जानना चाहते हैं आपके साथ।
0: और अगला संदेश है सदर बाजार कुरावली से, अनिल कुमार वर्मा, माया देवी वर्मा, राहुल कुमार वर्मा, विनीत कुमार और सोनम का। इसके बाद हमें तुलसी मस्कीन जी का संदेश आ चुका है।
1: जी हाँ, ये लिखते हैं एवरग्रीन रेडियो ग्रुप बिहारी कॉलोनी शाहदरा दिल्ली से। बीना मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेधा मस्कीन और चंडीगढ़ से इन्होंने कुछ साथी हैं इनके, राहुल खुराना, रचित, केशव, रिधान खुराना, इन सब की तरफ से भी इन्होंने, और इन्होंने बड़ा अच्छा सा लिखा है कि रोमांटिक गीत आप जरूर सुनवाएं। तो रोमांटिक गीत एक से बढ़कर एक खूबसूरत
0: हाँ
1: गीत है भाई, हर गीत की अपनी कहानी होती है और उसका
0: जी बिल्कुल।
1: अपना एक कहते हैं ना, दिल को छू लेने वाला अंदाज होता है उस गीत का।
0: और कोई भी ऐसा गीत या कोई पहेली कहानी नहीं होती जिसके मतलब बैकग्राउंड में कोई और बात ना हो, मतलब कि हर चीज़ के पीछे कहानी तो छुपी है, इन गीतों के पीछे भी एक ना एक कहानी है। फिलहाल हम अगला संदेश लेंगे मजनू कटीला से, कमल बालूजा, मधु बालूजा, सागर बालूजा और सतना एमपी से उमंग मलिक, आकांक्षा मलिक और माही मलिक का हमें संदेश मिला।
1: और साथ ही हम देख रहे हैं कि बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और सुरजीत रमेश साहू जी का संदेश है। डुमराव बिहार से भी इन्होंने अपने साथी डॉक्टर डब्लू अंसारी, डॉक्टर सोनम अदीवा और दानिश अंसारी के इनाम साथ में शामिल किए हैं। गोला बाजार बक्सर से भी श्रद्धानंद आर्य, अभयानंद आर्य और पर्वानंद आर्य जी के साथ इन्होंने संदेश पहुँचाया। और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और आसमा खातून अंसारी जी का भी नाम इन्होंने शामिल किया है।
0: जी
1: वाह, क्या
0: बिल्कुल।
1: तालमेल आई है इन्होंने।
0: देखिए ताल तो मिल चुकी है, मैंने कहा ना ताल मिल चुकी है, सिर्फ प्रश्न का उत्तर नहीं मिला है, खैर कोई बात नहीं।
1: और अपने सारे साथियों का ख्याल रखा
0: हाँ
1: है इन्होंने।
0: लेकिन कुसुम और सुषमा आपसे जवाब लिए बगैर जाने वाली नहीं है कार्यक्रम से,
1: जी
0: और
1: जी
0: गाने
1: जी
0: सुनवाएंगी आपकी डिजिटल।

0: चिट्ठी भी लेंगी, लेकिन साथ ही आपसे प्रश्न का जवाब भी लेंगी। फिलहाल चलते हैं अगले गीत की ओर, जो है सलीम मर्चेंट की आवाज में आशियाना।
1: बहुत ही खूबसूरत गीत है ये भी।

0: तो सुषमा क्या कहें अब हम बताएं।
1: बस कहने को तो हमारे पास वैसे तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन अभी तो बस यही कहना चाहूँगी कि जितनी मेल्स आई हैं हमारे साथियों की, जो अपनी सुबह किस तरह से मनाते हैं उन्हें शामिल करते हैं, और अब देख रही हूँ कि बहुत सारे साथी जो हैं वो तो बस उनको अपना फरमाइश सुनना होता है, उन्हें कोई मतलब नहीं होता है कि आप पूछा क्या नहीं, प्रोग्राम से कनेक्ट नहीं होना होता उन्हें, है ना।
0: नाम की बस नाम आ जाए हमारा,
1: हाँ
0: और कुछ नहीं भाई।
1: बिल्कुल सही,
0: हमारे प्रश्न भी होते हैं, आपको शामिल करना होता है। आपकी पसंद का मतलब सिर्फ गीत और आपके नाम नहीं, इसके साथ में आप शामिल होइए। जो प्रश्न होता है उसका आंसर आप देंगे तो हमें लगेगा आप सुन रहे हैं, है ना।
1: बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए तो हमें लगता है कि आप कनेक्ट हैं और हम बहुत अच्छे से और आपसे जुड़ पाते हैं हम
0: इंस्पायर होते हैं हम कार्यक्रम को और अच्छा और बेहतर बनाने के लिए।
1: बनाने के लिए।
0: तो सुषमा, ये संदेश जो है ये हमारे प्रश्न का जवाब है।
1: जी सतीश अनेजा जी की मेल मैं देख रही हूँ और आप बड़ी मुस्कुरा रही हैं, जरा पढ़ के
0: जी,
1: सुनाइए।
0: कहते हैं चंडीगढ़ सिटी से सतीश अनेजा, कुसुम और सुषमा बहन जी नमस्कार। नमस्कार जी,
1: नमस्कार।
0: मैं हर रोज करीब 200 दोस्तों को गुड मॉर्निंग विश भेजता हूँ, हासिल करता हूँ, क्योंकि मॉर्निंग विश में कोई ना कोई अच्छा विचार, देवी देवता की तस्वीर होती है, सारा दिन सकारात्मक रखती है। मेरी मॉर्निंग विश की पोस्ट में मैं खुद को तैयार करता हूँ, जिसमें दुआ दुआ भी लिखता हूँ। बहुत सुकून मिलता है, क्या बात है,
1: क्या
0: बहुत अच्छी
1: बात,
0: बात है,
1: बढ़िया।
0: क्या
1: और
0: बात है।
1: बताइए, ये बहुत अच्छी बात है। देखिए इसके दो फायदे हैं, अपने दोस्तों के साथ कनेक्ट भी रहते हैं और सुबह सुबह सबके फोन पे दस्तक भी दे
0: हाँ,
1: देते
0: और एक बड़ा अच्छा सा मैसेज आया सुषमा,
1: मैसेज। हाँ
0: आप
1: जी
0: इसको पढ़ें।
1: हाँ, ये उत्तम नगर दिल्ली से हैं बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका खोरवाल और भानु प्रकाश की तरफ से ये लिखते हैं कि बोध, आई थिंक ये खोरवाल जी ने ही लिखा है। आज सुबह सामने वाले पड़ोसी से राम राम की हमने और फोन पे एक नजर डाली, बैटरी है
0: क्या
1: भी
0: बात है भाई, ये तो होता है क्योंकि कई
1: या
0: बार जल्दी में निकलना पड़ता है तो बैटरी तो देखना बहुत जरूरी है। चलिए, इतना तो बनता है
1: नहीं। जी
0: फोन का देखना, है ना। और एक प्रवीण एस जी संदेश भेज रहे हैं, कहते हैं रिस्पेक्टेड AIR टीम, एक्सीलेंट प्रेजेंटेशन एंड सॉन्ग सिलेक्शन, इट्स शोइंग दैट यू हैव वेरी गुड ट्यूनिंग बिटवीन बोथ ऑफ यू, थैंक्स मेकिंग संडे मॉर्निंग मोर मीनिंगफुल, रिगार्ड्स प्रवीण कुमार शर्मा, सूर्यनगर गाजियाबाद से। लेकिन प्रवीण जी, आप भी तो मॉर्निंग में शामिल हो जाइए ना, दीजिए ना प्रश्न का जवाब कि गुड मॉर्निंग आपने सबसे पहले किसको की या किसने आपको की, क्यों सुषमा
1: बिल्कुल सही, और थैंक यू सो मच, आपको हमारा प्रोग्राम पसंद आ रहा है, हमारी
0: जी।
1: ट्यूनिंग पसंद आ रही है और हम चाहते हैं हमारे सारे श्रोताओं की ट्यूनिंग भी हमारे साथ ऐसे
0: हाँ,
1: ही
0: और
1: बने।
0: खास तौर पर इन्होंने फीडबैक लिखकर भेजा है।
1: जी, थैंक यू सो मच,
0: हाँ
1: और इस तरह के फीडबैक हमें चाहिए होते हैं जिससे हम अपने कार्यक्रम की गुणवत्ता को और अच्छे से सुधार सकें। और बस एक चीज़ और भी पूछी थी हमने, एक बात और, एक और प्रश्न कुसुम, आपको याद है तो हमने कहा था कि आप गर्मी में किस तरह का पेय पदार्थ ज़्यादा लेना पसंद करते हैं या
0: या
1: गर्मी से
0: फिर
1: बचने के
0: जी,
1: लिए।
0: और कई बार हमारे परिवार में ये रिवाज होता है कि सर्दी में ये पिया जाएगा और गर्मी में ये पदार्थ पिया जाएगा,
1: जी
0: यानी कि
1: जी
0: जैसे कॉफ़ी का होता है चाय कॉफ़ी का, कि ये सर्दी में और गर्मी में हम कुछ भी कोल्ड कॉफ़ी या ठंडा दूध या ठंडाई शरबत, मतलब ठंडा पेय पदार्थ कोई भी पीते हैं।
1: जी जी
0: तो
1: जी
0: आपके यहाँ किस पेय पदार्थ का चलन है बताएं। फिलहाल भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार जी लिखते हैं।
1: ये लिखते हैं कि बेहतरीन प्रस्तुति और बेहतरीन आवाज और अंदाज के साथ एक से बढ़कर एक नगमे आप सुनवा रहे हैं, हम भी प्रोग्राम का आनंद उठा रहे हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप, और भी बेहतरीन बेहतरीन नगमे हैं हमारे पास बहुत
0: जी,
1: सारे।
0: प्रोग्राम का आनंद यदि आप उठा रहे हैं तो बताइए ना, हमने प्रश्न
1: जी
0: जो पूछा है उसका जवाब।
1: जी
0: पूनम गगनेजा जी संदेश भेज रहे हैं, राम राम जी प्लीज एनी सॉन्ग, जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम, विशाल, प्रिया, दिशानी और निमित। सिर्फ नाम नहीं भेजे भाई, जवाब दीजिए।
1: फारूक अली खान जो हैं उन्होंने भी संदेश भेजा है कस्बा कुन्नौर यूपी से। फारूक अली खान जी अपने साथियों के साथ इन्होंने शायद अपना संदेश लिखना भूल गए ये, लेकिन लिखते हैं कि गुड मॉर्निंग वाइफ से की।
0: जी,
1: मैंने सबसे पहली गुड मॉर्निंग अपनी वाइफ से की।
0: क्या बात है, ये तो बहुत
1: जी
0: अच्छी बात है, यही तो हम जानना चाहते हैं, किससे आपने सबसे पहले गुड मॉर्निंग की।
1: जी और उन्हें करना बहुत जरूरी भी है, पता चला
0: बिल्कुल
1: उन्हें नहीं कर रहे और किसी और को कर रहे हैं तो भी आपका

0: कटना मुश्किल हो जाएगा फिर।
1: हरजिंदर सिंह भाटिया जी का भी संदेश हमें मिल चुका है, और इसके बाद अनिल बुरांडे जी संदेश भेज रहे हैं, कहते हैं
0: ये कहते हैं क्या भाई, इन्होंने फिल्म अपनी फरमाइश भेजी है देखिए, और पांडरकवड़ा जिला यवतमाल महाराष्ट्र से इन्होंने ये संदेश हम तक पहुंचाया है। इनके इन्होंने अपनी शायद इनकी धर्म पत्नी है उषा बुरांडे, अनुश्री

0: संदेश।
1: जी, और सुरेश जाधव जी संदेश भेज रहे हैं, इनके साथ साथ हैं अनीता, आरती प्रसाद, सोनल बेबी सिया जालना शहर से सोमनाथ, गीता जाधव, ओम जाधव, सुभाष जाधव, चंदन एकनाथ, संगीता जाधव, आप सभी का धन्यवाद कार्यक्रम में संदेश भेजने के लिए। और राजेंद्र नारंग जी संदेश भेज रहे हैं,
0: इन्होंने भटिंडा रोड मंडी डब्बावाली से भेजा है अपने साथी अंजू, मोहित और तानिया नारंग के साथ।
1: राजेश जैन बिट्टू जी संदेश भेज रहे हैं,
0: मुलांपुर दाखा से बिट्टू जैन और संजीव जैन के साथ इन्होंने संदेश भेजा है हम
1: जी
0: तक।
1: हाँ, और एक संदेश और है, कहते हैं कुसुम जी, सुषमा जी, प्यार भरा नमस्कार, ये हैं बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन और हेमलता डिंपल देवांगन का, कहते हैं कोई भी खूबसूरत गीत में हमें भी शामिल कर ले। तो लीजिए, आप सभी के लिए हमारी तरफ से बेहद ही खूबसूरत गीत सोनू निगम की आवाज़ में।

0: तो सुषमा, अब हमें संदेश की जो है इतनी बहार आ गई संदेशों की कि ऐसे लग रहा है कि बाहर धूप नहीं है, अब तो मौसम बहुत सुहाना हो चला है
1: क्योंकि इतने
0: संदेशों की वजह
1: सारी
0: से।
1: हाँ संदेशों की छाया जो हम पर बरस रही है,
0: हाँ,
1: तो हम साथियों देख, लेकिन हाँ एक हमारी शिकायत
0: जवाब नहीं देते हमारे जितने
1: है
0: भी लिसनर हैं, वो
1: ना
0: सिर्फ और सिर्फ अपना नाम सुनना चाहते हैं या गीत सुनना चाहते हैं। भाई ठीक है, आपकी पसंद है, लेकिन जुड़ेंगे ना, कनेक्ट तो होंगे ना आप हमसे, ताकि हम जो आपसे पूछते हैं आप जवाब देते हैं, उसी से तो तालमेल बनता है ना। देखिए, ताल से ताल तभी मिलती है, इसीलिए हमने आपसे सवाल पूछा। सुबह 7:30 पे जो कार्यक्रम था उसमें भी पूछा, उसका भी आपने जवाब नहीं
1: जवाब नहीं
0: दिया,
1: दिया।
0: और अब पूछा उसका भी। हमें, हमारे कुछ ही दोस्तों का हमें संदेश मिला है, जवाब मिला है। आप सभी ट्राई करें कि आपके घर में किस पेय पदार्थ का सुबह उठकर पीने का चलन है, गर्मी में और सर्दी में। और दूसरा,
1: दूसरा भी हमने आपसे पूछा ही था कि सुबह उठकर आप सबसे पहले किसे विश करते हैं, और आज आपने किसे विश किया,
0: जी
1: क्योंकि एक तो संडे रिलैक्स का दिन। अच्छा चलिए, मुझे लगता है कि खाने पीने की बातें करें तो शायद वो भी तो हमने कहा था
0: हाँ
1: भाई, पीने की
0: हाँ
1: बात पूछी है आपसे तब भी आपने नहीं बताया।
0: चलिए कोई बात नहीं, हम अपना काम करते हैं, आप सोचिए कि आपको क्या करना है।
1: मैं एक
0: हाँ
1: चीज पूछूं आपसे
0: हाँ
1: कुसुम,
0: हाँ
1: ये
0: पूछिए
1: बताइए,
0: ना।
1: जैसे हम लोग, जैसे हमने अपने साथियों से भी पूछा कि आप कहाँ, जहाँ भी रहते हैं वहाँ की डिश क्या है, तो वो बताएं आपकी फेवरेट डिश क्या है अभी, जो आप खाना चाहती हैं सर्दी में, मतलब गर्मी में, जिससे आपको ठंडक मिले।
0: भाई, मैं तो सुबह उठकर गोंद कतीरा लेना पसंद करती हूँ, उसमें नींबू और काला नमक और थोड़ी सी चीनी, और फिर उसको मिलाकर पीने में जो टेस्ट आता है ना, ऐसा लगता है, और थोड़ा सा पुदीना उसको क्रश करके जब डाल के, तो लगता है कि
1: मुंह में पानी आ
0: वाह
1: रहा है मेरे।
0: और मतलब इतनी ताजगी आ जाती है, ऐसे लगता है कि वाह, इससे बढ़िया तो कुछ है ही नहीं।
1: बिल्कुल, आप तो बहुत अच्छा। वैसे आपने कभी वो बनाया बाजरे का रेबड़ा,
0: नहीं, वो मुझे नहीं आता
1: वो भी बहुत अच्छा होता है,
0: कैसे
1: पता
0: बनता
1: है।
0: है सुषमा
1: बना वो, मैं आपको शो के बाद बताती
0: मुझे लगा
1: हूँ।
0: मेरे बाकी जो दोस्त हैं वो भी इस चीज को जान ले और शायद बनाना पसंद
1: हाँ
0: करें।
1: क्योंकि वो ऐसी डिशेस हैं ये, जिन्हें गर्मी में
0: हाँ
1: अगर आप खाएं तो बहुत ही पौष्टिक भी होती हैं और शरीर
0: हाँ
1: को भी ठंडा करती हैं। आपने कभी दही वाले चावल खाए हैं?
0: हाँ बहुत स्वाद लगते हैं
1: ये
0: भाई,
1: सब सर्दियों में तो लगते ही अच्छे हैं, लेकिन गर्मियों में इनका खाने का अपना ही मज़ा है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो अब हमारे साथ ही जो खाने पीने का प्लान है आपका, वो भी आप बता सकते हैं, अभी क्या चल रहा है आपके घर में, किस तरह की तैयारी चल रही है, दोपहर का लंच हैवी होने वाला है या किस तरह का बना रहे हैं आप?
0: हाँ बिल्कुल, बताएं आप सभी, फिलहाल
1: मुझे
0: संदेश लेते
1: लगता है, मैं फिर आपको टोक रही हूँ,
0: हैं
1: मुझे ऐसे लगता है कि जो महिलाएं हमारी साथी होंगी ना, वो कह रही होंगी हाय खाने पीने की बात क्यों कर दी, गर्मी में तो हमें खड़ा
0: हाँ
1: होना पड़ेगा।
0: बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। तो चलिए हम खाली अब संदेश की ही बात कर लेते हैं, जो संदेश आए हैं उनको ही पढ़ देते हैं। तो ये संदेश मिला हमें सनावत से शेख मूसा मोहसिन, अशोक वर्मा, राजकुमार बढ़ाना का, और बोधज करवाल जी का हम संदेश ले चुके हैं, अजीत भावसर जी भी आ चुके हैं। इन्होंने क्या लिखा, कुछ दिख नहीं रहा, काला काला सा सिर्फ नजर आ रहा है, ऊपर से आपकी पसंद प्रिया आरजे, नमस्कार। नमस्कार जी।
1: जी
0: अब जो है सतीश अहमद भाई फूल वाले जी, दोनों को हमें नमस्कार कर रहे हैं।
1: और ये भी इन्होंने भी अपनी पसंद का ही गीत सुनना चाहा है, इन्होंने छोटी बलिया करजत मुंबई से ये संदेश भेजा है, और ये लिखते हैं, लिखते क्या है, इन्होंने अपने साथियों का कापसीड़ा दिल बॉर्डर नई दिल्ली में भी इनके साथी हैं, उनके नाम भी लिखे हैं, जैसे कि दुखनी सदफ, जूही इकबाल, इमरान अहमद फूल वाले, और साथ ही आमना नसरीन, आसमा परी, राबिया, आशु अहमद और समस्त इनके
0: समस्त जो
1: परिवारजन।
0: जी फूल वाले परिवार है।
1: हाँ जी
0: रविंद्र शर्मा जी का देखिए, इन्होंने जवाब दिया है हमारे बहुत ही पसंदीदा, एकदम हम कहेंगे कि देखिए जो हमसे ताल से ताल मिला रहे हैं हमारे श्रोता, हमें भी मजा आएगा उनसे बात करने में। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, इंद्रजीत कौर छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा कहते हैं शुक्रिया मेहरबानी के साथ। और देखिए ना संदेश, सुषमा जल्दी से पढ़
1: गर्मी में,
0: लीजिए।
1: हाँ इन्होंने लिखा है कि गर्मी में शरीर को ठंडा और हाइड्रेटेड रखने के लिए ये पेय पदार्थ फायदेमंद माने जाते हैं, जैसे इन्होंने लिखा नारियल पानी, छाछ, नींबू पानी, आम पन्ना, सत्तू शरबत, गन्ने का रस, और भी एटसेट्रा एटसेट्रा वगैरह वगैरह वगैरह ना। तो गर्मी में बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक, सोडा और ज़्यादा कैफीन वाली चीज़ें कम लें, क्योंकि ये डिहाइड्रेशन बढ़ा सकती हैं।
0: वाह, हमें बहुत
1: बहुत
0: अच्छा लगा,
1: बढ़िया,
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतना अच्छा जवाब देने के लिए। सुनील पाठक जी संदेश भेज रहे हैं, सिर्फ नाम भेजा है, इनके साथ है कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा और भाई सुच्चा सिंह पाठक। और इनके बाद हमें जो संदेश मिला संदीप मक्कड़ जी का,
1: इन्होंने भेजा है ज्योति मक्कड़, मन्नत और भरत कमल, साथ ही शहनाई पिंगा, बाला चौक, गोरैया, जलंधर से इन्होंने ये संदेश हम तक पहुंचाया है।
0: जी बिल्कुल, मांगेराम जी संदेश भेज रहे हैं, इनका संदेश हम ले चुके हैं लेकिन लेंगे दोबारा से, क्योंकि भाई देखिए जवाब दिया है इन्होंने हमारे
1: बिल्कुल सही।
0: प्रश्न का।
1: हाँ जी, इन्होंने बहुत अच्छा लिख के दिया है कि गर्मी के मौसम में हमें पानी की बहुत ही ज़रूरत होती है। गर्मी के मौसम में पुदीना और नींबू की शिकंजी बहुत ही अच्छी होती है, ये हमें पीनी चाहिए। कोई भी अपनी पसंद का गीत भी इन्होंने सुनवाने के लिए कहा है, तो अगला गीत इन्हीं को डेडिकेट है।
0: बिल्कुल, गांव चौधरी वास हरियाणा से मांगेराम सतौड़ ऋतु सिंह ने हमें ये संदेश भेजा,
1: और
0: बहुत बहुत
1: भी मैं
0: धन्यवाद।
1: तो ये कहूंगी एक नहीं, इनको दो गाने डेडिकेट कर रहे हैं अगला और उससे अगला भी
0: गांव लोहगढ़ ठाकुरवाला से स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल, अविराज, कहते कोई भी गीत सुना दीजिए भाई, नाम तो शामिल हो ही गया है, उसका क्या करें।
1: जी,
0: बहुत अच्छा एक संदेश आया है सुषमा, मैं चाहूंगी आप पढ़ें इसे।
1: हम सवेरे सवेरे 4 बजे रेडियो समर्पण को गुड मॉर्निंग संदेश भेजते हैं।
0: क्या बात है,
1: इससे अच्छा कोई बात नहीं हो सकती है। सुबह 4 बजे भी उठते हैं और
0: हाँ
1: संदेश भी भेजते हैं
0: वो भी रेडियो को।
1: रेडियो को तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप इसी तरह से अपनी रूटीन बनाए रखें। और ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से इन्होंने ये संदेश दिया है, हमें भेजा है, डॉक्टर प्रशांत राजे जाधव, संचित बायाल, प्रथमेश प्रणाली और सरवद सानवी देशमुख इनके साथी हैं। और साथ ही इन्होंने राजे जाधव देशमुख बयाल परिवार की तरफ से भी ये संदेश भेजा है।
0: जी हाँ, और ये संदेश आया ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से।
1: जी,
0: भाई देखिए कुछ तो
1: एक
0: है।
1: देव शंकर तमरिया जी का भी संदेश मैं देख पा रही हूँ नीचे, आप इस संदेश को भी शामिल करते हैं, हम देखते हैं।
0: जी कहते हैं मैं आपके सवाल सुन नहीं पाए जी, भाई हमारा सवाल है कि आप सुबह गर्मी के मौसम में आपके यहाँ किस पेय पदार्थ का चलन है, जैसे छाछ, नारियल पानी, नींबू पानी, आपके यहाँ कौन सा ऐसे पेय पदार्थ पीते हैं। और एक और कि गुड मॉर्निंग सबसे पहले आज आपने किसको की सुबह उठकर। कभी रेडियो श्रोता संघ डोंडी लोहारा बालोद छत्तीसगढ़ से, ये हैं अजय देव तामुदिया, तुषार देव, डॉली बेबी, पूजा तामुदिया, राधिका, प्रभा देवी तामुदिया, माशा अल कबीर,
1: कभी
0: और साथ में ये है सुषमा।
1: किकिर मेटा बेलहारी पाटन दुर्ग से संतोष शर्मा और रुक्मणी शर्मा।
0: जी, और हमें संदेश भेजने वाले जितने भी हैं हमने सभी के संदेश पढ़े। अशोक डाले जी का संदेश मिला लेकिन क्या लिखते हैं ये।
1: इनका संदेश भी हम शामिल कर चुके हैं, वैसे
0: हाँ,
1: समस्त परिवारजनों की तरफ से इन्होंने ये संदेश भेजा है हमारे पास। संदीप मक्कड़ जी का संदेश देख पा रही हूँ मैं, एक संदीप मक्कड़, संदीप
0: इनका
1: मक्कड़
0: भी
1: जी का
0: संदेश हम ले
1: ले
0: चुके
1: चुके
0: हैं।
1: हैं।
0: हाँ
1: जी,
0: तो सुनते हैं कार्यक्रम का ये गीत, बहुत ही प्यारा सा गीत है ये। ये है SP बाला सुब्रमण्यम और चित्रा के स्वर में,
1: हाँ
0: फिल्म
1: जी,
0: रोजा से।
1: बहुत ही खूबसूरत है ये हसी वादियाँ।

0: बहुत सारे संदेश हमारे जवाब के लिए मिल चुके हैं, मजा आ गया भाई सुषमा।
1: बहुत बढ़िया, क्योंकि अच्छा लग रहा है आप साथी थोड़ा हरकत में आए
0: हाँ बिल्कुल, लग रहा है कि
1: हैं।
0: शायद अब उन्हें लग रहा है कि भाई अब तो जवाब दे ही दो, है ना।
1: जी, बिल्कुल। और ये संदेश मैं देख रही हूँ कि धर्मेंद्र छिपा जी ने जो भेजा है, इनका संदेश हम पहले शामिल कर चुके
0: जी
1: हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम शामिल कर चुके हैं। हमें लग रहा है कि आपने शायद सुना नहीं, क्योंकि हम संदेश बगैर जवाब के भी शामिल कर चुके हैं, जिसने जवाब दिया उनके भी और जिन्होंने नहीं भी।
1: हाँ
0: आप लिख
1: जी,
0: रहे हैं, हम वो भी पढ़ देते हैं। बेहतरीन विषय पर चर्चा कर रहे हैं, हम प्रोग्राम का आनंद उठा रहे हैं। हमने संबंधित विषय पर लिख दिया, भेज दिया, शामिल नहीं हुआ, कितना इंतजार करें, कितने मैसेज भेजने पड़ेंगे। भोपाल राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा, ईशान छिपा, पूजा परिहार, हमने आपके संदेश शामिल कर लिया है और अब देखिए दोबारा भी कर चुके हैं। सुदर्शन मुखी जी संदेश भेज रहे हैं।
1: जी हाँ, इन्होंने लिखा है कि वेरी हैप्पी एंड हेल्दी संडे, गुड मॉर्निंग, ऑन आर रिक्वेस्ट काइंडली प्ले, ये भी अपनी पसंद का एक गीत सुनना
0: हाँ
1: चाहते हैं। और हाँ, हम कोशिश करेंगे, अगला गीत आप सभी साथियों को ही डेडिकेटेड है। और शांति नगर सोनीपत से इन्होंने ये संदेश हम तक पहुँचाया है।
0: और इन्होंने कहा है कि सुबह सबसे पहले हम प्रभु का सिमरन करते हैं, आज हमारा दिन अच्छा गुजरे। क्या बात है,
1: जी
0: बहुत
1: जी
0: अच्छी बात है ये
1: ये
0: तो।
1: तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि प्रभु की कृपा के बिना तो कुछ भी संभव
0: कुछ भी
1: नहीं है।
0: संभव नहीं।
1: जी है। और अगला जो संदेश है, ये लिख रहे हैं कि ग्राम पंचायत कालेगांव जाफराबाद से इन्होंने ये संदेश भेजा है। श्री सुधाकर राजे जाधव, डॉक्टर प्रशांत राजे, संचेत प्रथमेश, वैसे इनका संदेश हम पहले
0: हम ले
1: शामिल
0: चुके
1: कर
0: हैं।
1: चुके हैं।
0: हाँ ये कहते हैं, हम सवेरे सवेरे रेडियो समर्पण को गुड मॉर्निंग करते हैं। ग्रुप से बचने के लिए सवेरे सवेरे नारियल पानी, तरबूज, खरबूज, ताक, दही सेवन
1: मुझे लगता
0: करते
1: है ये
0: हैं।
1: धूप लिखना चाहते हैं, लेकिन ग्रुप
0: हाँ
1: लिख दिया
0: हाँ
1: आपने,
0: हाँ हाँ
1: तो बहुत अच्छी बात। इसी तरह के पेय पदार्थ हमें लेने चाहिए गर्मी से बचने के लिए।
0: और ये संजय ढींगिया जी हैं, ये संदेश भेज रहे हैं बागपत उत्तर प्रदेश से। इनके साथ है नमन ढींगिया और अपार ढींगिया। अपनी पसंद का सॉन्ग सुनना चाहे सुषमा, और कुछ नहीं है
1: जी, और
0: ये।
1: देखिए ये साथी सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से, इनका भी संदेश हम ले चुके हैं, लेकिन इन्होंने अभी बहुत अच्छा सा जवाब दिया है। वी यूज लस्सी एज अ ड्रिंक, लस्सी पीना गर्मियों के मौसम में सेहत और स्वाद दोनों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है। उत्तर भारत में तो दोपहर के भोजन के साथ या तेज धूप से आने के बाद ठंडे ठंडे लस्सी पीना पीने का एक अलग ही मजा है।
0: क्या
1: तो
0: बात है, वाकई बहुत अच्छी बात है।
1: और ये ऊपर भी बड़ा अच्छा लिखा है इन्होंने, देखिए,
0: हाँ
1: रविवार की सुबह का सबसे बड़ा आनंद यही है कि आपको किसी अलार्म की हड़बड़ाहट में नहीं उठना पड़ता, आप अपनी नींद पूरी करके आराम से उठ सकते हैं और बिस्तर पर ही कुछ पल सुकून के बिता सकते
0: हाँ और
1: हैं।
0: देखिए ना, सुषमा जी ने भी आराम से पढ़ा आपका
1: बिल्कुल,
0: संदेश, कोई
1: क्योंकि
0: हड़बड़ाहट
1: मुझे,
0: नहीं।
1: लेकिन साथ में ये भी था, है हमारा तो रविवार का दिन सुबह 4 बजे से पहले ही शुरू हो
0: हाँ
1: जाता
0: और देखिए ना, हम तो
1: है।
0: आप सभी के एंटरटेन करने के लिए क्वेश्चन भी बनाया और मतलब
1: आना
0: जवाब के
1: पड़ता
0: इंतजार
1: है,
0: में, है ना।
1: यस यस। और सबसे पहले गुड मॉर्निंग उस प्रभु परमात्मा को की है जिसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते। रविंदर सिंह छावड़ा जी ने ये संदेश भेजा, और शायद हम दूसरी बार इनका संदेश ही शामिल कर
0: हाँ
1: रहे
0: जी बिल्कुल,
1: हैं।
0: धन्यवाद आप सभी का
1: जी
0: जिन्होंने जवाब
1: जी
0: भेजे, जिन्होंने नहीं भेजे वो कृपया भेजे, यही कह सकते हैं। और देखिए तो तीसरी बार इनका संदेश आ रहा है, गांव चौधरीवास हरियाणा से, मांगेराम सतौड़, रितु
1: रितु
0: सिंह
1: सिंह
0: जी
1: का,
0: कहते हैं, हर गर्मी में के समय में कुंडी का प्रयोग करते हैं, एक बहुत ही ठंडा पदार्थ है, इसको जरूर प्रयोग करना चाहिए। एक ठंडा पदार्थ कोई भी गीत सुना दीजिए। क्या बात है, तो साथ
1: फरमाइश
0: में अपना जो है ना
1: है।
0: वो तो हमें, अनिल मोहन जी का हमने संदेश नहीं लिया है।
1: पहाड़गंज मुल्तानी ढाणा से अनिल मोहन, उषा मोहन और टिल्लू नायक कैथल का भी संदेश है। साथ ही इन्होंने कैथल हरियाणा से मधु नायक, इनके साथी हैं, उनका नाम भी लिखकर भेजा है। समय कम है और अब हमें घड़ी इशारा कर रही है कि भाई अपने साथियों को उसे विदा ले लें, लेकिन एक संदेश है जो कि हमारी साथी कुसुम है वो लेना चाहती हैं। हाँ जी,
0: हम चाहते हैं अब गाना क्या सुनवाए, संदेश ही ले लेते हैं क्योंकि 1.5 मिनट बचा है हमारे
1: तब
0: पास।
1: तो फिर जी हाँ, संदेश ही ले लेते हैं। अब गीत की बारी अगले कार्यक्रम में,
0: जी
1: अगले अगले शनिवार
0: बिल्कुल।
1: को,
0: जी
1: अगले
0: लेकिन
1: रविवार को।
0: मैं ऐसा सोचती हूँ कि जो गुनगुनाहट है वो पीछे से चलती रहेगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना।
1: जी जी
0: और
1: जी
0: हम
1: जी जी
0: संदेश भी पढ़ते रहेंगे। उदित नारायण हरिहरन के स्वर में ये यूं ही चला चल का गीत जो है आप बैकग्राउंड में सुन रहे हैं, और हम आपके संदेश भी पढ़ रहे हैं। गांव खारिया ठाणी जिला सिरसा हरियाणा से सतवीर सिंह बिजारनिया, देवेंद्र राजपाल, अभिषेक योगेश, पूजा आरजू और नव्या बिजरानी, इन सभी ने संदेश भेजा। किसी का संदेश रह ना जाए इसलिए हमने ऐसा किया है।
1: हाँ जी, और देखिए

0: इनका संदेश भी, संदीप ज्योति और मन्नत भरत मक्कड़, इन सबका हम संदेश ले चुके हैं और इन्होंने लिखा है कि सुबह की सूरज की पहली किरण से के साथ चाय का प्याला हो, पंछी हो, परिंदे हो और लकड़ी का घर हो, पहाड़ हो, चारों तरफ नदी का किनारा हो, शांति ही शांति, रेडियो पुराने गाने हो, बस बहुत ही बढ़िया,
1: बस मजा आ गया। लास्ट में आपने जो कहा ना, रेडियो के पुराने
0: गाने हो,
1: तो इसी के साथ दीजिए कुसुम और सुषमा को इजाजत। कार्यक्रम आपकी पसंद से, नमस्कार, बने रहिए बाकी कार्यक्रमों के लिए आकाशवाणी के इंद्रप्रस्थ चैनल के साथ। सुनते हैं फिलहाल समाचार।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार बढ़ाने, हरित प्रौद्योगिकी को अपनाने, यांत्रिक मेधा, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और जनसंपर्क में सहयोग के नए रास्ते तलाशेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। श्री मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। भारत और स्वीडन के बीच व्यापार 2025 में रिकॉर्ड 7.75 अरब डॉलर का रहा और वर्ष 2000 से 2025 के बीच स्वीडन से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश 2.8 अरब डॉलर से अधिक का रहा। प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब जेटन के बीच कल हेग में हुई वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में भारत नीदरलैंड्स के संबंधों में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
3: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
2: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने भी भारत के साथ संबंधों के बढ़ते महत्व पर जोर दिया और आर्थिक तथा रणनीतिक क्षेत्रों में मजबूत सहयोग का समर्थन किया। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपये की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80.09 रुपये, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रुपये और गुरुग्राम में 85.12 रुपये हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपये की वृद्धि की थी। कीमती धातुओं पर भारी सीमा शुल्क लगाने के कुछ ही दिनों बाद सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को मुक्त से प्रतिबंधित करके संशोधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। प्रतिबंधित श्रेणी के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं के आयात के लिए सरकारी लाइसेंस की आवश्यकता होती है। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि ये निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। एक राष्ट्र एक चुनाव विधेयक पर संयुक्त संसदीय समिति ने कल बेंगलुरु में राजनीतिक दलों, वैधानिक संस्थाओं और सिविल सोसाइटी के प्रतिनिधियों से गहन विचार विमर्श किया। समिति के सभापति पीपी चौधरी ने कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराने के लिए कुछ राज्यों की विधानसभाओं को निर्धारित समय से पहले भंग करना होगा। आंध्र प्रदेश में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत युवा संगम का 6ठा चरण कल से शुरू हो गया। तिरुपति जिले के येरुपेडू में स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT के डॉ. S. वेंकटेश्वर ने इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, TRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 11:10 हो चुके हैं और ये समय है कार्यक्रम सबरस का।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सबरस, और लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सुरमंजरी। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के अंतर्गत आप सुनेंगे राग अलैया बिलावल। तो ये राग आप सुनेंगे मंदाकिनी से।

अभी आप सुन रहे थे सुरमंजरी कार्यक्रम में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत मंदाकिनी जी के स्वर में राग अहिल्या बिलावल। आपके साथ तबले पर संगति कर रहे थे जितेंद्र कुमार स्वैन और हारमोनियम पर साथ दे रहे थे करीम नियाजी। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। श्रोताओं, 12 बजने को है, कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।

0: ये आकाशवाणी है। नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार बढ़ाने, हरित प्रौद्योगिकी अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु परिवर्तन और जनसंपर्क में सहयोग के नए रास्ते तलाशेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। श्री मोदी की इस यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर भी किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया। उन्होंने उभरते क्षेत्रों में अधिक सहयोग का आह्वान किया।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80 रुपए 9 पैसे, गाजियाबाद और नोएडा में 88 रुपए 70 पैसे और गुरुग्राम में 85 रुपए 12 पैसे हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में विमानन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर वैट 25% से घटाकर 7% करने का निर्णय लिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संपर्क और आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करने के अनुरूप लिया गया है। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। यह घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी, रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ASI ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। आंध्र प्रदेश में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अंतर्गत युवा संगम का 6ठा चरण कल से शुरू हो गया। तिरुपति के जिलाधिकारी डॉक्टर एस वेंकटेश्वर ने जिले के येरपेटू स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT में इसका उद्घाटन किया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों के बीच सांस्कृतिक आदान प्रदान, बौद्धिक विकास और राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देना है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित ये कार्यक्रम 27 मई तक चलेगा। टेनिस में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने इटालियन ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। 7वीं वरीयता प्राप्त एलिना ने फाइनल में अमेरिका की कोको गॉफ को हराया। आज इटली के जानिक सिनर का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूट से होगा। ये मैच भारतीय समयानुसार रात 8:30 से खेला जाएगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में आज भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रोली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से होगा। IPL क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: गृहलक्ष्मी कार्यक्रम सुनने वाली हमारी सभी प्यारी प्यारी बहनों को मनीषा और
1: रेनू का
0: राम राम, राम। देखिए ना रेनू, तपती गर्मी है, इतनी तपिश है हवा में, गर्म लू भी चल रही है ना, तो मौसम में बहुत से बदलाव आ गए हैं। अभी कुछ दिन पहले ठंडक भी थी, लेकिन अब बहुत गर्मी है। और ऐसी गर्मी में हमारी बहनें जो हैं वो बाहर भी काम करती हैं, घर का भी काम करती हैं, और सब कुछ संभालती हैं एक मुस्कान के साथ।
1: बिल्कुल सही बात है मनीषा, बिल्कुल ठीक कहा। और देखो, अब जैसे हम अपनी ही बात करें, हम बहनें भी तो बहुत गर्मी में चलते हुए आई, और सच में ऐसे लग रहा था कि जैसे बिल्कुल गर्म हवा, लू के थपेड़े चल रहे हैं।
0: जी हाँ, बिल्कुल लू के थपेड़े चल रहे हैं, और ऐसी लू में हमें अपनों का और अपना भी बहुत ध्यान रखना है। पानी लगातार पीते रहना है, नींबू पानी पिए, शिकंजी पिए, बहुत सी चीज़ें हैं जो हमें गर्मी से बचा सकती हैं। और रेनू ने जैसी बात कही कि हाँ भाई, हम भी बहुत दूर से आए हैं अपनी बहनों से बातचीत करने, उनसे रूबरू होने, और साथ ही हमारी बहनें भी बहुत बेसब्री से इंतज़ार करने बैठी हैं आज के हमारे कार्यक्रम गृह लक्ष्मी का। तो शुरुआत करते हैं इस बेहद प्यारे से गीत के साथ।

0: देखिए रेनू, अभी हम जो बातचीत कर रहे हैं और अपनी बहनों से हम इतनी दूर होते हुए भी बातचीत कर रहे हैं, तो यही जो साधन है ना, ये संचार है। यानी कि हमारे आपसी मेलजोल और रिश्तों का आधार है संचार।
1: बिल्कुल,
0: चाहे परिवार हो, दोस्तों से बात करना हो, सहकर्मियों से सहयोग करना हो, या कोई भी जानकारी देश की हो या विदेश की हो,
1: बिल्कुल,
0: तो संचार के माध्यम से बड़ी आसानी से ली जा सकती है।
1: बिल्कुल। और मनीषा, मैं समझ भी गई कि ये बात तुमने हमारी बहनों को क्यों कही। ये बात तुमने हमारी बहनों को इसलिए कही क्योंकि आज है 17 मई, और 17 मई को विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस मनाया जाता है।
0: बिल्कुल।
1: और हम अपनी बहनों को यह भी बता दें कि यह जो दिन है, 17 मई 1865 को पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना हुई थी, और इसीलिए जो पहला अंतर्राष्ट्रीय टेलीग्राफ कन्वर्शन पर हस्ताक्षर किए जाने की स्मृति में इस दिवस को मनाया जाता है। और वही उद्देश्य तो इसका तुमने बता ही दिया है कि मुख्य उद्देश्य हमारे समाज और अर्थव्यवस्थाओं में इंटरनेट और अन्य सूचना व संचार के माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा करना, और साथ ही लोग इसके प्रति जागरूक हों। सबसे बड़ी बात यह जाने कि हम दूर होते हुए भी कैसे हम संचार कर सकते हैं, यही दूर संचार है। देखो, जैसे अब हम अपनी बहनों से दूर रहते हुए बातचीत कर रहे हैं, अपनी बातें उन तक पहुंचा पा रहे हैं।
0: बिल्कुल रेनू, पहले होता था ना, पुराने समय में हम संचार किसी महासागर के पार संदेश फेंकने जैसा था, जिसकी कोई गारंटी नहीं होती थी कि मिलेगा या नहीं मिलेगा। लेकिन आज बहुत से साधन है, हमारे पास टेलीविजन है, टेलीफोन है, जिसके जरिए हम अपनी बात आसानी से विश्व तक पहुंचा सकते हैं, अपने अपनों तक पहुंचा सकते हैं।
1: बिल्कुल। और हम अपनी बहनों को एक और रोचक बात भी बता दें, जैसे कि बहुत बड़ा नाम लगता है विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस, तो हम यह बता दें कि पहले ये जो दोनों दिवस थे अलग अलग मनाए जाते थे, मगर वर्ष 2005 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने इन दोनों को मिलाकर एक ही दिन यानी कि 17 मई आज के दिन मनाने का निर्णय लिया।
0: जी हाँ, तो चलिए सुनते हैं हमारी ये बहन क्या कह रही हैं अपने पिया से।
2: मेरे पिया,

0: मनीषा, हमारी रोज़मर्रा की भागती दौड़ती ज़िंदगी में महिलाएं घर के साथ साथ बाहर का काम भी बखूबी संभालती हैं और बहुत अच्छी तरह से संभालती हैं।
1: जी हाँ, और ऐसे में कई जिम्मेदारियां कंधों पर उठाए वो अपनी सेहत को और कुछ शारीरिक जो बदलाव होते हैं उनको नज़रअंदाज करती चली जाती हैं। और ऐसे में होता यह है कि अंदर कोई ना कोई ऐसे अभाव या बीमारी वो स्वयं पाल लेती हैं जिसका भुगतान उन्हें ही नहीं उनके पूरे परिवार को भी करना पड़ता है। और ऐसी ही एक बीमारी है रेनू, कैंसर की। और ख़ास तौर पर महिलाओं में गर्भावस्था में जो कैंसर होता है वो बेहद ख़तरनाक होता है। तो ऐसे में हम अपनी बहनों को जानकारी के लिए एक बातचीत सुनवाएंगे। बातचीत का विषय रहेगा महिलाओं में गर्भावस्था कैंसर की समस्या और उपचार। बातचीत में भाग ले रही हैं डॉक्टर उर्वशी मिगलानी, स्त्री रोग विशेषज्ञ, और इनसे बातचीत कर रही हैं नवोदिता मिश्रा।
0: तो चलो मनीषा, हम अपनी बहनों को ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातचीत सुनवाते हैं।
2: नमस्कार, हमारे साथ हैं आज डॉक्टर उर्वशी मिगलानी जो स्त्री रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में। स्वागत है मैम आपका।
3: धन्यवाद।
2: डॉक्टर साहब, जो हमारा विषय है आज का जिस पर हम ज्यादा अपना ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं वो है गर्भाशय का कैंसर। तो सबसे पहला सवाल तो मेरा यही है कि गर्भाशय का कैंसर वो असल में होता क्या है?
4: गर्भाशय के दो भाग रहते हैं, गर्भाशय जिसे हम यूट्रस कहते हैं उसका कैंसर भी हो सकता है, या गर्भाशय ग्रीवा जिसे गर्भाशय का मुख कहते हैं सर्विक्स उसका कैंसर। तो गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर है जो कि बहुत ही जरूरी है जिसके बारे में समझना। शुरुआती चरण में तो हम उसका उपचार सिर्फ सर्जरी से कर सकते हैं, लेकिन जैसे वो फैलता जाता है तो फिर हमें दवाइयाँ और रेडियोथेरेपी देनी पड़ती है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम समझें कि गर्भाशय ग्रीवा जो हमारे जिसमें बच्चा पनपता है उसके मुख का कैंसर के साइन क्या हो सकते हैं।
2: बहुत सारे कैंसर के विषय में हम सुनते हैं कि पता इतनी देर में चलता है कि जहां पर इलाज मुश्किल ही होता चला जाता है। तो ऐसे केस में गर्भाशय का जो कैंसर है उसके जो अर्ली साइंस जिसे हम कहते हैं एकदम शुरुआत में पता चल सके, ऐसे क्या सिम्टम होते हैं?
4: हाँ, ये बहुत ही जरूरी है हमारी ग्रामीण महिलाओं को समझना। महावारी हर महिला को हर माह में आती है। अगर वो महावारी दो माह के बीच में आ रही है, बहुत ज्यादा आ रही है, संबंध बनाने के बाद जरा सा भी खून का दाग लगना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिम्टम है कि ये कैंसर की शुरुआत हो सकती है। महावारी बंद होने के बाद जिसे हम रजोनिवृत्ति या मीनोपॉज कहते हैं उसके बाद अगर 6 माह के बाद कभी भी खून का दाग लगे तो उसे कैंसर का साइन माना जाता है। अब ये हमारी ग्रामीण महिलाएं और बहुत ही समझदार एजुकेटेड महिलाओं में भी ये एक प्रवृत्ति है कि जब मीनोपॉज हो रहा होता है उस टाइम महावारी ज्यादा आ सकती है, ऐसा नहीं है। नॉर्मल मीनोपॉज में हमेशा महावारी कुछ ज्यादा समय पे आएगी और कम आएगी। अगर महावारी बंद होने के समय जैसे 45 साल की उम्र के आसपास किसी को महावारी बहुत ज्यादा आ रही है या कम समय के बाद, मेरा अर्थ है जैसे 15-15 दिन के बाद आ रही है और ज्यादा आ रही है, ये भी शुरुआती कैंसर का चरण हो सकता है। तो इसलिए अगर ऐसा सिम्टम हो तो आपने सबसे पहले डॉक्टर के पास जाके दिखाना है। डॉक्टर जाते ही ये नहीं है कि आपको लगेगा कि ये कैंसर हो गया है, हम जांचें करेंगे, कुछ टेस्ट होते हैं जो करेंगे जिससे पता चलेगा कि वो इन्फेक्शन के कारण है या हॉर्मोन्स में कुछ गड़बड़ के कारण है या कैंसर का शुरुआती चरण है। तो ये जरूरी नहीं है कि ये सब सिम्टम है तो आपने ये सोच के डर के बैठ जाना है कि ये कैंसर है। ये हो सकता है, ये एक संकेत है कि आप अपने घर से

0: निकलें और अस्पताल में दिखाएं।
1: इसी बिंदु से जुड़ा हुआ मेरा अगला सवाल है डॉक्टर, कि क्या कोई खास उम्र है जिसमें इस तरह की सावधानी मतलब जांच को लेकर ज्यादा बरतनी चाहिए, कि अगर लक्षण आ रहे हैं तो किस उम्र के बाद और ज्यादा सतर्क हो जाने की जरूरत है?
0: बिल्कुल, देखिए जब हम कुछ वर्ष पहले देख रहे थे कि थोड़ी बड़ी उम्र की औरतें जो 40 के बाद 45 के बाद या और ज़्यादा बड़ी उम्र की औरतें उनमें गर्भाशय कैंसर देखा गया था। जो गर्भाशय का कैंसर है वो तो 50-55 साल के बाद देखा गया था और गर्भाशय ग्रीवा का थोड़ा 40 और 60 के बीच में, परंतु अब रिसेंटली ये देखा गया है कि ये थोड़ी कम उम्र की औरतों में भी ग्रीवा का और गर्भाशय का कैंसर बढ़ने लग गया है। इसके बहुत से कारण हो सकते हैं, हमारा खान पान, हमारा रहन सहन, पल्यूशन, कुछ कारण जो हमें पता है कि मल्टीपल पार्टनर से कांटेक्ट हो, जिनका विवाह बहुत जल्दी उम्र में हो जाए, जिनका पहला बच्चा बहुत जल्दी हो जाए, ये सब तो रिस्क फैक्टर हैं ही। तो आजकल के टाइम में ऐसा कोई उम्र नहीं है जिसे हम कह सकते हैं कि ये कैंसर मुक्त है। अगर आपको ये सिम्टम किसी भी उम्र में हो तो
1: जी
0: आपको दिखाना है। फिर भी 30 से कम की उम्र में इसके होने के संभावना बहुत ही कम है, परंतु फिर भी अगर आपको बहुत दिक्कत हो तो आपको जरूर दिखाना चाहिए। स्पेशली जो साइन है वो है संबंध के बाद अगर खून का दाग लग रहा है, ये तो एक ऐसा सिम्टम है जो किसी भी उम्र में आपको डॉक्टर को दिखाने की जरूरत है। और बाकी के जो महीना ज्यादा आने की दिक्कतें हैं वो 30 के बाद।
1: यहाँ पर थोड़ा सा इसमें आपसे विस्तार में जानना चाहेंगे, जिस लक्षण का आप अभी जिक्र कर रही थी कि संपर्क के बाद जो खून का दाग आप बता रही हैं, तो वो क्या जिसे हम स्पॉटिंग कहते हैं,
0: बिल्कुल।
1: कई बार होता है शायद औरतों को पता ही ना चलता हो इस संबंध में, मतलब और अगर आप थोड़ा प्रकाश डाल सके कैसे वो इस चीज को सुनिश्चित कर सकती हैं कि हाँ ये लक्षण है या ये नहीं है?
0: देखिए, अगर वो सिग्निफिकेंट होगा या कुछ दाग लग रहा है तो वो पता चल जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है कि गर्भाशय ग्रीवा पे कुछ चोट लगी हुई है, कोई इन्फेक्शन है या कैंसर की शुरुआत है और खून इतना कम जा रहा है कि पता ही नहीं चला।
1: जी
0: अगर वो दाग भी लग रहा है तो वो पता चल जाएगा, और अगर एक बार नहीं तो अगले संपर्क में पता चल। तो इस चीज़ का पूरा ध्यान रखना है और ये ऐसी चीज़ नहीं है जो मिस हो जाती है।
1: अभी जिन लक्षणों की बात कर रहे थे, तो अब बात आती है जांच की, कौन कौन सी जांच है और खासकर हमारी जो ग्रामीण और कस्बों की जो महिलाएं हैं उनके लिए किस तरह की जांच अभी उपलब्ध है ताकि इसका जल्दी से जल्दी पता लगाया जा सके, उसके विषय में आप थोड़ा बताइए।
0: देखिए, महिलाओं को ये बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि कोई भी आपको फाइनेंशियल या पैसा देने की ज़रूरत होगी। सारे सरकारी अस्पतालों में कैंसर की जांच फ्री है, छोटे अस्पताल से लेकर बड़े अस्पताल में। सबसे पहली जांच जो गर्भाशय ग्रीवा कैंसर की है वो है पैप्समियर। पैप्समियर हम बच्चेदानी के मुंह, जिसे गर्भाशय ग्रीवा का मुख है, उसे थोड़ा स्राव लेते हैं। इसमें कोई तकलीफ नहीं होती है, आपको कोई बेहोश नहीं करना है, आपके साथ किसी भी रिश्तेदार को आने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 1 या 2 मिनट में ये टेस्ट हो जाता है। इसका रिजल्ट 2 हफ्ते में आ जाता है और उससे हमें पता चल जाता है कि सब नॉर्मल है या नॉर्मल नहीं है। अगर नॉर्मल है तो आपको 3 वर्ष तक ये टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। मैं हमेशा अपने मरीजों को कहती हूँ कि प्रकृति ने हमारी बहुत मदद की है इस चीज़ में कि जो गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर है उसकी शुरुआती चरण से आखिरी चरण तक जाने में 15 से 20 वर्ष लगते हैं, जो कि नॉर्मल से कैंसर बनने के बीच में भी 3 चरण है जिसको 15 वर्ष लगते हैं। तो हम अगर उस 15 वर्ष में एक बार भी पैप्समेयर करा लेते हैं और उस चरण को पकड़ लेते हैं तो हम उसको कैंसर बनने से पहले ही उसका
1: रोक
0: रोक
1: सकते
0: लेते
1: हैं।
0: हैं। और उसमें बच्चेदानी नहीं निकालनी पड़ती है, हम सिर्फ गर्भाशय ग्रीवा के मुख का इलाज करते हैं। तो ये बहुत जरूरी है समझना कि पैप्समियर कराने में कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर आपका नॉर्मल आ गया पैप्समियर तो 3 वर्ष तक आपको कुछ नहीं कराना है। एक और टेस्ट है जो HPV टेस्ट है, जो कि अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। हम काफी कोशिश कर रहे हैं कि वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आ जाए। अगर वो टेस्ट, जैसे हमारे कुछ मरीज जो करा पाते हैं, अगर वो टेस्ट बाहर से पैप्समियर के साथ कराते हैं, वो किट ले आते हैं और हम कर देते हैं और वो टेस्ट नॉर्मल है, तो आपको 5 वर्ष तक कुछ नहीं कराना है। तो ऐसा नहीं है कि आपको हर 6 महीने में अस्पताल जाने की जरूरत है। आप एक बार वो टेस्ट कराएं और 3 वर्ष या 5 वर्ष तक आपको दोबारा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कैंसर के बारे में, अगर वो नॉर्मल आया है।
1: जब हम ग्रामीण और कस्बों की महिलाओं की बात करते हैं या कुछ अर्बन महिलाओं की भी बात कर सकते हैं, इसमें एक थोड़ा संकोच का एक तत्व होता है, जैसे इस तरह का जो टेस्ट है उनको लगता है दिमाग में ऐसा कि
0: बिल्कुल
1: जो प्राइवेसी है वो कहीं भंग हो रही
0: बिल्कुल।
1: है, तो उस विषय में अगर आप थोड़ा सा हमारी सुनने वाली महिलाओं को अगर आप थोड़ा जागरूक करना
0: हाँ, ये
1: चाहें।
0: बहुत ही अच्छी बात आपने पूछी है, क्योंकि ये हमने भी महसूस किया। हमने बहुत सर्वे किए तो हमने ये देखा कि सबसे ज़्यादा महिलाओं को अस्पताल आने में यही डर और संकोच होता है कि वो दिखाना नहीं चाहते हैं। तो इसलिए एक एचपीवी टेस्ट की ही एक किट आ गई है जिसे हम सेल्फ सैम्पलिंग किट कहते हैं। वो किट अभी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में नहीं आई है, हम काफी कोशिश कर रहे हैं उसको लाने की। काफी कैंप्स वगैरह में और प्रोजेक्ट्स में उसे यूज किया गया है। उसमें महिला को हम समझा देते हैं कि कैसे टेस्ट लेना है, और मोबाइल वैन्स हैं जो चलती हैं उनको किट दे देते हैं, वो खुद ही टेस्ट लेके हमें दे देते हैं और वो टेस्ट प्रोसेस हो जाता है लैब में, उनके पास रिपोर्ट आ जाती है। तो इससे उसकी रिपोर्ट भी उतनी ही

0: अच्छी है जितनी हमारे टेस्ट लेने की है।
1: अगर हम प्रिवेंशन की बात करते हैं, रोकथाम पहले ही होने से पहले, जैसे हम HPV वैक्सीन के बारे में बहुत सुनते हैं,
0: बिल्कुल
1: उसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए, क्योंकि कई सारी भ्रांतियां, कौन सी सही एज है,
0: बिल्कुल
1: किस एज के बाद बिल्कुल काम नहीं करेगा,
0: बिल्कुल
1: इस तरह के विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, HPV वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर या गर्भाशय ग्रीवा एक इकलौता कैंसर है हमारे पूरे शरीर में जिसके लिए हमारे पास वैक्सीन है और एक ऐसा टेस्ट है। वो सिर्फ तब नहीं कराना है टेस्ट जब आपके पास कोई लक्षण हो रहे हैं, वो नॉर्मल महिला को भी कराना है। इट्स अ स्क्रीनिंग टेस्ट। जो वैक्सीन है उसकी सही एज है 9 से 14 वर्ष की लड़कियां, लड़कों को भी लगाया जा सकता है। 9 से 14 वर्ष में पहले हम 2 डोजेस लगा रहे थे, अब WHO ने कह दिया कि आप 1 डोज भी लगा सकते हो। अभी हम काफी उस पर काम कर रहे हैं कि वो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में आ जाए, तो जैसे आपके बच्चों को नॉर्मल सारे पोलियो DPT वैक्सीन लगते हैं वैसे ही ये भी लग जाएगा। अगर आप तब नहीं लगा रहे हैं तो 14 वर्ष के बाद उसे हमारे इंडिया में हम 45 वर्ष तक लगा सकते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा फायदा तब होगा अगर मैरिज से पहले या संपर्क से पहले उसे लगाया जाए। अगर पहले संपर्क 20 साल की महिला है जिसका एक बच्चा है और अब उसको लग रहा है कि उसको लगाना है, तो वो डेफिनेटली वो लगवा सकती है। लेकिन ये समझने की जरूरत है कि उसका जो असर है वैक्सीन का वो उतना अच्छा नहीं होगा जितना कि एक 15 साल की कन्या में होगा, जिसने कभी भी, क्योंकि ये वैक्सीन है HPV इन्फेक्शन के अगेंस्ट। जिस मरीज को HPV इन्फेक्शन या कॉन्टेक्ट हो चुका है उस पर ये उतना ज्यादा असर नहीं करता है। इसीलिए हम चाहते हैं कि हम बच्चों को पहले लगा दें, लेकिन अगर वो मिस हो गया है तो इसे बाद में भी लगाया जा सकता है। और इंडिया में ये 45 साल तक अलाउड है, लड़कों के लिए भी लड़कियों के लिए भी।
1: तो ऐसा कोई डेटा है डॉक्टर जहाँ पे 40 से 45 के बीच की मान ली, या 35 से 45 के बीच की जो औरतें लगाती हैं तो वाकई ये प्रिवेंशन में मदद करता है?
0: देखिए, यही डाटा है कि उसका इफेक्ट बहुत कम होगा एज कम्पेयर टू यंग फीमेल्स। लेकिन हम आजकल पूरे ग्लोबल लेवल पे ये हो रहा है कि अगर किसी को कैंसर से पहले के शुरुआती चरण डायग्नोज हुए हैं तो उसमें इलाज के साथ हम साथ में भी ये वैक्सीन लगा देते हैं। जो शुरुआती चरण बन गया उसको सही नहीं करेगा, लेकिन वो बाकी के और इन्फेक्शन में प्रोटेक्ट करेगा, तो उसमें भी हम लगाते हैं। हम मरीज को बता देते हैं कि ये आप लगा सकते हो, ये आपको इलाज तो कराना पड़ेगा लेकिन ये आपको बाकी इन्फेक्शन से बचा सकता है। लेकिन ये समझना जरूरी है कि वो उतना असरदार नहीं होगा जितना कि वो 14 वर्ष के बच्चे में होगा। और वैक्सीन जो है आजकल 20 साल की उम्र तक हम 1 या 2 वैक्सीन, अगर पैसे की दिक्कत है अभी हमें खरीदना पड़ रहा है, तो अगर हम 1 डोज भी लगा लेंगे 20 वर्ष तक वो भी सही है, और 20 वर्ष के बाद 2 डोज। अभी WHO ने उसको 3 डोज बोला हुआ है। इंडिया में अभी अलाउड ये है कि 20 वर्ष तक हम 1 डोज भी लगा सकते हैं, 2 डोज भी लगा सकते हैं।
1: जैसा कि आपने भी बताया, जो साइको ऑन्कोलॉजी जो आप कह रही हैं, क्या ये सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स पर भी उपलब्ध है?
0: सेकेंडरी हेल्थ केयर सेंटर्स पे ये नहीं होगी, वहाँ ही होगी जहाँ साइकेट्री सेंटर है। पर उसमें ऐसे है कि जो डॉक्टर डायग्नोज कर रहे हैं, निदान कर रहे हैं, वो ही समझा देते हैं। जैसे जब हमारे पास अगर लगता है, कई बार कोई मरीज हिचक रहे हैं कि हम किसी और से नहीं बात करना चाहते, तो मैं ही या मेरी जो टीम है वो ही मरीज को और उनके रिश्तेदारों को समझा देती है, और वो उपयुक्त होता है ताकि वो समझ पाए कि क्या करना है। बिकॉज बात करने से मरीज भी अपनी जो सारी शंकाएं हैं वो हमारे साथ शेयर कर लेता है, और जो भी उनको समझना है वो हम उन्हें समझा सकते हैं। लेकिन सेकेंडरी सेंटर पे स्पेसिफिकली काउंसलर अवेलेबल नहीं होगा, पर डॉक्टर भी काफी हद तक उनकी सारी शंकाएं दूर कर सकता है।
1: अंत में आप हमारी सुनने वाली महिलाओं को या उनके परिवार के सदस्यों को, जो भी ये कार्यक्रम सुन रहा है, कोई खास संदेश आप देना चाहेंगी?
0: मैं ये कहना चाहूंगी कि गर्भाशय और गर्भाशय ग्रीवा कैंसर के बारे में तो आपने बहुत विस्तार में हमारी ग्रामीण महिलाओं को बता दिया है, लेकिन कुछ ऐसे और सिम्टम हैं जो मैं बताना चाहूंगी महिलाओं को, जिनके बारे में भी ध्यान रखें, जो कि अंडाशय कैंसर के कारण हो सकते हैं। जैसे कि बड़ी उम्र में पेट फूलना, थोड़ा सा खाना खाने पे पेट भर जाना, पेट में दर्द होना, या बहुत ज्यादा थकावट लगना, जो शौचालय है या यूरिन की है उसकी आदत में बहुत ज्यादा बदलाव आना, ये वाले जो लक्षण है, अगर किसी को 12 या 13 दिन से ज्यादा हो रहे हैं एक माह में, और 2-3 माह लगातार हो रहे हैं, इनफैक्ट 1 या 2 माह भी हो, तब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। 1 या 2 दिन होने से चिंता की जरूरत नहीं है। ये सब अंडाशय कैंसर के लक्षण हो सकते हैं।
1: जैसे कि ये पैप स्मीयर है हमारे गर्भाशय ग्रीवा के लिए, तो क्या ऐसी कोई जांच इस केस में है, या इसके लिए फिर हमें सीधे?
0: नहीं, अंडाशय कैंसर की विडंबना है कि हमारे पास उसका कोई स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं है, इसलिए मैं अपने मरीजों को हमेशा यही समझाती हूँ कि आपको अगर ये कुछ भी लगे तो पहले डॉक्टर के पास जाएं। दूसरा, जिनके परिवार में किसी को भी आंत या अंडाशय का कैंसर हुआ है, उनमें ये होने के चांसेस ज्यादा हैं, उनको शुरू से ही अपना चेकअप कराते रहना चाहिए।
1: तो मैं सुनने वालों को यही कहना चाहेंगे कि बीमारी से डरने की जरूरत नहीं है, बस लापरवाही नहीं बरतनी है, जांच समय पर कराते रहनी है और किसी भी परेशानी को छुपाने की जरूरत नहीं है। सबसे पास आपका जो स्वास्थ्य केंद्र है वहां जाएं, डॉक्टर से संपर्क करें, उनसे बात करें, क्योंकि ये याद रखने की जरूरत है हमें कि जागरूकता से ही हमें इन स्थितियों में जीत मिल सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर उर्वशी आपका हमारे आकाशवाणी के स्टूडियोज में आने के लिए और हमारे साथ इस विषय पर जानकारी साझा करने के लिए।
2: अभी हमारी बहनों ने सुनी बातचीत, महिलाओं में गर्भावस्था, कैंसर की समस्या और उपचार। डॉक्टर उर्वशी मिगलानी से नवोदिता मिश्रा बातचीत कर रही थी।

0: भाई मनीषा, जिंदगी हंसने गाने के लिए है, और इस हंसती गाती जिंदगी में आकाशवाणी ने 90 सालों का रास्ता तय करते हुए हमारी बहनों के जीवन में एक मूक क्रांति उत्पन्न की है।
1: जी हाँ, आकाशवाणी का दिल्ली स्टेशन एक ऐसा केंद्र बन गया जहाँ कई आवाजों को पंख मिली और इतिहास रचा गया माइक के द्वारा।
0: बिल्कुल, और आज आकाशवाणी जन जन की आवाज बन चुकी है, और ये जो स्टेशन है कई स्टेशन का संचालन भी करता है आकाशवाणी।
1: जी हाँ, आकाशवाणी का बाह्य सेवा प्रभाग 100 से अधिक देशों में प्रसारण करता है, और ये बहुजन हिताय और बहुजन सुखाय के आदर्शों पर खरा उतरता है।
0: बिल्कुल, और यमुना जो हमारी बहनें हैं वो रेडियो के माध्यम से ही लोक रंजनी, ग्राम संसार, कृषि जगत, गृह लक्ष्मी के साथ साथ अपने पसंदीदा कार्यक्रम भी सुनती हैं।
1: जी हाँ, और इन कार्यक्रमों से उनका ज्ञान तो बढ़ता ही है रेनू, और साथ ही साथ मनोरंजन भी होता है। तो आकाशवाणी जैसे बढ़ता जा रहा है, बहता जा रहा है हवा के संग संग, वैसे ही हमारी बहनें भी गीत गुनगुनाती जा रही हैं।
0: बिल्कुल।

0: और मनीषा, आज भारत की वीरांगना क्रम में हम अपनी बहनों को बताएंगे कल्पना दत्ता के बारे में।
1: जी हाँ, अगर माथे से गुलामी का कलंक मिटाकर गर्व से जीना है तो अंग्रेजों से आज़ादी पाने के लिए क्रांतिकारियों का साथ दो और हमारे साथ लड़ो। ये शब्द थे 14 साल की कल्पना दत्ता के, जिन्होंने अंग्रेजों को सबक सिखाया।
0: बिल्कुल, और देखो छोटी सी उम्र में ही इन्होंने विद्यार्थियों को निडरता से आगे बढ़ने, गुलामी की सोच से उनको जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए भी प्रेरित किया था।
1: जी हाँ, इनका जन्म 27 जुलाई 1913 को चटगांव के श्रीपुर में हुआ था और चटगांव से शुरुआती इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराने के लिए इनकी ललक जाग उठी।
0: बिल्कुल, और चटगांव लूट के बाद वे अंग्रेजों की आंखों की किरकिरी भी बन गई थीं।
1: देश की आज़ादी में उनके योगदान को देखते हुए 1979 में इन्हें वीर महिला का खिताब दिया गया और बॉलीवुड में इनके जीवन पर खेले हम भी जान से नाम की फिल्म भी बनी है। तो ऐसी बहुत सी वीरांगनाएं हैं जिनसे आज भी हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं और इनको हम शत शत नमन करते हैं।
2: प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुंग हार दो, आन भान शान या की

जान ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। मन करे सो प्राण दे, जो मन करे सो प्राण ले वही तो एक सर्वशक्तिमान है। कृष्ण की पुकार है, ये भागवत का सार है।

सृष्टि की हवस नहीं, किसी पे कोई वश नहीं, क्या जिंदगी है ठोकरों पे मार दो, मौत अंत है नहीं तो मौत से भी क्यों डरे, ये जाके आसमान में दहाड़ दो।

ये सोच लो, वो दया का भाव या कि शौर्य का चुनाव या कि हार का वो भाव, तुम ये सोच लो, या कि पूरे भाल पर जला रहे विजय का लाल लाल ये गुलाल, तुम ये सोच लो, रंग केसरी हो या मृदंग केसरी।

की कल्पना में जिंदगी हो प्रेम गीत, उस कवि को आज तुम नकार दो। भीगती मसों में आज, फूलती रगों में आज, आग की लपट का तुम बघार दो।

0: रेनू, आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को भी मनाया जा रहा है और वर्तमान समय में हमारी जीवन शैली और भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत सी बीमारियां हमें घेर लेती
1: बिल्कुल
0: हैं, जिनमें एक जो मुख्य बीमारी है वो है बीपी, हाई बीपी। ये आम बीमारी बन चुकी है और इसे साइलेंट किलर भी कहा जाता है,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि इसके शुरुआती जो लक्षण होते हैं वो दिखते नहीं हैं, लेकिन धीरे धीरे ये दिल का दौरा, स्ट्रोक
1: बिल्कुल
0: और किडनी की बीमारियों का प्रमुख कारण बनती है।
1: बिल्कुल मनीषा। और देखो, बहुत सारी बीमारियां उच्च रक्तचाप के कारण ही होती हैं, इसीलिए हर साल 17 मई को विश्व उच्च रक्तचाप मनाया जाता है, ताकि हमारी बहनें और सभी लोग जागरूक हों। और मनीषा, जो इस बार की थीम रखी गई है वो यही रखी गई है कि उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, और यह तभी होगा जब हमारी बहनें अपना ब्लड प्रेशर नियमित रूप से मापेंगी और इसे नियंत्रित भी रखेंगी।
0: जी हाँ, जो सामान्य बीपी होता है रेनू वो होता है 120/80, लेकिन यदि 140/90 से ज़्यादा बीपी हो तो वो हाई बीपी की कैटेगरी में आ जाता है।
1: बिल्कुल।
0: तो इसके लिए हम क्या-क्या कर सकते हैं?
1: तो इसके लिए देखो, हमारी जो बहनें हैं वो एक तो नमक कम करें, नमक का सेवन कम से कम करें, नियमित व्यायाम करें, वजन नियंत्रण में रखें, और ताज़ी फल और सब्जियां खाएं। और इसके साथ साथ मनीषा, नियमित जांच बहुत ज़रूरी है।
0: बिल्कुल, और तनाव नहीं लेना है, नशा मुक्ति अपनानी है। तो चलिए, अगर सर चकरा जाता है ऐसे में तो ये एक प्यारा सा गीत सुनना है।
1: बिल्कुल।

0: मनीषा, हमारी बहनें अपनी रसोई में ऐसा भोजन बनाती हैं कि उंगलियां चाटते रह जाएं। और देखो, घर में जितने भी लोग फरमाइश करते हैं, अलग अलग तरह की सब्जियां भी बनाती हैं।
1: जी हाँ, फरमाइश तो करते हैं रेनू, लेकिन फरमाइशें कभी कभी बहुत महंगी भी बढ़ जाती हैं, है ना। महंगाई के इस दौर में किचन का बजट संभालना किसी चुनौती से कम नहीं है।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: क्योंकि हम सब्जी जब बाजार में खरीदने जाते हैं तो सोच के जाते हैं कि भाई इतने में आ जाएगी, उसका बजट बैठता है डबल। तो ऐसे में हमारी जो आवश्यकता बढ़ जाती है किचन गार्डन की, और किचन गार्डन एक ऐसा समाधान बन जाता है रेनू हमारे लिए कि जो घर बैठे खाली समय का सदुपयोग कर बिना रसायन वाली ताजी सब्जियों के लिए बेहद उपयुक्त।
0: बिल्कुल। और देखो, अब हमारी बहनें ये भी सोच रही होंगी कि किचन गार्डन का हमने सुझाव तो उन्हें दे दिया, पर वो उसको कैसे करें। तो देखो, बहुत ही आसान है। जब वो किचन गार्डन बनाए तो उसके लिए उन्हें कुछ भी ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है कि बाहर जाना पड़े, घर की बनाई खाद का प्रयोग करें। और सबसे बड़ी बात मनीषा, छोटे से शुरू करें। अगर जगह कम है तो पुरानी कोई बाल्टी हो गई, मिट्टी के घड़े हो गए, तो इनमें भी टमाटर, मिर्च और धनिया उगाया जा सकता है। बस धूप का एक छोटा सा कोना चाहिए होता है।
1: जी हाँ, और पौध की अच्छी ग्रोथ के लिए मिट्टी का सही होना ज़रूरी है। आप पास की किसी नर्सरी से मिट्टी लें, या फिर साधारण मिट्टी में भी गोबर की खाद मिला सकते हैं। और एक बात और है अहम रेनू, कि इसके लिए कृषि विज्ञान केंद्र भी लोगों को जागरूक कर रहा है।
0: बिल्कुल। और देखो, जैसे कि तुमने मिट्टी की बात कही, अगर उसमें कीड़े लग जाते हैं फिर तो कीड़ों से बचाव का भी बड़ा देसी नुस्खा है कि अगर कीड़े लग जाएं तो आपको घबराना नहीं है, नीम का पानी या राख का छिड़काव कर दें, वह पूरी तरह से सुरक्षित है और साथ ही बच्चों की सेहत के लिए भी अच्छा है।
1: जी हाँ, यानी कि पैसों की बचत और स्वादिष्ट हरी ताजी सब्जियां, यानी आम के आम, गुठलियों के दाम।
0: बिल्कुल।

0: और मनीषा, हमारी बहनें ये जो कार्यक्रम सुन रही हैं, हम बहनों को बता दें कि हमारे आज के इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं तुषार पाराशर।
1: जी हाँ, और कार्यक्रम के संयोजक हैं शिवनंदन लाल।
0: बिल्कुल,
1: और साथ ही कार्यक्रम का पता भी हम बता देते हैं, कृषि एवं गृह एकांश, कमरा नंबर 610, आकाशवाणी, नई दिल्ली 110001।
0: और अगर हमारी बहनें हमें मेल करना चाहती हैं तो हमें भेज सकती हैं feedback@fnh.gmail.com पर।
1: जी हाँ, और अब बात करते हैं रेनू प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की, जिसने हमारी कई बहनों को
0: बिल्कुल
1: आंसू मुक्त कर दिया है,
0: बिल्कुल
1: है ना। 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी और ये प्रमुख सामाजिक कल्याण योजना है। मुफ्त
0: बिल्कुल
1: कनेक्शन, गैस चूल्हा, सब्सिडी जो सीधे लाभार्थी के खाते में आती है।
0: बिल्कुल। और देखो मनीषा, इससे जो खतरनाक धुएं से भी हमारी बहनें बची रहती हैं, और एक तरह से देखा जाए तो जब वो धुएं से बची रहती हैं तो जो उनकी आंखों का कचरा है वो खराब नहीं होता, वो धुएं की राख से या धुएं की उसमें बहता नहीं है।
1: जी हाँ।

तो मनीषा, हमारी बहनों ने कार्यक्रम सुना और बातें तो करने का बहुत मन है, लेकिन बातें हम आगे भी करते रहेंगे। अभी घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि हम अपनी बहनों को बोलें, बहनों राम राम, राम।

0: अभी आपने सुना ग्रामीण बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम गृह लक्ष्मी। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। 1 बजने को है, कुछ ही पलों में आप समाचार सुनेंगे हिंदी और अंग्रेजी में।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर श्री मोदी स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि

0: दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
1: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है। इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, एआई, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटेन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी हैं। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं हैं। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को उचित नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक चलेगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। सरकार ने बुधवार को कीमती धातुओं पर आयात शुल्क 6% से बढ़ाकर 15% कर दिया था। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेनें चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। टेनिस में यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना ने इटालियन ओपन का महिला सिंगल्स खिताब जीत लिया है। 7वीं वरीयता प्राप्त एलिना ने फाइनल में अमरीका की कोको गॉफ को हराया। आज इटली के यानिक सिनर का मुकाबला नॉर्वे के कैस्पर रूट से होगा। बैंकॉक में थाईलैंड ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष डबल्स के फाइनल में भारत के सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी का मुकाबला इंडोनेशिया के लिया रूली कार्नेंडो और डेनियल मार्टिन की जोड़ी से जारी है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

एक ही फिल्म से, और मैं हूं आपकी दोस्त नंदा इस्सर, लेकर आई हूं हिंदी सिनेमा की एक ऐसी फिल्म जिसमें है प्यार, परिवार, गलतफहमियां, भावनाएं और संगीत का ऐसा जादू जो आज भी दिलों में उतर जाता है। जी हाँ दोस्तों, आज की हमारी महफिल सजी है साल 1969 में रिलीज हुई एक बेहद खूबसूरत फिल्म अनजाना के नाम। एक ऐसी फिल्म जिसने अपने समय में दर्शकों का खूब मनोरंजन किया और जिसके गीत आज भी संगीत के दीवानों की जुबान पर रहते हैं। फिल्म अनजाना का निर्देशन किया था मशहूर निर्देशक मोहन कुमार ने, और फिल्म के मुख्य किरदारों में थे हिंदी सिनेमा के जुबली स्टार राजेंद्र कुमार, खूबसूरत और जुबली अदाकारा बबीता, दमदार अभिनेता प्राण, खतरनाक अंदाज वाले प्रेम चोपड़ा और ममता की मिसाल कही जाने वाली निरूपा रॉय। और दोस्तों, अब जिक्र उस चीज़ का जिसके बिना फिल्में अधूरी लगती हैं, यानी संगीत। फिल्म के संगीतकार थे मशहूर जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जिनके संगीत ने इस फिल्म को और भी यादगार बना दिया। तो क्यों ना शुरुआत की जाए फिल्म के एक बेहद प्यारे से गीत से, मोहब्बत की खुशबू से ये भरा नगमा जिसे सुनते ही पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। तो आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर ने।

0: आह, क्या बात है दोस्तों। पुराने गीतों की मिठास ही कुछ और होती है, और इन गीतों का आनंद आप सिर्फ और सिर्फ इंद्रप्रस्थ चैनल पर ही ले सकते हैं। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं।
1: कम ब्याज पे लोन चाहिए, वो भी ऐप से। वाह, फसा।
2: अनजान ऐप से बचें।
3: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त नंदा इस्सर आपके साथ, और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम एक ही फिल्म से। अब बात करते हैं फिल्म अनजाना की कहानी के बारे में। कहानी है एक सीधे साधे नेक दिल नौजवान की, जिसका किरदार निभाया है राजेंद्र कुमार ने। उनका अंदाज हमेशा की तरह सादगी और भावनाओं से भरा हुआ है। राजेंद्र कुमार उस दौर के ऐसे अभिनेता थे जिनकी फिल्मों को जुबली हिट कहा जाता था, क्योंकि उनकी फिल्में लंबे समय तक सिनेमाघरों में चलती थी। फिल्म में उनकी मुलाकात होती है खूबसूरत और चंचल लड़की से, यानी बबीता से। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ती हैं, बातचीत होती है, और कब दोस्ती प्यार में बदल जाती है इसका एहसास उन्हें भी नहीं होता। लेकिन प्यार की राह इतनी आसान कहाँ होती है। कहानी में प्रवेश होता है लालच, गलतफहमियां और साजिशों का, और यहीं से फिल्म में आता है बड़ा मोड़। लेकिन कहानी आगे बढ़े उससे पहले सुनते हैं फिल्म का एक और खूबसूरत गीत, जिसे गाया है मुकेश और लता मंगेशकर ने।

0: अनजाना
1: नहीं
0: दीवाना,
1: दीवाना नहीं अनजाना।
2: जी हाँ, वो कौन है, वो कौन है जो आपको 1:10 पर फिल्मी कहानी के साथ साथ गाने सुनवाता है, बोलो बोलो। जी हाँ, वो है सिर्फ और सिर्फ इंद्रप्रस्थ चैनल। तो कहानी को जारी रखेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है।
4: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
2: दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक ही फिल्म से प्रोग्राम में। आज हम बात कर रहे हैं साल 1969 की फिल्म अनजाना की, और मैं हूं आपकी दोस्त नंदा इस्सर, और आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रोग्राम एक ही फिल्म से। फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कहानी में आता है एक बड़ा मोड़, और इस मोड़ को और ज़्यादा दिलचस्प बनाते हैं हिंदी फिल्मों के मशहूर खलनायक प्रेम चोपड़ा। उनकी मुस्कुराहट में भी एक चलाकी दिखाई देती थी, और फिल्म अनजाना में भी उनका किरदार कहानी में उलझने पैदा करता है। और दोस्तों, फिल्म में एक मजबूत

उपस्थिति दर्ज कराता है। प्राण साहब, अब अगर प्राण किसी फिल्म में हो तो समझ जाइए कि अभिनय अपने उच्च स्तर पर होगा, कभी खलनायक कभी चरित्र अभिनेता। हर भूमिका में जान डाल देने वाले प्राण ने फिल्म अनजाना में भी अपने अभिनय का शानदार रंग दिखाया है। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का अगला बेहद प्यारा सा गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर ने।

इस खूबसूरत से गीत के बाद दोस्तों को बेसब्री से इंतज़ार होगा अपने मेल्स का, जो हम मेल शामिल कर लेते हैं। दोस्तों, आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है, इसके लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। जो श्रोता अभी हमारे साथ जुड़े हैं, वो कृपया हमारा ईमेल पता नोट कर लें। हमारा ईमेल पता है ip.radiodelhi@gmail.com। तो ये पत्र हमें मिला है, ये ईमेल हमें मिला है। प्रिय प्रसारक जी, नंदा जी, नमस्कार। नमस्कार आपको भी। फिल्म अनजाना, जिसमें राजेंद्र कुमार, बबीता, निरुपा रॉय की लाजवाब जोड़ी है, बिल्कुल सही आपने लिखा। ये पत्र, ये मेल हमें मिला है वीरमगाम जंक्शन, अजीत भवसार, प्रमिला भवसार, भावेश सनी, जैमिन कुमार भवसार जी ने हमें ये मेल भेजा है। अगला मेल हम शामिल कर लेते हैं। ये मेल हमें भेजा है सुर संगम रेडियो श्रोता संघ ने हमें ये मेल भेजा है। राजेंद्र कुमार, बबीता अभिनीत 1969 की फिल्म अनजाना एक बेहतरीन रोमांटिक ड्रामा है, बिल्कुल आपने सही कहा। और मेल भेजने के लिए हमें आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मेल के साथ आपने इस फिल्म की कहानी भी हमें लिखकर भेजी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगला मेल हम शामिल कर लेते हैं आर कुमार जी का। इन्होंने आर कुमार जी ने ये भेजा है हमें मेल वडिंग खेड़ा पंजाब से, और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने हमें ये मेल भेजा है और लिखा है कि प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है। अगला मेल हम शामिल करते हैं सुरेश नारंग जी का। ये मेल हमें भेज रहे हैं सहारनपुर चंद्र नगर से। इनके साथ हैं आशु नारंग, सोनाली। इन्होंने कहा है कि कोई फिल्म का गीत सुना दें। ये कोई भी फिल्म का गीत वाला प्रोग्राम नहीं है, ये है एक ही फिल्म से, और आप फिल्म अनजाना की कहानी के साथ साथ उसी फिल्म के गीत सुन रहे हैं, और कृपया हमें बताएं कि आपको ये प्रोग्राम कैसा लग रहा है। तो और भी मेल शामिल करेंगे, पहले बात कर लेते हैं इस फिल्म के बारे में और कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक आपने जाना कि प्यार की राह में गलतफहमियां और मुश्किलें दस्तक दे चुकी हैं, और यहाँ फिल्म में एक बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है हिंदी सिनेमा की माँ कही जाने वाली निरूपा रॉय। फिल्म अनजाना में उनका अभिनय कहानी को भावनात्मक गहराई देता है। गलतफहमियां इतनी बढ़ जाती हैं कि रिश्ते टूटने की कगार पर पहुंच जाते हैं। लेकिन दोस्तों, हर अच्छी कहानी की तरह अनजाना भी हमें यही सिखाती है कि सच्चाई देर से सही सामने ज़रूर आती है। धीरे धीरे कहानी की सारी उलझनें सुलझने लगती हैं, सच सामने आता है, कई गलतफहमियां दूर होती हैं, और जिन रिश्तों में दूरी आ गई थी वो फिर से करीब आने लगते हैं। तो दोस्तों, इस फिल्म का आनंद लेने के लिए आपको ये फिल्म एक बार ज़रूर देखनी चाहिए। और फिल्म का संदेश भी बेहद खूबसूरत है कि प्यार और भरोसा अगर सच्चा हो तो हर मुश्किल पार किया जा सकता है। तो आइए सुनते हैं इस फिल्म का एक और प्यारा सा गीत, जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी और

बहुत बहुत धन्यवाद कुलदीप गुप्ता जी आपका, और इन्होंने मेल हमें भेजा है बघोली बाराबंकी उत्तर प्रदेश से हमें ये मेल मिला है। अगला मेल हमें मिला है धर्मेंद्र चिप्पा जी का, इनको भी प्रोग्राम बहुत पसंद आ रहा है, फिल्म अनजाना बेहतरीन जानकारी, धन्यवाद। भोपालगढ़ राजस्थान से इनके महेंद्र चिप्पा और इनके साथ है कपिल चिप्पा जी ने हमें ये मेल भेजा है।

समय हमें इजाज़त नहीं दे रहा है, इसलिए उम्मीद है आपको हमारा आज का प्रोग्राम एक ही फिल्म से पसंद आया होगा। अब विदा लेने का समय है, लेकिन अगली बार एक ही फिल्म से में फिर मुलाकात होगी हिंदी सिनेमा की एक और यादगार फिल्म के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। मैं हूं आपकी दोस्त नंदा इस्सर, सुनते रहिए इंद्रप्रस्थ चैनल। नमस्कार।

एक और मेल हम शामिल कर लेते हैं। एक ही फिल्म से प्रोग्राम इनको बहुत पसंद आ रहा है, इसके लिए धन्यवाद। उम्दा जानकारी मिली, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेल हमें मिला है पंजाजी नवकर जी, और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने हमें ये मेल भेजा है, नलेश्वर नगर नारवेल महाराष्ट्र से।

आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कलीम अहमद। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी स्वीडन के दो दिन के दौरे पर आज सहपहर गोथेनबर्ग पहुंचने वाले हैं, जहां वो स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक का जायज़ा लेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने बाहमी ताल्लुकात को क्लीदी साझेदारी की सतह पर पहुंचा दिया है। अहम शोबों में इश्तराक को मुस्तहकम करने के लिए 17 समझौतों पर दस्तखत किए गए। भारत ने आबनाए हुरमुज में कमर्शियल बहरी जहाज़ों पर हमलों की मजम्मत की है और इसे नाकाबिले कबूल करार दिया है। आलमी सेहत तंजीम ने कांगो और युगांडा में एबोला बीमारी फैलने को बैन अलाक्वामी तशवीश की हामिल सेहत आम्मा की इमरजेंसी करार दिया है। मौसमियात महकमे ने अंडमान निकोबार जजायर, मगरबी बंगाल के ज़ैली हिमालयी खित्ते और सिक्किम में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। और नेपाल के कोह पैमा कामी रीटा शेरपा ने खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं मरतबा माउंट एवरेस्ट को सर करके तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। अब खबरें।

0: तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 5 मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले में स्वीडन के 2 रोज़ा दौरे पर गोथेनबर्ग पहुंचने वाले हैं। इस साल जनवरी में भारत और यूरोपीय यूनियन के दरमियान आज़ाद तिजारत का समझौता होने के बाद से जनाब मोदी का यूरोप का ये पहला दौरा है। वज़ीर आज़म मुत्तहिदा अरब अमारात और नीदरलैंड्स के दौरे के बाद स्वीडन जा रहे हैं। मज़ीद तफसील हमारे नामा निगार से।
1: अपने इस दौरे में वज़ीर आज़म मोदी स्वीडन के वज़ीर आज़म उल्फ क्रिस्टेंसन से मुलाकात करेंगे, जिसके दौरान वो बाहमी ताल्लुकात के तमाम तर पहलुओं का जायज़ा लेंगे और दो तरफा तिजारत में इजाफे के लिए इश्तराक के नए रास्ते तलाश करेंगे। दोनों रहनुमा माहौलियात के लिए साजगार तवानाई की जानिब मुंतकली, मसनूई जहानत AI, उभरती हुई टेक्नोलॉजीज, स्टार्टअप्स, मजबूत सप्लाई चेन्स, दिफा, खला, मौसमियात के लिए इकदामात और अवाम से अवाम के राब्तों से मुतालिक शोबों में तावुन के बारे में भी तबादला ख्याल करेंगे। इसके अलावा दोनों वज़रा आज़म यूरोपीय कमीशन की सदर इज़्ज़त माब मोहतरमा उर्सुला वॉन डेर लेयन के साथ यूरोप के मुमताज़ कारोबारी रहनुमाओं के एक क्लीदी फोरम यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री से भी खिताब करेंगे। पूरे स्वीडन के कारोबारी घरानों में वज़ीर आज़म मोदी के इस दौरे से काफ़ी जोश व खरोश देखा जा रहा है और वो इस दौरे के नताइज से बहुत पुरउम्मीद हैं। स्वीडन के शहर गोथेनबर्ग से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: वज़ीर आज़म के दौरे के दूसरे मरहले में कल भारत और नीदरलैंड्स ने अपने बाहमी ताल्लुकात को क्लीदी साझेदारी की सतह पर ले जाने से इत्तेफाक किया था। नीदरलैंड्स के शहर हेग में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और नीदरलैंड्स के उनके हमनसब रॉब जेटेन के दरमियान बातचीत के बाद ये इत्तफाक़ी राय हुआ। दोनों मुल्कों ने दिफा, अहम मादनियात और दीगर क्लीदी शोबों में इश्तराक बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर दस्तखत किए। दोनों उज़राए आज़म ने मग़रबी एशिया की सूरत हाल, ख़ासतौर पर आलमी तवानाई सप्लाई निज़ाम और तजारती नेटवर्क में रुकावट पड़ने से खित्ते और दुनिया के दीगर हिस्सों में पड़ने वाले इसके संगीन मुज़मिरात पर गहरी तशवीश का इजहार किया। उमूरे दाखिला और इमदाद बाहमी महकमे के मरकज़ी वज़ीर अमित शाह ने मसनूई ज़हानत और डीप टेक को मुस्तकबिल की मईशत के अहम सुतून करार दिया है। वो आज अहमदाबाद में एक कैंपस के इफ्तिताह के मौके पर इजहार ख्याल कर रहे थे। जनाब अमित शाह ने कहा कि भारत दुनिया के हर उभरते हुए शोबे में एक सरकर्दा मुल्क बन गया है।
2: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। AI और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: जनाब अमित शाह गुजरात के 2 दिन के दौरे पर गए हुए हैं। वो आज गांधीनगर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन के इनोवेशन और इनक्यूबेशन मरकज़ का इफ्तिताह भी करने वाले हैं। मर्दुमशुमारी 2027 के पहले मरहले के तहत 5 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाके में मकानों की फहरिस्त तैयार करने और मकानों की गिनती के लिए घर घर जाकर फील्ड कार्रवाई का अमल शुरू हो गया है। इनमें राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली कौमी राजधानी खित्ते में दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का इलाका शामिल है। पूरे मुल्क में जारी मर्दुमशुमारी के अमल के तहत ऐसा किया जा रहा है। इधर आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादर और नगर हवेली, दमन, दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी मुतल्लिका अहलकार घर घर जाकर मकानों की फहरिस्त तैयार कर रहे हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। भारत ने अबनाए हुरमुज़ में कमर्शियल बहरी जहाज़ों पर हमलों की सख्त मजम्मत की है और इसे नाकाबिले कबूल करार दिया है। अक्वामे मुत्तहिदा में भारत के मुस्तकिल नुमाइंदे पी हरीश ने कहा कि सिविलियन अमले को निशाना बनाए जाने और जहाज़ रानी की आज़ादी में खलल डालने को सही नहीं ठहराया जा सकता। वो आलमी तवानाई और सप्लाई निज़ाम के तहफ्फुज़ के बारे में अक्वामे मुत्तहिदा इक्तसादी और समाजी कौंसिल की खसूसी मीटिंग में इजहार ख्याल कर रहे थे। ओमान के साहिल के नज़दीक भारतीय परचमबरदार कमर्शियल बहरी जहाज़ पर हमले के चंद रोज़ बाद जनाब हरीश का ये बयान सामने आया है। सेहत की आलमी तंजीम WHO ने अवामी जमहूरिया कांगो और युगांडा में एबोला बीमारी के फूट पड़ने को अवामी सेहत से मुतालिक बैन अल-अक़वामी तशवीश वाली हंगामी सूरत हाल करार दिया है।

0: WHO के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस एधनोम गेब्रेसिस ने 300 मुश्तबह केसों और 88 अमवात की खबर मिलने के बाद इस फैसले का ऐलान किया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर WHO ने अलबत्ता इस बात की भी वजाहत की है कि एबोला फूट पड़ने का ये मामला कोविड-19 आलमी वबा जितना मोहलिक नहीं है। इसके साथ ही उसने बैनुल-अक़वामी सरहदें बंद न करने की भी सलाह दी है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी इस महीने की 31 तारीख को आकाशवाणी पर मन की बात प्रोग्राम में मुल्क और बैरून मुल्क के लोगों से अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। ये माहाना रेडियो प्रोग्राम का 134वां नशरिया होगा। आप भी टोल फ्री नंबर 1800-11-7800 के ज़रिए इस प्रोग्राम के लिए अपनी राय और तजवीज़ें भेज सकते हैं। इसके अलावा आप नरेंद्र मोदी ऐप या माई गोव ओपन फोरम के ज़रिए भी अपनी तजवीज़ें ऑनलाइन शेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ 1922 पर मिस्ड कॉल करके SMS के ज़रिए मौसूल होने वाले लिंक को फॉलो करते हुए अपनी तजवीज़ें सीधे वज़ीर आज़म को भेज सकते हैं। मन की बात के इस नशरिये के लिए तजवीज़ें इस महीने की 29 तारीख तक कबूल की जाएंगी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड IGL ने कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG की कीमत में 1 रुपये का इजाफा किया है। इस इजाफे के बाद दिल्ली में अब 1 किलोग्राम CNG 80.09 रुपये की होगी, जबकि गाज़ियाबाद और नोएडा में इसकी कीमत 88.70 रुपये होगी। आज हाइपरटेंशन की रोकथाम का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस साल का मौजू है मिलकर हाइपरटेंशन को कंट्रोल करें, अपने ब्लड प्रेशर की बाकायदगी से जाँच कराएँ। ये दिन हाइपरटेंशन के ताल्लुक से बेदारी पैदा करने के महीने का एक हिस्सा है, जिसका मकसद ब्लड प्रेशर बढ़ने के बारे में आलमी सतह पर बेदारी बढ़ाना, इसकी रोकथाम, तशखीस और इसे कंट्रोल करने को बढ़ावा देना है। भारतीय मौसमियात महकमे ने अंडमान निकोबार जजायर मगरबी बंगाल के ज़ैली हिमालयी खत्ते और सिक्किम में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश के इम्कान के मद्देनज़र ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। नेपाल के कोहपैमा कामी रीटा शेरपा ने रिकॉर्ड 32वीं मरतबा माउंट एवरेस्ट को सर करके तारीख साज कारनामा अंजाम दिया है। 56 साला कोहपैमा ने दुनिया की बुलंदतरीन चोटी को सबसे ज़्यादा बार सर करने का खुद अपना रिकॉर्ड तोड़ दिया। नेपाल के कोशी सूबे के रहने वाले कामी रीटा ने पहली बार 1994 में माउंट एवरेस्ट को सर करने में कामयाबी हासिल की थी। खास खास खबरें एक बार फिर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी स्वीडन के 2 दिन के दौरे पर आज सहपहर गोथेनबर्ग पहुंचने वाले हैं, जहां वो स्वीडन के अपने हममनसब उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ बातचीत में मुख्तलिफ शोबों में इश्तराक का जायज़ा लेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने बाहमी ताल्लुकात को क्लीदी साझेदारी की सतह पर पहुँचा दिया है। अहम शोबों में इश्तराक को मुस्तहकम करने के लिए 17 समझौतों पर दस्तखत किए गए। भारत ने आबनाए हुरमुज में कमर्शियल बहरी जहाज़ों पर हमलों की मजम्मत की है और इसे नाकाबिले कबूल करार दिया है। आलमी सेहत तंजीम ने कांगो और युगांडा में एबोला बीमारी फैलने को बैनुल-अक़वामी तश्वीश की हामिल सेहत आम्मा की इमरजेंसी करार दिया है। मौसमियात महकमे ने अंडमान निकोबार जजायर मगरबी बंगाल के ज़ैली हिमालयी खत्ते और सिक्किम में कहीं कहीं शदीद से लेकर बहुत शदीद बारिश होने की पेशगोई की है। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ।
1: Good afternoon. This is Akashwani and I'm Shagun Chopra with the midday news. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to reach Gothenburg this afternoon on a 2-day visit to Sweden. Will hold talks with Swedish Prime Minister Ulf Kristersson to review cooperation in trade, green transition, AI and defence. India and Netherlands elevate bilateral relationship to strategic partnership. 17 agreements signed to strengthen collaboration in key areas. India condemns attacks on commercial shipping in Strait of Hormuz as unacceptable. Says disrupting freedom of navigation cannot be justified. World Health Organization declares Ebola outbreak in Congo and Uganda a public health emergency of international concern. IMD issues heavy to very heavy rainfall alert at isolated places over Andaman and Nicobar Islands, sub-Himalayan West Bengal and Sikkim today. And Nepali mountaineer Kami Rita Sherpa creates history by climbing Mount Everest for 32nd time, breaking his own record. And now the news in detail.

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेयन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी।
1: प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर स्वीडन के उद्योग जगत में उत्साह का माहौल है और कारोबारी समुदाय इस दौरे के परिणामों को लेकर काफी आशावान है। आकाशवाणी से बातचीत में इंडियन स्वीडन बिजनेस काउंसिल के प्रमुख कार्यकारी अधिकारी श्री रॉबिन सुखिया ने जन से जन संपर्कों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि भारतीय प्रधानमंत्री की दूसरी बार मेजबानी करना स्वीडन के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का विषय है।
2: मैं एक बिजनेस काउंसिल की सोच के साथ काम करता हूं, जहां लोगों और मीटिंग्स को सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है। हर मीटिंग हमारे लिए आगे बढ़ने का एक नया कदम होती है। उनके स्वीडन आने से हमें बेहद खुशी और गर्व है। वे जिन क्षेत्रों पर काम कर रहे हैं उनकी जल्द घोषणा होने की उम्मीद है। इससे कई उद्योगों को आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। मुझे भरोसा है कि इस आर्थिक सहयोग से हमें बेहतर और मजबूत परिणाम देखने को मिलेंगे।
1: इस बैठक में दोनों देशों के बीच समग्र द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की जा सकती है और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करी जा सकती है। दोनों नेता हरित परिवर्तन, AI, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, मजबूत सप्लाई चेन, रक्षा, अंतरिक्ष, क्लाइमेट एक्शन और जन से जन संपर्कों जैसे क्षेत्रों में सहयोग की संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर सकते हैं। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: कल अपनी यात्रा के दूसरे चरण में भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक स्तर पर ले जाकर 17 समझौते किए। ये समझौते रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित हैं। नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन के साथ बातचीत में प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया और विशेषकर ऊर्जा आपूर्ति में बाधा से विश्व व्यापार पर पड़ने वाले प्रभाव पर चिंता प्रकट की। श्री मोदी और रॉब येटन ने कहा कि हॉर्मुज की खाड़ी से होकर जहाज़ों की बेरोकटोक आवाजाही होनी चाहिए और इसे नियंत्रित करने का कोई भी प्रयास स्वीकार्य नहीं है। दोनों नेताओं ने यूक्रेन रूस संघर्ष पर भी चर्चा की। वे यूक्रेन समस्या का समाधान बातचीत और राजनयिक प्रयासों से किए जाने पर सहमत हुए। बातचीत के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने व्यापार और निवेश, रक्षा और सुरक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक रोडमैप जारी किया। इनमें सेमीकंडक्टर, अंतरिक्ष, यांत्रिक मेधा और क्वांटम कंप्यूटिंग के क्षेत्र के में सहयोग भी शामिल है। दोनों नेताओं ने ग्रीन हाइड्रोजन के विकास के लिए भी साझा रोडमैप जारी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया।
3: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रॉब येटन ने कहा कि भारत के साथ संबंधों का महत्व लगातार बढ़ रहा है और दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक और रणनीतिक सहयोग जरूरी है। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। कुछ दिन पहले ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाले एक जहाज पर हमला हुआ था। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रेमी सिटी कैंपस का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है।
4: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: श्री अमित शाह ने गांधीनगर में राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इनक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन भी किया। वे गांधीनगर निगम के विकास कार्यों का भी उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। श्री शाह गांधीनगर जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड मधुर डेयरी के नवनिर्मित 5 लाख लीटर क्षमता वाले संयंत्र का भी उद्घाटन करेंगे। श्री शाह 2 दिन के गुजरात दौरे पर हैं। मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
5: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग एएसआई ने मध्य प्रदेश के धार जिले में भोजशाला परिसर में हिंदुओं को पूजा पाठ और अन्य कार्यक्रमों के लिए प्रवेश की अनुमति दे दी है। इससे पहले मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने भोजशाला को देवी सरस्वती का मंदिर घोषित किया था। उच्च न्यायालय की इंदौर पीठ ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के 7 अप्रैल 2003 के उस आदेश को भी रद्द कर दिया था जिसमें मुसलमानों को हर शुक्रवार को भोजशाला परिसर के भीतर नमाज अदा करने की अनुमति दी गई थी। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपये की बढ़ोतरी की है। अब दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80.09 रुपये, गाजियाबाद और नोएडा में 88.70 रुपये और गुरुग्राम में 85.12 रुपये हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में भी सीएनजी की कीमतों में 2 रुपये की वृद्धि की गई थी। सरकार ने चांदी के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने एक अधिसूचना में कहा है कि सोने और प्लेटिनम से मढ़ी हुई चांदी सहित चांदी के आयात की नीति को संशोधित करके मुक्त से प्रतिबंधित कर दिया गया है। दिल्ली सरकार महिला स्व सहायता समूहों और स्टार्टअप्स को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार स्वयं इन ऋणों की गारंटर बनेगी। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार ये फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। इसके लिए प्रत्येक सोमवार को 24 अतिरिक्त मेट्रो ट्रेन चलाई जाएंगी। केरल से दिल्ली आ रही तिरुवनंतपुरम हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस के B1 कोच में आज तड़के आग लग गई। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, कुछ रेलगाड़ियों की आवाजाही पर असर पड़ा है। ये घटना मध्य प्रदेश के रतलाम में कोटा डिवीजन के लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच तड़के 5:20 पर हुई। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कांगो और युगांडा में इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के लिए आपात स्थिति घोषित किया है। इस बीमारी से 300 से अधिक लोग पीड़ित हैं और 88 की मौत हुई है। हालांकि संगठन ने स्पष्ट किया है कि इबोला का संकट COVID-19 जैसी महामारी जैसा नहीं है। संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं को बंद न करने की सलाह भी दी है। इबोला के इलाज के लिए फिलहाल कोई टीका या उपचार उपलब्ध नहीं है। आज विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है। इसका उद्देश्य उच्च रक्तचाप के बारे में वैश्विक जागरूकता, रोकथाम, पहचान और नियंत्रण को बढ़ावा देना है। इस वर्ष का विषय है उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें, नियमित रूप से अपने रक्तचाप की जांच करें और इस बीमारी को हराएं। आज विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस भी मनाया जा रहा है। आज ही के दिन 1865 में पेरिस में संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना की गई थी। इस दिवस का उद्देश्य इंटरनेट और इससे जुड़ी तकनीकों के सकारात्मक उपयोग को बढ़ावा देना है। नेपाल के पर्वतारोही कामी रीता शेर

0: ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए 32वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर इतिहास रच दिया है। 56 वर्षीय कामी रीता एवरेस्ट पर सबसे अधिक बार चढ़ाई करने वाले शेरपा हैं। इस बीच पर्वत रानी के नाम से मशहूर लाखपा शेरपा ने भी एवरेस्ट पर लगातार 11वीं बार सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली पहली नेपाली महिला होने का अपना रिकॉर्ड बरकरार रखा है। विदेश राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के साथ अपनी साझेदारी के माध्यम से डोमिनिका के कलिनागो समुदाय को सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। श्री मार्गरीटा ने डोमिनिका के कलिनागो क्षेत्र का दौरा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि भारत डोमिनिका के साथ साझा लोकतांत्रिक मूल्यों और दक्षिण दक्षिण सहयोग पर आधारित अपनी मैत्री को और प्रगाढ़ कर रहा है। मौसम विभाग ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों और सिक्किम में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, दक्षिण कर्नाटक के भीतरी इलाकों, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कारैक्काल, केरल, माहे और लक्षद्वीप में भी भारी बारिश हो सकती है। अगले दो दिन तक बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, ओडिशा, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कोंकण, गोवा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर पूर्वी राज्यों में बिजली और तेज हवाओं के साथ तूफान की संभावना है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक लू की स्थिति रह सकती है। मध्य प्रदेश में इंदौर और उज्जैन भीषण गर्मी की चपेट में हैं। कल खंडवा और नौगांव में तापमान 44 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया, जबकि प्रदेश के 15 शहरों में पारा 43 डिग्री या उससे अधिक रहा। एक रिपोर्ट।
1: मौसम विभाग के अनुसार आज रतलाम, खरगोन और खंडवा में तेज लू चलने की संभावना है और तापमान 44 डिग्री के पार जा सकता है। इसके अलावा इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, छतरपुर समेत प्रदेश के दर्जन भर से ज्यादा जिलों में लू का असर बना रहेगा। मौसम वैज्ञानिकों ने लोगों को दोपहर 12 से 3 बजे के बीच जरूरी काम होने पर ही घर से निकलने की सलाह दी है। साथ ही दिन भर पर्याप्त पानी पीते रहने और शरीर को हाइड्रेट रखने की अपील भी की है। मौसम विभाग के मुताबिक 19 मई तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में भीषण गर्मी का दौर जारी रहेगा। आज कहीं भी बारिश का अलर्ट नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी भोपाल।
0: अभी प्राप्त समाचार के अनुसार रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। और अब खेल खबरें। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में दोपहर बाद 3:30 बजे से पंजाब किंग्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। इधर दिल्ली में शाम 7:30 बजे से राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स आमने सामने होंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर स्वीडन की 2 दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंचेंगे। वे स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ व्यापार, प्रदूषण रहित तकनीक अपनाने, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रक्षा क्षेत्र में सहयोग पर वार्ता करेंगे। भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए और भारत ने हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यापारिक जहाजों पर हमलों की निंदा करते हुए उन्हें अस्वीकार्य बताया। कहा, जहाजों की बेरोक टोक आवाजाही में बाधा उचित नहीं। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। कुछ ही पलों में आप सुनेंगे हमारा अगला कार्यक्रम एक ही कलाकार।

0: और इंतजार की घड़ियां हुई दोस्तों समाप्त, और लेकर हाजिर हूं मैं अरुणेश कुमार आपका पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार। स्वीकार कीजिए मेरा नमस्कार।
1: इंतजार की
0: बैकग्राउंड में चल रहे इस गाने को सुनकर आपने अंदाजा लगा ही लिया होगा कि आज के हमारे कलाकार कौन हैं। जी हां, आज के हमारे कलाकार हैं जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक प्रकाश मेहरा, और आज हम उनकी पुण्यतिथि मना रहे हैं। तो दोस्तों, आज प्रकाश मेहरा साहब के बारे में बहुत सारी बातें होंगी, उनकी फिल्मों के बारे में, उनके करियर के बारे में और उनकी ज़िंदगी के बारे में। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह से उन्होंने अमिताभ बच्चन को एंग्री यंग मैन की उपाधि दिलाई। बहुत सारी होंगी बातें, बस आप बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए अपना पसंदीदा कार्यक्रम एक ही कलाकार अपने रेडियो दोस्त अरुणेश कुमार के साथ।

दोस्तों अभी आप सुन रहे हैं एक ही कलाकार कार्यक्रम, और ये जो गाना आप सुन रहे हैं ये बता रहा है यारी दोस्ती मित्रता के महत्व को। और इस गाने को गाया है मन्ना डे साहब ने, संगीत दिया है कल्याण जी आनंद जी ने, और इस गाने को लिखा है गुलशन बावरा ने। और ये फिल्म जंजीर का गाना है जो कि 1973 में रिलीज हुई थी, और इस फिल्म के डायरेक्टर थे प्रकाश मेहरा साहब। तो दोस्तों आज बात प्रकाश मेहरा की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज उनकी पुण्यतिथि है, और आज हमारे कार्यक्रम एक ही कलाकार में प्रकाश मेहरा के बारे में बातें होंगी। तो मेहरा साहब का जन्म 13 जुलाई 1939 को उत्तर प्रदेश के एक छोटे से शहर बिजनौर में हुआ था। वे भारतीय सिनेमा के जाने माने फिल्म निर्माता और निर्देशक थे, और कुछ लोग तो उन्हें अमिताभ बच्चन के गॉडफादर के रूप में भी जानते हैं। अब ये बात इसलिए भी है क्योंकि इन दोनों की जोड़ी ने कई फिल्मों में बहुत ही अधिक जानदार, शानदार, दमदार और जोरदार पहचान बनाई है। और अमिताभ बच्चन को एक तरह से एंग्री यंग मैन की भूमिका जंजीर फिल्म के बाद ही मिली है। और अगर बात करें प्रकाश मेहरा साहब की, उनके करियर की, उनके जीवन की शुरुआत की, तो वे अपने घर, अपने गांव जो कि बिजनौर शहर में वो था, वहां से वो सिर्फ अपनी जेब में केवल 13 रुपए लेकर मुंबई की ओर गए। उन्होंने बहुत संघर्ष किया, रेलवे स्टेशन पर भूखे सोए। सपनों के शहर मुंबई में उन्हें कुछ पता नहीं था कि नियति उन्हें कहाँ ले जाएगी, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप मेहनत करते हैं, आपके अंदर जोश, जज्बा और जुनून है अपने काम को लेकर, अपने करियर को लेकर, तो एक न एक दिन पूरी कायनात आपको सफल बनाती है, भले ही आपको कितना भी अधिक लंबा संघर्ष करना पड़े। और उनकी जो है शुरुआत हुई थी 1968 में, जब उन्हें पहली बार एक ब्रेक मिला और उनकी किस्मत बदल गई जब उन्होंने शशि कपूर और बबीता अभिनीत फिल्म हसीना मान जाएगी, इस फिल्म के साथ अपने फिल्मी निर्देशन की शुरुआत की। और ये फिल्म अपने गीत संगीत के साथ साथ बहुत ही बड़ी सुपरहिट साबित हुई बॉक्स ऑफिस पर, और इसके बाद तो जैसे सफलता की राह पर उनके कदम आगे बढ़ते ही गए, और उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और इसके बाद 1971 का वो साल आया जब उन्होंने मेला नाम की एक फिल्म का निर्देशन किया जो कि फिरोज़ खान और संजय खान अभिनीत एक फिल्म थी, और इस फिल्म ने भी बहुत अधिक सफलता प्राप्त की। इसके बाद 1972 में आई समाधि, जिसमें धर्मेंद्र, आशा पारेख और जया बहादुरी ने अभिनय किया था। और इस फिल्म की सफलता के बाद प्रकाश मेहरा साहब जाने माने फिल्म डायरेक्टर बन गए। तो आगे बढ़ने से पहले लता मंगेशकर जी की आवाज़ में एक बहुत ही प्यारा सा, दिल को भा जाने वाला, दिल को छू जाने वाला गाना आपको सुनाते हैं कि दिल तो है दिल, दिल का एतबार क्या कीजिए।

और इसी बीच आपके मैसेज, आपके संदेश लगातार हमारे पास आ रहे हैं। मेरठगंज से दिग्दर्शन और कविता जी ने लिखा है कि प्रकाश मेहरा जी पर केंद्रित आज का कार्यक्रम बेहद ही अच्छा लग रहा है, आपकी बेहतरीन और उत्तम प्रस्तुतिकरण है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। गाने और रोचक जानकारी जो आप बता रहे हैं वो बेहद पसंद आ रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही हमारे कार्यक्रमों को सुनते रहिए, हमारे चैनल आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल को सुनते रहिए और अपना फीडबैक देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया और आभार।

एक और में संदेश आया है कैथल हरियाणा से, मधु नायक, अनिल मोहन, उषा मोहन और टिल्लू नायक का। इन्होंने लिखा है कि एक ही कलाकार कार्यक्रम के अंतर्गत निर्माता निर्देशक प्रकाश मेहरा की फिल्मों के गाने हम अभी सुन रहे हैं और आपकी शानदार प्रस्तुतिकरण के लिए हमारी बधाई स्वीकार करें जी। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।

एक और संदेश को ले लेते हैं। ये मैसेज आया है नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से, PS न्यावकर, निर्मला न्यावकर और विशाल न्यावकर का। इन्होंने लिखा है कि आदरणीय उद्घोषक जी, प्रेम पूर्वक सप्रेम नमस्कार। क्या बात है, प्रेम पूर्वक भी है और सप्रेम भी है। तो इन्होंने लिखा है कि शानदार लाजवाब प्रस्तुति के साथ साथ बहुत ही खूबसूरत गाने और बहुत ही सुनी और अनसुनी बातें। प्रकाश मेहरा जी के बारे में आप बता रहे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ही कलाकार में, प्रकाश मेहरा साहब के बारे में। और आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि जो समाधि फिल्म थी, इसकी सफलता के बाद तो प्रकाश मेहरा के पास बहुत सारा काम आ गया। और 1973 के मई महीने में, जब उनके घर और पत्नी के गहने सब कुछ गिरवी रखना पड़ गया, आप जानते हैं क्यों? क्योंकि उस दौरान वे काम कर रहे थे अपने प्रोडक्शन हाउस, प्रकाश मेहरा प्रोडक्शन की पहली फिल्म जंजीर की। और जंजीर एक ऐसी फिल्म थी जिस जो रिलीज होने के बाद तो इतिहास रच दिया। और इस फिल्म के बाद ही अमिताभ बच्चन साहब को एंग्री यंग मैन कहा जाने लगा। लेकिन क्या आप

जानते हैं कि इस फिल्म को बनाने में प्रकाश मेहरा साहब ने कितनी मेहनत की, कितना संघर्ष किया। कई बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के पास वो गए, लेकिन किसी ने उनकी इस फिल्म को साइन नहीं किया था। और उस समय अमिताभ बच्चन साहब की भी कई फिल्में फ्लॉप हो चुकी थीं, जिसके बाद किसी न किसी रोज एक प्राण साहब से उनकी मुलाकात हुई। और इसके बाद मेहरा साहब प्राण साहब को एक वरिष्ठ और मार्गदर्शक और कलाकार के रूप में सम्मान देते थे और उन्हें बड़े प्यार से प्राण साहब कहकर संबोधित किया करते थे। और एक जब उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि उन्हें उनको कोई अच्छा कलाकार जंजीर फिल्म के लिए चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े जो हीरो हैं वो इस फिल्म को नहीं साइन कर रहे हैं, तब प्राण साहब ने ही अमिताभ बच्चन का नाम सजेस्ट किया था। और इस तरह से अमिताभ बच्चन को फिल्म जंजीर मिली और इस फिल्म की रिलीज होने के बाद तो इतिहास ही बन गया, क्योंकि ये फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। और इसके अलावा भी बहुत से गाने हैं, जैसे लावारिस फिल्म का है अपनी तो जैसे तैसे, और इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी फिल्में हैं जिसमें प्रकाश मेहरा साहब ने अपने टैलेंट का परिचय दिया। तो आगे बढ़ने से पहले आपको लावारिस फिल्म से ही एक गाना सुनवाते हैं, किशोर कुमार की मस्त मौला आवाज़ में। उम्मीद है आपको पसंद आएगा।

आपको जानकर हैरानी होगी कि इस गाने को लिखा है प्रकाश मेहरा साहब ने खुद ही, उनकी ही कलम से ये गाना लिखा गया है जो कि आज भी बेहद लोकप्रिय है।

इसी बीच आपके एक मैसेजेस लगातार हमारे पास आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इशहाक, अशफाक और अल्ताफ साहब का मैसेज आया है और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने इस कार्यक्रम की प्रशंसा की है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे नियमित श्रोता हैं सुदर्शन मुखी, अनीता मुखी, सिमरन मुखी, शांति नगर सोनीपत से, और इन्होंने अंग्रेजी में लिखा है। रेस्पेक्टेड अरुणेश कुमार जी, वेरी हैप्पी एंड हेल्दी आफ्टरनून, वी आर लिसनिंग योर प्रोग्राम एक ही कलाकार एंड टुडे यू आर डिस्कसिंग अबाउट प्रकाश मेहरा साहब, नाइस प्रेजेंटेशन, रेयर फिल्म इंफॉर्मेशन एंड ऑल टाइम सुपर डुपर हिट सॉन्ग्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर वैल्यूएबल फीडबैक।

और एक और मैसेज आया है भोपाल गढ़ राजस्थान से, धर्मेंद्र छीपा, कपिल छीपा और पूजा परिहार का, ये भी हमारे नियमित श्रोता हैं और इन्होंने लिखा है, सर नमस्कार, बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम आप पेश कर रहे हैं, बेहतरीन प्रस्तुति आप दे रहे हैं और प्रकाश मेहरा साहब के बारे में हमें बहुत ही अच्छी जानकारी मिल रही है और हमारा ज्ञान भी बढ़ रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद जी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।

और दोस्तों प्रकाश मेहरा और अमिताभ बच्चन साहब ने एक साथ 6 बड़ी फिल्मों में काम किया और सभी की सभी ब्लॉकबस्टर्स हिट, सुपर डुपर हिट साबित हुई। ये फिल्में थीं हेरा फेरी, खून पसीना, मुकद्दर का सिकंदर, लावारिश, नमक हलाल और शराबी। प्रकाश मेहरा को अपनी टीम के हिस्से में कुछ बेहतरीन प्रतिभाओं ने सिनेमा के इतिहास को बनाने में मदद किया, जैसे कि संगीत उस्ताद जोड़ी कल्याण जी आनंद जी और महान गीतकार अनजान साहब। और वैसे तो प्रकाश मेहरा साहब खुद ही भी लेखन प्रतिभा का पावर हाउस रहे हैं। उन्होंने कई सुपर डुपर हिट गाने लिखे हैं, जैसे कि अभी हमने कुछ आपको सुनाया, अपनी तो जैसे तैसे, आपका क्या होगा जनाबे अली। और इसके अलावा बप्पी लहरी साहब, जो कि नमक हलाल में उन्होंने बहुत ही चार्ट बस्टर संगीत देने के बाद प्रकाश मेहरा की टीम के स्थायी सदस्य बन गए। वहीं सुपर टैलेंटेड कादर खान साहब को कैसे भूल सकते हैं, उन्होंने मुकद्दर का सिकंदर फिल्म के कुछ असाधारण संवाद यानी डायलॉग लिखे। और जो दिवंगत महान अभिनेता थे अमजद खान साहब, उनको वे अपने बहुत ही अच्छे दोस्तों और उनके परिवार के सदस्य की तरह मानते थे। इसके अलावा प्राण साहब, राज कपूर साहब, संगीत जोड़ी कल्याण जी आनंद जी, बप्पी लहरी के साथ भी उनका रिश्ता बेहद ही प्यारा था। अमिताभ बच्चन साहब के साथ तो खैर वो ये कहते हैं ना, जादुई रिश्ता था और उनका जादू बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार प्रदर्शन कर रहा था। और आगे बढ़ने से पहले एक और प्यारा सा नगमा आपको सुनाते हैं।

स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप सिंह, गुरनूर सिंह, गुरलाल सिंह और अविराज का मैसेज आया है कि ये कार्यक्रम उन्हें बेहद पसंद आ रहा है। धन्यवाद।

प्रकाश मेहरा साहब ने 1991 में अनिल कपूर और माधुरी दीक्षित के साथ जिंदगी एक जुआ इस फिल्म का भी निर्माण और निर्देशन किया। वहीं 1993 में आई सुपर डुपर हिट फिल्म दलाल, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती की मुख्य भूमिका थी, और इस

या मोशन पिक्चर डायरेक्टर एसोसिएशन यानी IMPDA से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी उनको मिला था। और इसके बाद प्रकाश मेहरा साहब का निधन 17 मई 2009 को मुंबई के कोकिलाबेन अस्पताल में हुआ था, जहां पर उनका निमोनिया से उत्पन्न जटिलताओं के बाद उनके शरीर के कई अंगों ने काम करना बंद कर दिया था और इस तरह से उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया था। भले ही जो हमारे प्रकाश मेहरा साहब हैं वो आज हमारे बीच ना हो, लेकिन वे अपने गीत संगीत, अपने फिल्मों के माध्यम से और अपने जो उनकी कला है, जो फिल्में आज भी हम उनकी देखते हैं, उसके माध्यम से वे अपने दर्शकों के दिलों में हमेशा रहेंगे। तो इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम समाप्त होने का समय हो गया है। तो अपने रेडियो दोस्त अरुणेश द्विवेदी को दीजिए इजाज़त, फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।

हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम ब्रज माधुरी।

0: रजमाधुरी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोतान को श्रुति बुरी की
1: और वंदना की
0: राधे राधे। वंदना,
1: हाँ जी,
0: देखो हम ब्रजवासियों का जीवन कितना बढ़िया है।
1: जी बात तो आप बिल्कुल साची कह रही हो।
0: चाहे कोई ऋतु होए, कोई मौसम होए,
1: हाँ।
0: हम सुबह उठते ही सबसे पहले जामे हैं
1: यमुना जी पे,
0: यमुना जी के घाटन पे बैठ के कितनी शांति मिले, और सबसे पहले जाए के डुबकी लगावे यमुना जी में, और फिर घाट पे बैठ के आरती देखो, चाहे वहाँ पे यमुना दर्शन करो, कितना आनंद आवे है।
1: हाँ जी जी, इनकी लहरन की कलकल की ध्वनि हमारे हृदय को कितनी भामे।
0: और देखो वंदना, तुम जानो हो कि ब्रज क्षेत्र में जो मथुरा वृंदावन गोकुल महावन ये जो शीघ्र ब्रज क्षेत्र है, यहाँ में बहुत सारे यमुना नदी के किनारे किनारे घाट बसे हुए हैं, और ये जो प्रसिद्ध घाट हैं इनको धार्मिक और ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्व है। तुम जानो हो कौन कौन से घाट है?
1: हाँ जी जी, देखो विश्राम घाट है ना, वो मथुरा में सबसे प्राचीन, सबसे प्रमुख और मुख्य घाट मानो जाए है, और मान्यता बाकी जी है कि कंस को मारवे के बाद भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे विश्राम किया हो।
0: और यहाँ के बाद देखो मथुरा में अस्कुंडा घाट है, स्वामी घाट है, ध्रुव घाट है, बंगाली घाट है, ये सब घाट ऐसे हैं कि इनके पीछे कोई ना कोई कहानी, कोई ना कोई कथा कृष्ण लीलान की इनके पीछे है।
1: हाँ जी जी, बिल्कुल सांची कह रही हो आप। देखो वृंदावन में कुछ घाट है, में चीर घाट है ना, वहाँ पे श्री कृष्ण गोपी इनकी वस्त्र चुराया करते हैं।
0: और जो वृंदावन में ही है केसी घाट, और वहाँ पे कृष्ण ने केसी नामक राक्षस को वध किया हो, और वहीं बे इनकी भव्य आरती के ताई वो घाट जानो जाए है।
1: हाँ जी जी, और राधा घाट है ना, वो प्रेम और भक्ति का प्रतीक है।
0: वही युगल घाटू कहवे हैं, यहाँ पे कहवे हैं कि युगल सरकार विश्राम क्यों करते हैं, नित्य विहार क्यों करते हैं या घाट पे। और यहाँ के अतिरिक्त एक और घाट है
1: वंशी घाट, जहाँ पे श्री कृष्ण भगवान वंशी बजाते हैं।
0: बिल्कुल ठीक, तुमने तो मेरे मन की बात छीन ली। और यहाँ के अतिरिक्त देखो वृंदावन में घाट ही नाए हैं, वहाँ

0: बहुत सारे कुंड और सरोवर वो हैं
1: हाँ
0: जो विश्व प्रसिद्ध हैं, लोग आवे हैं बिनके दर्शन करे हैं और बिनके पीछे हु कछु न कछु कहानी जुड़ी है।
1: हाँ
0: जैसे ब्रजमंडल में अगर बात करें हम तो गोवर्धन में चंद्र सरोवर है।
1: हाँ जी, चंद्र सरोवर पे श्री कृष्ण राधा जी रास रचायो करते हैं। और जी, मानसरोवर है ना,
0: हाँ,
1: वो वृंदावन के पास है।
0: और पान सरोवर है नंदगांव में, ब्रह्म सरोवर भी है। और देखो अगर हम घाटन की बात करें तो ब्रह्मांड घाट, गौ घाट, गऊ घाट जाए बोले हैं, गोविंद घाट, ठकुरानी घाट, यशोदा घाट, उत्तरेश्वर घाट, बैकुंठ घाट और विश्राम घाट की तो तुमने बात करी ही, बंगाली घाट की मैंने बात करी ही, या के अतिरिक्त
1: और जी, जब ब्रह्मांड घाट की बात का आप बता रहे हो ना, वहां पर तो श्री कृष्ण भगवान ने यशोदा जी को बाल रूप में अपने मुखमंडल में ब्रह्मांड के दर्शन कराए हैं।
0: ब्रजमंडल में मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन और आसपास के क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़े कई पवित्र सरोवर हैं, कुंड हैं, और जिनमें से जो प्रमुख सरोवर हैं बिनमें राधा कुंड और श्याम कुंड है। ये ब्रज में बहुत पवित्र मान्यो जाए है और ऐसी मान्यता है कि कृष्ण ने अरिष्टासुर राक्षस को वध करके राधा रानी के संग मिलके या सरोवर को या कुंड को निर्माण किया हो।
1: और जी, जो कुसुम सरोवर है ना, वो गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में स्थित है। और जो बहुत ही सुंदर ऐतिहासिक सरोवर है, जहाँ श्री राधा जी और कृष्ण जी लीला लीला किया करते हैं।
0: और या के अतिरिक्त देखो मानसी गंगा है जो गोवर्धन में स्थित है, मान सरोवर है ये वृंदावन में स्थित है। यहाँ ऐसा कहवे हैं कि राधे रानी ने मान किया हो।
1: और जी, विमल कुंड और चंद्र सरोवर वो तो हैं।
0: हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हो। और देखो हमने कितनी अच्छी जानकारी अपने श्रोतान को दे दी है।
1: हाँ जी, जानकारी तो आप खूब दे हो, और पर जानकारी देते रहे हो, यूं ना के कछु श्रोतन के काजे कछु प्यारे से लोकगीत वो गीत सुनवाओ।
0: अरे हमें वो खूब ध्यान रहे अपने प्यारे प्यारे श्रोतान को। और
1: अच्छा
0: देखो तुमने बड़े दिनांत से जो लोकगीत नहीं सुना होगा जो हम अपने श्रोतान के ताई लेके आए हैं।
1: अच्छा कौन सा आने को बताइयो?
0: जी हम लेके आए हैं संवे स्वरन में, और जो लोकगीत है कान्हा गागरिया मत फोड़े।
1: अरे जी, कहाँ थे ढूंढ के निकाल डाला तुमने,
0: हाँ
1: बड़ो चोखो काम करो आज तो।
0: तो सुनवाएं अपने श्रोतान को।
1: हाँ सुनवा।

0: प्यारे भैया बहनों, अभी आप जो लोकगीत सुन रहे हैं संवेश्वरन में। और वंदना, एक बात बताओ,
1: कहा
0: तुम मोकू कछु मोटी सी लग रही हो। मोए ऐसा लग रहे हो तुम कछु बरात फरात ज्यादा खाया ही हो, दावत ज्यादा उड़ाया ही हो।
1: ए जी, तुम नजर मत मारो, बारात में चली गई, दो चार बारात कर ली और खूब लड्डू खाए, खूब एका हलुआ खायो चक घी को।
0: और जी बताओ, इतनी गर्मी में बारात तो करके आई हो, तो परेशान ना भईगा?
1: ए कौन आए जी जी, परेशान होते ने, बाद में आराम कर लेते, काहे है वो बरात तो करी आए, वो चोको खाया है।
0: ए मुकु, तो ऐसा लगे पहले तो बढ़िया बढ़िया कपड़ा लत्ता पहनो, पिनते गर्मी लगे। और फिर अगर कछु लीपा पोती कर लियो और मोड़े पे, तो फिर बातों पसीना आमे, तो गर्मी तो ऐसी लगे कि मन ही ना करे बारात फरात
1: हाँ
0: में
1: मो
0: जाए
1: पता है तुम
0: को।
1: क्यों कह रही हो, मो पता है तुम जो कह रही हो कि तुम कार ही हो हैं। हाँ
0: ना
1: मैंने मैंने जब फोटो दिखाए का है तुमको, तो मैं गोरी लग रही हूँ, अब मैं तुमको लीपा पोती हटाए के कारी लग रही
0: है
1: हूँ।
0: ना, तुम कारी ना हो, कारी हो तो कन्हैया की प्यारी तो हो। हमारे कन्हैया वो तो कारे हते।
1: हाँ जी, तो मुझे बहुत अच्छा लगे कि मैं कारी हूँ, जो कि कन्हैया को रूप तुम मिल गए हो।
0: ए वैसे हो तुम कारी ना हो
1: अच्छा
0: और का
1: ऐते जी, रहन दो, तुम माखन मिश्री लगा रही हो मोकू।
0: ना, तुम्हें माखन मिश्री लगाए के का होएगो। मैं तो तुमते जे पूछ रही कि तुम कहीं बारात में जाए के पछताई तो नहीं।
1: ए जी, मैं तो नेगुना पछताई, पर जो पछताए ना बिन की बात सुनवाए थे तुम।
0: हाँ मुझे पता है तुम्हारो इशारों का है तो।

0: चलो श्रोताओं, हम आपको सुनवाई दे रहे हैं एक हास्य वार्ता, हम पछताए बारात में जाके, और यहाँ के वार्ताकार हैं
1: चंद्र प्रकाश आचार्य।
2: बारात हमारे देश की महान परंपरा है। काऊ जमाने में 15-15 दिन की बारात होती, आदमी पे टेम हतो, घटत घटत अब बारात 1 दिन की रह गई। बरातन को मौसम आते ही बच्चा बूढ़े जवान ताशे बारे बाजे बारे गाड़ी बारे आतिशबाजी बारे खाइबे बारे खुश है जामते। पुराने जमाने में लोगन की पाचन शक्ति जबर हती, एक एक शेर दो दो शेर कोई कोई तो 5 शेर माल खाए जातो, 21-21 11-11 फिर चौका मिठाई के चलते। समय पलटो पेट की ताकत खत्म और फिर रिफाइंड की बाहर आ गई। आज तो ऐसा बुरा जमानो है कि बारात में चला चली खाया पी नाच गानो चले, लोग कहें 2 दिन चलें 1 दिन खाएं, ऐसी बारात में मुंह रख जाएं। हमें बारातन के खट्टे मीठे चरपरे अनेक अनुभव होते हैं। कई दफे तोबा करी कान पकड़े कि अब बारातन में न जाएंगे, जाजुक की रीतन को देख बारातन में जानो बंद कर दियो। काऊ बारात में जाओ नाच को शोर, फिर टेम बे टेम खाए वो, रात में ऊधम बारात में बूढ़े जवान है जाए। बारातन की मस्ती जामे आदमी भूल जाए अपनी हस्ती, देखते ही बनती। बहुत सोची के बारातन में न जाएंगे, पर ऐसी आई एक बारात के फंस गए। मैया बोली लाला लोहरे मामा को ब्याह है तो कु बारात में टूट ला जानो है। पिछले बारातन के अनुभव के आधार पे हमने मैया थे बड़े बहाने बनाए, पर नाए चलीवा के सामने लत्ता तैयार करे जूता पहरे बराती बन के चल दी। बाजगे आए जाते मोटर जानी 9 बजे बारात चलनी, सो ब्रज की बारात बराती 10-11 बजे तक इकट्ठे भई, पर बस न आई। बेबस बेटा बारो बावरो सो चक्कर काटे, दूल्हे काऊ बात पे मटक गयो, नेग के चक्कर में जीजा उखड़ गयो, रूसा मटकी भई राजीनामा भई। दोपहर के 12 बज गए भूखे बराती बर्रामन लगे, तवई आई गई बस बावरे से धंस परे 60 की जगह 70 घुस गए। जमुना मैया की जय बोली गिरिराज बाबा की जय बोली मोटर चली। बरातीन को ऊद सूझी एक बूढ़े बोले बारात में जा रहे हो नेक तो मस्ती हों दो, सोई तो पीछे थे एक केला को छिलका उनकी गंजी टाट पे परो। वे बर्राम थे भय बैठ गए, मोटर भाग रही और बराती बक रही। हम चुपचाप बैठे, हमारे सामने की सीट पे एक रिश्तेदार बुढ़ऊ बैठे हते, बिनके संग 2 पट्ठा उनके बेटा बैठे हते। तभी काका जी की चांद पे केला को छिलका लगयो, सोई उनके बेटा हल्लन और ढिल्लन बिगड़ पड़े। बहुत कहन सुनन है गई राम राम कह के बारात टूंडला आ गई। 4 बज गए बारातीन ने अपनी अपनी जगह लई, बेटी वारे ने खूब खातेदारी को इंतजाम कर रखो। नाश्ता पे बराती टूट पड़े, भूखे ब्रजवासी पलेटन पे पलेट डारत चले गए, खाए पी के तन चह गए। बाजे 8-10 हते, सो अब बरातीन को मिजाज बनाए की परी। कोई नहायो काऊ ने हाथ मुंह धोयो और काऊ ने जूतान पे पालिश करवाई, क्रीम पाउडर लगाए खूब इत्र लगाए, बराती तैयार होन लगे। शिवजी की सी बारात है गई, बाजे बजन लगे पर चले कौन, बरातीन के पैरन में तो जानी नहीं। गले चटक रहे आंखें झुक रही ब्रह्मांड घूम रहे हो, ऐसो लगो बेटा अब मरे के अब मरे। कमरा को तारो कौन लगावे, जन्माशय में को रहे, बेटी वारे ने सब इंतजाम कियो। बारात चली कोई बाजेन के संग नाचबे लगो, कोई नाचते नाचते गिर परो, जो गिरो बाय उठाए बे बारो न मिलो, कोई नेक चले और बैठ जाए। सबरे बरातीन के लट्टा दूर में है गए, गाम बारे ने बारात की जे हालत देखी तो बहु मजा में आए गए। काऊ ने कीच फेंकी तो काऊ ने मट्टी, और जे होश ना है तो कि मट्टी कहाँ थे और कीच कितने आई। ले दे के रोते पीटते बारात बेटी बारे के दरवाजे पे आई, दरवाजो भयो बारात जेम्बे बैठी। बड़ी सी पत्तर 11 मिठाई 4 सकोरा जिनमें 2 पतरे साग 1 रायतो 1 में बासुंदी सौंठ काजू की नमकीन फूली फूली करारी करारी कचौड़ी रंग बिरंगी पूरी कई तरह की सब्जी। आजकल के कैलेंडर छाप छोरा छापरे तो इतने माल को देख घबरा जाएंगे। बारात को

0: दृष्टि देख बे जोघत। बैयर बानी छत्तन पे थे देख रही, बेटी बारो पड़ोसन बारे नाते रिश्तेदार जा नाटक को देख रहे और हंस रहे। बरातीन पे खानो ना खायो जाए रहे हो, कोई हंसे जाए रहे हो। शेष में डेढ़ घंटा में बरात जैम के उठी, रोते पीटते जन्माशय में आए। जाने कौन सी घड़ी के घर से चले के मुसीबत पे मुसीबत आए रही। जन्माशय में आते ही ज्यादा खाए मरे रहते जे बराती, सो उल्टी करन लगे हाय मचन लगी। वृंदावन बारे पंडित जी छत पे हुंकरी दे कर रोमन लगे। उनके दोनों बेटा हल्लन और ढिल्लन उनके गले से लिपट गए, जोर जोर से डगरावन लगे। हाय महाराज जी, हाय काका जी, हाय मेरे ढिल्लन, हाय मेरे हल्लन, मोकू वृंदावन ले चलो। बेटी बारे पे खबर पहुंच, खजांची साहब डॉक्टर को लेके आए। पंडित जी की हालत देख डॉक्टर बोले, जल्दी करो इनको अस्पताल पहुंचाओ। जा बात है सुन, पंडित जी और जोर जोर से चीखन लगे। बोले बेटा ढिल्लन, जे शरीर वृंदावन में बड़ो भयो, टूंडला में जा रहे हो। मिलन जी बोले, काका जी धीरज धरो, मैं टैक्सी लाऊं वृंदावन पहुंचाऊं, आप वृंदावन में ही शरीर शांत करियो। पंडित जी रोमते भय बोले, बेटा जीव लड़खड़ाए रही है, पुत्री ऊपर चढ़ी जा रही है, जीवे की आशा ना है। तू अपनी मैया ते राम राम कह दीजो, बाकू प्रेम ते रखियो, सब भैया प्रेम ते रहियो, मैया को दुख मत दीजो। ऐसो प्रलाप करके पंडित जी को नींद आ गई। दो बेटा हूं काका जी के गले ते लिपट के लेट गए। रात के टनाटन 3 बजे 5-7 मन चले, बदमाश बराती उठे। जन्माशय की बत्ती बिन्ने गोल कर दई, एक ने काजर की डिबिया ते काऊ के एक मूछ लगाई, काऊ के दो, काऊ के बिंदा और काऊ के चंदा लगायो। एक ने लाल रंग तेल में मिलाए, लोगन के कपड़ान पर डाल दियो, केला रसगुल्ला बिस्तरन पर डाल दिए। अपनी लीला करके इन मन चले बदमाश बराती ने पहले तो सबके जूता पानी पीवे की टंकी में डाल दिए, फिर दीपक राग शुरू कर दिए। कुल्ला सकोरा फिकन लगे, बराती जगे एक दूसरे की शकल देख देख के हंसन लगे। वो भाई देख के हंसे, वो भाई देख के हंसे, कछु लड़न लगे, कछु हंसन लगे, कछु भगन लगे, कछु बकन लगे। हम बहुत पछताए बरात में जाए के, भैया हो तुम हूँ कबहू न कबू तो बरात में जाए के पछताए ही होगे, सच्ची मानो हम तो बहुत पछताए बारात में जाए के।
1: अभी भैया बहनाओं आप वार्ता सुन रहे हैं हम पछताए बारात में जाए के, या कि वार्ताकार है चंद्र प्रकाश आचार्य जी। बताओ वंदना, तुम बारात में गई और गर्मी इतनी हती, मुझे तो ऐसा लगे कि अगर बारात पहुंची हुए और वहाँ पे ठंडो ठंडो सीरो सीरो शरबत मिल जाए तो कितना मजा आवे।
2: हाँ जी जी, जब नाचे कूदे का है ना हम, तो माँ बहुत ज्यादा पसीना पसीना आए गए और सांस फूलवे लगी तो। पर लेकिन बिन छोरी बारे ने बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी है हमारे काज है, शरबत खूब दियो।
1: देखो छोरी वाले तो खूब मान सम्मान करे ही है बरातीन को। और देखो एक बात और है जी, जो शरबत हो करे ना तो अगर बारात में ना मिले तो घर पे आई के पी लो घर के बने शरबत। तो तुम वो घर पे कछु शरबत फरबत बनाओ।
2: हाँ जी जी, क्यों ना बनाऊं, देखो आम को पन्ना बना लूं और कहे दुनिया भर के जो चले ना गर्मी में फल बिनके भी पन्ना बना लूं।
1: अच्छा तो जी बता आम पन्ना कैसे बनाओ।
2: ए जी जी, अमिया को उबाल के बना लो, चाहे भूंज के बना लो, बामे नमक डाल लो, कालो नमक डाल दो और बामे का है जीरो डाल दे,
1: जीरो डाल लो और नहीं तो पुदीना की पत्ती डाल रहे।
2: अरे बहुत स्वाद लगे जी जी।
1: हाँ चीनी तो तुम भूली गए,
2: चीनी डालो, मीठो डालो, बूरो डाल दो, कछु डाल लो जी जी, बड़ो स्वाद लगे। तो जाके मारे में चीनी ही भूल गई।
1: पर तुम्हें एक बात बताऊं वंदना
2: का,
1: मोकू तो जे मौसमी फल है ना, फाल से आलू बुखारा और वो लीची और या के बाद बेल पत्तर जो है
2: शहतूत
1: अब बिन के तो मोकू बहुत ही भावे
2: जी जी। गर्मी फिर लगे ही ना है, ऐसा लगे कि देखो जी जी खाए भी को उतना मिले तो यूँ चो लगे कहकर दूसरा मौसम आवे बुई आतो रहे ऐसा लगे।
1: हाँ और एक बात और है, ब्रजवासीन के ताई तो छाछ और लस्सी तो या समय ऐसी लगे कि जैसे अमृत होए।
2: हाँ जी जी, हमारे कन्हैयों तो खूब छाछ मठा पीते।
1: हाँ तो तुम ऐसे मटक मटक के गाई को बोल रही हो।
2: ए जी जी, हम तो सब ब्रजवासी ऐसी मटक मटक के बोले, ऐसी मटक मटक के चाले।
1: मुकुछ सब समझ में आ रही है, तुम मटक मटक के तो चलती तभी तो कन्हैया तुम्हारी मटकी फोड़ो करते।
2: जी जी, हम तो कन्हैया के दीवाने हते, जे मारे तो मटक मटक के चलते, कहे कन्हैया हमारी मटकी फोड़े।
1: हाँ तो ऐसा ही एक लोग।

0: श्रोताओं, अभी आपने मदन मोहन ब्रजवासी के सुर में या मधुर लोकगीत को आनंद लियो।
1: तो श्रोताओं, या के संग ही आज को ब्रजमाधुरी कार्यक्रम अब संपन्न हुए है।
0: मुकु यानी के वंदना को
1: और मोई यानी श्रुतिपुरी को देव अनुमति
0: राधे राधे, राधे।
1: कार्यक्रम प्रस्तुत करता
0: विवेक कुमार तोमर।

अभी आप ब्रज माधुरी कार्यक्रम सुन रहे थे। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। आइए सुनते हैं हमारे नन्हे मुन्ने श्रोताओं का पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो किड्स।

0: आप सुन रहे हैं आकाशवाणी दिल्ली का FM गोल्ड चैनल और समय हो गया है प्रोग्राम रेडियो किड्स का। मैं वंश दलाल और मेरे साथ मेरे बहुत सारे दोस्त।
1: मैं काशवी आहूजा।
2: मैं आशना पुरी।
3: मैं शिवांश राय।
4: मैं रिद्या शाह।
5: मैं सौम्या सिंह।
6: मैं आराध्या शर्मा।
7: मैं निविता छेत्री।
8: मैं लक्षिता शर्मा।
9: मैं अनाया जैन।
10: मैं सौम्या।
11: मेरा नाम चिराग गुप्ता है।
12: मेरा नाम काविड शर्मा है।
13: मेरा नाम अयान जैन है।
14: मेरा नाम तुषार अत्री है।
15: मेरा नाम आर्यन कुमार है।
16: मेरा नाम अतिक्ष राजपूत है।
17: मेरा नाम खुशी शर्मा है।
18: मेरा नाम अव्युक्त अग्रवाल है।
19: मेरा नाम अंशपाल है।
2: अगर आप इस वक्त चाय पी रहे हैं, काम के लिए रेडी हो रहे हैं या ट्रैफिक में फंसकर सिग्नल का वेट कर रहे हैं, तो बस एक मिनट के लिए रुक जाइए, क्योंकि कुछ पल सिर्फ शुरू नहीं होते, वो दिन बना देते हैं, वो वाइब सेट कर देते हैं। और आज बिल्कुल वैसा ही एक खास पल है।
0: मैं हूँ आराध्या। आज का ये प्रोग्राम बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज रेडियो स्टेशन पर कब्जा है हम बच्चों का।
1: बिल्कुल सही कहा आराध्या। और हम सिर्फ बच्चे नहीं हैं, हम हैं CRPF पब्लिक स्कूल रोहिणी के छात्र।
5: आज हम बात कर रहे हैं उस देश की जिसे आजाद हुए 89 वर्ष हो चुके हैं, लेकिन आजादी की ज्वाला 150 वर्ष पहले ही वंदे मातरम के रूप से धधकना शुरू हो गई थी।
2: दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय का उपन्यास आनंद मठ, जिसमें यह गीत पहली बार आया था, वो 18वीं सदी के सन्यासी विद्रोह की पृष्ठभूमि पर आधारित था। यानी वह गीत महज एक कविता नहीं, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ एक सशस्त्र क्रांति की गूंज थी। हैरानी की बात यह है कि अंग्रेज इस गीत से इतना डर गए थे कि उन्होंने इसके गाने और छपने दोनों पर बैन लगा दिया था। उस दौर में अगर आप सड़क पर वंदे मातरम बोल देते तो सीधे जेल की हवा खानी पड़ती। पर कहते हैं ना, जिस चीज पर पाबंदी हो उसका क्रेज और भी ज्यादा बढ़ जाता है। क्रांतिकारियों ने तो विदेशों में तिरंगे झंडे पर वंदे मातरम लिखवा दिया। यह महज एक नारा नहीं, आजादी का विजुअल सिंबल बन गया था। अब आते हैं 24 जनवरी 1950 की उस ऐतिहासिक दिन पर, जब संविधान सभा बैठी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने साफ लफ्जों में कहा कि भले ही जन गण मन हमारा राष्ट्रगान है, लेकिन वंदे मातरम को भी उसके बराबर का सम्मान दिया जाएगा। इसलिए आज इसे हमारा राष्ट्रगीत कहा जाता है।

0: दोस्तों, अब हम बात करेंगे वर्ल्ड कम्युनिकेशन डे की, जिसने 7 समंदर पार बैठे लोगों को भी हमारे ड्राइंग रूम तक पहुंचा दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी? तो चलिए आज मैं आपको एक अमेजिंग सी बात बताती हूँ। आज हम 5G के युग में हैं, लेकिन टेलीकम्युनिकेशन का असली जन्म आज से 161 साल पहले यानी 17 मई 1865 में हुआ था। उस वक्त ना इंटरनेट था, ना कोई स्मार्टफोन, सिर्फ एक तार के जरिए संदेश भेजे जाते थे, जिसे आज हम टेलीग्राफ कहते हैं। इसी दिन पेरिस में इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन की नींव रखी गई थी, जो आज दुनिया की सबसे पुरानी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में से एक है। तो अब तुम बताओ राध्या, क्या कहना चाहती हो?
1: सोचो रिद्या, उस एक छोटे से तार से शुरू हुआ सफर आज सैटेलाइट और ऑप्टिकल फाइबर तक पहुंच गया है। आज दुनिया सिर्फ एक क्लिक की दूरी पर है, और इसमें हमारा रेडियो भी एक बहुत बड़ी कड़ी है, जो बिना किसी डाटा पैक के आप तक हर जानकारी और मनोरंजन पहुंचाता है। तो आज अपने फोन या रेडियो को एक थैंक यू जरूर बोलिएगा, क्योंकि वही तो वो जरिया है जिसने हमें अकेला नहीं होने दिया।

0: अब समय है एक सुंदर और गर्व से भरी प्रस्तुति का। अगली प्रस्तुति लेकर आ रही है काशवी, कविता के साथ जिसका विषय है मेरा प्यारा भारत। ये कविता हमारे देश की एकता, संस्कृति और शान को दर्शाती है। तो जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए काशवी का।
1: मेरी कविता का नाम है मेरा प्यारा भारत अपना। इस संसार की अद्भुत रचना, इस संसार की अद्भुत रचना मेरा प्यारा भारत। इस भारत की धरती से निकला अप्रतिम ज्ञान प्रकाश ऋषियों मुनियों की तपभूमि और मानवता का आस। वेद उपनिषद पुराणों ने दिया विश्व को ज्ञान भंडार। योग आयुर्वेद बना हर मानव के लिए अनुपम उपहार। जीवन जीने की कला को गीता ने दिया आधार। शांति हो त्रिभुवन में प्रकृति के कण कण में जल में शांति, थल में शांति, शांति हो अंतरिक्ष गगन में। जल में शांति, थल में शांति, शांति हो अंतरिक्ष गगन में। यही है चिंतन, यही है सपना मेरा प्यारा भारत अपना। यही है चिंतन, यही है सपना मेरा प्यारा भारत अपना। तेन पूंजिता हमें उपनिषद ने सिखलाया। महावीर और बुद्ध ने करुणा दया का मार्ग बतलाया। अहिंसा के पुजारी बन गांधी ने सत्य का मार्ग बतलाया। अब्दुल कलाम हो या मदर टेरेसा ने मानवता को समझाया। विचार भेद हो सकता है लेकिन मन भेद नहीं करना है। यही

भारत अपना है, यही भारत भूमि का सपना है, मेरा भारत अपना है। धन्यवाद।

0: तो दोस्तों अब प्रस्तुत है राजा राम मोहन रॉय पर एक स्किट।
1: नहीं नहीं, मुझे चिता पर नहीं बैठना।
2: यही हमारा धर्म है, इस विधवा को अपनी पति की चिता पर बैठना ही होगा, यही संस्कार है।

0: ये संस्कार नहीं, ये हत्या है। कौन सा धर्म एक निर्दोष की बलि मांगता है? शास्त्रों का ज्ञान कीजिए, वो प्रेम सिखाते हैं, क्रूरता नहीं।
1: तुम हमें सिखाओगे? तुमने अंग्रेजी पढ़ ली तो क्या धर्म भूल गए?
0: मैंने अंग्रेजी पढ़ी ताकि मैं दुनिया को जान सकूं, और उपनिषद पढ़े ताकि अपने मूल को पहचान सकूं। तर्क ही मेरा ईश्वर है।
2: राजा राम मोहन रॉय ने सिर्फ सती प्रथा का ही विरोध नहीं किया, बल्कि ब्रह्मो समाज की भी स्थापना की, बाल विवाह का विरोध किया और महिलाओं के लिए शिक्षा का द्वार खोला। उन्हें मॉडर्न इंडिया का जनक भी कहा जाता है।
3: वाह, क्या व्यक्तित्व था। दोस्तों, क्या तुम्हें पता है राजा की उपाधि उन्हें मुगल सम्राट ने दी थी? वो कई भाषाओं के विद्वान थे, संस्कृत, पर्शियन, अरबिक और इंग्लिश। आज CRPF स्कूल रोहिणी के छात्र इस किट के माध्यम से बस यही बताना चाहते हैं कि बदलाव की शुरुआत हमेशा खुद से होती है।
2: राजा राम मोहन रॉय ने हमें सिखाया कि तर्क के बिना कोई भी परंपरा सिर्फ एक बोझ है। उनकी विरासत आज भी हमें एक बेहतर समानतावादी समाज बनाने की प्रेरणा देती है।
3: तो दोस्तों, कैसा लगा हमारा छोटा सा सफरनामा?

तदुम तो तत्

अभी हमारे नन्हे मुन्हे श्रोता सुन रहे थे अपना पसंदीदा कार्यक्रम रेडियो किड्स। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर।

आइए आपको जानकारी देते हैं हमारी आज की सायंकालीन सभा में प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। अब से कुछ ही पलों बाद आप सुनेंगे स्वांग, किस्सा अजीत सिंह राजबाला का। कलाकार होंगे कर्मपाल शर्मा, मंजू शर्मा और साथी। वहीं शाम 5:10 पर आप सुन सकते हैं लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी।

सभी तरह के खेलों से जुड़ी हुई खबरों पर आधारित हमारा दैनिक कार्यक्रम खेल खिलाड़ी। इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं शाम 5:30 बजे और ग्राम संसार पत्रोत्तर पर आधारित लोक संगीत पर फरमाइशी कार्यक्रम आप ये सुन सकते हैं शाम 6:30 बजे।

खेती किसानी पर आधारित कार्यक्रम कृषि जगत, ये आप सुन सकते हैं शाम 7:05 पर।

0: कवि गोष्ठी।
1: इस कार्यक्रम का प्रसारण रात्रि 8 बजे किया जाएगा और इसमें प्रतिभागी कवि होंगे श्री शिवशंकर, ज्वाइंट डायरेक्टर रेलवे, वरिष्ठ कवि हैं ये। इसके अलावा श्री सुरेश कुमार, सुपरिटेंडेंट जीएसटी विभाग, ये भी वरिष्ठ कवि हैं, और श्रीमती संगीता वर्मा, युवा कवयित्री। संचालन करेंगी श्रीमती सुधा कुमारी, वरिष्ठ कवयित्री। आप इस कवि गोष्ठी कार्यक्रम को सुन सकते हैं रात्रि 8 बजे। नाटकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम, ये आप सुन सकते हैं रात्रि 9:10 पर। और अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा, इस कार्यक्रम का प्रसारण रात्रि 10 बजे किया जाएगा। फिल्म संगीत पर आधारित कार्यक्रम आपकी फरमाइश, इस कार्यक्रम को आप सुन सकते हैं रात्रि 11:10 पर। तो ये थी जानकारी आज की हमारी शाम की सभा में प्रसारित होने वाले कुछ प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी के मुताबिक शाम के 4 बजने ही वाले हैं। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम स्वांग।
2: प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वांग, किस्सा रहेगा अजीत सिंह राजवाला का, और कलाकार हैं करमपाल शर्मा और मंजू शर्मा।

भेजा और साथ में कुछ रिश्तेदार भी भेज दिए, तो अब राजा प्रताप सिंह एक शर्त पर शादी की हां करता है कि अजी अजीत सिंह 20,000 रुपए लेकर आए और ये रुपए बारोठी के समय गरीबों में भर भर मुट्ठी बांट दे तो शादी कर भी सकता हूँ।

0: तो अजीत सिंह मेरी शर्त कान खोल के सुन ली तूने?
1: हाँ सेठ जी, मैं आपकी शर्त कान खोल के सुन ली है और मैं मानने के लिए तैयार भी हूँ।
0: तो जब तक मेरा कर्जा नहीं उतरेगा, तेरे और तेरी पत्नी के बीच में भाई बहन जैसे संबंध रहेंगे, मंजूर है तुझे?
1: हाँ सेठ जी, मैं मंजूर करता हूँ।
0: तो फिर एक काम कर,
1: हाँ
0: अपना ब्याह सुझवा ले।
1: अच्छा,
0: और एक दिन पहले आ जाइए,
1: ठीक,
0: पैसे और एक घोड़ा तुझे दे दूंगा।
1: अच्छा, घोड़ा किस लिए दोगे?
0: घोड़े पे तो बैठ के बहू लेके आएगा।
1: अच्छा, और पैसे में वजन भी काफी होगा?
0: हाँ वजन भी काफी होगा, जब तो घोड़े पे लेके जाएगा पैसे रख के।
1: तो सेठ जी आपका बड़ा बड़ा एहसान होगा। तो लो, राम राम जी।
0: राम।

0: ए बहन लाजवाला, आज तो बड़ी खुश नजर आ रही है।
1: हाँ बहन, खुशी की तो बात ही है।
0: तो जल्दी बताना।
1: चल बाग में चलेंगे, वहीं बताऊंगी।
0: देख बारिश होने वाली है, भीग जाएंगे।
1: सावन में भीगने का भी अलग ही मजा है।
0: तो अब बता क्या खुशी है?
1: मेरी शादी पक्की हो गई।
0: अच्छा, तो इस खुशी में मैं तो एक गीत गाऊंगी।
1: अच्छा तो सुना दे।

इस प्रकार से प्रेमी सज्जनों 20,000 रुपए सेठ से लेकर के अजीत सिंह शादी के लिए पहुंच गया। बारोठी के समय राजा ने कह दिया कि 20,000 रुपए भर भर मुट्ठी गरीब लोगों में बांट दो। तो अजीत सिंह ने ऐसा ही किया। अजीत सिंह अब शादी करके राजबाला को घोड़े पर बिठा करके अपने यहां ले आया, जहां मकान के नाम पर केवल एक टूटी सी झोपड़ी थी। राजबाला आ गई तो उदास भाव से राजबाला से अजीत सिंह पूछता है,

0: मैंने ऐसा क्यों किया? ये सारी हकीकत मैं तुझे बताता हूं। आपके पिता ने जो 20,000 रुपए मंगाए थे वो मैं एक सेठ से उधार ला करके दिए हैं, और उस सेठ जी ने, जिनका मेरे ऊपर बड़ा एहसान है, ये शर्त लगाई कि जब तक कर्जा नहीं उतरेगा अपनी ब्याही के साथ में बहन भाई का रिश्ता रखना होगा। अब मेरे वचन की रक्षा करना राजवाला तुम्हारे हाथ में है।
1: सुप्रिया जी, इसमें घबराने की कौन सी बात है? मैं अपना जनाना भेष उतार कर मर्दाना भेष धारण करूंगी, दोनों प्रदेश में जाकर नौकरी करेंगे और जितनी जल्दी हो सकेगा कर्जा भी उतारेंगे। पर प्रिया जी, मैंने नाम भी सोच लिया है। मेरा नाम गुलाब सिंह होगा और आपका नाम तो अजीत सिंह है ही, और हमारा रिश्ता

कुछ एक नार दिखाई दे। ये दोनों पति और पत्नी हैं, किसी विपदा के कारण नौकरी कर रहे हैं। इनका दुख दूर करना आपका फर्ज भी है। तो प्रेमियों, राजा ने सुबह जब दरबार लगाया

0: तो रानी के महल के दरवाजे पर रात के पहरे पर खड़े हुए दोनों जवानों को बुलाया और कहा,
1: हाँ भाई जवान।
0: हाँ राजन।
1: मैं रात की कहानी तुम्हारी सुन ली, रानी ने भी मुझे बताया, रानी ने भी सुन ली।
0: अच्छा जी,
1: झूठ बिल्कुल नहीं बोलना, मुझे सच्चाई बताओ क्या बात है।
0: सच सच बताऊंगा महाराज, आपके सामने झूठ बोलने का कोई काम नहीं।
1: नाम गाम ना आज तलक मुझको बतलाया बेटा, एक पुरुष एक नार थारे में क्यों भेद छिपाया बेटा।
0: महाराज मैं मानता हूँ कि सांच को आंच नहीं, इसलिए जो भी आप बुझोगे मैं सच सच बतलाऊंगा।
1: ठीक है तो बताओ, उत्तर दो।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम स्वांग। किस्सा था अजीत सिंह राजवाला का। गायक कलाकार थे करमपाल शर्मा और मंजू शर्मा, और इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे शिवनंदन लाल।

0: के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्वीडन की दो दिन की यात्रा पर गोथेनबर्ग पहुंच रहे हैं। श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के निमंत्रण पर स्वीडन जा रहे हैं। श्री मोदी की यात्रा का उद्देश्य तकनीक में तेज परिवर्तनों और जटिल भू राजनीतिक चुनौतियों के दौर में सहयोग के नए आयाम तलाशना है। इस दौरान श्री मोदी प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्रियों के साथ साथ यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन भी यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को संबोधित करेंगी। इससे पहले कल हेग में प्रधानमंत्री मोदी और नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन के बीच वार्ता के बाद भारत और नीदरलैंड्स ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की। दोनों नेताओं ने व्यापार, रक्षा, प्रौद्योगिकी, जल प्रबंधन, स्वच्छ ऊर्जा, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग की समीक्षा की। सहयोग को मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स को भारत का एक प्रमुख यूरोपीय साझेदार बताया है।
1: हमें नीदरलैंड की एक्सपर्टीज और भारत की स्पीड और स्केल को हर क्षेत्र में जोड़ना चाहिए। इनोवेशन, इन्वेस्टमेंट, सस्टेनेबिलिटी और डिफेंस जैसे क्षेत्रों में सहयोग को नए आयामों तक पहुंचाना है। इसी साझा दृष्टि के साथ भारत नीदरलैंड संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के स्तर पर ले जा रहे हैं।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप टेक्नोलॉजी ही भविष्य की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होंगे। आज गुजरात के अहमदाबाद में मिलियन माइंड्स टेक पार्क के पहले चरण और ग्रैमी सिटी कैंप्स का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत विश्व के हर उभरते क्षेत्र में अग्रणी बन गया है। जनगणना 2027 के लिए मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। उन्होंने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने आज दिल्ली सरकार द्वारा विमानन टर्बाइन ईंधन पर मूल्य वर्धित कर ETF को 25% से घटाकर 7% करने के निर्णय की सराहना की है। सोशल मीडिया पोस्ट में इस कदम की प्रशंसा करते हुए श्री नायडू ने कहा कि ऐसे समय में जब विमानन क्षेत्र वैश्विक परिचालन और लागत संबंधी दबावों का सामना कर रहा है, राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए ऐसे सक्रिय कदम एयरलाइनों और किफायती हवाई यात्रा के लिए मददगार हैं। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य से सैन्य उपकरणों से लदे शत्रु पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ये जलडमरू मध्य विश्व ऊर्जा व्यापार के लिए एक प्रमुख समुद्री मार्ग है। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की चीन की 3

दिन की राजकीय यात्रा के दौरान अमेरिका और चीन ने ईरान को परमाणु हथियार हासिल नहीं करने और होर्मुज जलडमरू मध्य से आवागमन खुला रखने पर सहमति व्यक्त की। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबू धाबी स्थित बरकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबू धाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में पंजाब किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 19 ओवर में 3 विकेट पर 208 रन बना लिए हैं। दिन के दूसरे मुकाबले में दिल्ली में शाम 7:30 बजे से दिल्ली कैपिटल्स का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

0: लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को
1: नमस्कार
0: भाई। सुनी भाई, देखिए लोक रंजनी में हम लेकर आते हैं लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम, और लोक संगीत किसी भी क्षेत्र और समुदाय के सांस्कृतिक पहचान, इतिहास और जीवन शैली का दर्पण होता है। यह मौखिक परंपरा के माध्यम से पीढ़ियों तक आगे बढ़ता है, जो सामाजिक एकता को मजबूत करने और मानवीय भावनाओं को व्यक्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
1: बिल्कुल, देखिए ना, जब अगर यूँ कहें कि कोई कि आजकल जो ये लोकगीत का कोई लोकगीत कोई फैशन नहीं है, और जब रेडियो भी ना था, मोबाइल भी ना था, और तब थे बस आदमी और उनकी मेहनत, उनका मन। और जब ये कहते हैं ना, गांव में जब सब जगह आदमी के सुख दुख के ही साथी ये जो हमारे लोकगीत हुआ करते थे, जब कुछ भी नहीं था तो कभी भी खुशी का मौका होता था, या कटाई का मौका है, या कोई संस्कृति आपको कोई फंक्शन कर रहे हैं, तब देखिए ना, अपने इनको कोई बनाया नहीं जाता। जब जब खेत में जब औरतें हमारे हमारे किसान भाई जब काटते समय जब गुनगुनाते हैं ना, तो वही जो गीत, वही जो बोल हैं, वही गीतों का रूप लेकर एक लोकगीत के लोकगीत बनकर हमारे सामने उपस्थित होता है, और वहीं पर लोग झूमते हैं। और हमारे सुनील भाई भी लगातार मुस्कुरा रहे हैं कि अश्विनी लगातार बोला चला जा रहा है। यही खासियत है लोक रंजनी कार्यक्रम में, कि लोगों द्वारा रचित जो लोकगीत होते हैं उनको हम लेकर आते हैं और लेकर आते हैं। तो अनुराधा शर्मा भी कुछ ऐसे ही कुछ कह रही हैं कि सासू मुझे बुला रही, लेकिन मैं जाऊँगी नहीं। तो और अधिक सुन लेते हैं अनुराधा शर्मा की आवाज़ में ये लोकगीत।

0: नंदी जैसी भैंस हो काली खूब मगर इतराए,
1: नंदी जैसी भैंस हो काली खूब मगर इतराए,
0: छेड़छाड़ करता है देवर उसको शर्म न आए,

0: और कहा सजदज कर जब सासू निकले देखो उसके ठाट,
1: सजदज कर जब सासू निकले देखो उसके ठाट,
0: ससुरा घर में पड़ा पड़ा ही तोड़ रहा है।

0: अश्विनी भाई, ये तो लोकगीत सुना अनुराधा शर्मा से, और हम बात कर रहे थे देखिए लोक संगीत की, लोकगीतों की, लोक संगीत सांस्कृतिक पहचान और संरक्षण की अगर बात की जाए तो देखिए ये किसी विशेष क्षेत्र की वेशभूषा, खान पान, रीति रिवाजों और लोक कथाओं को संरक्षित रखते हैं, साथ ही ये हमारी जड़ों से जुड़ाव रखने में भी मदद करते हैं।
1: देखिए ना, और साथ साथ मतलब अगर मैं ये कहूँ कि कोई बनावट नहीं है, कोई दिखावा नहीं है, सीधे सीधे हमारे दिलों से निकलती है और गीतों के रूप में एक मोतियों की माला बन जाती है, चाहे इसमें ढोलक की थाप हो, खड़ताल की छनक हो, या फिर बीन सारंगी की मीठी तान हो, ये सब मिलकर एक ऐसा रंग जमाते हैं जिसमें सुनने वाले को खुद ब खुद झूम उठते हैं। जैसे आप खुद झूम रहे थे, बोले क्या गीत लगाया अश्विनी भाई आपने।
0: बिल्कुल, और देखिए मौखिक इतिहास का अगर संकलन की बात करें तो बहुत से लोकगीत पीढ़ियों से जो मौखिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं, जिनमें उस काल की सामाजिक और ऐतिहासिक घटनाएं छिपी होती हैं, यह इतिहास की किताबों से अलग आम लोगों की कहानियों को बयां करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल भाई, अगली और एक रागनी सुन लेते हैं सनोज की आवाज़ में।

सुनी भाई, ये तो रागनी सुनी सनोज कुमार से, और किस्सा था कृष्ण सुदामा का। और देखिए, हम बात कर रहे थे लोकगीतों की। अगर लोकगीतों की बात करें, अगर प्राकृतिक से जुड़ाव की प्रकृति से जुड़ाव की बात

0: करें तो अधिकांश लोक संगीत सीधे तौर पर प्रकृति, नदियों, मौसम और कृषि से जुड़े होते हैं, जो पर्यावरण के महत्व को भी रेखांकित करते हैं।
1: और देखिए ना सुनील भाई, यहाँ पे अगर हम आज के ज़माने जैसे हम बात करते हैं कि ज़माने में जो लोकगीत जो हैं, लोग जो हमारे बड़ों से सुनते हैं, नानी से सुनते हैं, दादी से सुनते हैं, और उनका अलग ही एक आनंद है, मज़ा है। जब भी हम लोक रंजनी कार्यक्रम यहाँ पर करने आते हैं, मैं और सुनील, तो कहीं ना कहीं हमारा जो मन है ना, कहीं ना कहीं गाँव की पगडंडी पर पहुँच जाता है कि कहीं वो दिन वापस आएँ और जिसमें मस्ती हुआ करती थी। कोई ऐसा दिन नहीं बीतता था जिसमें नानी है, दादी है, भाभी है, चाचा है, मामा है, दादा है, ऐसे इनके साथ इतने सारे वो जो पल बिताए होते हैं। और इन जो लोकगीत हैं, जो प्रियंका चौधरी भी हमें ऐसा ही कुछ बता रही हैं कि भाई जो हमारी जो बहनें हैं, जो भाई गर्मी उनको लगातार गर्मी गाँव में बढ़ती चली जा रही है, और कहती हैं कि भाई कहीं ना कहीं हमारे लिए एक ठंडा रूम तो ज़रूर बना दो। तो सुनते हैं प्रियंका चौधरी की आवाज़ में ये एक और लोकगीत।

भाई ये प्रियंका चौधरी की आवाज़ में आप लोग सुन रहे थे बहुत। देखिए ना, ये लोक रंजनी कार्यक्रम की एक खास विशेषता है, जहाँ पर आपको हर तरीके का रस का लोग सुनने

0: मिलेगा, जहाँ पर अपनी महिलाएं भी कुछ कुछ कह रही हैं, हमारी बहनें भी डिमांड कर रही हैं, यहाँ पर कुछ ऐसे ऐसे बोल रही हैं। बट यहाँ पर लग रहा है कि घड़ियों की सुई लगातार कह रही हैं कि कार्यक्रम का समय यहाँ पर समाप्त होने वाला, लेकिन मन नहीं आपके साथ ये साथ से जाने का, लेकिन फिर भी घड़ी की सुई कह रही है कि यहाँ का लोक रंजनी कार्यक्रम का यहाँ समय समाप्त होने जा रहा है।
1: और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर, संयोजक शिवनंदन लाल। लोक रंजनी कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम लोक रंजनी। हम आकाशवाणी दिल्ली के इंद्रप्रस्थ चैनल से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, डीआरएम 810 किलोहर्ट्स पर। आइए सुनते हैं हमारा अगला कार्यक्रम खेल खिलाड़ी।
1: खिलाड़ी खेलों का आईना।

0: जी हाँ, घड़ी की सुई ने इशारा कर दिया है, 5:30 का समय हो चला है और दिन है आज रविवार। खेल खिलाड़ी हमारा दैनिक कार्यक्रम, जिसे आज लेकर मैं हूँ आपके साथ अतुल, और मेरे साथ हैं
1: मैं हूँ रेणु गुप्ता और स्वागत करती हूँ आपका खेलों की जानकारी से भरपूर इस कार्यक्रम में।
0: जी हाँ, स्वागत है हमारे सभी श्रोताओं का। और रेणु, बहुत सारी इवेंट्स हैं जिस पर आज हमको बात करनी है, श्रोताओं को जानकारी देनी है, जिसमें अगर आप बात करें तो सबसे पहले थाईलैंड ओपन बैडमिंटन की बात करेंगे, जहां पर भारत की युवा जोड़ी ने आज मिक्स्ड मेंस डबल्स में पार्टिसिपेट किया और साथ में और भी फाइनल्स मुकाबले खेले गए। इसके अलावा IPL 2026 में कल एक अहम मुकाबला खेला गया, आज दो मुकाबले खेले जाने हैं, उस पर भी बात होगी। एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप गांधीनगर में आज खत्म हुई है, उस पर भी जानकारी देंगे। इसके अलावा डायमंड लीग 2026 शंघाई से रिपोर्ट आपको देंगे। इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की अंडर 18 मेंस और वीमेंस टीम हॉकी जो खेल रही हैं उसके बारे में श्रोताओं को बताएंगे। इसके अलावा रोमानिया में चेस चल रहा है, जहां पे राउंड 3 के मुकाबले खेले गए और राउंड 4 के मुकाबले खेले जाने हैं। इसके अलावा हमारा साप्ताहिक जो एक अंक होता है संडे ऑन साइकिल, उस पर भी चर्चा होगी। और इसके अलावा अन्य खेल खबरें, इन सब को लेकर आज के इस कार्यक्रम को आगे लेकर चलेंगे।
1: जी हाँ बिल्कुल अतुल, और क्योंकि बहुत सारी खबरें हैं तो मुझे लगता है हम जल्दी से अपनी खास खबरों के साथ शुरुआत करते हैं।
0: जी हाँ, सबसे पहले अगर बात करें तो बैडमिंटन की बात कर लेते हैं। थाईलैंड में जो चैंपियनशिप हुई उसमें आज लगभग 5 फाइनल मुकाबले खेले गए, जिसमें वीमेन सिंगल, मेन सिंगल्स, वीमेन्स डबल्स, मेन्स डबल्स और मिक्स डबल्स। और भारत के लिए अच्छी खबर ये थी कि भारत की युवा मेन्स जोड़ी ने वहाँ पे फाइनल में पार्टिसिपेट किया और सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी आज उपविजेता रहे। थाईलैंड के निमिबुत्र स्टेडियम में 53 मिनट तक चले फाइनल में उन्हें इंडोनेशिया की जोड़ी लियो रॉली कर्नांडो और डेनियल मार्टिन से 21-12 और 25-23 से हार का सामना करना पड़ा। मुकाबला काफ़ी दिलचस्प था, काफ़ी हमारे खिलाड़ियों ने जो है वो उस तरीके से फाइट की और मुकाबला रोचक बनाया। पहले गेम में सात्विक और चिराग लय हासिल करने के लिए संघर्ष करते दिखे और इंडोनेशियाई जोड़ी ने हालांकि 21-12 से आसान जीत दर्ज की, लेकिन भारतीय जोड़ी ने दूसरे गेम में शानदार वापसी की और मुकाबले को रोमांचक अंजाम तक पहुंचाया। लगातार 4 चैंपियनशिप पॉइंट बचाने के बाद वे अंत में 25-23 से गेम हारे और मैच भी हार गए और इसके साथ रजत पदक से संतोष करना पड़ा। तो ये तो ही भारतीय जोड़ी की, और इसके अलावा और भी फाइनल खेले गए। रेणु, क्या स्कोर रहे, कौन विजेता रहे?
1: बिल्कुल जैसा आपने कहा अतुल कि आज 5 मुकाबले खेले गए हैं, तो अगर हम बात करें मेन सिंगल की तो मेन सिंगल में डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसन ने थाईलैंड के कुणलावुत वितिदर्सन को 9-21, 24-22 और 21-18 से हराया।
0: हाँ, ये तो रही मेंस सिंगल्स की बात, लेकिन अगर हमने भारतीय युवा जोड़ी की बात करी तो मैच के बाद क्या प्रतिक्रिया थी सात्विक साई रेड्डी की और चिराग शेट्टी की, आइए वो सुनवा देते हैं अपने श्रोताओं को।
2: या आई थिंक डिड स्टार्ट ऑफ दैट वेल, बट वाज क्वाइट फास्ट एंड वी वर ट्राइंग टू कीप इट लो एज मच एज पॉसिबल, बट वी वर ऑलवेज ऑन द बैक फुट। बट सेकेंड गेम वी वर टेकिंग द शटल अ लॉट हायर एंड मिक्सिंग इट अप विद सम फ्लिक्स एज वेल, बट इन द एंड इट वाजंट इनफ।
3: Yeah, I mean, on the first side we played on the faster side, it was a little difficult for us.

0: was into that game style and it was tough. Yeah. But it took time for us to adjust the way we played. I think second game, I think a little bit sharper in those few points, maybe could have been the third game. Maybe, yeah, but
1: the shuttles are also quite fast. So I think when the shuttles were new, it was really, really fast and it was very difficult to adjust. Yeah. And the rallies were so fast that you didn't really know how hard you need to hit to control it. But it was quite fast today compared to the rest of the game.
0: Yeah, except today, I think the way we played, I think we are getting back that touch. I think we should believe more and be confident on court rather than playing 50-50. I think so. I feel like from the starting onward, we are 50 on when we enter on the court. But before 1 year back, 2 years back, we are always like 90%
2: okay.
0: confident.
2: Okay.
0: Maybe, but we are getting back that confidence. So happy that how we played this week, and it's more about mental rather than physical, I think. But things have started working to ourselves. I think maybe soon or later, I think very soon, we'll be on the winning side rather than the second. But yeah, happy.
3: और ये सात्विक साई रेड्डी रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को सुना मैच के बाद उन्होंने क्या कहा, और रेनु जो अन्य फाइनल मुकाबले खेले गए उस पर अब जानकारी दे देते हैं अपने श्रोताओं को।
4: जी बिल्कुल, जैसे मैंने आपको मेन सिंगल्स का बताया तो उसी तरह अगर वुमेन सिंगल्स की अगर हम बात करें अतुल, तो यहाँ पर जापान की अकाने यामागुची ने चाइना की चेन युफेई को 21-14 और 21-18 से हरा कर जो मैच है वो अपने नाम किया। वहीं मेंस डबल का तो हम जान ही चुके हैं कि मेंस डबल में जो विनर रहे हैं वो लियो रोली कार्नांडो और डेनियल मार्थिन, जो कि इंडोनेशिया के हैं, और हमारे भारत का प्रदर्शन इसमें काफ़ी शानदार रहा, जिसमें सात्विक साई राज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी, जिनको अभी आपने सुना, वो रनर अप रहे हैं। वहीं अगर विमेंस डबल की बात करें तो चाइना की बाओ लिजिंग और काओ जिहान ने जापान की रिन इवानागा और जापान की नाकानिशी को 21-16 और 21-19 से हराया। बात करते हैं मिक्स डबल्स की, तो मिक्स डबल्स में जो विनर रहे हैं वो रहे हैं डेनमार्क के मैथियास क्रिस्टियानसेन और अलेक्जेंड्रा बोजे की जोड़ी, जिन्होंने चाइना के जू यी युन और ली क्वान की जोड़ी को 21-17 और 21-15 से हराया। तो ये तो रहा हमारा आज का थाईलैंड ओपन का ये पूरा रिपोर्ट हमारे पास।
3: जी हाँ, और क्रिकेट की बात करें तो आईपीएल 2026 इस समय चल रहा है, जिसमें आज एक अहम मुकाबला खेला जा रहा है पंजाब सुपर किंग्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में। इसके अलावा शाम को भी एक मुकाबला खेला जाएगा और कल एक मुकाबला खेला गया था, लेकिन पहले ताज़ा स्कोर बता देते हैं। पंजाब और आरसीबी के बीच जो मैच खेला जा रहा है, एचपीसीए स्टेडियम में ये मैच खेला जा रहा है, जहां पे आरसीबी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 222 रन बनाए हैं। अगर बात करें तो विराट कोहली ने 37 गेंदों पर 58 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के भी शामिल थे। इसके अलावा देवदत्त पडिकल ने 25 गेंदों में 45 रन का योगदान दिया। वेंकटेश अय्यर ने एक अहम पारी खेली, जिसमें 40 गेंदों में 73 रन, जिसके अंदर 8 चौके और 4 छक्के भी शामिल थे। और टिम डेविड ने अंत में ताबड़तोड़ 12 गेंदों में 28 रन बनाए। ये था आरसीबी का स्कोर। और अगर ताजा स्कोर की बात करें तो पंजाब 2 ओवर में 16 रन पर 1 विकेट गंवा चुकी है और मैच जीतने के लिए उन्हें अभी भी 207 रन की दरकार है। तो ये देखना होगा कि शाम होते होते कौन सी टीम मैच जीती है और प्लेऑफ की दौड़ में आगे क्या संभावनाएं बनती हैं। और अगर बात करें, कल एक अहम मुकाबला खेला गया केकेआर और जीटी गुजरात टाइटंस के बीच में, उस पे आइए सुनवाते हैं मेरे साथी रेनू की रिपोर्ट।
4: कल आईपीएल 2026 में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेले गए बेहद रोमांचक मुकाबले में कोलकाता नाइट राइडर्स ने गुजरात टाइटंस को 29 रन से हराकर प्लेऑफ की अपनी उम्मीदों को जिंदा रखा। इस हार के साथ गुजरात की लगातार 5 मैचों की जीत का सिलसिला भी टूट गया। गुजरात टाइटंस के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया, लेकिन केकेआर के बल्लेबाजों ने इस निर्णय को पूरी तरह गलत साबित कर दिया। कोलकाता ने निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 247 रन का विशाल स्कोर खड़ा किया, जो गुजरात टाइटंस के खिलाफ आईपीएल इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर भी है। टीम की ओर से फिन एलन ने सिर्फ 35 गेंदों पर 93 रन की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 10 छक्के और 4 चौके शामिल रहे। युवा बल्लेबाज अंगकृष रघुवंशी ने 44 गेंदों पर नाबाद 82 रन बनाकर अपने आईपीएल करियर की सर्वश्रेष्ठ

0: गिल ने 49 गेंदों पर 85 रन बनाए, जबकि जोस बटलर ने 57 रन और साई सुदर्शन ने चोटिल होने के बावजूद वापसी करते हुए नाबाद 53 रन की शानदार पारी खेली। हालांकि बढ़ते रन रेट के दबाव में गुजरात की टीम 20 ओवर में 4 विकेट पर 218 रन ही बना सकी। केकेआर की जीत के हीरो रहे अनुभवी स्पिनर सुनील नरेन, जिन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 ओवर में सिर्फ 29 रन देकर 2 महत्वपूर्ण विकेट हासिल किए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया।
1: जी हाँ, और आईपीएल में जो कल का मुकाबला खेला गया उसमें फिन एलन ने ताबड़तोड़ पारी खेली 35 गेंद में 93 रन। तो आइए सुनते हैं उन्होंने मैच के बाद क्या कहा।
2: Look, I think it depends on the wicket, right? Today it was definitely tricky at the start. We knew that was going to be the case. Two of probably the best opening bowlers in the comp as well. So I think I just, to be honest, had a plan of, you know, just hit what I got. And if I didn't get the ball that I wanted, just try and get off strike or just not get out, really. So it was one of those wickets. And then, yeah, I just wanted to be there for a long time. Especially once Jinx got out, I knew I had to take a bit of responsibility. Yeah, I think it's just for me keeping my intent early, trying to get in good positions. If it's there, try and hit it for 4 or 6, and if it's not, just try and get off strike, really. I guess for me, I'm just trying to get in stronger positions so I can be more consistent. You know, that's going to help me combat the ball moving off the wicket and swing. So that's the plan, really, just try and keep it simple. Look, I think as a team, what we've done really well this whole tournament is stay composed. You know, we had a tough start and the dressing room was really calm. And I think that's credit to the support staff and Jinx as well, feeding that down. It's infectious for the rest of the group. So credit to them. And, you know, we just take it game by game. You know, we went 4 from 4 through the middle there, lost one, and we're back up again with another win. So I think, you know, it's pretty simple. We need to win the last two to have any chance of qualifying. So for us, we just take it game by game, keep working hard at trainings and doing our thing and hope for the best.
1: फिन एलन को आपने सुना कल मैच के बाद उन्होंने क्या कहा। और आईपीएल टूर्नामेंट जो है वो अब रोमांचक अपने मोड पर पहुंच चुका है। प्लेऑफ की दौड़ के लिए लगभग अंतिम मुकाबले रेनु खेले जा रहे हैं और आज उसी क्रम में एक अहम मुकाबला खेले जाने वाला है दिल्ली कैपिटल और राजस्थान रॉयल्स के बीच में। आइए सुनवाते हैं आज के मैच पर क्या संभावना है।
0: IPL 2026 में आज दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच बेहद अहम मुकाबला खेला जाएगा। दोनों टीमों के लिए मैच प्लेऑफ के दौड़ के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। दिल्ली कैपिटल्स की टीम इस सीजन में उतार चढ़ाव से गुजरी है, लेकिन घरेलू मैदान पर टीम का प्रदर्शन अपेक्षाकृत बेहतर रहा है। कप्तान अक्षर पटेल से एक बार फिर ऑलराउंडर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। बल्लेबाजी में पृथ्वी शाह, ट्रिस्टन स्टब्स और अभिषेक पोरेल पर बड़ी जिम्मेदारी रहेगी, जबकि गेंदबाजी में कुलदीप यादव और मुकेश कुमार टीम के प्रमुख हथियार होंगे। वहीं राजस्थान रॉयल्स की टीम इस सीजन में संतुलित दिखाई दी है। कप्तान संजू सैमसन के अलावा यशस्वी जायसवाल और रियान पराग ने बल्लेबाजी में अहम योगदान दिया है। गेंदबाजी में ट्रेंट बोल्ट और संदीप शर्मा नई गेंद से दिल्ली के बल्लेबाजों को चुनौती दे सकते हैं। दिल्ली की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है, लेकिन मैच बढ़ने के साथ स्पिन गेंदबाजों की भूमिका भी अहम हो सकती है। ऐसे में मध्य ओवरों की रणनीति दोनों टीमों के लिए निर्णायक साबित हो सकती है। अंक तालिका की स्थिति को देखते हुए दोनों टीमें जीत हासिल कर प्लेऑफ की ओर मजबूत कदम बढ़ाना चाहेंगी। ऐसे में दर्शकों को एक रोमांचक और हाई स्कोरिंग मुकाबले की उम्मीद रहेगी।
1: और ये तो हुई आज के मैच की बात। और ताजा स्थिति अगर पॉइंट्स टेबल की जान लें आईपीएल में रेनू, तो आरसीबी जो है वो इस समय 16 पॉइंट्स के साथ, जी हाँ, 12 मैच खेले हैं जिसमें से 8 जीते हैं और 4 हारे हैं, 16 पॉइंट्स के साथ टेबल में टॉप पर है। इसके अलावा गुजरात टाइटंस जो है 13 मैच के बाद 16 पॉइंट्स हैं, उनके 8 मैच जीते हैं, 5 मैच हारे हैं। सनराइजर्स हैदराबाद की बात करें तो 12 मैचों के बाद 14 पॉइंट हैं और टेबल में तीसरे स्थान पर हैं, 7 मैच जीते हैं और 5 हारे हैं। पंजाब जो अभी इस समय अपना मैच खेल रहा है, 12 मैचों के बाद 13 पॉइंट हैं, 6 मैचों में जीत मिली है, 5

0: मैच हारे हैं और एक मुकाबला बिना रिजल्ट के भी खत्म हुआ था। राजस्थान रॉयल्स 11 मैच के बाद 12 पॉइंट पर है और टेबल में पांचवें स्थान पर है। 6 जीत और 5 हार हैं उनके नाम। चेन्नई सुपर किंग की बात करें तो 12 मैच के बाद 12 अंक हैं, 6 मैच जीते हैं और 6 हारे हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स 7वें स्थान पर है 12 मैचों में 11 पॉइंट के साथ, और दिल्ली कैपिटल 10 पॉइंट के साथ 8वें स्थान पर है। मुंबई इंडियंस 12 मैच के बाद 8 पॉइंट लेकर 9वें स्थान पर है और टेबल के अंत में यानी सबसे अंतिम पायदान पर है लखनऊ की टीम, जिसने 12 मैच के बाद 8 अंक हासिल किए हैं, जिसमें 4 जीत और 8 हार हैं। तो ये तो बात हुई रेणु क्रिकेट की, आईपीएल की। और इसके अलावा एक अहम इवेंट, जी हाँ, एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो कि गुजरात के गांधीनगर में चल रही थी, आज उसका समापन भी हुआ है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण हमारे खेल प्रेमियों के लिए है। तो आइए पहले जानकारी देते रहते हैं कि आज क्या रहा और भारत का प्रदर्शन कैसा रहा, उस पर भी एक जानकारी देंगे।
1: एशियन वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का समापन आज 17 मई 2026 को भारत के गांधीनगर गुजरात के महात्मा मंदिर कन्वेंशन सेंटर में हुआ। इस प्रतिष्ठित चैंपियनशिप के अंतिम दिन पुरुषों और महिलाओं के सबसे भारी भार वर्ग के कड़े मुकाबले देखने को मिले। गुजरात के गांधीनगर में पिछले 7 दिनों से चल रही एशियन सीनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप 2026 का आज शानदार समापन हुआ। प्रतियोगिता के अंतिम दिन भारी भरकम वेटलिफ्टर्स ने मंच पर अपनी ताकत का लोहा मनवाया। टूर्नामेंट के आखिरी दिन महिलाओं के 86 प्लस किलोग्राम, पुरुषों के 110 किलोग्राम और 110 प्लस किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल मुकाबले आयोजित किए गए। आज सुबह की शुरुआत महिलाओं के सुपर हैवीवेट यानी 86 प्लस किलोग्राम वर्ग से हुई। इस मुकाबले में चीन की लियान ने पूरी प्रतियोगिता पर अपना दबदबा बनाए रखा। उन्होंने स्नैच में 145 किलो और क्लीन एंड जर्क में 178 किलो के साथ कुल 323 किलोग्राम वजन उठाकर सोने का तमगा अपने नाम किया। कतर की ओइसल इखलेफ ने रजत और पेरिस ओलंपिक की पदक विजेता दक्षिण कोरिया की पार्क योजोंग ने कांस्य पदक जीता। भारत की मार्टिना देवी ने भी इस वर्ग में जोरदार चुनौती पेश की। पुरुष 110 किलोग्राम वर्ग मुकाबले में दोपहर को हुए पुरुष 110 किलोग्राम वर्ग में पेरिस ओलंपिक चैंपियन चीन के लियून हुआन हुआ ने एक बार फिर इतिहास दोहराया। लियू ने कुल 420 किलोग्राम, 190 किलोग्राम प्लस 230 किलोग्राम वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता। तुर्कमेनिस्तान के हसन बायेव ने 392 किलो के साथ रजत पदक पर कब्जा किया। भारत के हरचरण सिंह ने घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाने की पूरी कोशिश की, लेकिन वे पदक तालिका में जगह बनाने से चूक गए। बात करें पुरुष 110 प्लस किलोग्राम वर्ग की, जो सबसे भारी वर्ग है, तो शाम के सत्र में हुए इस मुकाबले में जहां बहरीन के दिग्गज गोर मिनासियान ने अपनी ताकत का जोरदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया, भारत के लवप्रीत सिंह ने इस सबसे भारी वर्ग में देश का प्रतिनिधित्व करते हुए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। हालांकि मुकाबला बेहद कड़ा था।
0: जी हाँ रेणु, लवप्रीत की बात करी तो लवप्रीत ने पांचवा स्थान हासिल किया 110 प्लस भार वर्ग में। तो ये तो रही आज के इवेंट्स की, और क्या जानकारी है आपके पास?
1: जी हाँ बिल्कुल अतुल, ये जो पूरा का पूरा चैंपियनशिप है गांधीनगर में, आज इसका जो सफल समापन हुआ है, तो ये जो पूरी चैंपियनशिप है ये करीब एक सप्ताह तक चली है और इसमें एशिया के 28 देशों के 172 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिनमें 98 पुरुष और 74 महिला एथलीट शामिल रहे। प्रतियोगिता में कुल 16 भार वर्गों में मुकाबले आयोजित किए गए और पूरे टूर्नामेंट के दौरान कई राष्ट्रीय एवं व्यक्तिगत रिकॉर्ड भी देखने को मिले। भारत के लिए चैंपियनशिप काफी सकारात्मक रही। भारतीय खिलाड़ियों ने कई स्पर्धाओं में पदक जीतकर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई। महिला वर्ग में ज्ञानेश्वरी यादव, कोमल कोहर और संजना ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पदक दिलाए, जबकि पुरुष वर्ग में अजीत नारायण ने भी देश के लिए महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। युवा खिलाड़ियों के आत्मविश्वास और निरंतरता ने यह संकेत दिया कि आने वाले अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भारत की चुनौती और मजबूत हो सकती है। और अगर पदक तालिका की बात करें तो चीन ने एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखते हुए शीर्ष स्थान हासिल किया, जबकि उत्तर कोरिया और कजाकिस्तान जैसी मजबूत टीमों ने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया। मेजबान भारत ने भी सम्मानजनक स्थान प्राप्त किया और भविष्य के लिए उम्मीदें बढ़ाई हैं। तो अगर भारत के प्रदर्शन की एक बार फिर से हम बात करें तो महिलाओं में कोमल कहर ने 48 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतकर भारत का खाता खोला, जबकि ज्ञान

0: ईश्वरी यादव ने 53 किलोग्राम वर्ग में रजत और कांस्य पदक जीतकर शानदार प्रदर्शन किया। इसके अलावा संजना ने 77 किलोग्राम वर्ग में 3 कांस्य पदक हासिल कर भारतीय चुनौती को और मजबूत बनाया। पुरुष वर्ग में अजीत नारायण ने 71 किलोग्राम में कांस्य पदक जीतकर भारत को महत्वपूर्ण सफलता दिलाई। तो इस चैंपियन की सबसे बड़ी उपलब्धि अगर अतुल मैं कहूं तो वो ये है कि भारतीय खिलाड़ियों ने कई व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किए और एशियाई स्तर पर अपनी प्रतित अपनी एक क्षमता जो है वो साबित की है।
1: जी हाँ बिल्कुल रेनू, आपने सही कहा। और बातें तो और भी हो सकती हैं भारोत्तोलन पे, लेकिन आज अभी बहुत सारे इवेंट्स और भी हैं। और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट्स की बात करें तो डायमंड लीग यानी कि ट्रैक एंड फील्ड की बात करें तो वहाँ से कुछ हमारे पास खबर है, जिसमें 3000 मीटर स्टीपल चेज में भारत का प्रतिनिधित्व पारुल चौधरी ने भी किया। तो आइए जान लेते हैं पूरी एक रिपोर्ट। बात करते हैं 2026 डायमंड लीग शंघाई केकियाओ मीट की, जहां ट्रैक और फील्ड में कई विश्व स्तरीय प्रदर्शन देखने को मिले। शुरुआत करते हैं महिला 3000 मीटर स्टीपल चेज से, जिसने पूरे मीट का ध्यान अपनी ओर खींचा। भारतीय प्रशंसकों के लिए अच्छी खबर यह रही कि भारत की पारुल चौधरी ने 9:12.84 के साथ 7वां स्थान हासिल किया। यह उनके करियर का दूसरा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन रहा और वे राष्ट्रीय रिकॉर्ड से बेहद करीब रहीं। कुल मिलाकर यह रेस अंत तक सांसें रोक देने वाली रही। युगांडा की पेरुथ चेमुटाई ने 8:51.47 के समय के साथ जीत दर्ज की और नया मीट रिकॉर्ड तथा विश्व का सर्वश्रेष्ठ समय बनाया। उनसे केवल 0.01 सेकंड पीछे केन्या की फेथ चेरोटिच रही, जिनका समय 8:51.48 रहा। पुरुष पोल वॉल्ट में स्वीडन के विश्व रिकॉर्ड धारक आर्मंड डुप्लांटिस ने 6.12 मीटर के साथ स्वर्ण पदक अपने नाम किया और नया मीट रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद उन्होंने 6.32 मीटर पर विश्व रिकॉर्ड तोड़ने की कोशिश की, लेकिन तीनों प्रयास असफल रहे। ऑस्ट्रेलिया के कर्टिस मार्शल ने 5.80 मीटर के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। महिला शॉटपुट में नीदरलैंड्स की जेसिका शिल्डर ने धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए 21.09 मीटर का थ्रो किया। यह नया डायमंड लीग रिकॉर्ड भी रहा। महिला 400 मीटर में जमैका की निकिशा प्राइस ने अंतिम छड़ों में बाजी पलटते हुए 49.75 सेकंड में जीत दर्ज की। अमेरिका की आलिया बटलर 49.78 सेकंड के साथ दूसरे स्थान पर रही। पुरुष 110 मीटर हर्डल्स में अमेरिका के जमाल ब्रिट ने विश्व चैंपियन खिलाड़ियों को पीछे छोड़ते हुए जीत हासिल की। यह दिन के बड़े उलटफेरों में से एक रहा। महिला लॉन्ग जंप में अमेरिका की मोनाय निकोलस ने 6.89 मीटर की छलांग के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया और महत्वपूर्ण डायमंड अंक अर्जित किए। पुरुष 800 मीटर में बेहद करीबी फिनिश देखने को मिला, जहां आयरलैंड के मार्क इंग्लिश ने 1:43.85 सेकंड के साथ जीत हासिल की। पुरुष डिस्कस थ्रो में स्लोवेनिया के क्रिस्टजन चेह ने शीर्ष स्थान हासिल किया, वहीं ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू डेनी दूसरे स्थान पर रहे। महिला 200 मीटर में जमैका की शेरिका जैक्सन ने 22.07 सेकंड के साथ शानदार जीत दर्ज की। बात करें पुरुष 3000 मीटर की तो जर्मनी के मोहम्मद अब्दुल्लाही ने 7:25.77 सेकंड के समय के साथ जीत दर्ज की। पुरुष 100 मीटर में दिन का बड़ा उलटफेर हुआ। दक्षिण अफ्रीका के गिफ्ट लियो टलेला ने 9.97 सेकंड के साथ पहली बार डायमंड लीग खिताब जीता। केन्या के फर्डिनेंड ओमान्याला ने 9.98 सेकंड के साथ दूसरा स्थान हासिल किया। पुरुष 300 मीटर हर्डल्स में ब्राजील के एलियस डॉस सांतोस ने 33.01 सेकंड के समय के साथ जीत हासिल की और नॉर्वे के कार्स्टन वारहोम को बेहद करीबी मुकाबले में हराया। और अंत में महिला 100 मीटर हर्डल्स में अमेरिका की मसाई रसेल ने 12.25 सेकंड के विश्व के सर्वश्रेष्ठ समय के साथ जीत हासिल की। कुल मिलाकर शंघाई डायमंड लीग में कई रिकॉर्ड टूटे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा रही महिला 3000 मीटर स्टीपल चेस की, जहां विश्व स्तरीय प्रदर्शन के साथ भारत की पारुल चौधरी ने उम्मीद जगाई। जी हाँ, डायमंड लीग की बात करें तो अगला एडिशन, नेक्स्ट एडिशन डायमंड लीग का चीन के ही जियामेन शहर में आयोजित होगा। और इसके अलावा ट्रैक एंड फील्ड के जो खेल प्रेमी हैं उनके लिए अच्छी खबर है कि 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक फेडरेशन कंपटीशन जो है वो भी तय हो गया है, रांची झारखंड में 22 से 25 मई तक होने वाली है रेणु। तो खेल प्रेमियों के लिए अच्छी खबर है। और अगर आगे बात करें तो हॉकी, जी हाँ, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की अंडर 19-18 मैन और वीमेन की टीम जो है वो भोपाल में टूर्नामेंट चल रहा है, सीरीज चल रही है, बात करें तो उस पर भी जानकारी दे देते हैं अपने श्रोताओं को।
0: जी हाँ अतुल, बिल्कुल बात करते हैं हॉकी की, जहाँ भारत और ऑस्ट्रेलिया की पुरुष और महिला अंडर 18 टीमों के बीच भोपाल में 4 मैचों की अहम सीरीज खेली जा रही है। ये सीरीज 15 से 20 मई तक खेली जा रही है और आगामी अंडर 18 एशिया कप की तैयारियों के लिहाज से भारत के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। सीरीज के पहले मुकाबले में भारतीय पुरुष अंडर 18 ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शानदार संघर्ष करते हुए मैच 2-2 से ड्रॉ कराया था। वहीं भारतीय महिला अंडर 18 टीम को बेहद रोमांचक मुकाबले में 3-4 से हार का सामना करना पड़ा था। सीरीज में महिला टीम इस समय अपना दूसरा मैच खेल रही है, जबकि पुरुष टीम शाम 7 बजे अपना दूसरा मुकाबला खेलेगी। शेष 2 मैच 18 मई और 20 मई को खेले जाएंगे। अगर टीमों की ताकत की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की टीम तेज काउंटर अटैक और आखिरी मिनट तक दबाव बनाने की क्षमता के लिए जानी जाती है। दूसरी ओर भारतीय टीम की सफलता की बड़ी ताकत है तेज पासिंग कौशल और आक्रामक फॉरवर्ड लाइन। पुरुष टीम में आकाशदीप अच्छी लय में दिखे हैं, जबकि महिला टीम की कप्तान स्वीटी कुजूर भी बड़ी उम्मीदें होंगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि आज भारतीय युवा टीम घर में खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया पर बढ़त बना पाती है या नहीं बना पाती है।
1: रोमानिया के

0: रोमानिया के बुखारेस्ट में, रोमानिया के बुखारेस्ट में।
1: जी हाँ अतुल, बिल्कुल, ये खेल है शह और मात का, और इस खेल में जो रोमांच है वो आखिरी पल तक बना रहता है। और इसके बारे में क्या आपके पास ताज़ा खबर है, ज़रा बताइए हमें।
0: जी हाँ, रोमानिया के बुखारेस्ट में खेले जा रहे 2026 सुपर चेस क्लासिक के तीसरे राउंड में कई रोमांचक मुकाबले देखने को मिले। भारत के स्टार ग्रैंड मास्टर रमेश बाबू प्रज्ञानंद और जर्मनी के विंसेंट कीमर के बीच लंबी जंग चली, लेकिन मुकाबला ड्रॉ पर समाप्त हुआ। वहीं अमेरिका के फेबियानो कारुआना ने अपने ही देश के वेस्ली सो के साथ अंक बांटे। दिन की सबसे बड़ी खबर रही नीदरलैंड्स के ग्रैंड मास्टर अनीश गिरी की शानदार जीत, जिन्होंने फ्रांस के अली रेजा फिरोजा को कड़े मुकाबले में मात दी। वहीं नीदरलैंड के ही जॉर्डन वैन फॉरेस्ट ने रोमानिया के मेजबान ग्रैंड मास्टर बोगदान डेनियल डिएक को हराकर अपना पहला बड़ा अंक हासिल किया। इसके अलावा उज्बेकिस्तान के जाबोकेर सिंदारोव और फ्रांस के मैक्सिम वाशियर लाक्रेव का मुकाबला भी ड्रॉ रहा। तीन राउंड के बाद अंक तालिका बेहद दिलचस्प हो गई है और शीर्ष स्थान पर पांच खिलाड़ियों के बीच बराबरी की स्थिति बन गई है। फिडे कैंडिडेट्स चैंपियन जाबोकेर सिंदारोव तीन बाजियों में दो ड्रॉ और एक हार के साथ आठवें नंबर पर हैं। सिंदारोव इस साल के अंत में फिडे वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत के डी गुकेश को चुनौती पेश करेंगे। बात राउंड चार की करें रेणु अगर, तो जहां मुकाबले और भी रोमांचक होने वाले हैं, भारतीय ग्रैंड मास्टर प्रज्ञानंद का सामना जॉर्डन वैन फॉरेस्ट से होगा, वहीं विंसेंट कीमर और मैक्सिम वाशियर लाक्रेव आमने सामने होंगे। इसके अलावा अनीश गिरी की भिड़त सिंदारोव से, फेबियानो कारुआना की टक्कर अलीरेजा फिरोजा से और वेस्ली सो का मुकाबला बोगदान डिएक से होगा। फिलहाल शतरंज के इस महासंग्राम में नजरें भारतीय खिलाड़ी रमेश बाबू प्रज्ञानंद के अगले प्रदर्शन पर टिकी हैं। और ये तो बात हुई चेस की, और समय बहुत कम बच रहा है, तो आज संडे है और संडे ऑन साइकिल का आज का अंक क्या रहा, आइए श्रोताओं को बताते हैं। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल के 74वें संस्करण में देश भर के 5000 स्थानों पर 50,000 लोगों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। यह साइकिलिंग अभियान भारत सरकार के वस्तु एवं सेवा कर, GST और सीमा शुल्क विभागों के सहयोग से आयोजित किया गया। साइकिलिंग के साथ साथ योग, रस्सी कूद और जुम्बा जैसी कई मनोरंजक गतिविधियां भी समानांतर रूप से आयोजित की गईं। नई दिल्ली में यह कार्यक्रम प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित किया गया, जहां GST और सीमा शुल्क विभागों के अधिकारियों सहित सभी आयु वर्ग के 800 से अधिक लोगों ने भाग लिया। एक फन स्पोर्ट्स जोन भी बनाया गया, जिसमें लोगों ने बैडमिंटन, शतरंज, कैरम और लूडो जैसे खेलों को आजमाया। नींबू दौड़, बॉल गेम, रस्साकशी, स्क्वाट चैलेंज और पुशअप चैलेंज भी कराए गए। दिसंबर 2024 में माननीय युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया द्वारा शुरू किया गया यह साइकिलिंग आंदोलन अब तक 74 संस्करणों में 3,07,852 स्थानों पर 32,38,234 फिटनेस उत्साही लोगों की भागीदारी देख चुका है। फिट इंडिया संडेज ऑन साइकिल का आयोजन युवा मामले एवं खेल मंत्रालय द्वारा साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया CFI, इंडियन रोप स्किपिंग फेडरेशन, योगासना भारत, राहगिरी फाउंडेशन, माई बाइक्स और माई भारत के सहयोग से किया जाता है। यह साइकिलिंग अभियान सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एक साथ आयोजित किया जाता है, जिसमें साई क्षेत्रीय केंद्र, नेशनल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस, साई ट्रेनिंग सेंटर, खेलो इंडिया स्टेट सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस और खेलो इंडिया सेंटर शामिल हैं। और रेनू, समय बहुत कम बचा है, तो चलते चलते स्क्वैश की बात बता देते हैं। 2026 CIB पाम हिल्स PSA विश्व चैंपियनशिप के परिणाम, महिला फाइनल में अमीना उर्फी मिस्र की

0: खिताब जीता है, उप विजेता रहे नूर एल शेरबी ने मिस्र की ही। और इसके अलावा पुरुष की, अगर पुरुष वर्ग की बात करें तो मुस्तफ़ा असल मिस्र के विजेता रहे और उप विजेता यूसुफ इब्राहिम मिस्र के ही। भारत के 4 खिलाड़ियों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया था और लगभग दूसरे राउंड में सभी बाहर हो गए। सिर्फ वीर चोटरानी ही दूसरे राउंड में पहुंचने में कामयाब हुए थे। अभय सिंह, वी सेंथिल कुमार, रमित टंडन पहले राउंड में बाहर हो गए थे। तो ये तो बात हुई आज की खेलों खबरों की। अब समय और इजाजत नहीं दे रहा है, तो इस अंक में मुझे, अतुल को और रेणु को और हमारे प्रोड्यूसर शाहनवाज खान के साथ इस से हम लेते हैं विदा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सर फिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वीडन की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज अपने स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही व्यापार, पर्यावरण अनुकूल विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु संरक्षण के प्रयास और आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों में सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा करेंगे। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री को भी संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। गोथेनबर्ग रवाना होने से पहले नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन स्वयं एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पहुंचे और प्रधानमंत्री मोदी को विदाई दी। नीदरलैंड्स की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा व्यापार नेटवर्क पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर गहरी चिंता भी व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी नीदरलैंड्स यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री रोब येटेन के साथ प्रसिद्ध अफ्सलाउटाइक बांध का भी दौरा किया। ये यात्रा गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत नीदरलैंड्स तकनीकी सहयोग की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस परियोजना के तहत खंबात की खाड़ी पर 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाकर विशाल मीठे पानी का जलाशय तैयार किया जाएगा। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि NID जैसे संस्थान युवाओं को नवाचार और कौशल विकास के लिए सही मंच प्रदान करते हैं। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी इस कार्यक्रम में उपस्थित थे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए हैं। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। घटना में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ। जनगणना 2027 के लिए मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके तहत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
2: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
1: भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार

0: आकाशवाणी से प्रस्तुत है चहल पहल।
1: इस अंक में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल का अलंकरण समारोह, आचार्य श्री दिनेश चंद्र जोशी की जन्म शताब्दी का स्मरण उत्सव और भारतीय संस्कृति के क्षेत्र में उनके योगदान पर राष्ट्रीय संगोष्ठी। 14 मई गुरुवार को गाजियाबाद में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह। इस आयोजन में अपने संबोधन में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को शुभकामनाएं देते हुए अपने संबोधन में कहा,
2: NDRF को राष्ट्रपति निशान का सम्मान दिया गया, वो हम सब के लिए गौरव और प्रतिष्ठा की बात। ये सम्मान NDRF के समस्त बल के सेवा, साहस, शौर्य और समर्पण के संचित गुणों का सम्मान है। 20 साल के कम अंतराल के अंदर आपदा बचाव के क्षेत्र में भारत को वैश्विक नक्शे पर रखने का काम NDMA और NDRF ने किया है। हम सब के लिए एक गौरव की बात है, मगर मेरे लिए देश के गृह मंत्री के नाते एक विशेष गौरव की बात। मैं आज इस मौके पर देश भर के सभी CAPF के जवानों को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इस बारिश के पहले CAPF के जवानों ने 2019 से अब तक 7 करोड़ से ज्यादा पैड लगाने का काम किया है। और ये समस्त CAPF के मानवीय दृष्टिकोण और पर्यावरण के प्रति जागरूकता का प्रतीक। मित्रों, 111 करोड़ से ज्यादा लागत से 6 परियोजना का शिलान्यास और उद्घाटन भी हुआ है, और इसके माध्यम से मुझे विश्वास है NDRF देश की जनता को किसी भी प्रकार की आपदा से सुरक्षित करने के लिए और मजबूती के साथ काम कर पाएगी। मित्रों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 से न केवल आपदा जोखिम के न्यूनीकरण के लिए काम किया है, परंतु अब हम ऐसी स्थिति में आए हैं कि हम जीरो कैजुअलिटी के दिशा में आगे बढ़ सकते हैं, जिसका पूर्वानुमान है, जिसका हमें अंदेशा मौसम विज्ञान विभाग से मिल गया है। वहां पर जान माल की सुरक्षा, संपूर्ण सुरक्षा हमारा लक्ष्य हो सकता है। और मित्रों, NDMA और NDRF ने इस दिशा में ढेर सारे काम किए हैं। NDMA ने एक और तो नीति विषयक निर्णयों में ढेर सारे निर्णय लिए और इसके साथ साथ बहुत सारी गाइडलाइन इश्यू की है, बहुत सारी जागरूकता की और बचाव की एप्स बनाई है, और इसके माध्यम से धीरे धीरे धीरे आपदा बचाव देश का एक संस्कार बनता जा रहा है। और NDRF ने मौके पर न केवल नागरिकों के साथ रहने वाले मूक पशुओं को भी बचाकर एक उत्कृष्ट सेवा का उदाहरण दिया है। हमारा लक्ष्य है जान हानि शून्य हो और संपत्ति का नुकसान न्यूनतम हो। हीट वेव जैसी गंभीर चुनौतियों को भी भारत सरकार का गृह मंत्रालय अब बहुत अच्छे तरीके से इसका सामना करने की तैयारी कर चुका है। भारत केवल अपने देश में नहीं, विश्व में जहां जहां आपदा आती है, हमारा NDRF इसको रिस्पॉन्ड करने के लिए अहर्निश तैयार होता है। प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से डिजास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हमने दुनिया का नेतृत्व करा है। CDRI के 48 देश सदस्य बन चुके हैं और भारत के विजन के साथ काम कर रहे हैं। मैं आज NDRF के बल के सभी जवानों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और आप सभी ने ये 20 साल में देश

0: की जनता का विश्वास अर्जित करने का जो काम किया है, इसके पीछे आपका त्याग, साहस, परिश्रम और समर्पण ही कारणभूत है। और आगे पर भी हम सब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग और बदलते जलवायु परिवर्तन के कारण आपदाओं की संख्या जब लगातार बढ़ रही है, उस वक्त आपकी भूमिका और मजबूत और जरूरी होने वाली है। उसी समय राष्ट्रपति महोदया ने राष्ट्रपति का निशान देकर एनडीआरएफ की ये टीम को सम्मानित किया है, गौरवान्वित किया है। मैं हृदय पूर्वक एनडीआरएफ के सभी जवानों को और परिजनों को हृदय पूर्वक शुभकामनाएं देता हूँ। वंदे मातरम, भारत माता की जय।
1: 15 मई शुक्रवार को संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार, साहित्य अकादमी और श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में आचार्य श्री दिनेश चंद्र जोशी जन्म शताब्दी स्मरण उत्सव और संस्कृत और भारतीय संस्कृति के क्षेत्र में उनके योगदान पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अपने संबोधन में श्री दिनेश चंद्र जोशी के व्यक्तित्व एवं कृतित्व को याद करते हुए श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति श्री मुरली मनोहर पाठक ने कहा,
2: दिनेश चंद्र जोशी वर्यः न केवलम एतेषां जोशवर्याणां सम्माननम् एतेषां पावनस्मृतौ यः कोऽपि कार्यक्रमः समायोजितो भवति तन्मुखेन मन्येऽहं न कस्यचन व्यक्तिविशेषस्य अयं सम्मानः इदं सम्माननम् अपि तु समष्टेः सम्माननम् संस्कृतजगतः सम्माननम् इति भवति। एतान् महापुरुषान् वारं वारं प्रणम्य तान् प्रति श्रद्धासुमनोऽञ्जलिं समर्प्य विरमामि इति शम्।
1: इस अवसर पर अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष श्री माधव कौशिक ने कहा,
3: भारत का नागरिक पुराण को जीता है। जितने भी हमारे बड़े नेता हैं, अभिनेता हैं, बड़े जो जिनको हम हीरो जो अपनी इमोर्टल कहते हैं, वो हमारे जीवन का हिस्सा है। हमारे लिए पुस्तकें थोड़ी है, हमारे लिए वेद उपनिषद पुराण ये किताबें नहीं है। ये एक जीवन ऐसी चीजें हैं जो हमारे अंदर गई हुई और उनको हमारे अंदर उतारने का श्रेय, जैसे समुद्र में ग्लेशियर नहीं होता, ग्लेशियर का 90% हिस्सा तो समुद्र के नीचे है, हिस्सा तो 10 है, किताबें हमारा 10% हिस्सा है जो नजर आती। हमारी असली शक्ति उस वाची परंपरा में उन लोकगीतों में है, लोक नाट्यों में है, जिनको वहाँ तक पहुँचाने वाले आचार्य जोशी जी जैसे महान लोग हैं। आचार्य जी के चरणों में साहित्य अकादमी जो भी भाषाओं के सभी।
1: इस अवसर पर संस्कृति मंत्रालय के संयुक्त सचिव श्री समर नंद ने संवाददाताओं से बात करते हुए कहा,
4: ये अत्यंत सुखद एक परिस्थिति है। आज ये कार्यक्रम जो है, जो माननीय दिनेश चंद्र जोशी जी के उन जीवन पर और उनके कृतियों पर हमने बात किया है, तो ये एक प्रेरणा का स्रोत होगा। जैसे कि अब यंगर जनरेशन है, उनको कैसे हम इसके साथ जोड़ सकते हैं, जब हम संस्कृत और संस्कृति दोनों की एक पुनरुत्थान की ओर देख रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के अध्यक्षता में पूरे हर क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से हम प्रगति के पथ पर चल रहे हैं। लगातार हम इसमें प्रयासरत रहेंगे ताकि संस्कृत और संस्कृति दोनों का, जैसे मैं कहूँगा कि पुनरुत्थान नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि और आगे हम बढ़ते जाएं और उसमें हम नया कीर्तिमान प्रस्तुत करते जाएं और देश के सामने और सारे लोगों को हम इसके माध्यम से जोड़ते जाएं।
1: इस आयोजन में श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के कुलपति श्री मुरली मनोहर जोशी ने कहा,
5: मैं मानता हूँ कि ये कार्यक्रम केवल कार्यक्रम नहीं है, एक नई परंपरा का शुभारम्भ है। वह क्या नई परंपरा है? वो ये है, आज भारत सरकार भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर 2047 में विकसित भारत की कल्पना कर रही है। उस कल्पना को साकार करने की दिशा में पहला स्टेप है। तो मैं तो ये चाहूंगा कि जैसे संस्कृत के पुरोधा आचार्य दिनेश चंद्र जोशी जी का हम सम्मान कर रहे हैं, वर्ष भर हम कार्यक्रम करने वाले हैं, ऐसे अन्य भारतीय भाषाओं में जो उन भाषाओं के माध्यम से भारत का महत्व बढ़ाने वाले हैं, हम सब मिल करके एक भारत श्रेष्ठ भारत की दिशा में होकर के 2047 तक झंडा गाड़ने की, भारत विकसित भारत हो गया, हम किसी से कम नहीं है। मैं इस अवसर पर कोटि कोटि शुभकामनाएं सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री को देता हूँ, क्योंकि उन्हीं की कहीं न कहीं इच्छा इसके पीछे है जो हम आगे बढ़ रहे हैं। सभी को धन्यवाद।
6: इसी के साथ चहल पहल का आज का ये अंक यहीं संपन्न होता है।
7: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

0: अभी आपने कार्यक्रम चहल पहल सुना और अब से कुछ ही देर बाद यानी 6:20 पर आप सुनेंगे संस्कृत में समाचार। 6:30 पर समय होगा कार्यक्रम ग्राम संसार का और ठीक 7 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 7:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम कृषि जगत और 7:30 पर होगा आपका पसंदीदा कार्यक्रम गज़ल और कव्वाली का। फिलहाल संस्कृत में समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वीडन देशस्य द्विदिवसीय यात्रायां गोथेनबर्ग नगरं सम्प्राप्तवान्। सह स्वीडन देशस्य प्रधानमंत्रिणा उल्फ क्रिस्टर्सन इत्यनेन सह व्यापार हरित परिवर्तन एआई तथा रक्षा क्षेत्रेषु सहकारस्य समीक्षायै वार्तालापं करिष्यति। भारत नीदरलैंड्स देशौ द्वैपाक्षिक संबंधान सामरिक सहभागित्वेन वर्धितवन्तौ। प्रमुखेषु क्षेत्रेषु सहयोगं सुदृढं कर्तुं 17 संधिपत्रेषु हस्ताक्षरितवन्तौ। होर्मुज जलसंधौ वाणिज्यिक नौकायानस्य उपरि आक्रमणानि अस्वीकार्यानि इति भारतेन निन्दितम्। कांगो युगांडा देशयोः इबोला प्रकोपः अंतर्राष्ट्रीय चिंतायाः सार्वजनिक स्वास्थ्य आपत्कालेति विश्व स्वास्थ्य संघटनेन घोषितम्। अपि च बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य श्रेयांसी वालिसेटी इत्येषा बावोजी चाइना मास्टर्स स्पर्धायां महिला एकल क्रीडायां रजत पदकं विजितवती। अथ वार्ताः विस्तरेण। भारतस्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग नगरं सम्प्राप्तवान्। नीदरलैंड्स देशस्य स्वीयां यात्रां समाप्य असौ अद्य सायंकाले स्वस्य 5 देशानां यात्रायाः तृतीये चरणे स्वीडन देशं सम्प्राप्तवान्। स्वीडन देशस्य स्वीयायां द्विदिवसीय यात्रायां श्रीमोदी अद्य स्वीडिश प्रधानमंत्रिणा उल्फ क्रिस्टर्सनेन सह द्विपक्षीय वार्तां करिष्यति तथा द्विपक्षीय संबंधानां सर्वेषां पक्षाणां समीक्षापि विधास्यति। उभयोः पक्षयोः व्यापारः हरितपरिवर्तनं कृत्रिम बुद्धिमत्ता स्टार्टअप्स सुदृढ आपूर्ति श्रृंखलाः रक्षा अंतरिक्षं जलवायु परिवर्तनं जनसंबंधाश्च इत्यादिषु सहयोगस्य नूतनान् मार्गान् अन्वेष्टुम् अपेक्षा अस्ति। उभौ प्रधानमन्त्रिणौ उर्सुला फॉन डेर लेयन इत्यनया यूरोपीय आयोगस्य अध्यक्षया सह मिलित्वा यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलनम् अपि सम्बोधयिष्यतः यत् प्रमुखम् अखिल यूरोपीय व्यापार मञ्चम् अस्ति। स्वस्य द्विदिवसीयायाः नीदरलैंड्स देशस्य यात्रायां प्रधानमन्त्री श्रीमोदी स्वस्य डच समकक्षीयेण सह द्विपक्षीय वार्तां कृतवान्। उभौ देशौ रक्षा महत्वपूर्ण खनिज तथा अन्येषु प्रमुख क्षेत्रेषु सहयोगं सुदृढीकर्तुं 17 संधिपत्राणि हस्ताक्षरितवन्तौ। उभौ नेतारौ पश्चिम एशिया देशस्य स्थितेः तथा वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति व्यापारस्य उपरि तस्य प्रभावस्य विषये गभीरां चिन्तां प्रकटितवन्तौ। सामाजिकान्तर्जालीये पटले लिखिते सन्देशे श्रीमोदी उक्तवान् यत् नीदरलैंड्स देशस्य तस्य यात्रा द्विपक्षीय संबंधान नूतने स्तरे नेष्यति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मई मासस्य 31 दिनांके आकाशवाण्याः मन की बात इति कार्यक्रमे देश विदेशस्थ जनैः सह विचार विनिमयं करिष्यति। इदं हि मासिकस्य रेडियो कार्यक्रमस्य 34वें संस्करणं भविष्यति। जनाः नमो ऐप इति चलदूरभाषीय तन्त्रांशे माई GOV ओपन फोरम इत्यत्र अथ च 1800117800 अनेन दूरभाष संख्या माध्यमेन च कार्यक्रमस्य विषये स्वीय प्रतिक्रियां दातुं शक्नुवन्ति। आगामी संस्करणाय परामर्शाः अस्य मासस्य 31 दिनांक पर्यन्तं स्वीकृताः भविष्यन्ति। होर्मुज जलसंध्यां वाणिज्यिक नौकासु कृतं होर्मुज आक्रमणम् अस्वीकार्यम् इति कथयन् संयुक्तराष्ट्रसंघे भारतस्य स्थायी प्रतिनिधिः पर्वतनिनी हरीशः उक्तवान् यत् नागरिक नौकाचालकानां लक्ष्यीकरणं

0: तथा नौवहन स्वातंत्र्यस्य बाधा केनापि प्रकारेण न्यायोचितं न भवितुमर्हति। सः वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रवाहस्य सुरक्षा विषये संयुक्त राष्ट्रस्य आर्थिक सामाजिक परिषदः विशेष सभायां भाषणं कुर्वन् आसीत्। श्रीहरिशस्य एषा टिप्पणी ओमान तटस्य समीपे भारतीय ध्वजयुक्तायां वाणिज्यिक नौकायां जातस्याक्रमणस्य कतिपय दिनानन्तरम् आगता। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय गृह सहकारिता मंत्री अमित शाहः एआई तथा डीप टेक इत्येतौ भविष्यस्य अर्थव्यवस्थायाः मुख्यस्तम्भौ इति वर्णितवान्। अद्य गुजरातस्य अहमदाबाद नगरे मिलियन माइंड्स टेक पार्क फेज वन तथा ग्रैमी सिटी कैंपस इत्येतयोः उद्घाटनं कुर्वन् सः अवदत् यत् भारतं विश्वस्य प्रत्येकस्मिन् उदयोन्मुख क्षेत्रे अग्रणी अभवत्।
1: आने वाले 25 साल में जो सेक्टर विश्व की अर्थनीति को, विश्व के अर्थतंत्र को दिशा देंगे, वो सभी क्षेत्र में आज भारत फाउंडर बनकर अपनी मजबूत उपस्थिति को दर्ज करा रहा है और यही बता रहा है कि भारत का भविष्य बहुत सुनहरा है। एआई और डीप टेक के जो भविष्य है, इसके लिए इसके जैसे टेक पार्क बहुत बड़ा काम भी करेंगे और इसको आगे भी बढ़ाएंगे।
0: केन्द्रीय नवीकरणीयोर्जा मंत्री प्रह्लाद जोशी अवदत् यत् भारत देशेन एकस्मिन्नेव दिने 4.6 गीगावाट परिमिता अभिलेखीय उच्च विद्युत आवश्यकता सफलतया पूरिता। एकस्मिन् निजी आंग्ल समाचारपत्रेण सह वार्तालापे श्रीजोशी महोदयः उक्तवान् यत् विद्युत आवश्यकतायाः प्रायः 33% नवीकरणीयोर्जा स्रोतैः पूरितम्। तेनोक्तं यत् भारतस्य विद्युत संरचना अधुना अधिका सुदृढा, भविष्याय च सज्जा अस्ति। मंत्री अग्रे उक्तवान् यत् एतत् परिवर्तनम् ऊर्जा क्षमतायाः तीव्र विस्तारं, विद्युतिकीय सुदृढीकरणं तथा च राष्ट्रस्य विकासपथे स्वच्छोर्जायाः वर्धमानं योगदानं प्रदर्शयति। त्रिवेन्द्रम न्यू दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस रेलयानस्य पृष्ठभागे जातस्य अग्निकाण्डस्य उच्चस्तरीयान्वेषणस्य आदेशः रेलमन्त्रालयेन प्रदत्तः। अद्य प्रातः प्रायः 5:15 कोटा संभागस्य नागडा क्षेत्रस्य समीपे त्रिवेन्द्रम न्यूदेल्ही राजधानी इत्यत्र एकः गार्डकोचः, एकः AC 3-tier इत्येतयोः द्वयोः कोचयोः अग्निप्रकोपः अभवत्। मन्त्रालयः अवदत् यत् कोचमध्ये सुरक्षाव्यवस्थायाः तत्क्षणमेव कार्यं कृतम्, रेलयानं च स्वयमेव स्थगितम्। रेलचालकदलेन तत्क्षणमेव प्रभावितौ उभौ कोचौ पृथक् कृतं तथा च अस्यां घटनायां यात्रिणः क्षतेः कापि सूचना नास्ति। विश्वस्वास्थ्यसङ्घटनेन इबोला महामार्याः घोषणा कृता। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य तथा युगांडा देशयोः प्रसृतं कोरोना विषाणोः प्रकोपं अन्तर्राष्ट्रियस्तरे सार्वजनिक स्वास्थ्य आपत्कालरूपेण घोषितमस्ति। विश्वस्वास्थ्यसङ्घटनस्य महानिदेशकः टेड्रोस अधानोमा घेब्रेयसस इत्यनेन 300+ संदिग्ध प्रकरणानां तथा 88 मृत्युनां विवरणानन्तरं एषा निर्णयः प्रदत्तः। WHO संस्थया सामाजिक अन्तर्जालीय पटले प्रकाशिते संदेशे स्पष्टतया उक्तं यत् अयं प्रकोपः COVID-19 इव वैश्विक महामारी आपत्कालस्य श्रेण्यां नागच्छति तथा च अन्तर्राष्ट्रीय सीमाः न निरोधव्याः इति परामर्शः अपि प्रदत्तः। स्वास्थ्य अधिकारिभिः उक्तं यत् अयं प्रकोपः इबोला विषाणोः दुर्लभेन बंडिवुग्यो प्रभेदेन सम्बद्धः अस्ति, यस्य कृते अधुना किमपि स्वीकृतम् उपचारः उपवा उपलब्धः नास्ति। इबोला रोगः शरीरद्रवसंस्पर्शेन प्रसारं करोति तथा च गभीरां, प्रायः प्राणघातिनीं च व्याधिं जनयितुं शक्नोति। बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य श्रेयांसी वाल्लिसेट्टी इत्येषा बावोजी चाइना मास्टर्स स्पर्धायां महिला एकल क्रीडायां रजतपदकं विजितवती। अद्य नेपाल देशीया पर्वतारोही कामी रीता शेरपा इत्येषा द्वात्रिंशत् वारं माउंट एवरेस्ट शिखरम आरुह्य ऐतिहासं विरचितवती। षट्पञ्चाशत् वर्षीया एषा पर्वतारोही विश्वस्य उच्चतम शिखरं सर्वाधिकवारं आरोहणस्य स्वकीयमेव कीर्तिमानं पुनः आरेखितवती। इति वार्ताः।
2: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। अब प्रस्तुत है कार्यक्रम ग्राम संसार।

0: ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को
1: राम राम, राम।
0: अश्विनी भाई कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। देखिए, हमारे देश में रेडियो या यूं कहें कि आकाशवाणी की पहुंच दुनिया में सबसे व्यापक है। जो देश की 99% से अधिक जनसंख्या सीधे तौर पर पहुंचती है।
2: बिल्कुल।
0: और इस वर्ष आकाशवाणी अपने ऐतिहासिक और गौरवशाली 90 वर्ष का सफर पूरा कर रहा है। जून 1936 में शुरू हुई इस यात्रा ने रेडियो को मनोरंजन सूचना का सबसे भरोसेमंद माध्यम में बदल दिया है। और इतना ही नहीं सुनी भाई, बात करें चाहे ग्रामीण विकास की, खेती की, रेडियो के माध्यम से सरकारी योजनाओं की जानकारी, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, युवाओं के लिए रोजगार की जानकारी, या फिर महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात हो, या फिर किसान भाइयों को वैज्ञानिक खेती संबंधी जानकारी, नई नई तकनीकों जानकारी, नए नए उपकरणों की जानकारी, या फिर हो देश में किसी भी लगने वाले कृषि मेलों की जानकारी।
2: बिल्कुल।
0: और अश्विनी भाई, इतना ही नहीं, देखिए कृषि आधारित कार्य, चाहे फिर मुर्गी पालन हो, मछली पालन हो, फिर बात हो पशुपालन की, सबकी जानकारी रेडियो कार्यक्रमों के माध्यम से मिलती है। और समय के साथ विज्ञान की तरक्की के साथ साथ आकाशवाणी में भी परिवर्तन आया। आज किसान भाई फ़ोन इन कार्यक्रम के माध्यम से घर बैठे फ़ोन द्वारा सीधे वैज्ञानिकों से अपनी समस्याओं का समाधान पूछ सकते हैं, और घर बैठे सीधे अपने जो पसंद के जो लोकगीत, रागनी और भी जो कार्यक्रम है वो सुन सकते हैं। कहने का मतलब है कि आकाशवाणी का ये 90 वर्ष का सफ़र सभी के लिए ऐतिहासिक और गौरवशाली है।
2: भाई 90 वर्षों में देखें ना कि आकाशवाणी ने इतने नए आयामों को छुआ है। जैसे आपने बात करी कि डिजिटल हो गया है सारा, पहले का अगर समय अगर हम देखें तो सब कुछ बातचीत से या लोगों के जो एक्सपीरियंस था उनसे खेती बाड़ी हुआ करती थी। लेकिन आज मैं अगर यूं बात करूं कि जैसे हम जो रूरल प्रोग्राम ग्राम संसार कृषि जगत कार्यक्रम करते हैं, और यहां तक किसान की बात और उन्नत किसान कार्यक्रम जो करते हैं, उसमें अलग अलग दिन अलग अलग सब्जेक्ट्स पे हम वैज्ञानिकों को बुलाते हैं और उनकी समस्याओं का समाधान लेते हैं, और उनके जहन में आए हुए सभी सवालों को उस कार्यक्रम में शामिल कर उनके समाधानों को उन तक पहुंचाते हैं, जिससे उनकी कृषि बहुत अच्छी हो और उनकी लागत कम हो और उनको अधिक से अधिक फायदा मिले। यही देखिए ना, आकाशवाणी के माध्यम से लोगों को ये आकाशवाणी, मैं कहता हूँ, एक विकराल और उस रूप पर जाकर पहुंच गया है कि यहाँ से जाने वाली हर एक इंफॉर्मेशन हर तक, हर किसी किसान, हर किसी युवा को, और मैं कहूँगा जो एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, जो हमारे युवा हैं, जो उनको इतनी सारी जानकारियाँ यहाँ पर मिलती हैं कि वो अपना, अगर वो हम अगर हम यूं कहें कि इतनी सारी बातें करने के लिए इस प्रोग्राम में हैं, क्योंकि 90 वर्ष हम पूरा करने जा रहे हैं, इतना गर्व महसूस होता है जब रेडियो से हम लोगों को द्वारा संबोधित करते हुए बताते हैं, जानकारी देते हैं, इतनी खुशी महसूस होती है यहाँ पर हमें।
0: बिल्कुल, बात आकाशवाणी की, यार आपने की अश्विनी भाई बात की जानकारी, और जानकारी के साथ साथ देखिए मनोरंजन के मामले में भी आकाशवाणी पीछे नहीं है। और भाई आज तो हमारा विशेष पत्रोत्तर पर आधारित लोक संगीत का फरमाइशी कार्यक्रम है। जैसा कि मैंने बताया कि भाई अब इतना परिवर्तन हो गया कि भाई किसान भाई घर बैठे फोन इन कार्यक्रम से सुन सकते हैं, साथ ही अपने पसंद के कलाकार को सुन सकते हैं। तो भाई आज हम भाइयों के लिए उनके पसंद के कलाकार लेकर आए हैं, और आज उनके पसंद का जो पहला कलाकार है वो सत्येंद्र यादव है।

0: उस्तेंद्र यादव को सुनने के लिए जो पहली फरमाइश हमें मिली है, ये मिली है कस्बा बराड़ जिला अम्बाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल और उनके समस्त परिवार की तरफ से। साथ ही हमें फरमाइश मिली है गाँव चोलदा बागपत से संजय ढींगिया, नमन ढींगिया और अपार ढींगिया की।
1: जी
0: रिंगनी छत्तीसगढ़ से फरमाइश भेजी है दिनेश वर्मा और करुण वर्मा ने।
1: जी
0: इसी के साथ और भी जो फरमाइश हमें मिली है जो सेंद्र यादव को सुनना चाहते हैं, गांव चौधरीवास हरियाणा से मांगेराम स्तोड़, रितु सिंह ईमानी और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: और एक पत्र शामिल कर लेते हैं जिन्होंने जो सुनना चाहते हैं सतेंद्र यादव को सुनना चाहते हैं वो है चंडीगढ़ से पत्र लिखा है सतीश आनेजा और विमला आनेजा का, और यही रघुनाथपुरा ज़िला श्री गंगानगर राजस्थान से ये पत्र में लिखते हैं लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और उनका पूरा परिवार, और यहीं पर ये हमें नमस्कार करते हैं। नमस्कार, ये वांडीखेड़ा पंजाब से पत्र लिखते हैं मिंटू, टॉमस, पिंकी, लवली, आरती और उनका पूरा परिवार।
0: इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है वो मिली है ढाणा नारसन भिवानी से, इसको भेजने वाले हैं जगदीश चिंडालिया, राजवीर चिंडालिया, सतीश चिंडालिया और उनका समस्त परिवार।
1: और दुर्गा कलोनी हांसी से एक और पत्र शामिल कर लेते हैं, ये है राजू मिगलानी, बबीता मिगलानी, सुभाष रोगी, डब्लू डब्लू और उनका पूरा परिवार।
0: साथ ही हमें फरमाइश मिली है मुकेश बत्ता और नीलम बत्ता की, और ये भी सुनना चाहते हैं सतेंद्र यादव को। इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है हनुमानगढ़ राजस्थान से, उसको भेजने वाले हैं रजाक मोहम्मद, समीम बेगम और उनका समस्त परिवार।
1: गांव थाना पंजाब से एक और पत्र शामिल किया कर रहे हैं प्रोग्राम में, ये हजिंद्र छिब्बा, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता और उनका पूरा परिवार। यहीं पर एक और पत्र शामिल कर लेते हैं, गांव हांडीखेड़ा जिला है सिरसा से है राधे राधेश्याम शर्मा और इंदिरा शर्मा।
0: और इसी क्रम में अगली फरमाइश हमें मिली है बठिंडा रोड से, इसको भेजने वाले हैं राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग और उनका समस्त परिवार।
1: अनारकली बजराऊ से एक पत्र और शामिल कर लेते हैं जिन्होंने सुनना चाहे सतेंद्र यादव को, ये सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपक मल्होत्रा, गयम मथुरा और सुच्चा भाई पाठक और उनका पूरा परिवार।
0: इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है वो मिली है गांव कलाना राजस्थान से, उसको भेजने वाले हैं विक्रम, सचिन, योगेश और सतीश और उनका समस्त परिवार। साथ ही हमें फरमाइश मिली है पदमपुरा जिला श्री गंगानगर राजस्थान से मेहर अरोड़ा, ममता अरोड़ा, कीर्ति अरोड़ा और उनके समस्त परिवार की तरफ।
1: गांधीनगर गुजरात से एक और पत्र हम शामिल कर लेते हैं जिन्होंने सुनना चाहे सतेंद्र यादव को, यह सुरेश राठौर, मंजुला राठौर, विशाल राठौर और निशा राठौर का है। यही एक और पत्र शामिल कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में, ये है नूर शाहनूर नगर यमुनत माला से है राहुल, राहुल सल्ला, विशाल, चेतना, रोशनी और उनका पूरा परिवार।
0: अगली फरमाइश हमें मिली है भिवानी हरियाणा से, उसको भेजने वाले हैं महिपाल, नीरू, उत्कर्ष और उनका समस्त परिवार। साथ ही हमें फरमाइश मिली है कुड़ी सेक्टर 5 सूर्य नगरी से जोधपुर राजस्थान से, और इसको भेजने वाले हैं रमेश चंदर, मोहनी, बेबी गरवी और उनका समस्त परिवार।
1: छत्तीसगढ़ से ये पत्र हम भेजा है, ये है राजपाल भजगेजिया, राधिका, बेबी अनिष्का और उनका पूरा परिवार। और ये है छत्तीसगढ़ से एक और पत्र में भेजा है देवगन तुमारिया, अजयगन तुमारिया, तुषार और उनका पूरा परिवार।
0: तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं सुरेंद्र यादव से ये रागनी और किस्सा रहेगा सत्यवान सावित्री का।

सुधा घुमरी मेरी भुया दिखना बंद जचे है चारों खूंट अंधेरी रहे चारों खूंट अंधेरी।

0: सुनिए भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर राग नहीं सुनी जितेंद्र यादव से। और देखिए, आज 17 मई है और आज के दिन को हम विश्व दूरसंचार एवं सूचना समाज दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस दिवस को जो मनाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो इंटरनेट और अन्य सूचना व संचार माध्यमों के उपयोग से समाज और अर्थव्यवस्था में आने वाली संभावनाओं और डिजिटल विभाजन को कम करने के तरीकों के बारे में जागरूकता लाना है।
1: और देखिए ना, इसका जो दूरसंचार का हमारे जीवन में क्या महत्व है सुनील भाई, हमारा महत्व ये है कि किसानों को मौसम और बाज़ार भाव की जानकारी प्राप्त रहे और छात्र ऑनलाइन शिक्षा से जुड़े रहें, और यहाँ तक कि मरीज जो हैं ये टेली मेडिसिन के जरिए डॉक्टरों की सलाह ले पाएँ और डिजिटल भुगतान और ऑनलाइन सेवाओं से काम और आसान हो जाए। यही यही एक एक मूल मूल मंत्र है कि इन सभी सुविधाओं को अपनाकर हमारे हमारे युवा, हमारे किसान और जो भी इनसे जुड़ा हुआ है उनको लगातार इसका फ़ायदा मिले।
0: और इस दिवस की अगर बात करें तो इस दिवस को मनाने की जो शुरुआत भाई 17 मई 1969 में की गई। और यह दिन वैश्विक स्तर पर आर्थिक और सामाजिक विकास में दूरसंचार के महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। और साथ ही भाई देखिए, आम जनता के जीवन को आसान व संचार माध्यम से योगदान को सराहना जाता है।
1: छोटी सी बात यहाँ पर एक जोड़ना चाहूँगा सुनील भाई और कि भाई, लेकिन उसमें सावधानी भी बहुत ज़रूरी है कि अगर हम तरक्की कर रहे हैं और हम तकनीकों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ठगी का और फर्जी सूचनाओं का भी खतरा बहुत बढ़ जाता है। यहाँ पर अपनी निजी जानकारी सुरक्षित रखें, केवल भरोसेमंद स्रोतों और जानकारी लें, ऑनलाइन लेन देन में सतर्क रहें। और आज हमें यह संदेश देता है कि तकनीक का सही उपयोग समाज को आगे बढ़ा सकता है और हर व्यक्ति को विकास की मुख्य धारा से जोड़ता है।
0: बिल्कुल सही कहा सुनी भाई। और आज के जो हमारे अगले कलाकार हैं वो हैं बलराम बंसल। और बलराम बंसल को सुनने के लिए जो पहली फरमाइश मिली है, ये फरमाइश हमें मिली है गांव फ्रांसी जिला हिसार से, और इसको भेजने वाले हैं राजकुमार डोडी, प्रमोद कुमार डोडी और उनका समस्त परिवार।
1: और जटवाड़ा गाजियाबाद से एक पत्र हमें और मिला है, शीशपाल अकेला है जिन्होंने सुनना चाहा है बलराम बंसल जी को। और एक और पत्र है लोहागढ़ ठाकुरवाला से है, सरवण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुलरार, गुनगुन और शुभम दीप का।
0: बलराम बंसल को ही सुनना चाहते हैं राजेंद्र कुमार, मलकीत कौर, आरती रानी और उनका समस्त परिवार, गांव उगाला जिला अम्बाला हरियाणा से। और इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है वो मिली है MLB रोड ग्वालियर से सुरेश खुराना, पप्पी किरण खुराना, लव्य आरव और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: और गांव मुरादागढ़ जिला करनाल हरियाणा से ये है रमेश कुमार काम्बोज, पिंकी काम्बोज, वंश काम्बोज और उनका पूरा परिवार।
0: इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है वो मिली है लोहड़ा जिला बागपत से, और इसको भेजने वाले हैं जगमोहन सिंह प्रजापति, सुधर नूतन और उनका समस्त परिवार।
1: पंजाब ये पटेल नगर मालोट से पत्र में मिला है ये डॉक्टर रमेश कुमार।

0: सीता रानी, गगनदीप और गुड्डू और उनका पूरा परिवार।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश हमें मिली है करावल नगर दिल्ली से रामनाथ प्रजापति और सुमन देवी की,
0: और ये है दिल्ली, ये का कलानर दिल्ली से पत्र मिला है राजनाथ सिंह प्रजापति, श्रीमती सुमन देवी और ये बेहरवाला खुर्द हिसार से है। यह है बलवंत जाखड़, ममता जाखड़, प्रिया, हिमानी, शिवानी और उनका पूरा परिवार।
1: और ये फरमाइश हमें मिली है हनुमानगढ़ टाउन से, इसको भेजने वाले सुल्तान सिंह, कृष्णा, रामचंद्र और उनका समस्त परिवार। तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं बलराम बंसल से ये रागनी।

0: सुनी भाई, ये तो भाइयों ने रागनी सुनी अपनी पसंद पर बलराम बंसल से। और देखिए, आज भाई विश्व दूर संचार एवं सूचना समाज दिवस के साथ साथ आज हम विश्व उच्च रक्षा दिवस भी मना रहे हैं।
1: जी
0: और इस दिवस को जो मनाने का उद्देश्य यही है कि भी देखिए, इसको साइलेंट किलर कहा जाता है, रक्तचाप या ब्लड प्रेशर, और इसके खतरों के प्रति, जो बचाव प्रति लोगों को जागरूकता लाने के लिए ये दिवस मनाया जा रहा है। और साथ ही देखिए भाई, इस वर्ष के अगर थीम की बात करें तो इस वर्ष का जो थीम यानी विषय रखा गया है, उच्च रक्तचाप को मिलकर नियंत्रित करें।
1: बच्चों, छोटी कुछ बातों का अगर ध्यान रखेंगे ना, तो ये जो जो जानकारी है, या थोड़ा थोड़ा सा अपनी जो दिनचर्या में अगर आप थोड़ा सुधार कर लें, थोड़ा सुबह जल्दी उठें, थोड़ा व्यायाम करें, थोड़ा खान पान पर ध्यान रखें, बाहर का जंक फूड ना खाएं, ये छोटी छोटी सी बातें हैं अपने अगर अपने जीवन शैली में अपना लेंगे तो ये सब चीज़ें जो हैं आप तक बहुत मुश्किल से पहुँचेंगी या पहुँचेंगी नहीं, कि अब क्योंकि जीवन शैली एक ऐसा एक वो है कि आप अपने आप को भी बताइए, अपने परिवार को बताइए, आसपास के लोगों को भी बताइए। सब जानकारी सबसे बड़ा एक महत्वपूर्ण अंग है जो हमको सबको साझा करना चाहिए, हर किसी चीज़ के बारे में लोगों को बताना चाहिए और जागरूक करना चाहिए।
0: और तभी इस दिवस को मनाने का फायदा होगा और
1: बिल्कुल
0: मनाने का जो उद्देश्य है वो पूरा होगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो अश्विनी भाई, आज के जो हमारे अगले और अंतिम कलाकार हैं वो हैं राजेश कुमार अट्टा।
1: जी
0: और राजेश कुमार अट्टा के लिए फरमाइश आपके हाथ में दिखाई दे रही है।
1: जी जी पहला पत्र मैं ले लेता हूँ, ये जिन्होंने सुनना चाहा है राजेश कुमार अट्टा को, ये है ग्राम कोहरा जिला राजनांदा गांव छत्तीसगढ़ से है, बबलू साहू, जामुन देवी साहू, बेबी साहू, आराध्या और उनका पूरा परिवार।
0: इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है धनोरी तेलीवाला से, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, बेबी आलिया और आयान बाबू की। साथ ही हमें फरमाइश मिली है जलालपुरा जिला सहारनपुर से, स्वर्ण कुमार, शिवम, आर्यन, लविस और उनके समस्त परिवार की तरफ
1: और एक
0: से।
1: और पत्र शामिल कर लेते हैं, ये तहसील भद्रवाह जिला डोडा जम्मू कश्मीर से भेजा है, पुराने श्रोता है हमारे, पुरुषोत्तम कुमार, शिव और मोतीलाल और इनका पूरा परिवार।
0: इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है गांव गोविंदगढ़ मांझीवाला से, और इसको भेजने वाले राजू टुटेजा, खुशदिल, उर्मिला टुटेजा, गुड्डू, जीनू, मन्नू और उनका समस्त परिवार। इसी क्रम में जो अगली फरमाइश हमें मिली है जसपुरा उत्तराखंड से, इसको भेजने वाले रियासत हुसैन, नाजमा बेगम और उनका समस्त परिवार।
1: और पराली छत्तीसगढ़ से पत्र मिला है हमें, नितेश कुमार देवगन, दुर्गा प्रसाद देवगन और तनुजा देवगन, ईशान देवगन, उनका परिवार, जिन्होंने सुनना चाहा है राजेश कुमार अट्टा को।
0: और भाई देखिए, फरमाइश हमें काफ़ी और भी मिली है सुनी भाई,
1: जी
0: जो हम अपने अगले कार्यक्रम कृषि जगत में शामिल करेंगे। तो देखिए भाई, 7:05 पर आप कार्यक्रम कृषि जगत भी सुनते रहें, और
1: जी
0: अभी सुन लेते हैं आप सभी की पसंद पर राजेश कुमार अट्टा से ये रागनी, और किस्सा रहेगा गोपीचंद का।
1: जी

अश्विनी भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर रागनी सुनी राजेश कुमार अट्टा से, और किस्सा था गोपीचंद का। और राजेश कुमार अट्टा की गाई इस रागनी के साथ ही आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल। ग्राम संसार कार्यक्रम सुनने वाले सभी बहन भाइयों को राम राम, राम।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर अब से कुछ ही क्षण बाद यानी ठीक 7 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने 5 देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया। स्वीडन की 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी आज स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता आपसी संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा करेंगे, साथ ही व्यापार, पर्यावरण अनुकूल विकास, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकी, स्टार्टअप, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु संरक्षण के प्रयास और आपसी संपर्क जैसे क्षेत्रों के सहयोग के नए अवसरों पर भी चर्चा होगी। दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लैन के साथ यूरोपीय उद्योग गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। नीदरलैंड्स की 2 दिवसीय यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटिन के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया की स्थिति और उसके वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति तथा व्यापार नेटवर्क पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर गहरी चिंता भी व्यक्त की। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उनकी नीदरलैंड्स यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने विश्वास व्यक्त किया कि भारत और नीदरलैंड्स की मित्रता आने वाले समय में और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने प्रधानमंत्री रोब येटिन के साथ प्रसिद्ध अफ्सलाउडडाइक बांध का भी दौरा किया। यह यात्रा गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत नीदरलैंड्स तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इस परियोजना के तहत खंभात की खाड़ी पर 30 किलोमीटर लंबा बांध बनाकर विशाल मीठे पानी का जलाशय तैयार किया जाएगा। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने इस महीने की 14 तारीख को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया है। गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान NID में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि यह एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है। श्री जोशी ने बताया कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है।
1: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की काफी लंबे समय से लंबित मांगें पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 25 तारीख को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले नागरिक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करेंगी। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। और खेलों में IPL क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 230 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में पंजाब ने ताजा समाचार मिलने तक 18वें ओवर में 6 विकेट पर 172 रन बना लिए हैं। दिन के दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला राजस्थान रॉयल्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर अब प्रस्तुत है कार्यक्रम कृषि जगत।

0: कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को
1: राम राम।
0: अश्विनी भाई कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। देखिए रविवार का दिन है और आज कृषि पत्रोत्तर कार्यक्रम लोक संगीत के साथ है। भाइयों के खत भी आपके हाथ में दिखाई दे रहा है और भाई देखिए, लेकिन पहले भाइयों से कुछ बात कर लें। देखिए किसान उत्पादक संगठन किसानों का एक ऐसा सामूहिक समूह या कंपनी है
1: जी।
0: इसका मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को संगठित कर उन्हें कृषि व्यापार और बाजार के जो मुख्य धारा से जोड़ना है ताकि वो अपनी आय बढ़ा सके। और देखिए सरकार का उद्देश्य भी यही है कि किसानों की आय दुगनी की जाए, किसानों की आय बढ़ाई जाए। इसमें अगर सदस्यता की बात करें तो ये एक रजिस्टर्ड संस्था या कंपनी होती है। मैदानी इलाकों में इसे बनाने के लिए कम से कम 300 किसानों का समूह होना चाहिए और पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्यों की अगर बात करें तो 100 सदस्य इसको जो सदस्यता ले सकते हैं। और इसे देखिए किसी कंपनी अधिनियम या राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत किया जाता है।
1: और देखिए ना, जहाँ तक हम अगर हम बात करें इस योजना की कि हम किसानों की तरक्की हो, इस योजना को खेती को अधिक लाभकारी बनाने के उपयोग में ये योजना लाई गई। और हमारे देश में किसान मेहनती बहुत हैं, लेकिन कई बार छोटी छोटी जोत, महंगे महंगे बीज खाद, बाज़ार तक सही पहुँच ना होना, फसल का उचित दाम न मिलना जैसी समस्याएं उनकी मेहनत को कमज़ोर कर देती हैं। लेकिन अब समय बदलता चला जा रहा है, क्योंकि किसानों की ताकत अब संगठन बन रही है और इसी सोच को शुरू किया है किसान उत्पादन संगठन यानी FPO योजना के रूप में।
0: इन संगठनों से अश्विनी भाई जो सस्ता सामान और अच्छी तकनीक जब किसान समूह में बीज खाद कीटनाशक और मशीन खरीदते हैं तो उन्हें थोक भावों में भारी छूट मिलती है। साथ ही देखिए बेहतर बाजार FPO बिचौलियों को जो ख़त्म करके सीधे व्यापारियों या कंपनी मंडियों किसानों की फसल बेचती हैं जिससे उनसे बेहतर दाम मिलते हैं। साथ ही मूल्य संवर्धन की अगर बात करें तो किसान केवल कच्चा माल बेचने की बजाय अपने उत्पादों की जो ब्रांडिंग और प्रोसेसिंग पैकेजिंग आदि करके कर सकते हैं।
1: बिल्कुल, इन सभी चीज़ों का भाई योजना सभी जी जी
0: बिल्कुल अश्विनी भाई, एक फ़ायदा और भी है। देखिए जो सरकार द्वारा जो वित्तीय अनुदान अगर बात करें तो भारत सरकार केंद्रीय योजना के तहत प्रति FPO पर 33 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करती है और साथ ही संगठन को ठीक से चलाने के लिए सरकार शुरुआती 3 वर्षों तक कार्यालय प्रबंध के लिए फंड भी देती है और सदस्यों की पूंजी बढ़ाने के लिए प्रति किसान 2000 रुपये तक का जो मैचिंग ग्रांट दी जाती है।
1: और देखिए ना, योजना किसान तक पहुंचे, ये किसान हमारी सरकारें लगातार इस क्षेत्र में काम करती हैं कि हर किसी किसान को छोटे सीमांत किसानों को संगठित करना, खेती की लागत को कम करना, किसानों को बाजार से सीधा जोड़ना, फसल को बेहतर मूल्य दिलाना और किसानों की आय को बढ़ाना, जो लगातार हमारी सरकारें कह रही हैं कि किसानों की आय दुगनी, लाभ ज़्यादा, लागत कम, इन सब चीज़ों पर मुख्य बिंदु मुख्य केंद्रित हैं सरकारें हमारे, किसानों को अधिक से अधिक लाभ मिले और हर योजना का फ़ायदा किसान तक पहुँचे, तभी तो सरकारें और ये योजनाएँ आप कहीं ना कहीं क्षेत्र में खड़ी होकर कहेंगे कि हाँ, हर किसान को इस स्कीम का, इस योजना का फ़ायदा मिला।
0: और भाई जैसा कि हमने अपने पिछले कार्यक्रम में कहा था कि भाई काफ़ी फरमाइश हमें और भी मिली है तो आज के जो अगले कलाकार हैं भूलन त्यागी है और भूलन त्यागी को सुनने के लिए पहली फरमाइश मिली है कलानौर हरियाणा से नरेंद्र शर्मा, किरण शर्मा, नितिन और मयंक शर्मा की। साथ ही हमें फरमाइश मिली है ऊपरी कोट मोहल्ला चौखंडी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी और शहनवाज सरफराज फरदीन और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: और एक और पत्र मिला है, ये है नरविला महाराष्ट्र, पत्र में लिखा है ये PS नेहवाकर, निर्मला नेहवाकर, विशाल नेहवाकर, उनका पूरा परिवार और शहर बांदापुर पुराना पंजाब से पत्र मिला है। ये सरदार परमजीत सिंह, गगनदीप सिंह, गुरप्रीत सिंह, परमजीत सिंह और इनका पूरा परिवार।
0: भूलन त्यागी को ही सुनना चाहते हैं दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल मेहरा, किरण मेहरा, कपिल मेहरा और उनका समस्त परिवार।
1: और यह चक्र 5 MD अनूपगढ़ से पत्र हमें लिखा है मंगल राय।

0: यही श्रीमती रोशनी, अंकुर, इंदु और डॉक्टर सुनील, और इनको इन्होंने सुनना चाहा है।
1: इसी क्रम में अगली फरमाइश हमें मिली है बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून, अंसर असलम अंसारी और उनके समस्त परिवार की तरफ से। साथ ही फरमाइश मिली है डुमराव बिहार से डॉक्टर W अंसारी, डॉक्टर सोनम और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
0: और ये है सीमापुर बक्सर से एक और पत्र मिला है जिनको शामिल कर, जिन्होंने सुनना चाहा है बुलंद त्यागी को। ये है राज एस डी अंसारी, ये खातून अंसारी, मेहताब अंसारी, कल्लू मुल्लू अंसारी और उनका पूरा परिवार। और यहीं पर एक पत्र और शामिल कर लेते हैं, ये भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से है। रोशनलाल देवगन, कौशल देवगन, लता, बबलू, भव्या और उनका पूरा परिवार।
1: और ये अगली फरमाइश हमें मिली है ग्राम पंचायत बठेना पाटन जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से। इसको भेजने वाले बलकरण वर्मा, अंजलि ज्योति वर्मा, प्रहलाद राजेंद्र वर्मा और उनका समस्त परिवार। साथ ही हमें फरमाइश मिली है नूर महल महसूल सीतामढ़ी बिहार से, और इसको भेजने वाले मुर्शद जहानाज और तलत जहानाज और उनका समस्त परिवार।
0: और कोटा नारायणपुर बाबा पट्टी वाली से पत्र मिला है ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, उनका पूरा परिवार। और नेवादा ज़िला गाजीपुर से ही पत्र एक और मिला है जिन्होंने सुनना चाहा है बुलंद त्यागी को। ये है प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और उनका पूरा परिवार।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली है नगर निगम वार्ड 28 नाज मंजिल महसूल सीतामढ़ी से, उसको भेजने वाले अकरम हुसैन बेगम, इशरत वसीम अकरम और उनका समस्त परिवार।
0: खेल बाज़ार पानीपत से एक और पत्र मिला है, ये है नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य मल्होत्रा, लाडो कोयल मल्होत्रा और पापा जी। और ये है शिवजी कॉलोनी रोहतक से एक और पत्र है, यह पीयूष सिक्का, कोयल सिक्का और उनका पूरा परिवार।
1: और ये फरमाइश हमें मिली है हिंदुस्तान रेडियो मित्र बन्ने बुजुर्ग पलेरा टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से, इसको भेजने वाले हैं ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली सोनम और आशीष विश्वकर्मा।
0: ये हमीदपुर बुलंदखंड उत्तर प्रदेश से एक और पत्र मिला है, ये रामकरण विश्वकर्मा, शाहिल विश्वकर्मा, मंजू, रजना, प्रियल, दिवांशी विश्वकर्मा और उनका पूरा परिवार।
1: और ये फरमाइश हमें मिली है पिंगा वाला चौक से, इसको भेजने वाले संदीप मक्कड़, ज्योति मक्कड़ और उनका समस्त परिवार।
0: शादिलपुर से है राजस्थान से एक पत्र शामिल और कर लेते हैं, रामकुमार मेरवाड़, चंद्रकला मेरवाड़। और एक और पत्र है, ये जनकपुरी सहारनपुर से है, ये हमारे पुराने श्रोता हैं और लगातार हमें मैसेज करते हैं, जॉन डिकोस्टा, रॉजी डिकोस्टा, पारल डिकोस्टा और विलियम डिकोस्टा।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली है हनुमानगढ़ से, और इसको भेजने वाले हैं रमन वर्मा, अमन वर्मा और उनका समस्त परिवार। साथ ही फरमाइश मिली है एकता कॉलोनी रोहतक से सीताराम कांगड़ा, बबीता बोट, निखिल कांगड़ा और तन्वी बोट की। और इसी क्रम में अगली फरमाइश मिली है गांव खरखड़ा 24 से गोलू कांगड़ा, सागर कांगड़ा, आंशिक बोट, तमन्ना कांगड़ा की।
0: ये है पहाड़गंज मुल्तानी डांडा से है अनिल कुमार मोहन, उषा मोहन, टिल्लू मोहन का पूरा परिवार। और एक और पत्र शामिल कर लेते हैं, ये है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से है महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, जिग्नेशपुरी, ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा और उनका पूरा परिवार।
1: साथ ही हमें फरमाइश मिली कैथल हरियाणा से मधु नायक की, और इसी क्रम में अगली फरमाइश मिली गांव खोखर वाली से विनोद बारसा, विशाल, विकास, रोशनी और शगुन बारशा की।
0: जलालाबाद वेस्ट से है सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया और उनका पूरा परिवार। और ये एक और पत्र है, ये पत्र लिखा है खुशी रेडियो श्रोता संघ फातिमा कॉलोनी श्री रामपुर महाराष्ट्र से है नाजिया शेख, नाजिया और इनका पूरा परिवार। यह है गोविंदपुरा अहमदनगर से है जुनेद, जुनेद साहिबा, मिसाल जुनेद और उनका पूरा परिवार।
1: अगली फरमाइश हमें मिली है भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिपा, कपिल छिपा और पूजा परिहार की। साथ ही हमें फरमाइश मिली है भिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से मुकेश शर्मा, गौरव शर्मा और उनके समस्त परिवार की तरफ से। इसी क्रम में अगली फरमाइश हमें मिली है ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम सबीर, आज़ाद नगर, लक्षर, हरिद्वार से।
0: और एक पत्र मिला है, ये है रामगढ़ से ये पत्र मिला है, ये है महेंद्र मोदी और ठाकुर साहब का। और एक और पत्र शामिल कर लेते हैं, ये है ऊपरकोट मोहल्ला चौकटी बुलंदशहर से मोहम्मद अब्बासी और फरदीन अब्बासी, अरजान अब्बासी और उनका पूरा परिवार।
1: तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं बुलंद त्यागी से ये उपदेश।

0: सुनी भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर भूलन त्यागी से उपदेश सुना और आपके हाथ में खत दिखाई दे रहा है।
1: जी देखिए, ये पत्र हमें भेजा है राजेश कुमार ने, गांव खिकड़ा है। और ये राजेश जी पूछ रहे हैं कि मैं आंवले का बाग लगाना चाहता हूँ। आंवले का बाग लगाने के लिए सही समय क्या क्या होता है? आंवले के लिए कौन कौन सी किस्में लूँ, उन्नत किस्में लूँ, और जिससे अच्छा उत्पादन मिले, लागत कम हो और फ़ायदा ज़्यादा हो? और आंवले का जो जो वृक्ष है वो कितने साल में फल देने लग जाता है? और सिंचाई की क्या व्यवस्था करूं जिससे मुझे फल उत्पादन में अच्छा मिले, लागत मेरी कम आए और फसल मुझे अच्छी से अच्छी मिले?
0: तो राजेश भाई देखिए, आंवले की रोपाई आप करना चाहते हैं तो रोपाई का जो सही समय और सबसे अच्छा और उपयुक्त समय जो माना जाता है, जुलाई व अगस्त का महीना माना जाता है। लेकिन भाई देखिए, इससे पहले आपको जून माह में 1x1 मीटर आकार के जो खड्डे पहले ही खोद लेने चाहिए और पौधे की रोपाई 9 से 10 मीटर के अंतर पर करनी चाहिए। जहाँ तक आपने भाई बात की है मिट्टी की, वैसे तो आंवला विभिन्न प्रकार की मिट्टी में लगाया जा सकता है, लेकिन राजेश भाई इसके लिए अच्छे जल निकासी वाली उर्वरा व गहरी दोमट मिट्टी सबसे उत्तम और सर्वोत्तम मानी जाती है। बीज की मात्रा की जहाँ तक बात है, अच्छी पैदावार के लिए 200 ग्राम बीज प्रति एकड़ के हिसाब से उचित माना जाता है। और प्रजातियों की अगर बात करें तो मुख्य प्रजातियों में बनारसी, हाथी, झूल, चकैया, कृष्णा, NA4, NA9, NA10 और कंचन, बलवंत, आंवला मुख्यतः जो उन्नत किस्में मानी जाती है। इसके अलावा आप अपने क्षेत्र के हिसाब से भाई उन्नत किस्म ले सकते हैं। जहाँ तक वृक्ष की आपने फल देने की बात की, तो 6 से 7 वर्ष के में आंवले का वह जो वृक्ष है फल देना शुरू कर देता है। फल नवंबर दिसंबर में तोड़ने योग्य हो जाते हैं। और भाई सिंचाई की जो जहाँ तक बात है, गर्मियों में 10 से 15 दिन के अंतराल पर और बरसात ना हो तो भाई मानसून के हिसाब से सिंचाई की आवश्यकता पर ध्यान देना चाहिए। साथ ही जो फल निकलने के समय भाई सिंचाई ना करें, इस तरह से छोटी छोटी बातों का ध्यान रखेंगे तो आप ले पाएंगे आंवला फसल से भरपूर उत्पादन। और आज के जो हमारे अगले कलाकार हैं वो सुभाष चंद्र लुसाना, और उसको सुनने के लिए ये पहली फरमाइश मिली हरगोबिंद नगर से सुरेंद्र संधू, अनीता संधू, रोहित संधू, रितेश संधू, शिखा संधू और उनके समस्त परिवार की तरफ से। साथ ही फरमाइश मिली है बिलासपुर मध्य हिमाचल प्रदेश से सुरेश गरौर, बेबी गरौर और उनके समस्त परिवार की तरफ से।
1: और एक और पत्र शामिल कर लेते हैं, ये संबलपुर काकेरा से है। ये है फागुन राम यादव, ज्योति यादव, आज यादव। और एक और है दाती तिरंगी से, भगवान भगवत शर्मा, शांति देवी शर्मा, लालावती, विनी शर्मा वर्मा और रुद्र वर्मा, उनका पूरा परिवार।
0: तो आइए आप सभी की पसंद पर सुनते हैं सुभाष चंद्र लुसाना से ये उपदेश।

0: अश्विनी भाई, ये तो भाइयों ने अपनी पसंद पर उपदेश सुना सुभाष चंद्र लुसाना से। और अब कल के कार्यक्रमों के बारे में बता दें, कल 5:10 पर लोक संगीत पर आधारित कार्यक्रम लोक रंजनी, 6:30 पर कार्यक्रम ग्राम संसार में जानकारी देंगे कृषि के विकास में आकाशवाणी की भूमिका। साथ ही योजना की अगर बात करें तो योजना के बारे में जानकारी देंगे, हर घर जल योजना के बारे में। और 7:05 पर कार्यक्रम कृषि जगत में जानकारी देंगे खरीफ की फसलों के लिए बीजों का चयन। साथ ही भाई जानकारी देंगे योजना गोवर्धन योजना के बारे में और बाजार भाव की भी जानकारी कार्यक्रम में देंगे। और भाई देखिए, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। और कोई भी कार्यक्रम शुरू करने से पहले हम उम्मीद करते हैं कि हम आपको दे सकें खेती संबंधी भाई नई नई जानकारी, साथ ही करा सके आपका मनोरंजन। इसके बावजूद भी यदि आपकी समस्या रह जाती है तो हर रविवार को हम देते हैं आपके खतों के जवाब। और इसके लिए भाई जरूरी है पता, तो पता आप लिख लीजिए। हमारा पता है कृषि एवं गृह एकांश, कमरा नंबर 610, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी नई दिल्ली, 110001।
1: और आप मेल भी कर सकते हैं कि आपका हमारा कार्यक्रम आपको कैसा लगता है और कार्यक्रम में क्या क्या आपको जानकारी चाहिए। हम आप हमें मेल कर सकते हैं feedback@gmail.com पर हमें मेल कर सकते हैं। हम कोशिश कर सकते हैं कि आपकी उस फरमाइश को अपने कार्यक्रम में शामिल करके आपकी समस्या का निवारण करें।
0: और इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम का समय यहीं समाप्त होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता तुषार पाराशर और संयोजक शिवनंदन लाल। कृषि जगत कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान बहन भाइयों को राम
1: राम, राम।

आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्स, DRM 810 किलो हर्ट्स पर। अभी आपने कार्यक्रम कृषि जगत सुना और अब समय हो चला है आपके कार्यक्रम गज़ल और कव्वाली का। गज़ल और कव्वाली में अब आप सुनेंगे फिल्म ब्लफ मास्टर से ये कव्वाली, जो मुझे बहुत पसंद है, उम्मीद है कि आपको भी बहुत पसंद आएगी।

0: जो हवा का रुख है वो बहुत तेज़ और बहुत गर्म है, तो अपने आप को लू से ज़रूर ज़रूर बचा के रखिए, हीट वेव से बचा कर रखिए।
1: शर्मा के ये क्यों सब पर्दानशीं, शर्मा के ये क्यों सब पर्दानशीं, आंचल को समा

इज्जत रखना बहुत मुश्किल काम होता है, और मर मर के ही और घुट घुट के ही उसे रखा जाता है। वो इज्जत चाहे इश्क की हो, मोहब्बत की हो, या फिर आपकी किसी अजीज़ की हो। और फिर ऐसे में दिल चाहता है कि उसकी आंखों के समंदर में ऐसे डूबे कि फिर उबरने का कोई रास्ता ना रहे।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलोहर्ट्स, DRM 810 किलोहर्ट्स पर। अब से कुछ ही क्षण बाद ठीक 7:45 पर आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। कृपया समाचारों की प्रतीक्षा कीजिए।
1: ये देख कैसे।
2: हैप्पी बर्थडे भाई।
1: दिखा?
3: हाँ, मेरा फेवरेट कलर हमेशा शॉपिंग।
4: आई नो माँ, बट खर्चा करने की भी यही उम्र है, राइट?
5: सेविंग करने की भी यही उम्र है।
6: आई नो बा, सेव करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
4: आई नो ना।
6: RBI कहता है,
7: करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
8: ओह लवली, वेल डन।
9: बिजनेस लोन अप्रूव्ड।
10: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
11: लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से।
12: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ।

0: समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन?
1: RBI कहता है,
2: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।
3: नमस्कार, आकाशवाणी दिल्ली से प्रादेशिक समाचार के साथ मैं जया भारती। दिल्ली सरकार महिला स्टार्टअप्स और स्व सहायता समूहों को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने जनकपुरी क्षेत्र में लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने CNG की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की। मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली मेट्रो 6 अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। और IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। अब समाचार विस्तार से। दिल्ली सरकार महिला स्टार्टअप्स और स्व सहायता समूहों को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि सरकार स्वयं इन ऋणों की गारंटर बनेगी। श्रीमती गुप्ता ने यह घोषणा उत्तर पश्चिम दिल्ली रोहिणी वेस्ट स्थित यूनिटी वन मॉल के पास आयोजित 2 दिवसीय मेगा सेल्फ हेल्प ग्रुप मेला के उद्घाटन समारोह के दौरान कही।
4: मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार स्वदेशी अपनाओ, आत्मनिर्भर भारत और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के दृष्टिकोण को देश के सामने रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि उसी सोच को आगे बढ़ाते हुए यह मेला महिलाओं द्वारा तैयार स्वदेशी उत्पादों को प्रोत्साहन देने और उन्हें बाजार से जोड़ने का सशक्त प्रयास है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली सरकार चाहती है कि राजधानी की प्रत्येक महिला स्वयं सहायता समूह से जुड़े और अपना उत्पाद तैयार करे तथा उसे बाजार तक पहुंचाए। उन्होंने कहा कि सरकार बैंकों के माध्यम से महिलाओं को आसान ऋण उपलब्ध कराने के लिए भी प्रयास कर रही है। श्रीमती गुप्ता ने कहा कि इस मेले में विभिन्न बैंकों को भी शामिल किया गया है, जिससे स्वयं सहायता समूह की बैंकिंग और वित्तीय पहुंच मजबूत हो सके। इस मेगा मेला में लगभग 24 स्वयं सहायता समूह ने भाग लिया। मेले में हस्तशिल्प, खादी, घरेलू उत्पाद, खाद्य सामग्री और अन्य हस्त निर्मित वस्तुओं की प्रदर्शनी और बिक्री की गई। साथ ही उत्तर पश्चिम जिले के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत हस्तशिल्प को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह।
3: शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने आज जनकपुरी के ब्लॉक ए में लगभग 30 लाख रुपए और असलादपुर में जनकपुरी में लगभग 71 लाख की लागत के कई विकास कार्यों का शुभारंभ किया। श्री सूद ने कहा कि दिल्ली सरकार राजधानी को अधिक विकसित और सुविधायुक्त बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है।
5: इन विकास कार्यों में जनकपुरी के ब्लॉक ए में विभिन्न सड़कों और बैंक लेन निर्माण कार्य शामिल हैं। वहीं असालतपुर जनकपुरी में सड़क, नाली निर्माण, पार्क सौंदर्यकरण और बाउंड्री वॉल जैसे महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र की मूलभूत सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सूद ने कहा कि बेहतर जुड़ाव, स्वच्छता और मजबूत बुनियादी ढांचे के माध्यम से क्षेत्रवासियों के जीवन को अधिक सुविधाजनक बनाने की दिशा में लगातार कार्य जारी है। इसके अलावा शहरी विकास मंत्री ने चंद्रनगर और नारंग कॉलोनी में भी विकास कार्यों का उद्घाटन किया। इनमें बेहतर सड़कें, सुगम आवागमन और पार्कों का सौंदर्यकरण शामिल है। प्रादेशिक समाचार के लिए आदित्य प्रताप सिंह की रिपोर्ट के साथ अक्षित कुमार।
3: दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा है कि दिल्ली सरकार आगामी सप्ताह से दिल्ली में राशन कार्ड बनाने का कार्य शुरू करने जा रही है। श्री सचदेवा ने कहा कि इस पहल के माध्यम से दिल्ली की भाजपा सरकार 2025 का अपना एक और चुनाव संकल्प पूरा करेगी। उन्होंने कहा है कि 8 वर्ष से अधिक समय के बाद राजधानी में लगभग 2 लाख नए राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। साथ ही राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया को पारदर्शी रखने के लिए आवेदन केवल ऑनलाइन भरे जाएंगे। दिल्ली के लोक निर्माण विभाग मंत्री परवेश साहब सिंह ने आज घिटोरनी गांव में नवनिर्मित तरला मोहल्ला चौपाल और वाल्मीकि बस्ती चौपाल का उद्घाटन किया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने कहा कि यह चौपाल सामाजिक समरसता, जनसुविधाओं और स्थानीय नागरिकों के संवाद का एक महत्वपूर्ण केंद्र बनेगी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में दिल्ली के गांव, देहात और हर वर्ग के विकास के संकल्प को भाजपा सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ा रही है। इस अवसर पर सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी, विधायक करतार सिंह तंवर, निगम पार्षद सहित अनेक कार्यकर्ता और क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं।

0: इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने आज से सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की है। इस वृद्धि के बाद दिल्ली में 1 किलोग्राम सीएनजी की नई दर 80 रुपए 9 पैसे, गाजियाबाद और नोएडा में 88 रुपए 70 पैसे और गुरुग्राम में 85 रुपए 12 पैसे हो गई है। इस सप्ताह की शुरुआत में आईजीएल ने सीएनजी की कीमतों में 2 रुपए की वृद्धि की थी। सरकार ने कहा है कि सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में ऑन स्क्रीन मार्किंग प्रणाली से मूल्यांकन में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ी है। 12वीं के परिणामों पर आज नई दिल्ली में स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के सचिव संजय कुमार ने बताया कि विद्यार्थियों ने मार्किंग और उत्तीर्णता प्रतिशत में मामूली गिरावट पर चिंता व्यक्त की है। सचिव ने बताया कि सीबीएसई ने इस वर्ष ऐसी प्रणाली लागू की है जिससे मूल्यांकन में अधिक पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। सचिव ने कहा कि सीबीएसई ने पुनर्मूल्यांकन शुल्क कम कर दिया है। उपभोक्ता मामले विभाग के अधीन गाजियाबाद स्थित राष्ट्रीय परीक्षण गृह एनटीएच की उत्तरी क्षेत्र इकाई में अत्याधुनिक जूता परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित की गई है। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कहा है कि इस प्रयोगशाला से एमएसएमई, निर्माता, निर्यातक, उपभोक्ता और नियामक संस्थाओं को भरोसेमंद और उच्च गुणवत्ता वाली फुटवेयर परीक्षण सेवाएं मिल सकेंगी। मंत्रालय के अनुसार ये सुविधा तेजी से बढ़ रहे फुटवेयर क्षेत्र के लिए देश की गुणवत्ता जाँच व्यवस्था को मजबूत करेगी। दिल्ली मेट्रो निजी वाहनों के बजाय मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए 6 अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। दिल्ली मेट्रो के अनुसार इन ट्रेन का संचालन कल से प्रत्येक सोमवार को किया जाएगा। दिल्ली मेट्रो ने कहा है कि अन्य दिनों भी जरूरत पड़ने पर आवश्यकता अनुसार अतिरिक्त ट्रेन चलाई जाएंगी। दिल्ली मेट्रो ने यह भी कहा है कि यह फैसला ऊर्जा और धन की बचत तथा पर्यावरणीय सुरक्षा में मेट्रो की भूमिका को देखते हुए लिया गया है। साथ ही इस क्षमता का विस्तार का उद्देश्य बढ़ती यात्री संख्या के दौरान निर्बाध सेवाएं सुनिश्चित करना और यात्रियों का सुचारू प्रबंधन करना है। रेल मंत्रालय ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के 2 पिछले डिब्बों में लगी आग की उच्च स्तरीय जाँच के आदेश दिए हैं। आज सुबह करीब 5:15 बजे कोटा रेल मंडल के नागदा के पास त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के पिछले 2 डिब्बों में आग लग गई, जिनमें एक गार्ड का डिब्बा और एक AC 3 टायर डिब्बा शामिल था। मंत्रालय ने बताया कि डिब्बे की सुरक्षा प्रणाली के कारण ट्रेन स्वतः रुक गई। दोनों डिब्बों को तुरंत अलग किया गया और घटना में कोई भी यात्री घायल नहीं हुआ है। जनगणना 2027 के लिए मकानों की गिनती का पहला चरण 5 राज्यों में शुरू हो गया है। इसके अंतर्गत राजस्थान, मेघालय, महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली में मकानों की सूची तैयार की जाएगी। एक रिपोर्ट।
1: घर घर जाकर सूची तैयार करने का काम आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना और उत्तराखंड में भी चल रहा है। सूची तैयार करने के लिए घर के सामानों, उपलब्ध सुविधाओं और परिसंपत्तियों का विवरण जुटाया जा रहा है। स्वगणना सुविधा आज से गुजरात, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और पुदुचेरी में भी शुरू की गई है। ये सुविधा 31 मई तक उपलब्ध रहेगी। स्वगणना सुविधा उत्तर प्रदेश में भी जारी है, जो 21 मई तक उपलब्ध रहेगी। अब तक 25 राज्यों में 1,44,00,000 से अधिक घरों के निवासी स्वगणना प्रक्रिया पूरी कर चुके हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: राजधानी में 12 से 15 अगस्त तक भारतीय व्यापार महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल कल भारतीय व्यापार महोत्सव की वेबसाइट का शुभारंभ करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: ये भारतीय व्यापार महोत्सव के लिए एक डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करने और भारतीय व्यापार को घरेलू तथा वैश्विक अवसरों से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस महोत्सव को इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन और कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स के द्वारा आयोजित किया जाएगा। इसके माध्यम से देश को वैश्विक व्यापार, संसाधनों, विनिर्माण और उद्यमिता का प्रमुख केंद्र बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये महोत्सव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल, मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प से भी निहित है, जिसके अंतर्गत देश भर के व्यापारियों, उद्यमियों, एमएसएमई, नवाचार कारीगरों तथा स्वदेशी उद्योगों को सशक्त बनाने का प्रयास किया जाएगा। आदित्य की रिपोर्ट के साथ प्रादेशिक समाचार के लिए मैं आकर्षिता सिंह।
0: प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 25 तारीख को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि राष्ट्रपति भवन में आयोजित होने वाले पहले नागरिक अलंकरण समारोह में राष्ट्रपति पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 मई को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। ये इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 134वीं कड़ी होगी। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800117800 पर कार्यक्रम के लिए अपने विचार और सुझाव भेज सकते हैं। सुझाव इस महीने की 29 तारीख तक स्वीकार किए जाएंगे। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने कनाडा की नागरिकता दिलाने की एवज में लगभग 1,80,00,000 रुपए की धोखाधड़ी करने के आरोप में एक अप्रवासन सलाहकार को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार आरोपी ने एक महिला से कनाडा की नागरिकता दिलाने का झूठा वायदा कर यह रकम हड़पी थी। पुलिस ने आरोपी के पास से एक लैपटॉप बरामद किया है जिसमें महत्वपूर्ण डिजिटल सबूत, वित्तीय लेनदेन के रिकॉर्ड, प्रवास से संबंधित दस्तावेज, सोशल मीडिया चैट और मामले से संबंधित अन्य जानकारी होने की आशंका है। वहीं एक अन्य कार्रवाई में दिल्ली पुलिस के बाहरी जिला की एक विशेष इकाई ने मादक पदार्थ तस्करी मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपी के पास से लगभग 8 किलोग्राम का मादक पदार्थ बरामद किया है। मामले की जांच जारी है। और खेलों में आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। ताज़ा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 5 ओवर में 1 विकेट पर 58 रन बना लिए हैं। अंक तालिका में 8वें स्थान पर मौजूद दिल्ली के लिए यह मुकाबला प्लेऑफ की दौड़ में बने रहने के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे पहले आज एक अन्य मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। और राजधानी में आज भी गर्मी का प्रकोप जारी रहा। मौसम विभाग के अनुसार आज का अधिकतम तापमान 41.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। न्यूनतम तापमान 25.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के अनुसार कल मौसम साफ रहेगा। हालांकि कल का अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली सरकार महिला स्टार्टअप्स और स्व सहायता समूहों को 10 करोड़ रुपए तक की बिना गारंटी वाला ऋण उपलब्ध कराएगी। शहरी विकास मंत्री आशीष सूद ने जनकपुरी क्षेत्र में लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत वाले कई विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड ने सीएनजी की कीमतों में 1 रुपए की बढ़ोतरी की। मेट्रो के उपयोग को प्रोत्साहित करने के लिए दिल्ली मेट्रो 6 अतिरिक्त ट्रेन चलाएगी। और आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: ये देख कैसे?
4: हैप्पी बर्थडे भाई।
3: दीका?
5: हाँ मेरा फेवरेट कलर।
6: हमेशा शॉपिंग।
7: I know ma, but खर्चा करने की भी यही उम्र है, right?
8: Saving करने की भी यही उम्र है।
9: I know pa, save करो, सही जगह निवेश करो, रकम पर ब्याज मिलेगा, जिसे फिर से निवेश करने पर ब्याज मिलता रहेगा।
10: I know na.
9: RBI कहता है
11: करो सही शुरुआत, बनो financially smart। ये कहानी है एक फोटोग्राफर और उसके अंतर्मन की।
12: Oh lovely, well done.
13: Business loan approved.
14: अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स,
15: लगे हाथ नई कार भी ले लो
16: उसी लोन से।
17: नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ,
18: समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ।
19: कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो।
20: आप कौन?
21: RBI कहता है
22: वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी।

0: आकाशवाणी दिल्ली है, लीजिए सुनिए हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम कवि गोष्ठी। गोष्ठी का संचालन कर रही हैं श्रीमती सुधा कुमारी।
1: आज हम सभी यहाँ आकाशवाणी के स्टूडियो में कवि गोष्ठी के लिए एकत्रित हुए हैं और हमारे बीच मौजूद हैं श्री शिव शंकर एहसास जी। उसके अलावा हमारे बीच में उपलब्ध हैं इस समय सुरेश कुमार जी, और उसके बाद हमारे बीच में हैं संगीता वर्मा जी जो अपना काव्य पाठ करेंगी। तो सबसे पहले मैं इन्हीं को आमंत्रित करूंगी कि वो अपना काव्य पाठ आरंभ करें।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सबसे पहले माँ शारदी को प्रणाम करती हूँ। एक छोटा सा गीत कहना चाहूंगी। पिता जो होते हैं वो हमारे भविष्य का निर्माण करते हैं और हमें उंगली पकड़कर चलना सिखाते हैं, और जीवन साथी अगर अच्छा मिल जाए तो जीवन बहुत ही खूबसूरत हो जाता है। तो एक छोटा सा गीत है, मैं अपनी मनोभावना कहना चाहूंगी। पत्ते

0: टूटे
1: बहुत धन्यवाद।
0: और एक गजल और कहती हूँ मैं, सुनिएगा कि बदलिए रंग लेती हैं, बदलिए रंग लेती हैं नजर की पुतलियाँ देखो, बदलिए रंग लेती हैं नजर की पुतलियाँ देखो, बड़ी अटखेलियाँ ये कर रही कठपुतलियाँ देखो।
2: बहुत अच्छा।
0: सरल पथ भा रहा इनको गगन छूने को है आतुर, सरल पथ भा रहा इनको गगन छूने को है आतुर, ललायत हो रही हैं मन चली ये तितलियां देखो, ललायत हो रही हैं मन चली ये तितलियां देखो। शुक्रिया। शुदा मिटती नहीं इनकी भले पर्याप्त हो साधन, शुदा मिटती नहीं इनकी भले पर्याप्त हो साधन, रही प्यासी समुन्दर में तड़पती मछलियाँ देखो,
2: क्या भाव,
0: रही प्यासी समुन्दर में तड़पती मछलियाँ देखो। और शुक्रिया। करे ब्रह्मांड की बातें सितारा खुद को कहते हैं, करे ब्रह्मांड की बातें सितारा खुद को कहते हैं, खरीदी झूठ के बल पर जिन्होंने डिग्रियाँ देखो, खरीदी झूठ के बल पर जिन्होंने डिग्रियाँ देखो। और कहती हूँ कि जुबा शीरी नज़र पहनी जो तीखी तेज धारी हैं, जुबा शीरी नज़र पहनी जो तीखी तेज धारी हैं, असलियत में छलावा है ये जादूगर निया देखो, असलियत में छलावा है ये जादूगर निया देखो।
2: बहुत अच्छे, बहुत
0: शुक्रिया। और अंतिम, संभलना है गरजते बादलों से ए बशर सुन ले, कड़कती हैं बहुत ही जोर से ये बिजलियां देखो, कड़कती हैं बहुत ही जोर से ये बिजलियां देखो। बहुत बहुत धन्यवाद
2: और
0: बहुत बहुत शुक्रिया। एक सच्ची बात और कहती हूँ सिर्फ चार पंक्ति में कि
2: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल,
0: गगन छू के आना तमाशा नहीं है, गगन छू के आना तमाशा नहीं है, चकाचौंध की मुझको आशा नहीं है,

0: आशा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: बहुत अच्छा आपने पाठ किया संगीता जी, उम्दा आपने अपने गजल और गीत सुनाए, बहुत अच्छा लगा।
0: धन्यवाद सुधा जी।
1: अब मैं श्री शिव शंकर एहसास जी को आमंत्रित करना चाहूंगी। इनका हमारा तुम्हारा जीवन दर्पण नाम से काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुका है और शीघ्र ही ये एक और नया काव्य संग्रह प्रकाशित करने जा रहे हैं, तो मैं इनको अपनी दो पंक्तियों के साथ आमंत्रित करूंगी। एहसास को एहसास का जब एहसास होगा, एहसास को एहसास का जब एहसास होगा, खूबसूरत बेमिसाल जीवन का मुकाम होगा। मिट जाएंगे जुल्म और सितम हर तरफ, मिट जाएंगे जुल्म और सितम हर तरफ, प्यार और इंसानियत से जमी सुकून का मकान होगा, सुकून का मकान होगा। शिवशंकर जी, आपसे मैं आग्रह करूंगी आप अपनी रचना का पाठ करें।
2: बहुत बहुत धन्यवाद। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। एक छोटी सी रचना कहना चाहूंगा। तुमसे क्या छुपाएं और क्या बताएं, तुमसे क्या छुपाएं और क्या बताएं, तुम ही बताओ टूटे हुए दिलों की दास्तां क्या होगी, तुम ही बताओ टूटे हुए दिलों की दास्तां क्या होगी, जब खुद से मोहब्बत नहीं, जब खुद से मोहब्बत नहीं तो उनसे मोहब्बत क्या होगी, तो उनसे मोहब्बत क्या होगी। इसी प्यार की कुछ बातों को मैं अपने एक पंक्तियों में लेकर हाजिर हूँ। नगमा मैंने इसको शीर्षक दिया है। हर वक्त आंखें नम रहती हैं, हर वक्त आंखें नम रहती हैं, न जाने किनके ख्यालों में रहती हैं, हर वक्त आंखें नम रहती हैं, न जाने किनके ख्यालों में रहती हैं, दूर जहां तक भी नजर जाती है, हर शख्सियत में तू ही तू नजर आती है, हर शख्सियत में तू ही तू नजर आती है, हर हंसता हुआ चेहरा मुझे रुला देता है, हर हंसता हुआ चेहरा मुझे रुला देता है, तेरा ख्याल सब कुछ भुला देता है, दिया जलाता हूँ रोशनी के लिए, अफसोस दिया ही मेरा आसियाना जला देता है, अफसोस दिया ही मेरा आसियाना जला देता है। तुझे हंसाने के लिए ही तो हंसता हूँ मैं, तुझे हंसाने के लिए ही तो हंसता हूँ मैं, मगर यही ख्याल एकांत में मुझे रुला देता है। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद। यही ख्याल एकांत में मुझे रुला देता है, भूल जाना चाहता हूँ जिन नगमों को, उन्हीं की फिर याद दिला जाता है, उन्हीं की फिर याद दिला जाता है। नगमाए मोहब्बते में तुम्हें क्या सुनाऊं, नगमाए मोहब्बते में तुम्हें क्या सुनाऊं, यह ऐसा आसियाना है जहां कोई दोबारा नहीं आता, जो सूरज से डरता है उसे चांद भी नहीं मिलता, जो सूरज से डरता है उसे चांद भी नहीं मिलता, चांद मिलता भी है तो अमावस्या का पूर्णिमा का नहीं, चांद मिलता भी है तो अमावस्या का पूर्णिमा का नहीं। वो दो कदम साथ क्या चले, वो दो कदम साथ क्या चले, हमने सोचा हमें मंजिल मिल गई, हमने सोचा हमें मंजिल मिल गई, वो कभी इतने करीब आए कि हमारी अपनी पहचान चली गई, कि हमारी अपनी पहचान चली गई। धन्यवाद मैडम। किस कदर देखिए पहचान किस तरह से गई। दो जिस्म एक जान थे हम, दो जिस्म एक जान थे हम, सच कहता है जमाना, सच कहता है जमाना, बहुत अनजान थे हम, बहुत अनजान थे हम। शुक्रिया मैडम। मैं अपनी बात कुछ लाइनों से शुरू करना चाहूंगा। ए चंचल चितवन की चंचल चिड़िया, ए चंचल चितवन की चंचल चिड़िया, क्यों चित चंचल करती है, बन चंचला उड़ती है नभ में, क्यों नहीं पग धरा पे धरती है, क्यों नहीं पग धरा पे धरती है। यही जब हमारी एक नन्ही सी चिड़िया बड़ी होती है, और इसका मैं एक भूमिका से है कि जब वो बालिका से एक महिला बनती, नारी बनती है, तो नारी बनने के बाद में उसकी क्या अपेक्षाएं रहती हैं, मैं उन अपेक्षाओं को अपनी चंद लाइनों के माध्यम से कहना चाहूंगा। मैं नारी हूं मुझसे प्यार करो, ना नमन ना सत्कार करो, ना नमन ना सत्कार करो, ना ही तुम मेरा अलंकार करो, माँ बेटी बहु प्रेमिका हूं मैं तुम्हारी, माँ बेटी बहु प्रेमिका हूं मैं तुम्हारी, मुझसे बस प्यार करो, मुझसे ना नमन ना सत्कार करो, मैं नारी हूँ मुझसे प्यार करो, यूं ना तुम मेरा तिरस्कार करो, नारी हूँ मेरा सम्मान करो, अस्तित्व का पर्याय हूँ मैं, अस्तित्व का पर्याय हूँ मैं, मेरे सृजन को स्वीकार करो, मैं नारी हूँ मुझसे प्यार करो, मैं नारी हूँ मुझसे प्यार करो, छिड़क कर तेजाब हम पर अपनी कुंठा को न शांत करो, छिड़क कर तेजाब हम पर अपनी कुंठा को न शांत करो, निर्भया पर की गई क्रूर बर्बरता का ना यूं तुम विस्तार करो, बना द्रौपदी महफिल में ना मेरा अपमान करो, मैं नारी हूं मुझसे प्यार करो, मैं नारी हूं मुझसे प्यार करो। ना लूटो भरे बाजार मेरी असमत को, ना लूटो भरे बाजार मेरी असमत को, ना ढकेलो जिंदगी की बंद गलियों में जहां से मैं वापस आ न सकूं, अपनी लुटती असमत को बचा न सकूं, फर्ज नारी का

0: भी मैं निभा न सकूं, ना ढकेलो जिंदगी की बंद कलियों में, ना ढकेलो जिंदगी की बंद कलियों में, मैं नारी हूं मुझसे प्यार करो, मैं नारी हूं मुझसे प्यार करो।
1: बहुत अच्छा,
2: बहुत अच्छा।
0: मेरे धैर्य को कमजोरी समझ मेरा उपहास न करो, मेरे धैर्य को कमजोरी समझ मेरा उपहास ना करो, मैं सृष्टि की जननी हूं, मैं सृष्टि की जननी हूं, मेरा विलास ना करो, गर सूख गई कोख मेरी तो इन वीरों को कहां से लाओगी, गर सूख गई कोख मेरी तो इन वीरों को कहां से लाओगी, बहन बेटियों की जो ना बचाई अस्मत तुमने, तो मातृभूमि की अस्मत कैसे बचाओगे, तो मातृभूमि की अस्मत कैसे बचाओगे। धन्यवाद मैडम। गर सूख गई कोख मेरी तो इन वीरों को कहां से लाओगे, मैं नारी हूं मुझसे प्यार करो, मैं नारी हूं मुझसे प्यार करो, ना नमन ना सत्कार करो, ना ही तुम मेरा अलंकार करो, मैं नारी हूं मुझसे बस प्यार करो, मुझसे बस प्यार करो।
2: बहुत अच्छे शंकर जी, बहुत अच्छा आपने पाठ किया। सुरेश जी, अब मैं आपको आमंत्रित करना चाहूंगी, आपकी रुचि है गजल गीत और नज्म में, और आपका एकल काव्य संग्रह फरेबे मुखलिसी प्रकाशित हो चुका है, और साझा काव्य संग्रह काव्य सरोवर भावरस ये भी प्रकाशित हो चुका है, तो मैं आपसे अब कहूंगी प्रस्तुत करें।
1: शुक्रिया सुधा जी। आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं चार लाइनों से माँ के नाम जो हैं उनसे शुरुआत करता हूँ। सबसे ज़्यादा फिक्र उसे मेरी जाँ की होती है, सबसे ज़्यादा फिक्र उसे मेरी जाँ की होती है, बेसुद को खबर ना यहाँ की होती है ना वहाँ की होती है, घर से निकलने से लौट आने तक दहलीज पे रहती है, घर से निकलने से लौट आने तक दहलीज पे रहती है, वो नजर तो सिर्फ और सिर्फ मेरी माँ की होती है।
2: बहुत अच्छी, बहुत अच्छी।
1: अब इसके बाद एक मेरी गजल जिसमें बाप का दर्द भी है। बूढ़ी पलकों में कुछ तो ख्वाब रहने दो, बूढ़ी पलकों में कुछ तो ख्वाब रहने दो, थोड़ा बचा अपनी पीढ़ी का आदाब रहने दो, हसरतों की मारी झपकती भी कम है अब, हसरतों की मारी झपकती भी कम है अब, ओझल होने से पहले उनमें ये ताब रहने दो।
2: बहुत अच्छे।
1: खुद जुगनुओं से जले अंधेरों में तुम्हारे लिए, खुद जुगनुओं से जले अंधेरों में तुम्हारे लिए, मेहरबानियों का उनकी कैसे करोगे हिसाब, रहने दो,
2: रहने दो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
1: उनके बुढ़ापे से तुम्हारी जवानी को नफरत क्यों है, उनके बुढ़ापे से तुम्हारी जवानी को नफरत क्यों है, तुम्हारे बचपन पे उनका रहा निसार शबाब, रहने दो, जिम्मेदारियां प्यार से नहीं जायदाद से नापी बच्चों ने, जिम्मेदारियां प्यार से नहीं जायदाद से नापी बच्चों ने, मगर उनका था प्यार बच्चों से बेहिसाब, रहने दो,
2: रहने दो।
1: खस्ता सेहत से मजबूर पानी को तरसे थे वो कभी, खस्ता सेहत से मजबूर पानी को तरसे थे वो कभी, आज उनके नाम लगाई शबील ये सवाब, रहने दो,
2: रहने दो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
1: मेहनत और त्याग किस किस को याद है बाप के, मेहनत और त्याग किस किस को याद है बाप के, उनके बिना पाले थे ओहदे और खिताब, रहने दो।
2: बहुत अच्छे, क्या बात है, क्या बात है।
1: एक अगली गजल उसके चंद शेर। हमारी खुद की हमें कमी नजर नहीं आती, हमारी खुद की हमें कमी नजर नहीं आती, जब आसमां में हो तो जमीन नजर नहीं आती, छान के भी देख लिया मैंने अपने माजी को, छान के भी देख लिया मैंने अपने माजी को, हुई थी गलतियां जहां वहीं नजर नहीं आती,
2: नहीं आती। बहुत अच्छे।
1: पैर छूना आशीष लेना बात करना बुजुर्गों से, पैर छूना आशीष लेना बात करना बुजुर्गों से, हमें ये रिवायतें आजकल कहीं नजर नहीं आती।
2: बहुत अच्छे।
1: किरदार कहकों भरा निभाना पड़ता है जिनको, किरदार कहकों भरा निभाना पड़ता है जिनको, पसे पर्दा उनकी जिंदगी में हंसी नजर नहीं,
2: नहीं
1: आती।
2: बिल्कुल आज की सच्चाई है।
1: वो जो रूह तक टटोलने की सलाहियत रखता था, वो जो रूह तक टटोलने की सलाहियत रखता था, आज क्यों उसको मेरी आंख की नमी नजर नहीं आती।
0: बहुत अच्छा।
1: ये तेरे लफ्जों की निकाशी कहे जादू सुरेश, ये तेरे लफ्जों की नकाशी कहे जादू सुरेश, उसकी तस्वीर तेरी गजलों में यूं ही नजर नहीं,
2: नहीं आती,
1: आती।
2: बहुत अच्छे, बहुत अच्छे।
1: एक चंद लाइनें एक और गजल की। कितने हुए दिल के टुकड़े शुमार करूं क्या,
0: जी
1: कितने हुए दिल के टुकड़े शुमार करूं क्या, तुम्हारे वादे का अब भी एतबार करूं क्या,
2: बहुत अच्छे।
1: मुझको सुधारने का तुम्हारा ख्याल अच्छा है,
0: जी
1: मुझको सुधारने का तुम्हारा ख्याल अच्छा है, हाँ मैं खुद भी अपने में सुधार करूं क्या,
2: करूं क्या। बहुत अच्छे।
1: कहते रुखसत जब हुआ था मुड़ के

0: देखा उसने। तो रुखसत जब हुआ था मुड़ के ना देखा उसने, समझ नहीं आ रहा अब उसका इंतजार करूं क्या।
1: बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
0: वो आगे निकल रहा है या छोड़ रहा है मुझे, वो आगे निकल रहा है या छोड़ रहा है मुझे, कश्म कश्म में हूँ तेज अपनी रफ्तार करूं क्या।
1: बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत बढ़िया, क्या बात है।
0: तंज शुक्रिया, तंज भरे जुमले ना कसो मुझ पर तुम, तंज भरे जुमले ना कसो मुझ पर तुम, मैं भी तुम्हारी नजर चंद इशार करूं क्या।
1: बहुत
0: शुक्रिया शुक्रिया। ना आंखें पढ़ते हो ना खामोशी समझते हो तुम, ना आंखें पढ़ते हो ना खामोशी समझते हो तुम, अब क्या सीधा सीधा इजहार करूं क्या।
1: बहुत अच्छे बहुत अच्छे
0: शुक्रिया। चंद लाइने तो गुस्से से ना छुड़ाओ हाथ रहने दो, गुस्से से ना छुड़ाओ हाथ रहने दो, अपने बीच की अभी बात रहने दो,
1: रहने दो।
0: तुम्हारी मुस्कुराहट ही काफी है मेरे लिए, तुम्हारी मुस्कुराहट ही काफी है मेरे लिए, बाकी अपने बेशकीमती सौगात रहने दो,
1: रहने दो।
0: किनारा ही अगर करना है तो कर लीजिए, किनारा ही अगर करना है तो कर लीजिए, मगर ये बेमायने तर्क वजूहात रहने दो।
1: रहने दो। बहुत अच्छे बहुत बढ़िया।
0: शुक्रिया। कुछ लम्हे खामोशी के भी दरमियान रहने दो, कुछ लम्हे खामोशी के भी दरमियान रहने दो, बेतुके जवाबों से बेहतर कुछ सवालात रहने दो।
1: रहने दो। बहुत अच्छे।
0: सीने पे रखो सर थोड़ी देर धड़कने गिनो मेरी, सीने पे रखो सर थोड़ी देर धड़कने गिनो मेरी, मूंदी आंखें रखो निगाहों की मुलाकात रहने दो। आजकल बाजार में बहुत नए खिलौने आए हैं, आजकल बाजार में बहुत नए खिलौने आए हैं, छोड़ो दिल मेरा और मेरे जज्बात
1: रहने दो। बहुत अच्छा
0: लगता है। जब ओखली में सर दे ही दिया है सुरेश तुमने, जब ओखली में सर दे ही दिया है सुरेश तुमने, अब मूसले से क्या करे एहतियात रहने दो।
1: बहुत अच्छे बहुत अच्छे।
0: एक छोटी सी एक गजल ओ
1: जी, बिल्कुल।
0: पलक से निकल रुखसार पर रहता है, पलक से निकल रुखसार पर रहता है, मेरा है मेरा मेरा है रही मेरा तुम्हें क्या कहता है,
1: तुम्हें क्या कहता है।
0: पलक से निकल रुखसार पर रहता है, मेरा है रही मेरा तुम्हें क्या कहता है।
1: बहुत
0: अच्छा। कई बार लबों में जा जज्ब हो जाए, कई बार लबों में जा जज्ब हो जाए, अश्क मेरा कहाँ से कहाँ तक बहता है, दर्द सहने का खूब हुनर आए है उसको, दर्द सहने का खूब हुनर आए है उसको, गुफ्तार कम हंसी ज्यादा ऐसे वो सहता है, गुफ्तार कम हंसी ज्यादा ऐसे वो सहता है, मोहब्बत में सूद व जिया में रहे दिल तुम्हारा, मोहब्बत में सूद व जिया में रहे दिल तुम्हारा, हमारा दिल तो इसके इबादत कहता है, झूठ के पाँव नहीं होते फिर भी दौड़े खूब, झूठ के पाँव नहीं होते फिर भी दौड़े खूब, मुनसिफ के आगे भी गवाह कहाँ सच कहता है।
1: सच कहता है। बहुत अच्छे।
0: एक छोटी सी गजल।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल सुनाइए।
0: अब तेरे हम पाँव के खार बने हैं, अब तेरे हम पाँव के खार बने हैं, लगता है ताजा कोई प्यार बने हैं।
1: बहुत अच्छे
2: बहुत अच्छे।
0: अब तेरे पाँव के खार बने हैं, लगता है ताज़ा कोई नए प्यार बने हैं, सब लहजे से तेरे महसूस हो रहा है ये, इस बार बिछड़ने के पूरे आसार बने हैं।
1: बहुत अच्छे।
0: तुम आदत ना पालो हमें हमेशा बनाने की, तुम आदत ना पालो हमें हमेशा बनाने की, बेशक वैसे हम तो हर बार बने हैं।
1: बहुत अच्छा बहुत अच्छा।
0: नया हो या इश्क पुराना तुम्हारा अब निभाना, इश्क की मंडियों में जिस्म के बाजार बने हैं, रोक टोक में पोशीदा प्यार नहीं दिखता अक्सर, रोक टोक में पोशीदा प्यार नहीं दिखता अक्सर, इसी रोक टोक से आपके गुनहगार बने हैं। रसूख वाले ओहदे वाले हैं तुम्हारे करीबी सब, हम चाहने वाले सिर्फ सजा के हकदार बने हैं। कस्में वादे दिल लगी इजहार मोहब्बत नॉलेज सुरेश ये सब के सब व्यापार बने।
1: बहुत अच्छे सुरेश जी, आपने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया। तो अब
2: नहीं, बहुत अच्छा सुनाया सुरेश जी ने और बहुत अच्छा लगा, और उम्मीद करते हैं कि श्रोताओं को भी बहुत पसंद आएगा। हमारे बीच एक सफल मंच संचालन कर रही हैं सुधा मलिक जी, अपने मन के भावों को इन्होंने एक काव्य संग्रह के रूप में प्रस्तुत किया है एहसास। देखिए कितना एक संयोग है, मैं भी पसंद करता हूँ शिवशंकर एहसास के नाम से लिखना, और मैडम ने तो किताब ही लिख डाली है एहसास के ऊपर। तो मैं आमंत्रित करूंगा मैडम सुधा मलिक को कि वो आए और अपना काव्य पाठ करें।
1: धन्यवाद धन्यवाद शिवशंकर जी। औरत के ऊपर कुछ लाइनें हैं। मेरे नाम से बुलाओ मुझे, मैं औरत हूँ, थोड़ा तो सम्मान

0: दिखाओ मुझे,
1: जी जी
0: मेरे नाम से बुलाओ मुझे, मैं औरत हूँ थोड़ा तो सम्मान दिखाओ मुझे। जन्म दिया पाला अपनी रातें कर, अस्तित्व मिटाया बस तुझे देखकर, तेरी परवरिश पे जान झोंक दी, तुझे खिलाया खुद का निवाला छोड़कर। बड़े होकर ना आंख दिखाओ मुझे, मेरे नाम से बुलाओ मुझे, मैं माँ हूँ कुछ तो सम्मान दिखाओ मुझे।
1: बहुत अच्छी, बहुत अच्छी
0: मैं माँ हूँ कुछ तो सम्मान दिखाओ मुझे। जवानी तेरी रंगीन बना दी, प्यार भरी दुनिया दिखा दी, प्यार में तेरे खुद को सौंप दिया, असमत भी अपनी तुझ पे वार दी, तूने वक्त निकलते ही राह बदल दी, गैर के साथ जिंदगी बसर कर ली, धोखे से यूं ना मिटाओ मुझे, मेरे नाम से बुलाओ मुझे, मैं प्रेमिका हूँ कुछ तो सम्मान दिखाओ मुझे।
1: बहुत अच्छी,
0: मैं औरत हूँ कुछ तो सम्मान दिखाओ मुझे। घर बसाया तुझे अपना मानकर, जान झोंक दी कर्तव्य जानकर, वंश बढ़ाया सबकी देखभाल की, तेरे लिए अपनी हस्ती भेंट दी, जिम्मेदारी के बोझ में मैं जरा जो मुरझाई, जिम्मेदारी के बोझ में मैं जरा जो मुरझाई, तूने मुझ में लाखों कमियां बताई, पराई औरत में दिलचस्पी दिखाई, यूं धोखा देकर ना तड़पाओ मुझे,
1: बहुत अच्छी,
0: मेरे नाम से बुलाओ मुझे, मैं बीवी हूँ कुछ तो सम्मान दिखाओ मुझे। मेरे ही रिश्तों से मैं छली जा रही, मेरे ही रिश्तों से मैं छली जा रही, सड़कों पे भी ना हवस का शिकार बनाओ मुझे, मैं औरत हूँ कुछ तो सम्मान दिखाओ मुझे। मैं बेटी बहन माँ तुम्हारी, प्रेयसी पत्नी बहु हितकारी, देवी सी ना करो पूजा, देवी सी ना करो पूजा, पर इंसान सा आदत दिखाओ मुझे।
1: बहुत
0: मैं औरत
1: बहुत
0: हूँ मेरे नाम
1: अच्छे
0: से बुलाओ मुझे, मैं औरत हूँ थोड़ा तो सम्मान दिखाओ मुझे। धन्यवाद धन्यवाद।
1: बहुत अच्छी कविता।
0: अब मैं आपको एक अपनी दूसरी रचना सुनाना चाहूँगी।
1: जी
0: इसमें थोड़ा कहना चाहूँगी कि हम किसी का भला करना चाहें तो
1: जी
0: उसके लिए
1: जी
0: हमें धन दौलत बहुत होना हमारे पास अनिवार्य नहीं है, हमारी नीयत होनी
1: जी
0: चाहिए।
1: बिल्कुल।
0: तो उसी पे है, भला करने के लिए दौलत नहीं नीयत है लाजमी, बहुत
1: बहुत
0: कुछ
1: अच्छा।
0: करके पुण्य कमा सकता है आदमी, रास्ते से किसी के पत्थर हटा दो, अपनी सीट पे जरूरतमंद को बिठा दो, किसी का बोझ उठा दो, पंछी को पानी पिला दो, भूखे को खाना खिला दो, कोई अगर हो परेशान उसे देख मुस्कुरा दो, दो मीठे बोल साझा करो उसका गम भुला दो, अनजान भले हो किसी बुजुर्ग को हंसा दो, दो कदम हाथ पकड़ के चला दो, लड़की कोई अकेली तो उसका हौसला बढ़ा दो, दो कदम साथ चल मंजिल पे सुरक्षित पहुंचा दो,
1: बहुत अच्छे, बहुत खूब।
0: दो कदम साथ चल मंजिल पे उचित पहुंचा दो, बच्चा किसी का राह भूले, बच्चा किसी का राह भूले उसे सही सलाह दो, राह उचित पकड़ा दो, और कुछ नहीं कर सकते तो मौन रहो, और कुछ नहीं कर सकते तो मौन रहो, अफवाहों को ना
1: बस
0: हवा दो, भला करने के लिए दौलत नहीं नियत है लाजमी, बहुत कुछ करके पुण्य कमा सकता है
1: बहुत
0: आदमी,
1: सही, बहुत
0: बहुत
1: अच्छा,
0: कुछ
1: बहुत
0: करके
1: अच्छा
0: पुण्य कमा सकता है आदमी। मैंने अपने आप को कान्हा जी के रूप
1: जी
0: में रख के अपने सोचा और कुछ विचार मेरे मन में आए
1: जी
0: कि
1: जी
0: कृष्ण भगवान ने अपने जो जीवन यापन किया तो कितने कष्ट उसमें सहे,
1: जी
0: तो वो मैंने भाव अपने अंदर महसूस किया और उनको मैं उजागर करना चाहूंगी।
1: स्वागत है।
0: जो मैं सोचूं कान्हा बन गई, जो मैं सोचूं कान्हा बन गई, कितनी पीड़ा हृदय में भर गई, जन्म पूर्व कारागार का बंधन, जन्म पूर्व कारागार का बंधन, जन्म उपरांत माँ भी मुझसे बिछड़ गई, मुझको जन्म देने के हेतु ज्येष्ठ पुत्रों के वध को सह गई, देखकर मुझको जन्म देव की गोद में लेने से वंचित रह गई,
1: बहुत अच्छा,
0: जो
1: बहुत
0: मैं
1: अच्छा।
0: सोचूं कान्हा बन गई, कितनी पीड़ा हृदय में भर गई, जन्मदाई से तो पहले ही था वंचित, जन्मदाई से तो पहले ही था वंचित, यशोदा की ममता भी जल्दी छिन गई, गोकुल छूटा बचपन छूटा, मित्रों की टोली भी रह गई, गोकुल छूटा बचपन छूटा, मित्रों की टोली भी रह गई, धर्म का पालन करने हेतु तीस विरह की मुझको डस गई, बरसाने की गोरी राधा, बरसाने की गोरी
1: गोरी
0: राधा,
1: राधा
0: प्यारी देखो कैसे मुझसे बिछड़ गई,
1: गई।
0: अत्याचार मिटाने को जनता को बचाने को निज मामा की हत्या करनी पड़ गई, सत्य और धर्म जिताने को अन्याय भूमि से मिटाने को महाभारत भी मुझको रचनी पड़ गई,
1: गई।
0: और चक्र चलाकर अपनों पर ही, और चक्र चलाकर अपनों पर ही रक्त की होली खेलनी पड़ गई, हाय कितना दर्द हृदय में, हाय कितना दर्द हृदय में, देख धरा जो शवों से पट गई,
1: बहुत
0: शोक
1: अच्छा,
0: विलाप करती गांधारी, शोक विलाप करती
1: बहुत
0: गांधारी, के श्राप की छाया लेनी पड़ गई अपने ही पुत्रों के कारण, अपने ही पुत्रों के कारण यदुवंश की विध्वंस सहनी पड़ गई, और मैं
1: अच्छा।
0: जगत का पालनहारा, और मैं जगत का पालनहारा, तीनों लोकों का तारणहारा, एक तीर से प्राण आहुति देनी पड़ गई, मेरा मर्म न जाने कोई, मेरा मर्म न जाने कोई, क्या क्या परिस्थिति मुझको सहनी पड़ गई,
1: बहुत
0: मैं
1: अच्छा,
0: जगन्नाथ, मैं नारायण, मैं

0: प्रजापति मैं सर्वेश्वर, मैं जगन्नाथ मैं नारायण मैं प्रजापति मैं सर्वेश्वर, भूलोक में अवतरण की क्या क्या कीमत चुकानी पड़ गई, अपना कर्तव्य निभाने को, अपना कर्तव्य निभाने को अधरों पर मुस्कान, हृदय में पीड़ा छुपानी पड़ गई, जो मैं सोचूं कान्हा बन गई कितनी पीड़ा हृदय में भर गई, जो मैं सोचूं कान्हा बन गई कितनी पीड़ा हृदय में भर गई।
1: बहुत ही खूब करता, बहुत ही खूब करता।
0: और अब मैं लास्ट में एक थोड़ा सा हल्का फुल्का माहौल बनाने के लिए,
1: जी जी स्वागत है,
0: ये मैंने अपने अंतर्मन के भाव हैं, जब हमारा कोई अपने अंतर्मन में चल रही होती है विचार भावना तो उसका है कि अपने आप को ही मैं जवाब दे रही हूँ, अपने आप से ये सवाल कर रही हूँ, आज फिर कुछ लिखूँ क्या, दिल की बातें शब्दों में कह दूँ क्या, आज फिर कुछ लिखूँ क्या, दिल की बातें शब्दों में कह दूँ क्या, कहने को तो हैं बहुत सी बातें, सारी की सारी कह दूँ क्या, पर कुछ बातें ना हो तो बेहतर, पर कुछ बातें ना हो तो बेहतर, तो वो बातें रहने दूँ क्या, जिंदगी में खुशी बहुत कम और गम ज़्यादा, जिंदगी में खुशी बहुत कम और गम ज़्यादा, तो गम को खुशी से सह लूँ क्या, कुछ भूली कुछ बिसरी यादें, कुछ भूली कुछ बिसरी यादें, जो भूली सो भूली, जो याद वो सजा के रख लूँ क्या, आज फिर कुछ लिख दूँ क्या, बहुत गिले शिकवे जमाने से, बहुत गिले शिकवे जमाने से, पर किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो गिले शिकवे भी रहने दूँ क्या, चलो छोड़ दूँ मैं सारी बातें क्या रखा है बताने में, चलो छोड़ दूँ मैं सारी बातें क्या रखा है बताने में, जो जैसे खुश उसे वैसे ही रहने दो क्या, आज फिर कुछ लिखूँ क्या, दिल की बातें शब्दों में कह दूँ क्या, आज फिर कुछ।
1: बहुत अच्छा है सुधा मलिक मैडम ने बोला, और ये तो मैं कार्यक्रम के बारे में बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरा प्यार तो हिना था, मेरा प्यार तो हिना था, कुछ तो वक्त देते रंग चढ़ने का, कुछ तो वक्त देते रंग चढ़ने का।
0: बहुत अच्छे।
1: इसी के साथ
0: तो
1: में
0: अब इस काव्य गोष्ठी का हम समापन करते हैं, और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग यहाँ उपस्थित हुए और अपनी अपनी रचनाएं प्रस्तुत की, धन्यवाद।
1: बहुत बहुत धन्यवाद मैडम।
2: अभी आप कवि गोष्ठी सुन रहे थे, प्रतिभागी कवि थे श्री शिव शंकर, श्री सुरेश कुमार, श्रीमती सुधा कुमारी और श्रीमती संगीता वर्मा। गोष्ठी का संचालन कर रही थी श्रीमती सुधा कुमारी। इसी के साथ कवि गोष्ठी का ये अंक अब यही संपन्न होता है। कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे श्रवण मीणा।
3: श्रोताओं आप सुन रहे थे अभी कवि गोष्ठी का कार्यक्रम, ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है, मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, DRM 810 किलोहर्ट्ज़ पर।

यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीटर वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, वक्त शाम के 8:30 हो चुके हैं और ये समय है फिल्म संगीत के कार्यक्रम का।

श्रोताओं, अभी आपने गीत सुना फिल्म विरासत से कुमार सानू और चित्रा की आवाज़ में। आप जुड़े हुए हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम से। मैं हूं आपके साथ चेतना और समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 8:37 हुए हैं।

कुमार सानू की आवाज़ में अभी आपने गीत को सुना और फिल्म खूबसूरत। उम्मीद करते हैं इस गीत को आपने पसंद किया होगा और समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 8:41 हुए हैं और सुनते हैं कार्यक्रम का अगला और आखिरी गीत।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्स। अब से कुछ ही देर में यानी ठीक 8:45 पर प्रसारित किए जाएंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सर फिरोजी। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वलीशेट्टी ने बाऊजी चाइना मास्टर्स के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीदरलैंड्स की 2 दिन की यात्रा के बाद 5 दिन

0: यीशु की यात्रा के तीसरे चरण में आज स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं। स्वीडन की दो दिन की यात्रा के दौरान श्री मोदी स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ द्विपक्षीय वार्ता और द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करेंगे। दोनों पक्ष व्यापार, पर्यावरण अनुकूल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती हुई तकनीक, स्टार्टअप्स, मजबूत आपूर्ति श्रृंखला, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई और आम जनता के आपसी संपर्क में सहयोग के नए अवसर तलाशने की संभावनाओं पर भी विचार करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपनी पांच देशों की यात्रा के तीसरे चरण में स्वीडन के गोथेनबर्ग पहुंचे, जहां गोथेनबर्ग लैंडवेटर एयरपोर्ट पर स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन ने उनका स्वागत किया। विशेष सम्मान के तौर पर स्वीडिश ग्राइपिन लड़ाकू विमानों ने स्वीडिश हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते समय प्रधानमंत्री के विमान को एस्कॉर्ट भी किया। एयरपोर्ट पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका बहुत ही गर्मजोशी के साथ स्वागत भी किया। गौरतलब है कि यात्रा का प्रमुख आकर्षण यूरोपियन राउंड टेबल फॉर इंडस्ट्री होगा, जिसे दोनों प्रधानमंत्री यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डर लेयन के साथ संबोधित करेंगे। इसके अलावा दोनों प्रधानमंत्री यूरोपियन संघ के शीर्ष उद्योगपति और सीईओ के साथ राउंड टेबल बैठक में भी शामिल होंगे। साक्षी सिंह, आकाशवाणी समाचार, गोथेनबर्ग, स्वीडन।
0: इससे पहले गोथेनबर्ग रवाना होने से पूर्व श्री मोदी को नीदरलैंड्स के प्रधानमंत्री रोब येटेन ने व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर विदाई दी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: इस यात्रा ने भारत नीदरलैंड संबंधों को नई गति दी है। रिश्तों को रणनीति साझेदारी से लेकर जाने तक जल संसाधन, सेमीकंडक्टर, इनोवेशन, रक्षा जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने तक दोनों देशों ने भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी रोडमैप तैयार किया है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत और नीदरलैंड की दोस्ती आने वाले सालों में और मजबूत होगी। उनकी यात्रा में यह एक ऐतिहासिक सांस्कृतिक पल था, जब लाइडन यूनिवर्सिटी ने 11वीं शताब्दी की चोल युग की ताम्र पट्टिकाओं को भारत को सौंपा। यह भारत की विरासत और सभ्यता का अनमोल अध्याय है। यात्रा के अंत में 17 अहम नतीजे सामने आए। इसमें शामिल है नवीनीकरण ऊर्जा पर संयुक्त कार्य समूह और ग्रीन हाइड्रोजन रोडमैप, क्रिटिकल मिनरल्स में सहयोग, गुजरात की कल्पसर परियोजना में जल प्रबंधन पर डच सहयोग, त्रिपुरा में फ्लोरिकल्चर और बेंगलुरु में डेयरी प्रशिक्षण के लिए भारत डच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, नालंदा और ग्रोनिंगन विश्वविद्यालय के बीच शिक्षा एवं शोध का समझौता और स्वास्थ्य एवं सीमा शुल्क में संस्थागत सहयोग। शुश्रुष शर्मा, आकाशवाणी, द हेग, नीदरलैंड्स।
0: कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। हालांकि राजनीतिक खींचतान और जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं के विरोध के कारण गठबंधन मुख्यमंत्री पद के चेहरे पर फैसला नहीं कर पा रहा था।
3: कांग्रेस के वरिष्ठ नेता वीडी सतीशन कल सुबह केरलम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। मुख्यमंत्री के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ लेंगे। मनोनीत मुख्यमंत्री वीडी सतीशन ने आज शाम राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलेकर से मुलाकात की और उन्हें मंत्रियों की सूची सौंपी। समारोह के लिए तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था सहित व्यापक इंतजाम किए गए हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलरोथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने आज गुजरात के गांधीनगर में 700 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। राज्य के 2 दिवसीय दौरे पर आए श्री शाह ने गांधीनगर निगम की 600 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। उन्होंने शहर में 128 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मधुर डेयरी के नवनिर्मित दूध प्रसंस्करण संयंत्र का भी उद्घाटन किया। इससे पहले दिन में श्री शाह ने गांधीनगर स्थित राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान में नवाचार और इंक्यूबेशन केंद्र का उद्घाटन किया। इस अवसर पर श्री शाह ने राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान के महत्व का उल्लेख करते हुए कहा कि एक ऐसा संस्थान है जो रचनात्मकता को उद्यमिता से जोड़ता है।
4: NID एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान। जब NID की स्थापना हुई हो तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
0: नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया। श्री जोशी ने कहा कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार हो गया है।
5: आज हमने एक ही दिन में 256.4 गीगावाट की अत्यधिक मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि सिस्टम में लगातार सुधार हो रहा है। 256 गीगावाट में से जिसे हमने एक ही दिन में एक खास समय पर अत्यधिक मांग के तौर पर पूरा किया, उसका 33% हिस्सा नवीकरणीय ऊर्जा से आया है।
6: 33% इज फ्रॉम द रिन्यूएबल एनर्जी।
0: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वर्चुअल माध्यम से बेंगलुरु और मुंबई के बीच नई एक्सप्रेस रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर श्री वैष्णव ने कहा कि दक्षिण और उत्तर कर्नाटक के लोगों की लंबे समय से लंबित मांगें अब पूरी हो रही हैं। उन्होंने कहा कि बेंगलुरु और मुंबई के बीच वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सितवांग को गिरफ्तार किया है। थान सितवांग एनसीबी और मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े कई मामलों में वांछित था। ब्यूरो ने कहा कि वो वर्ष 2024 के एक एनसीबी मामले में मुख्य आरोपी है, जिसमें 14 किलोग्राम मेथमफेटामीन और 2 किलोग्राम से अधिक हेरोइन जब्त की गई थी। वर्ष 2025 के एनसीबी मामले में भी ऐजोल में 49 किलोग्राम से अधिक मेथमफेटामीन जब्त की गई थी। हिमाचल प्रदेश में 51 शहरी स्थानीय निकायों के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। मतदान 25 नगर परिषदों और 22 नगर पंचायतों के साथ धर्मशाला, पालमपुर, सोलन और मंडी नगर निगमों में कराया गया था। राज्य चुनाव आयोग के अनुसार मतदान में 69% से अधिक मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रूस में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित 4 लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानी ने कहा कि रात भर हुए हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया है कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। इस बीच रूस में भारतीय दूतावास ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि मॉस्को क्षेत्र में ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई जबकि 3 अन्य घायल हुए। संयुक्त अरब अमीरात में आज अबूधाबी स्थित बाराकाह परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बाहर ड्रोन हमले के कारण आग लग गई। अबूधाबी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार संयंत्र के बाहर स्थित एक विद्युत जनरेटर में आग लगी। अधिकारियों ने बताया कि इस हमले में कोई घायल नहीं हुआ है और रेडियोलॉजिकल सुरक्षा स्तर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। भारत ने कहा है कि हॉर्मूज जल डमरू मध्य में व्यावसायिक जहाजों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाजों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की विशेष बैठक में कही। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हॉर्मूज जल डमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरेफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कहा है कि दक्षिण पश्चिम मॉनसून के केरलम में 26 मई तक पहुंचने की संभावना है, जिससे 4 दिनों का अंतर हो सकता है। मौसम विभाग ने कल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया है। अगले 2 दिनों में दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह के मौसम रहने की संभावना है। अगले 3 से 4 दिनों में उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में अधिकतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि हो सकती है। भारत की श्रेयांशी वली शेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी। इस जीत के साथ ही बेंगलोर प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली पहली टीम बन गई है। दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 16वें ओवर में 5 विकेट पर 168 रन बना लिए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में जनगणना 2027 के चल रहे पहले चरण, मकान सूचीकरण और आवास गणना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। कार्यक्रम में गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त कार्यालय में उप रजिस्ट्रार जनरल वीए वराडे स्टूडियो में मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम के दौरान श्रोता विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ दोनों देशों के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए द्विपक्षीय वार्ता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा, नीदरलैंड्स की यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को नई गति प्रदान की। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कल केरलम के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। मॉस्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय श्रमिक सहित 4 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने कल उत्तर भारत में भीषण लू चलने का अनुमान व्यक्त किया। और आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है, खबरों के साथ मैं अब्दुल वाहिद। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के अपने हमनसब उल्फ स्टर्सन से वफ्द की सतह की बातचीत कर रहे हैं, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाना है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड्स के उनके दौरे से दो तरफा ताल्लुकात को एक नई रफ्तार मिली है। कांग्रेस रहनुमा वी.डी. सतीशन को कल केरलम के नए वज़ीर-ए-आला का हलफ दिलाया जाएगा। मास्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर समेत चार अफराद हलाक हो गए। भारत के महकमे मौसमियात ने शुमाली भारत में कल शदीद गर्मी की पेशगोई की है। और बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी विलशेट्टी ने बाउजी चाइना मास्टर्स में खवातीन के सिंगल्स में चांदी का तमगा जीता। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के अपने दो रोज़ा दौरे में इस मुल्क के अपने हम मनसब के साथ दो तरफा बातचीत की। दोनों मुल्कों ने दिफा, अहम मादनियात और दीगर बुनियादी शोबों में तआवुन को मुस्तहकम बनाने से मुतल्लिक 17 मुआहदों पर दस्तखत किए हैं। दोनों रहनुमाओं ने मगरबी एशिया की सूरत हाल और आलमी सतह पर तवानाई की सप्लाई, नेस तजारती नेटवर्क पर इसके असरात पर गहरी तशवीश का भी इजहार किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि नीदरलैंड्स के उनके दौरे से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में एक नई रफ्तार पैदा हुई है। उन्होंने कहा कि दोनों मुल्कों ने मुस्तकबिल में अपने ताल्लुकात को फ़रोग देने और आबी वसाइल, सेमी कंडक्टर्स, इख्तिरा, दिफा, पायदारी और नख़लो हमल के शोबों में तआवुन को वसी करने के बारे में एक खाका तैयार किया है। पेश है एक रिपोर्ट।
1: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी पांच मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले में आज स्वीडन के शहर गोथेनबर्ग पहुंच गए हैं, जहां उनका खैर मकदम गोथेनबर्ग लैंडवेटर हवाई अड्डे पर स्वीडन के वज़ीर-ए-आज़म वुल्फ क्रिस्टर्सन ने किया। जैसे ही वज़ीर-ए-आज़म का तैयारा स्वीडन की फजाई हदूद में दाखिल हुआ, मेहमान खसूसी के तौर पर उनके हवाई जहाज की मुहाफजत स्वीडन के ग्रिपन लड़ाई जेट तैयारों ने शुरू कर दी। वज़ीर-ए-आज़म मोदी को हवाई अड्डे पर बाकायदा गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया और उनका इस्तकबाल भारतीय बिरादरी के अरकान ने बड़ी गर्मजोशी से किया। इस दौरे की खासियत दो वज़ीर-ए-आज़म की एक मुश्तरका खिताब है जो वो सनद से मुतालिक यूरोपीय गोलमेज कॉन्फ्रेंस से करेंगे। सीओज की इस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में जनाब मोदी के साथ यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला वोन देर लियन शामिल रहेंगी। गोथेनबर्ग से साक्षी सिंह की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद शहजाद।
0: वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के अपने हम मनसब उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ वफ्द की सतह की बातचीत कर रहे हैं। तवक्को है कि दोनों रहनुमा तिजारत, AI, स्टार्टअप समेत मुख्तलिफ शोबों में तबादले ख्याल करेंगे। कांग्रेस रहनुमा वी.डी. सतीशन की क्यादत में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में हलफ लेगी। कांग्रेस ने इस महीने की 14 तारीख को वी.डी. सतीशन को केरलम का अगला वजीर आला नामजद किया था, जिसके साथ ही 10 दिन से जारी सियासी ड्रामा और गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म हो गई। कांग्रेस की क़यादत वाले मुत्तहदा जमहूरी महाज UDF ने केरलम असेंबली इंतखाबात में दो तिहाई से ज़्यादा अक्सरियत हासिल की। तहम मुख्तलिफ ग्रुपों की लॉबिंग और कारकुनों के एहतजाज के बायस मस्कूरा इत्तेहाद वज़ीर आला के नाम पर फैसला नहीं कर पा रहा था। तफसील हमारे नामानिगार से।
2: कांग्रेस के सीनियर लीडर वी.डी. सतीशन कल केरलम के वज़ीर आला के तौर पर हलफ लेंगे। उनके हमरा 20 दिगर वज़रा भी हलफ लेंगे। नामजद वजीर आला वी.डी. सतीशन ने आज शाम गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की और उन्हें वज़रा की फेहरिस्त पेश की। तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल स्टेडियम में 12,000 अफराद के बैठने के इंतजाम समेत वसी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: दाखिली उमूर और इमदाद बाहमी के मरकजी वजीर अमित शाह ने आज गुजरात के शहर गांधीनगर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन NID के इख्तिरा और इब्तदाई कारोबार के मरकज का इफ्तिताह किया। जनाब शाह ने इस मौके पर इस इदारे की अहमियत को उजागर किया। उन्होंने कहा कि एक ऐसा इदारा है जो तख्लीकी सलाहियत को कारोबार से जोड़ता है। उन्होंने कहा कि NID जैसे इदारे नौजवानों को इख्तिरा और पेशेवराना तरक्की के मौजूं प्लेटफॉर्म फराहम करते हैं।
3: एनआईडी एक प्रकार से रचनात्मकता के आधार पर इनोवेशन और उद्यमिता, ये तीनों को जोड़ने वाला एक संस्थान। जब एनआईडी की स्थापना हुई हो तब मुझे लगता है कि इसके उद्देश्यों को बहुत अच्छे तरीके से सोचा हो।
0: मरकजी वजीर पीयूष गोयल भी इस मौके पर मौजूद थे। जनाब शाह गुजरात के 2 दिन के दौरे पर हैं। उन्होंने आज गांधीनगर में मदर डेयरी के 5 लाख लीटर की गुंजाइश वाले नव तामीर शुदा प्लांट का भी इफ्तिताह किया। अहमदाबाद में उन्होंने मिलियन माइंड्स टेक पार्क और ग्लोबल कैपेबिलिटी मरकज कैंपस का भी इफ्तिताह किया। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू इस महीने की 25 तारीख को साल 2026 के लिए पद्म अवार्ड्स अता करेंगी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर वजारत दाखिला ने कहा है कि सदर जमहूरिया राष्ट्रपति भवन में मुनक़िद होने वाली पहली शहरी एजाज से मुतअल्लिक तकरीब के दौरान पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री अवार्ड्स अता करेंगी।

इस साल भारत सरकार ने मजमुई तौर पर 131 पद्म अवार्ड्स का ऐलान किया है। रेलवे की वक्की वजारत ने त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के पीछे के दो डिब्बों में आग लगने के वाक़े की आला सतह पर तहकीकात का हुक्म दिया है। आज सुबह तकरीबन 5:15 बजे कोटा डिवीज़न के नागदा जंक्शन के करीब त्रिवेंद्रम नई दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस के पीछे के दो डिब्बों में आग लग गई। इन डिब्बों में एक गार्ड कोच और एक AC 3 टियर कोच शामिल था। वजारत के मुताबिक कोच में नस्ब हिफाजती निज़ाम फौरी तौर पर मुतहरिक हो गया और ट्रेन खुद बखुद रुक गई। ट्रेन के अमले ने फौरन आग से मुतासिर दोनों डिब्बों को अलग किया, जिसकी वजह से किसी भी मुसाफिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। रेलवे के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने आज बेंगलुरु और मुंबई के दरमियान एक नई एक्सप्रेस ट्रेन को वर्चुअल वसीले से झंडी दिखाकर रवाना किया। इस ट्रेन से कर्नाटक और महाराष्ट्र के दरमियान रेल कनेक्टिविटी में इजाफा हुआ है। जनाब वैष्णव ने इस मौके पर कहा कि जुनूबी और मशरकी कर्नाटक के लोगों का एक देरीना मुतालबा पूरा किया जा रहा है। उन्होंने ये ऐलान भी किया कि उम्मीद है कि बेंगलुरु और मुंबई के दरमियान वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द ही शुरू हो जाएगी। शहरी हवाबाजी के मरकजी वजीर राम मोहन नायडू ने आज दिल्ली सरकार की जानिब से हवाई जहाज़ों के ईंधन ATF पर वैल्यू एडेड टैक्स को 25% से कम करके 7% करने के फैसले की तारीफ की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि ऐसे वक्त में जब हवाबाजी का शोबा आलमी सतह पर ऑपरेशनल और माली दबाव का सामना कर रहा है, रियासती हुकूमतों के इस किस्म के सरगर्म इकदामात एयरलाइंस को ज़रूरी सहारा फराहम करते हैं और मुसाफिरों के लिए फ़जाई सफ़र को सस्ता रखने में मदद फराहम करते हैं। सड़क ट्रांसपोर्ट और शाहराहों के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने कहा है कि महाराष्ट्र के विदर्भ ज़िले में किसानों की खुदकुशी की एक बड़ी वजह पानी की किल्लत है। उन्होंने ये भी कहा कि पानी की बचत इस बहरान का मुअस्सर तरीन हल है। नागपुर में कौमी कॉन्फ्रेंस नागपुर जल संवाद से खिताब करते हुए जनाब गडकरी ने कहा कि पानी के तहफ़ से मुतल्लिक कोशिशों की कामयाबी के लिए लोगों का इनमें हिस्सा लेना लाजमी है। उन्होंने ग्राम पंचायतों से कानून साज अरकान तक तालमेल के साथ उठाए गए इकदाम पर जोर दिया ताकि गांवों और किसानों की खुशहाली को यकीनी बनाया जा सके। नशीली अशिया पर काबू पाने वाले ब्यूरो NCB ने मुल्कों के माबैन नशीली अशिया की नाजायज तिजारत के उन नेटवर्क्स के खिलाफ एक बड़ी कामयाबी हासिल की है जो भारत म्यांमार सरहद पर अपनी कार्रवाइयाँ अंजाम देते हैं। ब्यूरो ने म्यांमार में मुकीम सरगना थांगकिंग तुआंग को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। NCB ने एक बयान में कहा है कि यह गिरफ्तारी वसी तौर पर निगरानी खुफिया मालूमात में इजाफे तालमेल के साथ किए जाने वाले बैन रियासती तालमेल और लगातार पीछा करने की कार्रवाइयों की बदौलत की गई है। थांगकिंग तुआंग कई तरह की मनशियात और नशीले मादों के कानून के तहत मतलूब था। ये केस NCB और मनशियात से मुतल्लिक कानून नाफिज करने वाली कई एजेंसियों ने दर्ज की थी, जिसमें से NCB ने 2 केस दर्ज किए थे। नई और काबिले तजदीद तवानाई के मरकजी वजीर प्रहलाद जोशी ने कहा है कि भारत ने एक ही दिन में 256.4 GW की बिजली की मांग को पूरा करने में, जो अब तक की सबसे बड़ी मांग है, कामयाबी हासिल की है। एक प्राइवेट अंग्रेजी रोजनामे के साथ बातचीत में जनाब जोशी ने कहा कि बिजली की 33% मांग काबिले तजदीद तवानाई के वसायल से पूरी की गई है। वजीर मौसूफ ने यह भी कहा कि इस बड़ी तब्दीली से तवानाई की सलाहियत में बड़ी तेज़ी से इजाफे, ग्रिड को मुस्तहकम बनाने और मुल्क की तरक्की के सफ़र को तकवीत देने में माहौल के लिए साजगार तवानाई के बढ़ते हुए हिस्से का अंदाज़ा होता है। रूस में मास्को और आसपास के इलाकों पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में 4 अफराद की मौत हो गई है, जिनमें एक भारतीय मजदूर भी शामिल है। मास्को के मेयर सरगेई सुबियानिन ने बताया कि रात भर हुए इन ड्रोन हमलों में कम से कम 12 अफराद जख्मी भी हुए हैं। रूस के हुक्काम के मुताबिक मास्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को तबाह भी किया गया है। यूक्रेन के सदर विलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने इन हमलों की तस्दीक करते हुए इन्हें दुरुस्त कार्रवाई करार दिया। इस दौरान रूस में भारतीय सफारतखाने ने सोशल मीडिया पर जारी एक बयान में बताया कि मास्को को मुख्तलिफ इलाकों में हुए ड्रोन हमलों में एक भारतीय मजदूर की मौत हो गई, जबकि 3 दीगर जख्मी हो गए। सफारतखाने ने मजीद बताया कि सफारतखाने के अहदेदार

0: कारों ने हादसे की जगह का दौरा किया और अस्पताल में जेरे इलाज जख्मी मजदूरों की कैफियत दरियाफ्त की। भारत के महकमे मौसमियात का कहना है कि जनूब मगरबी मानसून इस माह की 26 तारीख को केरलम में दस्तक दे सकता है। महकमे मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया है कि मॉडल एरर की बुनियाद पर इसमें 4 रोज़ आगे या पीछे होने की भी गुंजाइश है। महकमे मौसमियात ने कहा है कि जनूब मगरबी मानसून के जनूब मशरकी बहिरे अरब के कुछ मजीद हिस्सों जनूब मगरबी और जनूब मशरकी खलीज बंगाल अंडमान जजायर और बहिरे अंडमान के बाकी हिस्सों और मशरकी वस्ती खलीज बंगाल के कुछ हिस्सों में अगले 2 से 3 रोज़ के दौरान हालात मुआफिक रहेंगे। महकमे मौसमियात ने कल मगरबी उत्तर प्रदेश में शदीद गर्मी की पेशगोई की है। अगले 2 दिनों के दौरान दिल्ली हरियाणा चंडीगढ़ मध्य प्रदेश पंजाब राजस्थान तेलंगाना और विदर्भ में भी इसी तरह की सूरत हाल का इम्कान जाहिर किया गया है। बैडमिंटन में आज चीन में बाओजी चाइना मास्टर्स में खवातीन के सिंगल्स में भारत की श्रियांशी वाली शेट्टी ने चांदी का तमगा जीता है। उन्होंने बाओजी सिटी जिम्नेशियम में सुपर 100 के फाइनल में चीन की एन क्वी युआन को सीधे सेटों में 14-21 6-21 से शिकस्त खाई, लिहाजा उन्हें चांदी के तमगे पर इक्तफा करना पड़ा। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में खेले गए मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु के जरिए दिए गए 223 रन के निशाने को हासिल करते हुए पंजाब किंग्स मुकर्रा 20 ओवर्स में 8 विकेट पर 199 रन ही बना सकी। इससे कबल बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 222 रन बनाए थे। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में खेले जा रहे दिन के एक और मैच में राजस्थान रॉयल्स ने दिल्ली कैपिटल्स के सामने जीत के लिए 194 रन का निशाना रखा है। इससे कबल दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। आखिर में खास-खास खबरें एक मरतबा फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी गोथेनबर्ग में स्वीडन के अपने हम मनसब उल्फ क्रिस्टर्सन से वफ्त की सतह की बातचीत कर रहे हैं, जिसका मकसद दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मुस्तहकम बनाना है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नीदरलैंड्स के अपने तो रोज़ा दौरे में इस मुल्क के अपने हम मनसब के साथ दो तरफा बातचीत की। दोनों मुल्कों ने दिफा, अहम मादनियात और दिगर बुनियादी शोबों में तआवुन को मुस्तहकम बनाने से मुतल्लिक 17 माहदों पर दस्तखत किए। वज़ीर आज़म मोदी ने कहा है कि नीदरलैंड्स के उनके दौरे से दो तरफा ताल्लुकात को एक नई रफ्तार मिली है। कांग्रेस रहनुमा वी डी सतेसन को कल केरलम के नए वज़ीर आला का हलफ दिलाया जाएगा। मास्को पर यूक्रेन के अब तक के सबसे बड़े ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर समेत 4 अफराद हलाक हो गए। भारत के महकमे मौसमियात ने शुमाली भारत में कल शदीद गर्मी की पेशगोई की है। और बैडमिंटन में भारत की श्रियांशी वाली शेट्टी ने बाओजी चाइना मास्टर्स में खवातीन के सिंगल्स में चांदी का तमगा जीता। और आईपीएल क्रिकेट में धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। इससे कबल बेंगलुरु ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 4 विकेट पर 222 रन बनाए थे। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।
1: ये आकाशवाणी है। आज प्रस्तुत है श्री विष्णु प्रभाकर का लिखा नाटक कूपे।
2: ये है मेरा कूपे। जूडिथ का प्रोग्राम अचानक बदल गया। मैं उसका टिकट वापस करने जा रहा था। आपको आपत्ति न हो तो?
3: मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आपके साथ तो 10 दिन तक साधना केंद्र में रही हूँ। एक अजनबी आदमी के साथ सफर करना मुझे बुरा नहीं लगता।
2: कूपे में भी?
3: क्यों, कूपे में क्या है? 2 बर्थ है, उन पर कोई भी 2 यात्री सफर कर सकते हैं। 2 स्त्री 2 पुरुष या 1 स्त्री 1 पुरुष।
2: जी हाँ, 1 स्त्री और 1 पुरुष 2 ही होंगे इस कूपे में। अच्छा सफर कटेगा।
3: हाँ, नींद अच्छी आएगी या शायद बिल्कुल नहीं आएगी।
2: आप में जीवट है, लेकिन 10 दिनों तक तो आप
3: वहाँ सबको वैसा ही व्यवहार करना चाहिए था जैसा मैंने किया। साधना करने आए थे हम लोग।
4: अच्छा, मैम साहब आ गए,
2: आप तो कह रहे हैं।
4: सुनो कंडक्टर, दो कप कॉफी मिलेगी? लेकिन रुको सांत्वना जी, अब तो डाइनिंग कार में चलने का वक्त हो गया है।
3: मैं नहीं जाऊंगी, रात को मैं नहीं खाती। कंडक्टर मेरे लिए केवल एक कॉफी।
5: जी हाँ मैम साहब, कॉफी आ जाएगी।
2: मैं तो डाइनिंग कार में जाऊंगा, 10 दिन तक मन और तन दोनों ही भूखे रहे। ना ना, अब मन को नहीं मार सकता।
3: तुमने मारा ही कहा है, मारने का ढोंग किया। अच्छा जाओ, मैं ध्यान करने के बाद कुछ देर काम करूंगी।
2: ओके, लौट कर बातें होंगी।
3: ओके।
5: मैम साहब ये रही कॉफी, कुछ और चाहिए?
3: नहीं शुक्रिया। अब जरा एकांत मिला, सोने से पहले अपनी डायरी लिख लो। गुरुजी दूसरे महात्माओं से कितने भिन्न हैं, वो न प्रभाव डालने के हथकंडे जानते हैं, न दूसरों पर छा जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन जैसे उन्होंने एक सहज सत्य का आविष्कार कर लिया है, क्योंकि उनमें एक मोहिनी शक्ति पैदा हो गई है, वही शक्ति देश विदेश के नाना प्रकार से त्रस्त व्यक्तियों को अपने पास खींच लेती है। अज्ञात शांति की खोज में भटकते ये व्यक्ति कैसे सहज विश्वास से अपने जीवन की कहानी खोल कर रख देते हैं इनके सामने। वो जूडिथ जिसकी नीली आंखों में गहरे आकाश की झलक है, जिस सहज भाव से खिलखिलाती है, उसी सहज भाव से अपने मन की सारी परतें खोल कर रख देती है। उस दिन वो अपनी प्यारी प्यारी सी बच्ची के लिए मेरे पास से गुजरी तो मैंने मुस्कुराकर कहा, हेलो जूडी, कितनी प्यारी है तुम्हारी बच्ची, कल बहुत देर तक मुझसे बातें करती रही।
6: ये जिसके पास जाती है उसी की हो जाती है, मेरी तरह। अब गुरुजी के पास सोने की जिद कर रही।
3: अच्छा,
6: मानती ही नहीं, इसीलिए इसके पिता के पास ले जा रही हूँ।
3: क्या तुम्हारे पति भी यहाँ आए हुए हैं?
6: मेरी शादी नहीं हुई है।
3: क्या?
6: लेकिन इसके पिता बहुत सुंदर हैं, ऊपर की मंजिल में ही तो ठहरे हैं, उनसे ही इस लंबी यात्रा में मैंने ये सुंदर बच्ची प्राप्त की है।
3: आप कितने दिन से घूम रही हैं?
6: कई वर्ष हो गए।
3: आपके बहुत मित्र हैं?
6: स्वाभाविक है, अनेक देशों के अनेक युवकों के संपर्क में आई हूँ, उनको समझा परखा है, प्यार दिया है, पाया है।
3: बुरा तो नहीं मानोगी, तुम ग्रास, डोप, चरस, LSD आदि का सेवन करती हो?
6: करती हूँ, उनसे मुझे आनंद मिलता है, उस आनंद का मैं वर्णन नहीं कर सकती। वो अनुभव करने की वस्तु है, जैसे जैसे स्वर्ग का द्वार खुल जाता है, प्रतिभा मुक्त हो जाती है।
3: तो फिर वो क्या है जो तुम्हें खाए जा रहा है? क्या है जो तुम्हारे जैसे युवक युवतियों को दर दर भटकने के लिए विवश करता है? साधुओं, महात्माओं, योगियों के पास तुम क्या पाना चाहते हो?
6: बहुत दिनों तक ये सब करते करते मैंने अनुभव किया है कि नशे में जो आनंद मिलता है वो जैसे मैकेनिकल, जैसे उधार का आनंद है। एक महात्मा है जो दैहिक सेक्स के द्वारा समाधि की ओर ले जाने का दावा करते हैं, लेकिन मैं बिना किसी की सहायता से अपने ही अंतर में से स्वर्ग जाने का मार्ग खोल लेना चाहती हूँ। सुना था भारत के योगी इस मार्ग को जानते हैं, इसलिए भटकती हूँ।
3: जितने लोगों से मैंने बात की है वो सभी इन अनुभवों से गुजर चुके थे। सेक्स, नशा, सब कुछ उनके लिए सहज है, फिर भी वो भटक रहे हैं। कितनी सच्ची है उनकी ये भटकन। कुछ हैं जो परिवार के शासन से परेशान हैं, कुछ को आज के शोषण की राजनीति त्रस्त करती है, वो उद्योगीकरण से प्राप्त ऐश्वर्य और विलास से ऊब चुके हैं, ये यांत्रिक और कृत्रिम जीवन उनको खोखला कर रहा है, और वो उस आनंद की तलाश में है जो उन्हें शांति के स्वर्ग द्वार के भीतर पहुंच जाने की शक्ति दे। आती हूँ।
2: बाहर भी वर्षा होकर चुकी है, मौसम कितना सुहावना, कितना प्यारा है। अरे आप एक लिखे जा रही हैं? कैंप के अपने अनुभव लिख रही हैं शायद, देख सकता हूँ?
6: ये मेरी डायरी है।
2: तब नहीं देखूंगा।

0: डायरी चोरी करके पढ़ने की चीज है।
1: बड़ी समझदारी की बातें कर रहे हैं।
0: समझदारी की बातें तो अब आरंभ होंगी। खिड़की खोल दूं। वर्षा से भीगी हवा आने दो। मैं आपके पास बैठ सकता हूँ?
1: सब काम पूछ कर ही करते हैं आप।
0: थैंक यू। मेरे पास स्कॉच है, 10 दिन से इसे छुआ ही नहीं। आप पीती हैं?
1: पीती तो नहीं, पर प्रतिज्ञा भी नहीं की।
0: तो मेरा साथ दीजिए, थकान भी तो उतारनी है।
1: मैं बिल्कुल नहीं थकी हूँ।
0: प्लीज साथ देने के लिए एक पैक।
1: जी नहीं, आप ऊपर जाकर पीजिए।
0: और अगर मैं यहीं बैठकर पीऊं तो?
1: पीजिए।
0: बुरा मान गई। प्लीज, बात यह है कि मैं साथी के बिना रह ही नहीं सकता। बहुत घूमा हूं हिप्पियों के साथ, जिप्सियों के साथ। कितनी मुक्त और सहज हैं ये विदेशी युवतियां। बड़े मजे के साथ कह सकती हैं लॉट्स ऑफ बॉयफ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ सेक्स। मैं भी कह सकता हूँ लॉट्स ऑफ गर्लफ्रेंड्स, लॉट्स ऑफ।
1: मैं आपकी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ।
0: नहीं है तो हो जाएंगी। मुझे किसी के साथ एकाकार होते देर नहीं होती। दुई का भाव मुझे सुहाता ही नहीं। एक ओंकार, एक सत्ता, एक चेतना।
1: काफी गहरे उतर चुके हैं आप।
0: गणित विज्ञान और आध्यात्म की तरह नशे, सेक्स और योग की मंजिल एक ही है, ब्रह्मानंद सरोवर में डुबकी लगाना। प्लीज, मैंने कहा ना अकेले पीते अच्छा नहीं लगता। छोटा पैक लीजिए मेरे लिए, इस सुहावने मौसम के लिए।
1: मिस्टर सिंह, आप ऊपर नहीं जाना चाहते तो मैं जाती हूँ।
0: आप ऊपर कैसे जाएंगे?
1: जी हाँ, वो अधिकार तो जैसे आपका ही है। आप पुरुष है ना? मैं कहती हूँ ऊपर जाइए।
0: नाराज ना होइए। अच्छा, मैं अब और नहीं पीऊंगा, आपके साथ बातें करूंगा। आप डाइनिंग कार में नहीं गई, वहां डिक था, वही जूडिथ के बच्चे का बाप। आपकी बहुत तारीफ कर रहा था, आना चाह रहा था, लेकिन जब उसे पता लगा कि हम कूपे में हैं तो मुस्कुरा कर लौट गया। अरे अब फिर नाराज हो रही है? प्लीज।
1: मैं बिल्कुल नाराज नहीं हूं, जरा थोड़ा पीछे हटिए ना, मैं लेटना चाहती हूँ, फिर अपना भाषण जारी रख सकते हैं आप। आप तो जूडिथ के साथ बहुत रहे हैं।
0: बहुत से देशों में साथ साथ घूमा हूँ। We have made love many times. लेकिन वहां गुरुजी का आदेश था 10 दिन तक कुछ नहीं होना चाहिए, पूर्ण ब्रह्मचर्य, पूर्ण मौन। फिर दिख भी तो यही था, लेकिन उसे जरा भी ईर्ष्या नहीं हुई। जूडिथ को पूरी स्वतंत्रता है, वो किसी के साथ रहे।
1: इसलिए शायद वो तुम्हारे साथ आकर भी लौट गई।
0: उसके लौट जाने से मुझे दुख हुआ था, लेकिन तुम मिल गई तो मुझसे भी आकर्षक हो, सबसे आकर्षक। तुम्हारी मांसल देह, तुम्हारी चमकती आंखें, तुम्हारे लंबे सुनहरी बाल।
1: बहुत बहुत शुक्रिया। 10 बज चुके हैं।
0: प्लीज अभी कुछ देर और बैठूंगा।
1: बैठे रहो।
0: तुम्हारी डायरी पढ़ सकता हूँ?
1: नहीं।
0: तुम्हें छू सकता हूँ?
1: नहीं।
0: मेरी प्रेम कहानियां सुनोगी?
1: नहीं।
0: क्यों?
1: क्योंकि सब एक जैसी होती हैं, वैसे ही जैसे तुम सब पुरुषों का व्यक्तित्व एक जैसा होता है। सोने का समय हो गया, जाओ सो जाओ और स्वप्न देखो।
0: मेरा मन तो तुमसे बातें करने को करता है।
1: बातें मुंह से की जाती हैं, हाथों से नहीं।
0: सांत्वना, सांत्वना, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ सांत्वना।
1: मुझसे प्रेम करने वालों में एक और का इजाफा हुआ। लेकिन सरजीत, तुम सचमुच प्रेम करते होते तो जतलाते नहीं, प्रेम निर्लज्ज नहीं होता।
0: यानी नैतिक होता है। शरीर को बचाने के मुंह में तुम अच्छे तर्क कर लेती हो।
1: शरीर को बचाने का मुंह मुझे कभी नहीं रहा, परंतु वो मन से जुड़ा हुआ है। प्रेम का अर्थ केवल तन का मिलन नहीं है। जिन जूडिथ, मार्था और लिजा के लिए तन का मिलन सहज रहा है, वो भी मन के मिलने के लिए भटकती फिर रही हैं। न जाने कितनी गांठें पड़ी हैं उनके मन में। माँ बाप से विद्रोह, समाज से विद्रोह, अपने से विद्रोह। व्यवस्था को तोड़ने के लिए वो ड्रग का सेवन करती हैं। स्वर्ग के द्वार में प्रवेश करने
0: वही वही वही तो आनंद का मार्ग है। तुमने कभी अनुभव किया है उसे? उस आनंद को मेरे पास है, पियोगी?
1: सरजीत, तुम सीमा को लांघते जा रहे हो, अब चले जाओ।
0: और न जाऊं तो?

0: सी स्त्री ने मुझे आज तक पीछे नहीं हटाया है।
1: लेकिन मैं हटा दूंगी। मर्द है तो उसे औरत चाहिए।
2: प्लीज
1: मत तेज पूंछ है, औरत उसके तेज को छीनने वाली है।
0: देखो
1: ये दलीलें अब्बासी होती
2: है। प्लीज
1: तुम्हारे लिए नारी केवल एक वेश्या
2: है। मैं नहीं,
1: मैं कहती हूँ शिक्षा उठकर चले जाओ यहाँ से, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं।
2: नहीं
1: चाहती हूँ या नहीं।
2: सांत्वना
1: कौन है, क्यों आए हैं इस समय?
3: क्षमा कीजिए, आप ठीक तो हैं?
1: बिल्कुल ठीक हूँ। आप ही बीमार नजर आते हैं जो दूसरों के कंपार्टमेंट में झांकते फिरते हैं। कुछ कहना है तो कहिए, नहीं तो जाइए यहाँ से।
3: माफी चाहता हूँ, बराबर के कंपार्टमेंट में हूँ, लगा जैसे आपके साथ कोई जबरदस्ती कर रहा है। लेकिन यहाँ तो आपके पति का अतिरिक्त और कोई दिखाई नहीं देता।
1: तो फिर जाइए अपने कंपार्टमेंट में।
3: देखिए मुझे नींद कम आती है, आप लोग शोर मचाएंगे तो बेवश होकर मुझे।
1: क्या मतलब है आपका?
3: आप सब समझती हैं, इस डिब्बे में केवल आप दोनों ही नहीं हैं, आप जैसे जोड़े बहुत देखे हैं। इस उम्र में इतना आवेश नहीं होना चाहिए। आशा करता हूँ मुझे फिर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कंडक्टर ये तुम्हारी जिम्मेदारी भी है कि हम लोग आराम से सो सकें।
4: सचमुच मैम साहब, मैं तो डर गया था, कभी कभी फालतू आदमी भी चढ़ाते हैं।
1: मेहरबानी करके आप लोग चले जाइए। मैं माफी चाहती हूँ।
3: ठीक है मैं जाता हूँ, गुड नाइट।
4: दरवाजा अंदर से बंद कर लीजिए, कोई बात हो तो मैं पास ही में हूँ।
5: मुझे बहुत दुख है दरअसल।
1: चुप रहो, ऊपर जाकर अपनी सीट पर बैठो।

0: सरजीत का इसमें कोई दोष नहीं है। उसका संबंध जूडेथ, मार्था और लिजा जैसी नारियों से रहा है, जिनके लिए देह है सब कुछ है। लेकिन फिर विद्रोहियों का बाना पहने इधर उधर क्यों भटक रही हैं? अंतर में कहीं ना कहीं खोज की वो चाह है जो इन्हें स्थूल आनंद से ऊपर उठाती है। मैंने मार्था से पूछा था, मार्था बुरा तो न मानोगी, एक बात पूछूं?
1: खुशी से पूछो।
0: तुम माँ बनने वाली हो ना?
1: हाँ।
0: इसके पिता कौन है?
1: मेरे लिए जानना जरूरी नहीं है, मैं भी पुरुष की तरह प्यासी हूँ, मुझे भी तृप्ति चाहिए। पुरुष कोई भी हो, वो सर्वजीत भी हो सकता है, शायद वही है। लेकिन तुम ये सब क्यों जानना चाहती हो?
0: मैं जानना चाहती हूँ कि मुक्त साहचर्य और देह भोग के साथ सच्चे सुख की तलाश कैसे चल सकती है।
1: मुझे तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं दिखाई देता। शरीर के अस्वीकार की बात तुम लोगों में ही है, हम लोगों में समर्पण की प्यास है। समर्पित होकर हम पूर्णता का अनुभव करते हैं। तुम्हारे लिए प्रेम एक बना बनाया सांचा है, विवाह किया और वो सांचा ओढ़ लिया।
0: नहीं, मैंने भी प्रेम विवाह किया था, उसी का परिणाम है मेरे दो बच्चे, उन्हीं के लिए मैं दूसरी बार विवाह नहीं कर रही।
1: लेकिन इससे क्या तुम्हारी देह की प्यास बुझ गई? इतने सारे वर्ष तुमने इस छद्म को पालने में लगा दिए। मैंने गुरुजी से बहुत बहस की है इस बारे में।
0: क्या उत्तर दिया उन्होंने?
1: देह की प्यास से उन्हें इनकार नहीं है, वो तो चाहती है कि साधना के इन 10 दिनों में परहेज किया जाए, उसके बाद जैसा अनुभव हो।
0: इसका अर्थ समझी?
1: समझी। वो कहना चाहते हैं जैसे जैसे साधना के मार्ग पर आगे बढ़ते हैं, देह भोग की प्यास वैसे वैसे शांत होती जाती है। सांत्वना, मैं नहीं जानती क्या होगा, मुझे चिंता नहीं कि वो प्यास शांत होती है या नहीं, लेकिन मुझे ऐसा अवश्य लगता है कि सच्चे सुख के प्राप्त हो जाने पर वो प्यास असंगत हो रहेगी।
0: फिर भी तुम कहती हो कि शरीर के अस्वीकार की बात हम ही लोगों में है।
1: अस्वीकार करने और असंगत हो रहने में अंतर है, क्या नहीं है?
0: कभी सोचा भी न था कि मुक्त देह मिलन के उपासक ये लोग इतनी गहराई में उतर सकते हैं। अस्वीकार करने और असंगत हो रहने का अंतर ही हम भूल चुके हैं, इसलिए अत्यधिक निषेध से परेशान होकर देह मिलन के लिए पागल हुए जा रहे हैं। मैंने भी जब चाहा है देह की प्यास बुझाई।
2: देह की इस प्यास को क्या तुमने अब भी बुझाना नहीं चाहा था?
0: कौन हो तुम?
2: मैं कौन हूं ये पूछने का साहस है तुमने? अपने अंतर में झांक

0: देखो, वहीं से बोल रही हूं। बार बार दूसरों के अंतर में झांकती हो पर अपने को नहीं खोजती। विधवा हो, संतान के प्यार के आदर्श में बंधी तुम देह की प्यास को छिपाए फिरती हो, लेकिन क्या सर्वजीत के साथ तुम्हारा मुक्त व्यवहार तुम्हारी देह की प्यास के ऊपर ही आधारित नहीं था? अगर ऐसा था तो मुझे रोकने वाला कौन था? तुम्हारा अपना अहम, जबरदस्ती शहीद बनने की लालसा। शब्दों के माया जाल में फंसने की चेष्टा मत करो। ये ठीक है, छोटी उम्र के अपने दोनों बच्चों को मैं किसी की दया पर छोड़ने को तैयार नहीं थी, पर देह के मिलन को मैं अस्वीकार नहीं करती। शर्त केवल एक ही है कि दूसरों की वासना का शिकार होना मैं नहीं चाहती, वो देह का अपमान है। लेकिन तब तुम साधना केंद्र में क्यों गई थी? क्या वो इस बात का प्रमाण नहीं है कि तुम भी अशांत हो? तुम्हें देह को बचाना अच्छा नहीं लगता, लेकिन बचाने को विवश भी हो। इसी द्वंद्व से तुम पीड़ित हो। तीव्र निषेध मन की चाह में से ही पैदा होता है। तुम्हें स्पष्ट कह देना चाहिए था कि सर्वजीत तुम्हारा पति नहीं है, ये मेरा छद्म है। इस छद्म को उतार फेंको। ये छद्म है, छद्म। सुनो, कहां गई तुम? बोलो। कहीं कोई नहीं, ये मैं अपनी ही आवाज सुन रही हूं। सचमुच मुझे सहज भाव से स्वीकार कर लेना चाहिए था कि सर्वजीत मेरा पति नहीं है। मैं डर गई। कंडक्टर और सहयात्री मुझे व्यभिचारी नहीं समझते और शायद डिब्बे से उतर जाने को विवश करते, या फिर कैसी है ये भूल भुलैया, कैसे मुक्ति मिलेगी इससे? क्या इसी मुक्ति की खोज में मैं साधना केंद्र में नहीं आई? इतने सहज होकर भी ये लोग भटक रहे हैं, द्वंद्व में फंसी मैं भी भटक रही हूं। क्या इस भटकन का अंत देह के मिलन नहीं है? कहां है सत्य? कौन सा छद्म इन तर्कों को ठगे हुए है? कैसे मिलेगी इस द्वंद से मुक्ति?
1: छद्म, ये छद्म है, इस छद्म से मुक्ति पाओ। सहज होने में ही मुक्ति है। मुक्ति, मुक्ति।
2: बहुत देर हो गई तुम्हें लिखते हुए, अब सो जाओ। जो कुछ हुआ उसके लिए लज्जित हो।
0: नहीं सरजीत, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं।
2: तुम बहुत अच्छी हो।
0: सच?
2: मैंने प्रतिज्ञा की थी कि सच बोलूंगा, केवल सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ न बोलूंगा।
0: अच्छा, अब सो रही हूँ। गुड नाइट।
2: गुड नाइट।
3: बहुत देर से आई हो। कॉलेज तो कभी का बंद हो चुका था।
0: हाँ, कमल अंकल के घर चली गई थी।
3: इतनी रात तक क्या वहाँ कोई उत्सव था? हमें क्यों नहीं ले गए?
0: कुछ ऐसी बात थी बेटे, गंभीर बातें करनी थी ना, हड़ताल होने वाली है।
3: बहुत देर हो गई थी इसलिए मुझे डर भी लगा। भैया ने वहाँ फोन भी किया था लेकिन हर बार अंगेज मिला, शायद खराब था।
0: हाँ शायद, असल में हम बहुत जरूरी बातें कर रहे थे, शायद तुम्हारे अंकल ने रिसीवर उतार कर रख दिया था।
3: हाँ, यही जवाब हमें भी मिला था, हमने कंप्लेंट की थी। खाना खाओगे मामा?
0: मैं तो खाई बेटा, लगता है तुम लोगों ने अभी तक नहीं खाया। बड़े दुष्ट हो तुम, मेरे बिना कुछ भी नहीं कर सकते। बुलाओ अपने भैया को।
4: पढ़ने का नाटक कर रहा है लेकिन सुन रहा है हमारी बातें। इधर आओ बाबा।
0: माँ को जरा भी मुक्ति नहीं दोगे? मुक्ति तो मैं ही उन्हें नहीं दे पा रही, मैंने ही तो उन्हें अपने ऊपर निर्भर कर लिया है। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, वो बड़े हो गए हैं, सब कुछ समझते हैं। मुझे उनसे सब कुछ कह देना चाहिए, कहीं उनके किशोर मन में काट ना पड़ जाए। स्वयं मैं भी तो नहीं झेल पाती।

0: सर्वग्रासी एकांत को। क्या मैंने ही जानबूझकर इसे अपने ऊपर नहीं लाद लिया है? क्या इससे मुक्ति पालूं? क्या वो मुक्ति होगी?
1: सांत्वना, सांत्वना, तुम सो गई?
0: तुम्हारा स्पर्श पाकर मुझे नींद आ ही जाती है।
1: सांत्वना, हम ये लुका छिपी का खेल बंद कर देना चाहिए।
0: हाँ, कर देना चाहिए। नहीं नहीं ये कैसे हो सकता है? मेरे लिए तो फिर कोई और मार्ग नहीं रह जाएगा।
1: तुम शादी कर लो।
0: शादी नहीं कर सकती विनोद, जब तक मेरे बच्चे अपने पैरों पर खड़े नहीं हो जाते, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती।
1: धोखा तुम आप दे रही हो।
0: मैं धोखा नहीं दे रही, अपनी इच्छा से जो चाहती हूँ करती हूँ।
1: इच्छा मेरी भी तो हो सकती है। जैसे तुम चाहती हो कि तुम किसी का शिकार ना बनो, वैसे ही क्या मैं नहीं चाह सकता कि मैं तुम्हारा शिकार ना बनूं?
0: शिकार? तुम क्या कह रहे हो विनोद? विनोद!
2: सांत्वना, क्या है सांत्वना, किसे पुकार रही हो?
0: कुछ नहीं, सपना देख रही थी।
2: या अपने प्रेमियों की याद कर रही थी? विनोद, कमल।
0: तुम्हें ईर्ष्या होती है?
2: स्वाभाविक है, सारी रात यहाँ ऊपर के बर्थ पर लेटा लेटा।
0: तुम सब पुरुष एक जैसे होते हो। उनके एक मित्र थे, एक बार उनके साथ भी इसी तरह कूपे में सफर किया था। सारा समय तुम्हारी तरह न जाने क्या क्या बकते रहे, अपनी प्रेम कहानियां सुनाते रहे। बेचारे परवर्टेड।
2: अगर मैं यूरोपियन होता तो इस समय तुमसे पूछता, क्या उस रात उसके साथ तुमने प्रेम किया था?
0: आप नहीं पूछोगे?
2: बेकार है, हिंदुस्तानी प्रेम करना ही नहीं जानता।
0: ताने मत दो, मैं न तब समर्पित हुई थी और न अब हो सकूंगी।
2: जी में आता है कि नीचे उतरकर तुम्हारे शरीर को झंझोर डालूं और
0: फिर रुक क्यों गए?
2: जागने की राह देखता रहा, अब नहीं मानूंगा।
0: तुमने और उस पुलिस इंस्पेक्टर में अंतर ही क्या है जिसने सवेरे सवेरे दूध लेने जाती हुई एक औरत के साथ बलात्कार किया?
2: तर्कों की ये ढाल तुम्हारी मदद नहीं कर सकेगी।
0: जब दो शरीर सैकड़ों मीलों की मानसिक दूरी के साथ मिलते हैं तो उस अर्थहीन मिलन में न सौंदर्य होता है न सत्य। वो न तन को बांध पाता है न मन को। इसी को कहते हैं अपवित्र होना।
2: पवित्र अपवित्र की मुझे चिंता नहीं, चिंता तुम्हारी है। सारी रात तुम अपने से लड़ती रही हो, तुम्हारा यही छद मैं उतार फेंकना चाहता हूँ। सांत्वना, प्लीज।
0: इसे हटा, मैं कहती हूँ एक कदम भी आगे न बढ़। कौन आया अब? कौन हो तुम? क्या चाहते हो?
3: मैं सरजीत से मिलना चाहता हूँ। हेलो सरजीत। तुम्हारा नाम देखा तो आश्चर्य हुआ, विलायत से कब आए, कैसे हो? और मार्था? ओह, ये मार्था तो नहीं है?
0: मेरा नाम सांत्वना है।
3: ओ, देखता हूँ तुमने शादी कर ली है सरजीत भाई, बधाई हो।
2: निगम, इनसे मिलो, ये है श्रीमती सांत्वना थापर। मैंने अभी तक शादी नहीं की है। तुम कहो कहाँ कहाँ रहे, बहुत दिनों के बाद मिल रहे हो।
3: हाँ, वो तो है, पर तुम हो भाग्यशाली। अभी तक तो विदेशी नारियों की चर्चा ही तुम्हारे पत्रों में रहती थी, अब भारतीय नारी भी आ गई। बधाई दूंगा, चुनाव एक्सलेंट है, वाह। माफ कीजिएगा मिसेस थापर, हम बहुत गहरे दोस्त हैं। यहाँ बैठ सकता हूँ ना सर जी?
0: ये कूपे है मिस्टर निगम, और अभी रात बीती नहीं है।
3: ओ आई एम सॉरी, मैं भूल गया था कि कूपे में तीसरे के लिए स्थान नहीं होता।
0: मैं अगले स्टेशन पर उतर जाऊंगी, तब आप आ सकते हैं। अब आप
3: जा रहा हूँ, खेद है मैंने आपके एकांत में खलल डाला। और सरजीत एक बात याद रखो, ये भारत है, यहाँ शोर नहीं मचाना चाहिए, वो बाहर वाले को भी खींच लेता है।
0: दरवाजा खुला रहने दो।
3: क्यों?
0: मेरी इच्छा।
2: कूपे में एक की इच्छा नहीं चलती।
0: तो आप में भी समझने की शक्ति है? स्टेशन आ रहा है, मैं यहीं उतरूंगी।
2: अभी तो अंधेरा है, बाहर बूंदाबांदी हो रही है, और ये स्टेशन भी बहुत छोटा सा है।
0: बड़ी सुंदर जगह है ये।
2: सुंदर तो तुम हो, जगह नहीं, ये तो क्रूर है, विछो का स्थान।
0: तुम्हारा ऐसा सोचना भी क्या एक छद्म ही नहीं है? जो तुम्हारी दृष्टि में विछो का स्थान है, वो किसी के लिए मिलन का भी हो सकता है। तुम्हारे साथ फिल्मी डायलॉग के आदान प्रदान से तो यहाँ उतरना हजार गुना अच्छा है। अच्छा,

0: बुरा ना मानना, प्यार का तुम्हारे लिए एक ही अर्थ है, औरत की देह का उपभोग। अच्छा नमस्कार, क्या सोच रहे हो, जवाब भी नहीं दोगे?
1: नमस्कार, तुम भाग रही हो सांत्वना, कब तक भागती रहोगी?
0: कंडक्टर मैं यही उतर रही हूँ, जरा बक्सा उतारने में मदद करो।
2: जी अभी आया, लाइए
3: मैं उतारे देता हूँ, आप उतरिए।
0: ये लीजिए।
4: गई, अब तो मैं आ सकता हूँ, खूब बातें करेंगे दोनों, सामान ले।
1: क्या मेरी दशा उस मछुए जैसी नहीं है जो एक तूफानी समुद्र में अपना जाल भी खोकर खाली हाथ लौट आया था? लेकिन इसी लेकिन के कारण तो मैं भी साधना केंद्रों की खाक छानता फिर रहा हूं।

कूपे। अभी आपने श्री विष्णु प्रभाकर का लिखा यह नाटक सुना। निर्देशक थे श्री दीनानाथ। भाग लेने वाले कलाकार थे सर्वश्री जैमिनी कुमार वीरेंद्र, मंजू मैनी, सरल नांगिया, शर्मिला मलखानी, हरि मेहता, अरुण माथुर, बीएल टंडन, दीपा पांडे और नरेश कुमार सूरी। यह कार्यक्रम केंद्रीय नाटक एकांश द्वारा आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र पर तैयार किया गया।

0: ये आकाशवाणी है। आज के रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा में आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत है। आज की सभा में प्रस्तुत हैं सुविख्यात बांसुरी वादक श्री विवेक सोनार का बांसुरी वादन। आप महाराष्ट्र के 40 गांव में जन्मे और पले बढ़े। आप अपने पिता श्री रामचंद्र सोनार से प्रेरित थे। आपके पिता वारकरी संप्रदाय के एक जाने माने गायक रहे। आपने बहुत कम उम्र से ही बांसुरी बजाना शुरू किया। आपने अपने पिता से शुरुआती प्रशिक्षण लेने के बाद अपने पहले गुरु पंडित पुरुषोत्तम अंतापुरकर से औपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त किया। 1997 में मुंबई आए ताकि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के सानिध्य में पेशेवर प्रशिक्षण ले सके। इस तरह आपने पंडित हरिप्रसाद चौरसिया के मार्गदर्शन में अपनी संगीत यात्रा शुरू की, जिन्होंने आपको संगीत की खोज और अभिव्यक्ति की गहरी दुनिया से परिचित कराया। आप एक बेहतरीन बांसुरी वादक और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत परंपरा के वाहक हैं। आप न केवल अनगिनत शिष्यों के गुरु हैं बल्कि एक संगीतकार भी हैं। आप भारत के अग्रणी बांसुरी वादकों में से एक हैं। आप तंत्रकारी तथा लयकारी शैलियों पर अपनी जबरदस्त पकड़ के लिए जाने जाते हैं। बांसुरी वादन में अपनी बेजोड़ महारत के लिए आपको जाना जाता है। आप अपने कुछ अनूठे पहलुओं के लिए भी जाने जाते हैं, जैसे आपका भव्य बांसुरी उत्सव और फ्लूट सिंफनी एक शानदार संगीत समारोह है जिसमें 111 बांसुरियां एक साथ बजती हैं। आपने भारत के कई प्रतिष्ठित संगीत समारोह में संतूर, सितार, वायोलिन और कर्नाटक शैली के वाद्य संगीत के अग्रणी कलाकारों के साथ एकल और जुगलबंदी प्रस्तुतियां दी हैं। आपने कई जाने माने समारोहों में अपनी प्रस्तुतियां दी हैं। सवाई गंधर्व भीमसेन महोत्सव पुणे, मोगोबाई कुर्दिकर संगीत समारोह गोवा, हम्पी महोत्सव हम्पी, ऊर्जा संगीत समारोह दिल्ली, पंडित राम मराठे महोत्सव ठाणे, पंडित जितेंद्र अभिषेकी संगीत महोत्सव गोवा, गुणीजन संगीत महोत्सव इंदौर, गोवा कला अकादमी संगीत समारोह। आपको कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आप भारतीय शास्त्रीय बांसुरी वादन के लिए आकाशवाणी के अश्रेणीय कलाकार हैं। हिंदुस्तान टाइम्स द्वारा ठाणे रत्न पुरस्कार, पंडित संगमेश्वर गुरव पुरस्कार, पंडित राम मराठे पुरस्कार, सुर श्रृंगार संसद मुंबई से सुरमणि शीर्षक, भारत सरकार की ओर से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति तथा आपको वृंदावन गुरुकुल छात्रवृत्ति इन पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। आज के कार्यक्रम में श्री विवेक सोनार राग चंद्रकंस प्रस्तुत करेंगे। आलाप जोड़ और मध्यलयगत रूपक ताल में निबद्ध हैं और द्रुतगत तीन ताल में निबद्ध है। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे हैं श्री ओजस अधिया।
1: दिस इज आकाशवाणी। वेलकम टू द रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा। टुनाइट वी प्रेजेंट अ फ्लूट रिसाइटल बाय रेनाउंड फ्लूटिस्ट श्री विवेक सोनार। Born and raised in Chalisgaon, Maharashtra, and inspired by his late father, Shri Ramchandra Sonar, an eminent vocalist of the Warkari Sampradaya, Vivek started playing the flute at a tender age. After initial training from his father, Vivek moved to his first guru, Pandit Purushottam Antapurkar. In 1997, Vivek moved to Mumbai to be professionally trained under Pandit Hariprasad Chaurasia. Vivek thus began his new journey under the maestro who took him into deeper realms of exploration and expression. Flautist par excellence and torchbearer of the Hindustani tradition of classical music, himself a guru to countless disciples as also a composer, Vivek Sonar is one of the leading flautists of India, renowned for his strong command over Tantakari and Layakari styles. Blessed with powerful blowing skill, a multi-talented person, Vivek Sonar is widely regarded by music lovers and critics for having honed unparalleled skills of instrumentation in flute playing. He is also known for his initiatives like his Sui Generis, the Grand Bansuri Utsav, and the Flute Symphony, a magnificent concert that has 111 flutes playing together. Vivek has performed solo as well as jugalbandi concerts with leading exponents of the santoor, sitar, violin and also Carnatic instrumental music in many prestigious music festivals in India. Vivek has performed at many prestigious events like Savai Gandharva Bhimsen Mohotsav Pune, Mogubai Kurdikar Sangeet Samaroh Goa, Hampi Mohotsav in Hampi, Urja Music Festival Delhi, Pandit Ram Marathe Festival Thane, Pandit Jitendra Abhisheki Sangeet Mohotsav Goa, Gunjan Sangeet Mohotsav Indore, Goa Kala Academy Music Festival. Vivek has received many prestigious scholarships and awards. To name some, Akashwani A-grade artist for Indian classical flute, Thane Ratna Award by Hindustan Times, Pandit Sangameshwar Gurav Puraskar, Pandit Ram Marathe Puraskar, Surmani title from Sur Shringar Sansad Mumbai, National Scholarship from Union Government of India, Vrindaban Gurukul Scholarship. Tonight, Sri Vivek Sonar presents Rag Chandra Kaus Alap, Jod and Madhyalayagat, set to Rupak Tal and Drutagat, set to Teen Tal. He will be accompanied on tabla by Sri Ojas Adhiya.

0: अभी आप बांसुरी पर सुन रहे थे राग चंद्र कौंस। प्रस्तुत कर रहे थे श्री विवेक सोनार। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे श्री ओजस अधिया। इसी के साथ आज का रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा संपन्न होती है। इस कार्यक्रम का ध्वनि मुद्रण आकाशवाणी मुंबई में किया गया और इसे आकाशवाणी दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: You are listening to Raag Chandrakaus by renowned flautist Shri Vivek Sonar. He was accompanied on tabla by Shri Ojas Adhiya.

विद दिस टुनाइट वी कंक्लूड रविवासरीय अखिल भारतीय संगीत सभा. दिस प्रोग्राम वॉज रिकॉर्डेड इन द स्टूडियोज ऑफ आकाशवाणी मुंबई एंड दिस ब्रॉडकास्ट केम टू यू फ्रॉम आकाशवाणी दिल्ली.

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापार, हरित बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप्स, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए तरीकों पर भी चर्चा की। इस बीच स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडिश समकक्ष यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन के साथ मिलकर एक प्रमुख अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को भी संयुक्त रूप से संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा के सहयोग में बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाया जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी आज शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। गोथेनबर्ग हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। गोथेनबर्ग के लिए रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जेटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देने आए। नीदरलैंड की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डच समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों ने रक्षा, महत्वपूर्ण खनिजों और अन्य प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। श्री मोदी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि नीदरलैंड की उनकी यात्रा ने द्विपक्षीय संबंधों को एक नई गति प्रदान की है। इस दौरे को गुजरात की महत्वाकांक्षी कल्पसर परियोजना के लिए भारत और नीदरलैंड के बीच तकनीकी सहयोग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और उनके डच समकक्ष ने ऊर्जा, बंदरगाह, स्वास्थ्य सेवा, कृषि, व्यापार और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों की प्रमुख डच कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को 2 दिन की यात्रा पर द हेग पहुंचे थे। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार कल तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज़्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की ज़रूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में आज हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। घटना लूनी रिक्शा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच हुई। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जाँच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। भारत ने कहा है कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाज़ों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वतनेनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने तथा जहाज़ों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। सरकार ने सोशल मीडिया पर चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय PIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि ये दावा फर्जी है। इकाई ने कहा है कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। भारत के श्रेयांसी वलिशेट्टी ने चीन के बाओजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांसी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेमों में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, The news read by Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. The two sides also explored new avenues of cooperation in trade, green transition, artificial intelligence, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defense, space, climate action, and people-to-people ties. Meanwhile, Sweden conferred the Royal Order of Polar Star, Commander Grand Cross, upon Prime Minister Modi. Sweden's Royal Order of Polar Star, Commander Grand Cross, is the utmost recognition and honor that can be conferred upon a head of government. This is the 31st global honor for Prime Minister Modi. Mr. Modi reached Gothenburg this evening on the third leg of his five-nation tour after concluding his visit to the Netherlands. Upon arrival at Gothenburg Airport, Prime Minister Modi was accorded a warm welcome and was personally received by the Swedish Prime Minister. During his two-day visit to the Netherlands, Prime Minister Modi held bilateral talks with his Dutch counterpart. The two countries signed 17 agreements to strengthen cooperation in defence, critical minerals and other key sectors. In a social media post, Mr. Modi said his visit to the Netherlands has added new momentum to bilateral ties. He said the two countries have charted an ambitious roadmap for the future by elevating ties to a strategic partnership and expanding cooperation in water resources, semiconductors, innovation, defense, sustainability and mobility. He expressed confidence that the friendship between India and the Netherlands will continue to grow stronger in the years to come. He also thanked Prime Minister Jetten for the warm hospitality and for personally coming to the airport to bid him farewell. The new Keralam government led by Congress leader V.D. Satheesan will be sworn in tomorrow in Thiruvananthapuram. Congress had announced Satheesan as the next chief minister of Keralam on the 14th of this month, putting an end to the high drama and suspense that lasted for 10 days. The Congress-led United Democratic Front

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्र प्रेस चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलो हर्ट्स, डीआरएम 810 किलो हर्ट्स पर।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम फिल्म संगीत में आप सभी का स्वागत है। और आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ, अपनी आपकी अपनी दोस्त चेतना। स्वीकार करें प्यार भरा नमस्कार। जी हाँ, रात के 11:10 हो चुके हैं और लगभग कहीं की आधी रात का जो सफ़र है ना, वो शुरू होने वाला है। तो जनाब, अपनी खिड़की से बाहर ज़रा झांक कर तो देखिए उस चांद को, कितना खूबसूरत नजर आता है।
1: हो मेरी कब ऐसा मैंने सोचा
0: चांद भी क्या करेगा कुछ कहानियाँ, चांद भी क्या करेगा कुछ कहानियाँ, जितनी भी कही अधूरी ही लगती हैं। मिलना तो ख्वाब है, पर क्या करें, चांद को देखकर ही तुमसे मिल लेते हैं। चांद को देखकर तुमसे ही मिल लेते हैं, और तुम ज़मीं पर हो या आसमां में, लेकिन ऐसा लगता है कि तुम पास में ही हो। जी हाँ, ये तो रहा इश्क और चांद का सफ़र, लेकिन आपकी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा चांद होगा जो ज़मीं पर रहा होगा, है ना? तो अगर आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा चांद है जिसे आप चांद से तुलना करते हैं, कोई ऐसा शख्स है जो आपके साथ ज़मीं पर है चांद की तरह, तो हमें ज़रूर बताइएगा। हमें इंतज़ार रहेगा आपके संदेशों का। फिलहाल इस गीत के साथ शुरू करते हैं आज के कार्यक्रम की

हाँ श्रोताओं, ये गीत रहा हिमालय की गोद फिल्म से और मुकेश की आवाज़ में खूबसूरत ये गीत रहा। और वाकई में आप अगर किसी शख्स से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं, तो उसकी तुलना हम चाँद से करने लगते हैं। चाँद से खूबसूरत तो और कोई नहीं है जो हम जानते हैं। तो हमारी ज़िंदगी में भी कोई ऐसा चाँद होगा, ज़रूरी नहीं कि वो इश्क हो, मोहब्बत हो, कोई भी ऐसा शख्स, कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसकी तुलना हम खूबसूरती से करते हैं चाँद की खूबसूरती से, तो हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल हमें कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है, गीत भी सुनने हैं और आपकी रिक्वेस्ट भी लेनी है, तो हम आपके संदेशों की तरफ चलते हैं। हमारे पास कंजद्वारा से शमशुल कमर राही, शाहीन फातिमा अदनान और अनु खान का जो संदेश आया है, वो बड़ी फिल्म से जो है गीत सुनना चाहते हैं। तो आप सभी के लिए गीत, तो लौट कर आते हैं संदेशों की तरफ। एक एक करके आपके कुछ गीत होंगे, कुछ मेरी बातें होंगी। आप जुड़े रहिए फिल्म संगीत के कार्यक्रम से। आज के कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ चेतना।

0: जी हाँ दोस्तों, और ये गीत रहा फिल्म बड़ी बहन से, और इस गीत को आवाज़ थी सुरैया ने। सच में वो पास रहे या दूर रहे, लेकिन इश्क मोहब्बत जो है ना, वो ऐसी चीज़ है भाई, ऐसा लगता है कि वो शख्स बिल्कुल आपके करीब ही है, चाहे वो दूर भी हो। ऐ चांद तू गवाह है मेरी चाहत का, हर रात तुझसे ही तो बात करता हूँ। तू ऊपर से सब देखता है, ज़रा उससे कह दे कि उसे भी मेरी याद आती है या नहीं आती है।
1: आपके
0: जी हाँ, अगली रिक्वेस्ट की तरफ चलते हैं, और ये मेरा साया फिल्म से इन्होंने रिक्वेस्ट भेजी है, मजनू का टीला से। और ये जो है केवल कमल बलूचा जी हैं, मधु बलूचा जी सागर और सतना MP से हमें सुन रहे हैं। उमंग मलिक, आकांक्षा भी है इनके साथ में सुनने वाले श्रोता।

के कार्यक्रम से मैं हूँ आपके साथ चेतना। और अगली फरमाइश की तरफ चलते हैं। ये भेजी हमने सदी शनीजा जी ने और ये हमें सुनते हैं चंडीगढ़ से। लिखते हैं कि किसी का बुरा सोचे बिना उसका भला करो। क्योंकि किसी ने कहा है कि जो लोग फूल बेचते हैं उनके हाथ में खुशबू अक्सर रह जाती है। बहुत खूब। और आशा भोसले की आवाज़ में फिल्म किस्मत से इस गीत को सुनना चाहते हैं।

जी हाँ दोस्तों, समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 11:28 हो चुके हैं। आप जुड़े हुए हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम से। मैं हूँ आपके साथ चेतना। सोचिए, समंदर हो पर लहरें ना हो, इश्क हो लेकिन तुम ना हो, एक जैसा सही लगता है ना। चांद से कह दो ज़रा रुक जाए, उसकी चांदनी में तेरा चेहरा दिखता है। वो रोज़ आता है मिलने मुझसे, काश तू भी कभी यूँ आ जाता।

0: जी हाँ, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में अभी आपने गीत सुना, और ये रहा ठोकर फिल्म से गीत। इस गीत की रिक्वेस्ट हमें भेजी थी पहाड़गंज मुल्तानी से अनिल मोहन जी ने। लिखते हैं कि लोग कहते हैं कि तू अब खफा है मुझसे, तेरी आंखों ने तो कुछ और कहा है मुझसे। बहुत खूब, तो संदेशों की तरफ भी आपके चलने हैं। बहुत सारे हमारे संदेश हम तक पहुँच चुके हैं, लेकिन सभी को शामिल करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे आपके गीत और बातों को लेकर आएँ। मोहम्मद कुमार जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, दिलावर खान जी कार्यक्रम को सुन रहे हैं और लिख रहे हैं कि किसी भी गीत में हमें शामिल कीजिए। फारूक अली खान जी ने भी अपना संदेश हम तक पहुंचाया है यूपी किन्नौर कस्बा से, और लिखते हैं कि हम भी इस रात की तन्हाई में एक छोटे से कस्बे में आपको सुन रहे हैं। चारों तरफ खामोशी और गंगा का किनारा है। बहुत बहुत खूब, गीत पसंद आ रहे हैं। यहाँ वक्त पास करने के लिए रेडियो ही हमारे साथ रहता है, और रेडियो कहीं ना कहीं एक ऐसा दोस्त है जो हमें ऐसी जगह पे ले जाता है जहाँ हम जाना चाहते हैं। जो भी गीत प्ले होता है हमें ऐसा लगता है जैसे वो हमसे जुड़ा हुआ है, हमारी कहानी कह रहा है। तो बहुत खूब कि आप इस वक्त रेडियो का आनंद ले रहे हैं, गीतों का आनंद ले रहे हैं, और साथ में आप हमें भी सुन रहे हैं, कार्यक्रम को पसंद कर रहे हैं, और गंगा का किनारा, ये तो बहुत ही खूबसूरत है। दिलावर खान जी भी कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, लगातार हमें सुन रहे हैं। प्रकाश वर्मा जी ने भी अपना नमस्कार हम तक पहुंचाया है। हाजी अली मजहर जी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं और अपने संदेश को हम तक पहुंचा रहे हैं।
1: खोया खोया चा
0: दोस्त मोहम्मद जी भी कार्यक्रम को सुन रहे हैं, जुड़ गए हैं, और साथ ही साथ आर कुमार जी भी कार्यक्रम सुन रहे हैं। रमेश कुमार जी, रश्मि पांड्या जी ने भी अपना हेलो भेजा है। शमशान बेगम की आवाज़ में गीत को सुनना चाहती हैं और कहती हैं कि चेतना आपकी आवाज़ गुलाब की पंखड़ियों से सुंदर मनमोहक है। शुक्रिया, खैर आप हमेशा मेरी तारीफ़ में कुछ ना कुछ ज़रूर लिखती हैं, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शमशान बेगम की आवाज़ को ज़रूर ढूंढने की कोशिश करूँगी। फ़िलहाल मैंने सर्च किया है, जैसे ही मिलेगा आपका गीत ज़रूर प्ले करूँगी। पूनम गंगनेजा भी कार्यक्रम से जुड़ गए, अमीर हुसैन जी कार्यक्रम सुन रहे हैं, टीडी मल्होत्रा, राजीव शर्मा, फागुराम यादव, अब्दुल गफ्फार, प्रकाश वर्मा, रहमान ने भी लिखा है कि आप अपनी पसंद के साथ मेरे नाम को शामिल करें।

यहाँ दोस्तों खोया खोया चांद, और वाकई में जब इश्क मोहब्बत की बात चलती है तो फिर नींद कहाँ आती है। पर इश्क में वक्त कहाँ देखा जाता है कि कोई सा भी वक्त हो, दिन हो चाहे रात हो, मोहब्बत में दूरियाँ मायने नहीं रखती। चांद ज़मीन से लाखों मील दूर सही, पर हर आशिक की छत पर उतर ही आता है। और छोटे अंसारी जी अपना संदेश हम तक पहुंचा रहे हैं, लिखते हैं कि चेतना जी कैसी हैं आप, मिजाज कैसा है आपका, तबीयत ठीक है आपकी? जी मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, बिल्कुल सही हूँ। आप अपनी तबीयत पे अपना मिजाज भी लिखकर भेजते तो हमें अच्छा लगता। और एक से एक शानदार गीत आप प्रोग्राम में प्ले कर रही हैं, उसके लिए शुक्रिया। ये थे संभल से छोटे अंसारी जी।

साद रफ़ी की आवाज़ में प्यार ही प्यार फिल्म से इस गीत की रिक्वेस्ट भेजी थी बिहार से, और इस गीत को संगीत दिया शंकर जयकिशन ने। तो चलते हैं संदेशों की तरफ, और हमारे पास छोटे अंसारी जी अपना संदेश भेज रहे हैं। लिखते हैं कि चेतना जी, आप यकीन करना कि आपके प्रोग्राम से हमारा दिल लगता है। शुक्रिया, आप पसंद करते हैं कार्यक्रम।

हमसे जुड़ गए हैं और प्रोग्राम अच्छा लग रहा है आपकी फरमाइश प्रोग्राम पर। हमारा भी नमस्कार जोड़िएगा ज़रूर। और इसी के साथ साथ हमारे पास अरुण कुमार पांडे जी ने भी अपना संदेश भेजा एक रिक्वेस्ट के साथ में, और साथ में रफ़ीक भाई भी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं, अपना नमस्कार भेज रहे हैं। साथ में मोहम्मद अनीस मुहल जी ने भी हमें महाराष्ट्र से अपने संदेश को भेजा है, और दानिश और रिजवान हैं इनके साथ जो कार्यक्रम को सुन रहे हैं। कौसर बी पवार भी कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं, और जावेद अख्तर जी ने भी एक गीत की रिक्वेस्ट के साथ में हमें अपने संदेश को पहुंचाया हम तक। साथ ही अश्वनी चुंग जी भी कार्यक्रम से जुड़ गए हैं। दिलावर खान जी भी लिख रहे हैं कि रघुवीर नगर से। साथ ही मोहम्मद कुमार जी भी कार्यक्रम से जुड़ गए, और शायद मेरे से एक संदेश छूट रहा है और दोबारा भेज देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि एक संदेश था हमारे पास, वो लिखते थे कि चांद भले ही जो चांद जो आसमान में हमारे साथ ना रहता हो, लेकिन हमारा चांद हमारे पास ही रहता है। शायद ये किसी करीबी की बात हमसे कहना चाहते हैं, तो बहुत खूब कि आपके साथ जो शख्स है वो चांद से कम नहीं, ये बहुत बढ़िया है। और अगले संदेश की तरफ चलते हैं। उषा मोहन जी ने भी शानदार प्रस्तुतिकरण के लिए बधाई भेजी है अपनी। नवी हसन जी ने भी नमस्कार भेजा है अपना, और मारहरा दरवाज़ा एटा से यह हमें सुनते हैं नवी हसन जी। इसी के साथ साथ राजकुमार जी भी हिसार से जुड़ गए हैं, प्रमोद पुष्पेंद्र हैं इनके साथ में। आप सभी का शुक्रिया कार्यक्रम से जुड़े रहने के लिए और कार्यक्रम को पसंद करने के लिए।

श्रोताओं, आधा है चंद्रमा और रात आधी आधी रात होने ही वाली है। देखिए ना, समय कितनी तेज़ी से दौड़ता है, पता ही नहीं चला। चांद की बातें होती रहीं, आपसे बातें होती रहीं, और ऐसा लगता है कि बस ये बातें अधूरी ना रहे, इस रात के साथ गुजरता रहे ये लम्हा भी। हमें रफ़ीक भाई पवार जी ने अपना संदेश भेजा है, लिखते हैं कि रात का सुहाना समा और इंद्रप्रस्थ चैनल जैसा हमदम साथ हो तो फिर क्या कहना, नींद आँखों से गायब ही हो जाती है। और आपकी पेशकश लाजवाब है और यादगार है, इसके लिए आपको बधाई, शुक्रिया। साथ में अनिल मोहन जी ने भी लिखा है कि हम सब कुछ हम उनसे कह गए, लेकिन इत्तेफाक कहने की तो बात जो बात थी वो दिल में ही रह गई। बहुत खूब। हाँ, ऐसा होता है कि हम जब कहें कि ऐसे शख्स के सामने होते हैं जिसे हम दिल से पसंद करते हैं, जिसे हम जानते हैं, ये जो हमें अच्छा लगता है, हम उससे ढेर सारी बातें करना चाहते हैं, लेकिन जो बात दिल में होती है, जो एक्चुअल में कहनी होती है, वही कहना हम भूल जाते हैं। अनिल मोहन जी लिखते हैं कि आपके कार्यक्रम में आपकी मधुर आवाज़ के साथ ही आपके कार्यक्रम के मुताबिक आलेख भी काबिले तारीफ़ होता है। शुक्रिया। उषा मोहन अनिल मोहन जी हैं ये पहाड़गंज से। और साथ में दोस्त मोहम्मद जी भी लिखते हैं कि हम तो हर पल आपके साथ हैं, चांद के चकोर की तरह। बहुत खूब कि चांद के चकोर की तरह आप भी हमारे साथ हमेशा रहते हैं। छोटे अंसारी जी लिखते हैं कि आपका प्रोग्राम अब नेक्स्ट कब है तो हमें ज़रूर बताइएगा तारीख और दिन। तो जी, मैं हमेशा कहें कि शनिवार और रविवार के दिन ही आपसे मिलती हूँ, तो आप अगले रविवार तक मेरा इंतज़ार करें। नवी हसन जी अपना हमें आदाब भेज रहे हैं, नमस्कार भेज रहे हैं, इसके लिए शुक्रिया।

जी हाँ दोस्तों, आप जुड़े हुए हैं फेम संगीत के कार्यक्रम से, और कार्यक्रम में मैं हूँ आपके साथ चेतना। समय स्टूडियो की घड़ी के अनुसार रात्रि के 11:55 हो चुके हैं और लगभग जाने का समय हो ही गया है। इंद्रभान सिंह जी हमें सुन रहे हैं अपने साथियों के साथ चिरमिरी कुरासिया कालरी से, और किशोर कुमार की आवाज़ में गीत को सुनना चाहते हैं। चौधवी का चांद फिल्म से इन्होंने गीत की रिक्वेस्ट भेजी है, और देखिए हमने वो गीत प्ले भी कर दिया है। साथ में हाजी मजहर जी ने भी अपना संदेश भेजा है, मैं अस्तपुरा ज़िला मऊ से। इनके साथ हैं रज़िया मोहम्मद सादिक। आप सभी का शुक्रिया कार्यक्रम को पसंद करने के लिए और जुड़े रहने के लिए।

0: कब आओगे।
1: जी हाँ श्रोताओं, हम तो इंतज़ार कर रहे थे कि आप कहाँ हैं, जल्दी से कार्यक्रम में आइए और अपने संदेश को हम तक पहुँचाइए। देखिए ना, बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो हमसे इस वक्त जुड़ रहे हैं, कार्यक्रम को सुन रहे हैं। कौसर भी पवार जी का हमारे पास मैसेज आया है, ये भेज रहे हैं ताज रेडियो श्रोता संघ से, गंज कटवा से। लिख रहे हैं कि कैसे जीऊँगी तुमसे बिछड़ कर, उम्र सारी तनहा तंगहाल है, चांद तंगहाल है, सारे तंगहाल है, रात सारी तनहा तनहा है। बहुत खूब, लेकिन वाकई में रात तनहा हो जाएगी, हमें भी जाना होगा। अनिल मोहन जी लिख रहे हैं कि वक्त यहीं रुक जाए और आपकी मधुर आवाज़ को निरंतर हम यूं ही सुनते रहें, काश ऐसा हो पाता। मैं भी यही चाहती हूँ कि आप सभी से जुड़ी रहूँ। सुखविंदर सिंह जोड़ा जी लिख रहे हैं दिल्ली से, नमस्कार अपना भेज रहे हैं, लेकिन बहुत सारे संदेश हैं, सबको नहीं ले पाई हूँ, इसलिए कहते हैं कि समय से अपने संदेश को भेजिए तो आप सभी के संदेश जो है ना वो हम शामिल कर पाते हैं। समय है, हमें अनुमति नहीं दे रहा है कि मैं आगे और आपसे बात करूं, लेकिन ऐसे ही मिलूंगी मैं आपको रविवार को। हम करेंगे ढेर सारी बातें और आपकी होंगी गीत, मेरी होंगी कुछ बातें। फिलहाल अपनी दोस्त चेतना को इस कार्यक्रम से अनुमति दें। अपना ख्याल रखिए, शुभ रात्रि।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत का कार्यक्रम। यह आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर यानी 819 किलोहर्ट्ज़, डीआरएम 810 किलोहर्ट्ज़ पर रात्रि के 12 बजने को है। इन मीटरों पर अब हमारे प्रसारण संपन्न होते हैं। सुबह 4:50 पर हम आपकी सेवा में फिर उपस्थित होंगे। AIR लाइव न्यूज़ 24/7 पर हमारे प्रसारण जारी हैं। फिलहाल वक्त रात्रि के 12 बजने को है। अब से कुछ ही देर में प्रसारित किए जाएंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत की। दोनों पक्षों ने व्यापार, हरित बदलाव, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उभरती प्रौद्योगिकियों, स्टार्टअप, लचीली आपूर्ति श्रृंखलाओं, रक्षा, अंतरिक्ष, जलवायु कार्रवाई के अलावा द्विपक्षीय संबंधों में सहयोग के नए तरीकों पर भी चर्चा की। स्वीडन के प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने संयुक्त रूप से अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग निरंतर बढ़ रहा है।
2: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
1: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
2: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टरसन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी कल शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे। गोथेनबर्ग के लिए रवाना होने से पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री रॉब जटन व्यक्तिगत रूप से एम्स्टर्डम हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री मोदी को विदाई देने आए। नीदरलैंड की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अपने डच समकक्ष के साथ द्विपक्षीय बातचीत की। दोनों देशों ने प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद शुक्रवार को 2 दिन की यात्रा पर द हेग पहुंचे थे। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार आज तिरुवनंतपुरम में शपथ लेगी। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग

0: को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज़्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की ज़रूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हज़रत निज़ामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में कल हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जाँच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो एनसीबी ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की है। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सिंतुआंग को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो ने बताया कि ये गिरफ्तारी व्यापक निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने, अंतर्राज्यीय समन्वय और निरंतर कार्रवाई के बाद संभव हुई है। सरकार ने सोशल मीडिया में चल रही उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय पीआईबी की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि ये दावा फर्जी है। अभी अभी मिले समाचार के अनुसार भारत और स्वीडन द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक ले जाने पर राजी हो गए हैं। यह सहमति आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके स्वीडिश समकक्ष उल्फ क्रिस्टर्सन के बीच हुई बातचीत के दौरान बनी। दिल्ली में आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हरा दिया है। राजस्थान के 194 रन के लक्ष्य को दिल्ली ने 4 गेंद शेष रहते ही हासिल कर लिया। मिचेल स्टार्क को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। वहीं एक अन्य मुकाबले में कल धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर लिया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. I am Reshma Tiwari. Prime Minister Narendra Modi held delegation-level talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg. The two sides also explored new avenues of cooperation in trade, green transition, artificial intelligence, emerging technologies, startups, resilient supply chains, defense, space, climate action, and people-to-people ties. Both the leaders have also agreed to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership. Meanwhile, Sweden conferred the Royal Order of Polar Star Commander Grand Cross upon Prime Minister Modi. Sweden's Royal Order of Polar Star Commander Grand Cross is the utmost recognition and honor that can be conferred upon a head of government. This is the 31st global honor for PM Modi. Mr. Modi reached Gothenburg in the evening on the third leg of his five-nation tour after concluding his visit to the Netherlands. Upon arrival at Gothenburg Airport, Prime Minister Modi was accorded a warm welcome and was personally received by his Swedish Prime Minister. During his two-day visit to the Netherlands, Prime Minister Modi held bilateral talks with his Dutch counterpart. The two countries signed 17 agreements to strengthen cooperation in defense, critical minerals and other key sectors. In a social media post, Mr. Modi said his visit to the Netherlands has added new momentum to bilateral ties. He said the two countries have charted an ambitious roadmap for the future by elevating ties to a strategic partnership and expanding cooperation in water resources, semiconductors, innovation, defense, sustainability, and mobility. He expressed confidence that the friendship between India and the Netherlands will continue to grow stronger in the years to come. He also thanked Prime Minister Jetten for the warm hospitality and for personally coming to the airport to bid him farewell. The new Keralam government, led by Congress leader V.D. Satheesan, will be sworn in today in Thiruvananthapuram. Congress had announced Satheesan as the next chief minister of Keralam on the 14th of this month, putting an end to the high drama and suspense that lasted for 10 days. The Congress-led United Democratic Front secured a more than two-thirds majority in the Keralam Assembly elections. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has inaugurated and laid the foundation stone for development works worth over 700 crore rupees in Gandhinagar, Gujarat. Mr. Shah, who is on a two-day visit to the state, launched projects worth over 600 crore rupees of Gandhinagar Municipal Corporation yesterday. He also inaugurated a newly built milk processing plant of

0: Madhur Dairy in the city, built at a cost of around 128 crore rupees. Earlier in the day, Mr. Shah inaugurated the Innovation and Incubation Centre at the National Institute of Design in Gandhinagar. Delhi Chief Minister Rekha Gupta launched various development projects worth approximately 100 crore rupees in Dwarka Assembly constituency of National Capital yesterday. Addressing the gathering, the Chief Minister said that after completion of these projects, there will be significant improvement in problems such as waterlogging, damaged roads, sewer overflow and power supply in the area. She added that along with this, citizens will get a safer, cleaner and more convenient environment. The projects include repair and construction of roads in various areas, renovation and modernization of chowpals, extensive works to strengthen the drainage system, beautification and green development of parks. Union Minister of New and Renewable Energy Prahlad Joshi said, India has now successfully managed a record peak power demand of 256.4 gigawatt in a single day. In a conversation with a private English news daily yesterday, Mr. Joshi said nearly 33% of the power demand met through renewable energy sources. He said India's power infrastructure has become stronger, more resilient and future ready. The minister added that this transformation reflects the rapid expansion of energy capacity, grid strengthening and the growing contribution of clean energy in powering country's growth journey. In IPL cricket, Delhi Capitals defeated Rajasthan Royals by 5 wickets at Arun Jaitley Stadium, Delhi tonight. Chasing a target of 194 runs set by Rajasthan Royals, Delhi Capitals were 197 for 5 in 19.2 overs. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज 24x7 चैनल है। साथियों, समय हुआ है 12:10 और 10 सेकंड। साथियों, ये समय होता है बहुत ही खूबसूरत, लाजवाब, अनमोल प्रोग्राम। जी हाँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं सभी साथी हमारे? एकदम बढ़िया। चलो, बढ़िया ही होना चाहिए, है ना? तो आज आकाशवाणी के सभी श्रोता का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार और मेरे साथ हैं
2: मनोज कुमार।
1: और मनोज, कैसे हैं आप? कैसा प्रोग्राम अभी हम शुरू कर रहे हैं और क्या करना चाहिए? और हम तो समझते हैं कि कम से कम उनको उनसे पहले सारी जानकारी उनसे पहले एक प्यारा सा, सुंदर सा, एक खूबसूरत गीत सुनवा दें क्या?
2: जी हाँ, देर नहीं करनी चाहिए, फौरन सुनवाना चाहिए।
1: तो चलिए सुनवाते हैं। और ये गीत वाकई बहुत ही शानदार है, तेरे मेरे बीच में कैसा है ये बंधन अनजाना, एक दूजे फिल्म से। ये शानदार खूबसूरत गीत है SP सुब्रमण्यम साहब की आवाज़ में, और साथ में दे रही हैं उनके लता मंगेशकर जी। ये फिल्म 1980 प्रदर्शित फिल्म रही है, गीतकार आनंद बख्शी हैं और संगीत से सजाया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। तो ये सुनते हैं ये शानदार खूबसूरत गीत।

0: जी हाँ श्रोताओं, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन लाजवाब गीत अभी आप सुन रहे थे। साथियों बढ़ते हैं आगे, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सुरों का सफरनामा। यहाँ हम याद करते हैं उन आवाज़ों को जो सिर्फ गीत नहीं गाती बल्कि जिंदगी के एहसासों को सुरों में ढाल देती है। दोस्तों कुछ आवाज़ें बारिश की पहली बूंद जैसी होती है जो दिल की सूखी ज़मीन को भी महका देती है। कुछ फनकार वक्त से आगे निकल जाते हैं और फिर इतिहास बन जाते हैं। आज की ये महफिल सजी है उस महान गायक के नाम जिसकी आवाज़ में मासूमियत भी थी, मोहब्बत भी, इबादत भी और दर्द की गहराई भी। जी हाँ, आज का सुरों का सफ़रनामा समर्पित है भारत के महान पार्श्व गायक सुरों के जादूगर SP बाला सुब्रमण्यम को। जी हाँ, शुरुआत वाकई बहुत ही प्यारी है, सुंदर है, बेहतरीन है, जिसकी आवाज़ में रूह की रवानी थी, जिसकी आवाज़ में रूह की रवानी थी, हर धड़कन में जिसकी कहानी थी। वो गायक नहीं एक एहसास था जिसकी हर धुन मोहब्बत की निशानी थी। साथियों वाकई बहुत ही ज़बरदस्त सिंगर रहे हैं, बहुत ही सिंपल, साधारण और बेहद खूबसूरत आवाज़ के मालिक। जी हाँ, तो एक और गीत क्यों नहीं हम सुना देते हैं मनोज।
1: जी हाँ, ये गीत है फिल्म लव से, SP बालासुब्रमण्यम की मधुर आवाज़ में। तो सुनते हैं लव फिल्म से ये गीत।
0: जी मनोज, वाकई बहुत ही सुंदर गीत का चुनाव किया है आपने।

जी हाँ साथियों, बहुत ही गमगीन और बहुत ही सीरियस, बहुत ही प्यारा गीत अभी आप सुन रहे थे। साथियों आगे बढ़ते हैं। प्रारंभिक जीवन की अगर संघर्ष की बात करें तो वाकई बहुत ही संघर्षमय जीवन रहता है, लेकिन हाँ कभी कभी ऐसे भी कलाकार होते हैं, गायकार होते हैं जहाँ बहुत ज़्यादा मुश्किलें सामने आती हैं, लेकिन इनके साथ कुछ ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं है। एस पी बाला सुब्रमण्यम का जन्म 4 जून 1946 को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर ज़िला में हुआ था। पूरा नाम श्रीपति पंडिता राधुला सुब्रमण्यम, बाला सुब्रमण्यम नाम था एक्चुअल, लेकिन जाने गए थे एस पी बाला सुब्रमण्यम के नाम से। इनके पिता एस पी संभामूर्ति प्रसिद्ध हरिकथा कलाकार थे। घर में संगीत का माहौल था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि यही बच्चा आगे चलकर संगीत का इतिहास बनाएगा। बाला साहेब इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने उनके हाथ में माइक्रोफोन थमा दिया। वाकई तो चलिए सुनते हैं एक और खूबसूरत गीत, तो फिर आगे बढ़ेंगे एस पी बाला सुब्रमण्यम के साथ। तो सुनवाते हैं एक शानदार खूबसूरत गीत।

जी हाँ साथियों, तुमसे मिलने का बहाना है और एक जाना है। वाकई बहुत ही सुंदर गीत है, और मिलने का बहाना तो अक्सर होता ही है, और जब प्यार हो जाता है किसी से तो सच में मिलने का मन तो करता ही है ना साथियों। ऐसे बहुत सारे गीत हैं, तेरे मेरे बीच में, कैसा ये बंधन, एक दूजे के लिए, 1981 प्रदर्शित फिल्म रही है, और हम बने तुम बने। जी हाँ, बहुत ही प्यारा गीत रहा है हमेशा की तरह। और जब कोई कलाकार दिल से गाता है तो उसकी आवाज़ सिर्फ कानों तक नहीं पहुंचती, वो सीधे रूह में उतर जाती है। अगर हम बात करें संगीत की शुरुआत SP बालासुब्रमण्यम साहब ने कब की थी, तो हम बता देते हैं 1964 में एक संगीत प्रतियोगिता में संगीतकार SP कुदंडपानी ने उनकी प्रतिभा पहचानी। 1966 में तेलुगु फिल्म श्री श्री श्री मर्यादा रमन्ना में पहला गीत गाने का अवसर मिला। धीरे धीरे तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़ फिल्मों में उनकी आवाज़ छा गई। वर्षवार अगर हम बात करें तो वाकई बहुत बहुत ईयर वाइज अगर हम बात करें तो बहुत सारे गाने गाए हैं, और पूरा लगभग 30,000 के आसपास उन्होंने गीत गाए हैं। वाकई बहुत ही शानदार एक अचीवमेंट होता है ना। तो फिलहाल एक और गीत सुनवाते हैं।

जी हाँ दोस्तों, वाकई सुन बेलिया बहुत ही सुंदर लाजवाब खूबसूरत की। जब हम बात कर रहे थे सर, धीरे धीरे धीरे धीरे तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्में उनकी आवाज़ छा गई। अगर हम वर्षवार की सूची की बात करें तो 1969 में एक फिल्म आई थी अरियम निलावेवा, 1975 में ओरू नाल उन्नोडू, और जो कि 1979 की फिल्म रही। कई दक्षिण भारतीय सुपरहिट गीत की, जी हाँ वाकई बहुत ही सुंदर सुंदर गीत गाए हैं उन्होंने। साथियों अगर हम बात करें कि जैसे कि अगर मेरे मन में, जो हमारे साथी के मन में भी एक कुछ शायरी कहना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं, जैसे कि सुरों का रिश्ता बड़ा अजीब।

सुरों का रिश्ता बड़ा अजीब होता है, ये दिल टूटने पर भी करीब होता है। कुछ आवाज़ें उम्र भर साथ चलती हैं, जैसे कोई अपना नसीब होता है ना। वाकई साथियों, हिंदी फिल्मों में धमाकेदार आगाज़ 1981 में फिल्म एक दूजे के लिए ने उन्हें पूरे भारत में लोकप्रिय बना दिया था। उनकी आवाज़ की मासूमियत ने हर

तेरे मेरे बीच में हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे 1989, तेरे मेरे बीच में 1981 प्रदर्शित फिल्म रही है, और हम तुम दोनों जब मिल जाएंगे 1989, मैंने प्यार किया फिल्म आई थी। दिल दीवाना, आते जाते, हंसते गाते, कबूतर जा जा जा, ऐसे बहुत सारे तमाम गाने हैं। और साथियों, क्योंकि एक 50 मिनट में एक पूरा जो प्रोग्राम अगर होता है तो वो समाहित नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियों के साथ और खूबसूरत गीतों के साथ हम उन्हें समापन की ओर ले चलें। और कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें सुनकर लगता है जैसे कोई अपना पास बैठा हो, है ना? सलमान खान की आवाज़, 1990 के दशक में सलमान खान की फिल्मों में एसपी बाला सुब्रमण्यम ने आवाज़ ने जादू कर दिया। सुपरहिट गीत साजन, जी हाँ, 1991 प्रदर्शित फिल्म रही है, और बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, बहुत ही सुंदर लाजवाब खूबसूरत फिल्म रही है, हम आपके हैं कौन, पहला पहला प्यार है, दीदी तेरा देवर दीवाना, ये हंसी वादियाँ, छू लेने दे, दिल छूने वाली शायरी अगर हम बात करें, जिसमें सुरों को दिल दिल से सजाया होगा, उसने दर्द को भी गुनगुनाया होगा, वरना यूं ही कोई अमर नहीं होता, उनसे खुद को मिटाकर यूं मुकाम पाया होगा। या दोस्तों, एक और गीत हम सुनवाते हैं, और वाकई बहुत ही प्यारा गीत है।

जी हाँ दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर। मन तो नहीं कर रहा है हमें छोड़ने का, लेकिन हाँ, छोड़ने पर मजबूर हो जाते हैं क्योंकि समय पाबंदी दे रहा है, और क्या करें, इजाज़त नहीं दे रहा है। तो बस अभी हम कुछ और जानकारियाँ बता देते हैं। कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो जिन्हें सुनकर लगता है कि जैसे कोई अपना बैठा हो, है ना। वाकई साथियों, अगर हम अवार्ड की बात करें, और इतने सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया है, और रिकॉर्ड और जो उनकी उपलब्धियां हैं, तो उन्होंने लगभग 40,000 से ज़्यादा गीत गाए हैं, और 16 भाषाओं में गायन, और 6 राष्ट्रीय पुरस्कार, और 1 पद्मश्री पुरस्कार जो 2001 में मिला था। पद्म

0: भूषण 1911 में और 2011 में मिला, और पद्मश्री 2001 में, और पद्म भूषण 2011 में। इनकी विनम्रता इतनी प्रसिद्ध थी कि बड़े बड़े कलाकार भी इनके व्यवहार से व्यवहार के कायल थे। यदि हम उनके कुछ अनसुने किस्सों की बात करें तो एक दिन में 20 गीत रिकॉर्ड करने का रिकॉर्ड रहा है। किसी भी अभिनेता के अनुसार आवाज़ बदल लेने की अद्भुत क्षमता है एसपी बाला सुब्रमण्यम में। और रिकॉर्डिंग के समय हमेशा मुस्कुराकर गाना, तो वाकई एक अचीवमेंट होता है, खुशी मिलती है ना दोस्तों। महान कलाकार वही होता है जो अपने हुनर से नहीं बल्कि अपने व्यवहार से भी लोगों के दिल में जीत ले, लोगों के दिल को जीत ले। अगर हम 25 सितंबर 2020 को एसपी बालासुब्रमण्यम इस दुनिया को अलविदा कह गए, लेकिन उनकी आवाज़ आज भी हर महफिल में जिंदा है। क्या कहें साथियों, अंतिम पड़ाव आ रहा है और गाने बहुत सारे हैं। साथिया तूने क्या किया, इस प्रकार का गाना, दिल दीवाना, पहला पहला प्यार है ना, ऐसे बहुत सारे गाने हैं। लेकिन बस समय इजाज़त बिल्कुल भी नहीं दे रहा है और हम समापन की ओर बढ़ रहे हैं और छोड़े जाएंगे एक सुंदर खूबसूरत गीत के साथ। कुछ लोग चले जाते हैं लेकिन उनकी आवाज़ें नहीं जाती, वो हवाओं में महकती रहती हैं और यादों में गुनगुनाती रहती हैं। वो सुरों का मुसाफिर था जो दिलों में घर कर गया, अपनी मीठी आवाज़ से हर आँख को नम कर गया। तो दोस्तों, इसी खूबसूरत एहसास के साथ हमें दीजिए इजाज़त, यानी कि हमें, मुझे ललित कुमार
1: और मुझे मुझे भी आप इजाज़त दीजिए।
0: जी हाँ, तो आज का सुरों का सफ़रनामा समर्पित था महान गायक एसपी सुब्रमण्यम को। उनकी आवाज़ आने वाली सदियों तक संगीत प्रेमियों के दिलों में गूंजती रहेगी। जी हाँ दोस्तों, बस विदाई दे रहे हैं, आपसे विदा चाहते हैं। सुनते रहिए आकाशवाणी और मुस्कुराते रहिए और सुरों से अपना रिश्ता बनाए रखिएगा। नमस्कार।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ स्वीडन के चुनिंदा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और स्वीडन लोकतंत्र, पारदर्शिता, नवाचार और स्थिरता के साझा मूल्यों से जुड़े हैं। उन्होंने भारत के विकास में स्वीडिश कंपनियों के लंबे समय से चले आ रहे योगदान का स्वागत किया और अनुसंधान, नवाचार, हरित बदलाव और विनिर्माण के क्षेत्रों में और अधिक सहयोग को प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन जैसी पहलों के तहत और स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा, सेमीकंडक्टर तथा उन्नत विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों का लाभ उठाते हुए भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने संयुक्त रूप से अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग निरंतर बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: स्वीडन ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से भी सम्मानित किया। यह प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी कल शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे थे। नीदरलैंड की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। कांग्रेस नेता वी डी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार आज तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वी डी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि देश ने एक दिन में रिकॉर्ड 256.4 गीगावाट बिजली की मांग को सफलतापूर्वक पूरा किया है। श्री जोशी ने बताया कि भारत का बिजली ढांचा अब पहले से ज़्यादा मजबूत, भरोसेमंद और भविष्य की ज़रूरतों के लिए तैयार हो गया है। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हज़रत निज़ामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में कल हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। ये आग ट्रेन के एक यात्री

0: कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जांच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। मादक पदार्थ नियंत्रण ब्यूरो ने भारत म्यांमार सीमा पर अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी सफलता हासिल की थी। एनसीबी ने दिल्ली से म्यांमार के सरगना थान सिंतुआंग को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो ने बताया कि ये गिरफ्तारी व्यापक निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने, अंतर्राज्यीय समन्वय और निरंतर कार्रवाई के बाद संभव हुई है। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मुकाबला दोनों टीम के लिए बेहद अहम है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। वहीं दिल्ली में कल हुए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। एक अन्य मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्लेऑफ में क्वालिफाई किया। भारत के श्रेयांसी वलिशेट्टी ने चीन के बाउजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Prime Minister Shri Narendra Modi, along with Her Royal Highness Crown Princess Victoria of Sweden and the Prime Minister of Sweden, His Excellency Mr. Ulf Kristersson, interacted with select Swedish CEOs today. During the interaction, PM Modi highlighted that India and Sweden are connected by shared values of democracy, transparency, innovation, and sustainability, which provide a strong foundation for an ambitious and forward-looking economic partnership. He underlined that the India-Sweden partnership today is not merely an economic relationship, but a partnership of ideas, technology, innovation, and co-creation.
2: Sweden-India technology and AI corridor ko majbut karne ke liye thos initiatives par kaam karenge. Dono deshon ke startups aur research ecosystems ke beech sampark badhane ke liye. हम इंडिया स्वीडन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने जा रहे हैं।
1: ही वेलकम्ड द लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ स्वीडिश कंपनीज टू इंडियाज ग्रोथ एंड एनकरेज्ड डीपर कोलैबोरेशन इन रिसर्च इनोवेशन ग्रीन ट्रांजिशन एंड मैन्युफैक्चरिंग। पीएम हाईलाइटेड इंडियाज रैपिड इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन ड्रिवन बाय रिफॉर्म स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक डिमांड डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंशन एंड नेक्स्ट जनरेशन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। He invited Swedish companies to enhance their presence in India under initiatives such as Make in India, the National Green Hydrogen Mission, the National Critical Mineral Mission, and expanding opportunities in sectors including clean energy, defense, semiconductors, and advanced manufacturing. The discussions also focused on strengthening cooperation in resilient supply chains, green transition, sustainable mobility, life sciences, and digital technologies. PM Modi underlined the importance of combining Sweden's strengths in innovation and sustainability with India's scale, talent, and growth momentum to co-create solutions for the 21st century. The new Keralam government led by Congress leader V.D. Satheesan will be sworn in Thiruvananthapuram today. Congress had announced Satheesan as the next Chief Minister of Keralam on the 14th of this month, putting an end to the high drama and suspense that lasted for 10 days. The Congress-led United Democratic Front secured a more than two-thirds majority in the Keralam Assembly elections. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has inaugurated and laid the foundation stone for development works worth over 700 crore rupees in Gandhinagar, Gujarat. Mr. Shah, who is on a two-day visit to the state, launched projects worth over 600 crore rupees of Gandhinagar Municipal Corporation yesterday. He also inaugurated a newly built milk processing plant of Madhur Dairy in the city, built at a cost of around 128 crore rupees. Earlier in the day, Mr. Shah inaugurated the Innovation and Incubation Center at the National Institute of Design in Gandhinagar. Union Minister of New and Renewable Energy Pralhad Joshi said India has now successfully managed a record peak power demand of 256.4 gigawatt in a single day. In a conversation with the private English news daily, Mr. Joshi said nearly 33% of the power demand met through renewable energy sources.

0: He said, India's power infrastructure has become stronger, more resilient, and future-ready. The minister added that this transformation reflects the rapid expansion of energy capacity, grid strengthening, and the growing contribution of clean energy in powering country's growth journey. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has allocated portfolios to the newly inducted and promoted ministers of his cabinet. The portfolio distribution follows the second cabinet expansion of the government, which took place on May 10. During the reshuffle, two cabinet ministers and four ministers of state were inducted into the government, while two ministers of state were elevated to ministers of state with independent charge. In IPL cricket, Delhi Capitals defeated Rajasthan Royals by 5 wickets at Arun Jaitley Stadium, Delhi tonight. Chasing a target of 194 runs set by Rajasthan Royals, Delhi Capitals were 197 for 5 in 19.2 overs. KL Rahul was the top scorer with 56 runs. For Rajasthan Royals, Jofra Archer and Brijesh Sharma scalped 2 wickets each. Earlier, Delhi Capitals won the toss and elected to field. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। साथियों, समय हुआ है 1:10:05। साथियों, ये समय होता है बहुत ही सुंदर खूबसूरत कार्यक्रम का। जी हाँ, गीत सुनहरे। गीत सुनहरे कार्यक्रम में आज मैं हूँ आपके साथ, आपका दोस्त ललित कुमार। तो साथियों, गीत सुनहरे, आखिरकार गीत सुनहरे क्यों कहा जाता है? गीत सुनहरे, जी हाँ, एक से एक बेहतरीन, लाजवाब, बेहद खूबसूरत रचनाएं होती हैं। एक से एक गीतकार, संगीतकार और न जाने जितने भी फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो भी कार्य होते हैं गीत संगीत के, फिल्मों के, वाकई बहुत ही सुंदर सुंदर बेहतरीन लाजवाब गीत होते हैं। ऐसी रचनाएं होती हैं जो बहुत ही कम साथियों ने सुनी होगी। जी हाँ, तो आज की जनरेशन शायद उन गानों को पसंद नहीं करती हैं, लेकिन जो जो जनरेशन रही है हमारे या आपके जैसे जो जनरेशन रही है, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन खूबसूरत गीत सुनना पसंद करते हैं हमेशा। गोल्डन एरा, जी हाँ दोस्तों, गोल्डन एरा यानी कि गीत सुनहरे। तभी तो कहा जाता है गीत सुनहरे फिल्म संगीत। जी हाँ, ओल्ड हिंदी फिल्म सॉन्ग्स ऑफ गोल्डन एरा। तो आज सबसे पहले एक बेहतरीन खूबसूरत गीत आ रहा है, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार गीत से शुरुआत कर रहे हैं और ये गीत वाकई बहुत ही लाजवाब है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तलत महमूद साहब की। तलत महमूद साहब की आवाज़ में सुंदर बेहतरीन खूबसूरत रचना आ रही है, ऐ मेरे दिल कहीं और चल, गम की दुनिया से दिल भर गया। फिल्म दाग से, दाग फिल्म 1952 प्रदर्शित फिल्म रही है और संगीत शंकर जय किशन का है। तो आइए सुनते हैं आज के कार्यक्रम गीत सुनहरे की पहली और खूबसूरत रचना।

दोस्तों, वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन गीत है। मेरे दिल कहीं और चल, दिल की दुनिया से दिल भर गया। जी हाँ दोस्तों, एक और गीत आ रहा है बहुत ही शानदार बेहतरीन, वो दिन याद करो, फिल्म हमराही से। हमराही फिल्म 1945 प्रदर्शित फिल्म रही है और संगीत से सजाया है इस खूबसूरत गीत को शंकर जयकिशन ने, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में शानदार रचना।

0: मुड़ मुड़ के
1: जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है।
0: मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के

ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24x7 चैनल है। साथियों, प्रोग्राम चल रहा है, कार्यक्रम चल रहा है गीत सुनहरे। गीत सुनहरे के अंत जो अभी जो रचना आने वाली है वो बहुत ही सुंदर है, बेहद खूबसूरत है, बेताब है दिल। जी हाँ, ये टाइटल है और फिल्म है दर्द। दर्द फिल्म 1947 प्रदर्शित फिल्म रही है। सुरैया और उमा देवी की आवाज़ में सुंदर बेहतरीन रचना है। गीतकार शकील बदायूनी और नौशाद का संगीत है। तो आइए सुनते हैं ये सुंदर बेहतरीन रचना।

बढ़ता चल तू एक प्यारे लाखों में तू बढ़ता चल रुकना नहीं घबराना कहीं तेरी है जमी तू बढ़ता चल तुझे रुकना नहीं तुझे झुकना नहीं

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ स्वीडन के चुनिंदा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और स्वीडन लोकतंत्र, पारदर्शिता, नवाचार और स्थिरता के साझा मूल्यों से जुड़े हैं। उन्होंने भारत के विकास में स्वीडिश कंपनियों के लंबे समय से चले आ रहे योगदान का स्वागत किया और अनुसंधान, नवाचार, हरित बदलाव और विनिर्माण के क्षेत्रों में और अधिक सहयोग को प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन जैसी पहलों के तहत और स्वच्छ ऊर्जा, रक्षा, सेमीकंडक्टर तथा उन्नत विनिर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में बढ़ते अवसरों का लाभ उठाते हुए भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने संयुक्त रूप से अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग निरंतर बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाए जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूँ। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: स्वीडन ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से भी सम्मानित किया। ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी कल शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे थे। नीदरलैंड की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। ये सभा आज से 23 मई तक आयोजित की जा रही है। श्री नड्डा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष के विषय वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, एक साझा जिम्मेदारी, वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार आज तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। पश्चिम मध्य रेलवे ने तिरुवनंतपुरम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस में कल हुई आग की घटना की जांच के लिए उच्च प्रशासनिक स्तर की जांच समिति गठित की है। यह आग ट्रेन के एक यात्री कोच और एक लगेज ब्रेक तथा जनरेटर कोच में लगी थी। भारतीय रेलवे ने कहा कि समिति को निर्धारित समय सीमा के भीतर जाँच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। सरकार ने सोशल मीडिया में चल रहे उस पोस्ट को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि भारत के पास केवल 2 दिन का तेल भंडारण बचा है। पत्र सूचना कार्यालय PAIB की तथ्य जांच इकाई ने कहा है कि यह दावा फर्जी है। इकाई ने कहा है कि भारत के पास 60 दिन का कच्चे तेल का भंडारण मौजूद है। चेन्नई में IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मुकाबला दोनों टीम के लिए बेहद अहम है। अंक तालिका में हैदराबाद 3रे और चेन्नई 6ठे स्थान पर है। वहीं दिल्ली में कल हुए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। एक अन्य मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा कर प्लेऑफ में क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष पी इब्राहिम। Prime Minister Shri Narendra Modi, along with Her Royal Highness Crown Princess Victoria of Sweden and the Prime Minister of Sweden, His Excellency Mr. Ulf Kristersson, interacted with select Swedish CEOs today. During the interaction, PM Modi highlighted that India and Sweden are connected by shared values of democracy, transparency, innovation and sustainability, which provide a strong foundation for an ambitious and forward-looking economic partnership. He underlined that the India-Sweden partnership today is not merely an economic relationship, but a partnership of ideas, technology, innovation and co-creation.
1: Sweden-India technology and AI corridor ko मजबूत करने के लिए ठोस इनिशिएटिव्स पर काम करेंगे। दोनों देशों के स्टार्टअप्स और रिसर्च इकोसिस्टम्स के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए हम इंडिया स्वीडन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर बनाने जा रहे हैं।
2: He welcomed the long-standing contribution of Swedish companies to India's growth and encouraged deeper collaboration in research, innovation, green transition and manufacturing. Prime Minister highlighted India's rapid economic transformation driven by reform, strong domestic demand, digital public infrastructure, manufacturing expansion and next-generation infrastructure development. He invited Swedish companies to enhance their presence in India under initiatives such as Make in India, the National Green Hydrogen Mission, the National Critical Mineral Mission, and expanding opportunities in sectors including clean energy, defense, semiconductors and advanced manufacturing. The discussions also focused on strengthening cooperation in resilient supply chains, green transition, sustainable mobility, life sciences and digital technologies. PM Modi underlined the importance of combining Sweden's strengths in innovation and sustainability with India's scale, talent and growth momentum to co-create solutions for the 21st century. The new Keralam government led by Congress leader V.D. Satheesan will be sworn in Thiruvananthapuram today. Congress had announced Satheesan as the next Chief Minister of Keralam on the 14th of this month, putting an end to the high drama and suspense that lasted for 10 days. The Congress-led United Democratic Front secured a more than two-thirds majority in the Keralam Assembly elections. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has inaugurated and laid the foundation stone for development works worth over 700 crore rupees in Gandhinagar, Gujarat. Mr. Shah, who is on a two-day visit to the state, launched projects worth over 600 crore rupees of Gandhinagar Municipal Corporation yesterday. He also inaugurated a newly built milk processing plant of Madhur Dairy in the city, built at a cost of around 128 crore rupees. Earlier in the day, Mr. Shah inaugurated the Innovation and Incubation Center at the National Institute of Design in Gandhinagar. UP CM Yogi Adityanath has allocated portfolios to the newly inducted and promoted ministers of his cabinet. The portfolio distribution follows the second cabinet expansion of the government, which took place on May 10. During the reshuffle, two cabinet ministers and four ministers of state were inducted into the government, while two ministers of state were elevated to ministers of state with independent charge. Union Minister for Health and Family Welfare Jagat Prakash Nadda has arrived in Switzerland to participate in the 79th World Health Assembly, which is being held from 18th to 23rd May 2026. In a social media post, Mr. Nadda said that this year's theme, Reshaping Global Health, a Shared Responsibility, highlights the importance of collective action in addressing global health challenges. He said the assembly will bring together health ministers, dignitaries and public health experts from more than 165 countries, reaffirming the shared global commitment towards building stronger, more inclusive and resilient healthcare systems.

0: In IPL cricket, Delhi Capitals defeated Rajasthan Royals by 5 wickets at Arun Jaitley Stadium in Delhi tonight, chasing a target of 194 runs set by Rajasthan Royals. Delhi Capitals were 197 for 5 in 19.2 overs. KL Rahul was the top scorer with 56 runs. For Rajasthan Royals, Jofra Archer and Brijesh Sharma scalped 2 wickets each. Earlier, Delhi Capitals won the toss and elected to field. Put to bat, Rajasthan Royals scored 193 for 8 in stipulated 20 overs. Dhruv Jurel was the highest scorer with 53 runs. And that is the end of this news bulletin.
1: आप सुन रहे हैं EIR लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है रात्रि के 2:10 और ये समय है आपके मनपसंद कार्यक्रम गीत बाहर का, जिसमें आज आपके साथ मैं हूं मनोज। श्रोताओं, गीत बाहर कार्यक्रम में आप सुनते हैं नॉन स्टॉप फिल्मी गीत। आइए सुनते हैं ये पहला गीत फिल्म नमक हराम से किशोर कुमार की आवाज़ में।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रशांत कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वीडन की क्राउन प्रिंसेस विक्टोरिया और स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन के साथ स्वीडन के चुनिंदा मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से बातचीत की। श्री मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और स्वीडन लोकतंत्र, पारदर्शिता, नवाचार और स्थिरता के साथ साझा मूल्यों से जुड़े हैं। उन्होंने भारत के विकास में स्वीडिश कंपनियों के लंबे समय से चले आ रहे योगदान का स्वागत किया और अनुसंधान, नवाचार, हरित बदलाव और विनिर्माण के क्षेत्रों में और अधिक सहयोग को प्रोत्साहित किया। श्री मोदी ने स्वीडन की कंपनियों को मेक इन इंडिया, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन जैसी पहलों के तहत भारत में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए आमंत्रित किया। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लेन ने संयुक्त रूप से अखिल यूरोपीय व्यापार मंच उद्योग जगत के लिए यूरोपीय गोलमेज सम्मेलन को संबोधित किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा क्षेत्र में आपसी सहयोग निरंतर बढ़ रहा है।
1: रक्षा के क्षेत्र में हमारा सहयोग निरंतर बढ़ रहा है। स्वीडन की कंपनियों द्वारा भारत में प्रोडक्शन फैसिलिटीज बनाया जाना इस बात का प्रमाण है कि हम बायर सेलर रिलेशनशिप से आगे बढ़कर लॉन्ग टर्म इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप की ओर बढ़ रहे हैं।
0: श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
1: आतंकवाद पूरी मानवता के लिए गंभीर चुनौती है। पिछले वर्ष पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हमें स्वीडन से मिले समर्थन के लिए मैं प्रधानमंत्री क्रिस्टर्सन का आभार व्यक्त करता हूं। हम आतंकवाद और उसके समर्थकों के विरुद्ध लड़ाई जारी रखेंगे।
0: स्वीडन ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के सर्वोच्च पुरस्कार रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार कमांडर ग्रैंड क्रॉस से भी सम्मानित किया। ये प्रधानमंत्री मोदी को मिला 31वां वैश्विक सम्मान है। नीदरलैंड की अपनी यात्रा पूरी करने के बाद श्री मोदी कल शाम अपने 5 राष्ट्रों के दौरे के तीसरे चरण के लिए गोथेनबर्ग पहुंचे थे। नीदरलैंड की अपनी 2 दिन की यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने के लिए 17 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। ये सभा आज से 23 मई तक आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष के विषय वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, एक साझा जिम्मेदारी वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार आज तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी कैबिनेट में नए शामिल और पदोन्नत किए गए मंत्रियों को उनके विभाग आवंटित कर दिए हैं। विभागों का ये बंटवारा 10 मई को सरकार के दूसरे कैबिनेट विस्तार के बाद हुआ है। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हुए हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है, इससे और खतरनाक स्थिति पैदा होगी। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मुकाबला दोनों टीम के लिए बेहद अहम है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। वहीं दिल्ली में कल हुए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। एक अन्य मुकाबले में कल रॉयल

0: With this victory, Royal Challengers Bengaluru became the first team to qualify for the playoffs. And that is the end of this news bulletin.
1: ये आकाशवाणी दिल्ली का AIR लाइव न्यूज़ 24/7 चैनल है। यह साथियों एक बहुत ही सुंदर बेहतरीन खूबसूरत कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं एक बार फिर से आपके पास। जी हाँ, गीत गज़ल। तो आज मैं हूँ आपके साथ आपका दोस्त ललित कुमार। तो शुरुआत कर रहे हैं एक बहुत ही सुंदर बेहतरीन खूबसूरत गज़ल से। जी हाँ, वाकई बहुत ही प्यारी और बेमिसाल खूबसूरत गज़ल से शुरुआत कर रहे हैं और ये गज़ल वाकई बहुत ही प्यारी है। मुझे फिर वही याद आने लगे हैं, फिल्म वेलवेट वॉइस और जो सिंगर हैं हरिहरन साहब की लाजवाब खूबसूरत आवाज़ में शानदार रचना है और ये रचना 1999 की एल्बम से लिया गया है और गज़ल सिंगिंग वही है, मुझे फिर वही याद आने लगे हैं। हरिहरन साहब की बेहतरीन लाजवाब खूबसूरत आवाज़ में आज के कार्यक्रम गीत गज़ल की पहली और शानदार खूबसूरत गज़ल आ रही है। स्वागत कीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा इस शानदार बेहतरीन गज़ल का।

जी हाँ, मुझे फिर वही याद आने लगे हैं ज़माने को, जिन्हें भूल जाने में ज़माने लगे हैं। वाकई बहुत ही सुंदर, बेहतरीन जज्बातों के साथ खूबसूरत गज़ल अभी आप सुन रहे थे। बढ़ते हैं एक और सुंदर बेहतरीन गज़ल की ओर। जगजीत सिंह साहब की आवाज़ में शानदार गज़ल पेशे खिदमत है, तो आइए सुनते हैं एक बहुत ही सुंदर, लाजवाब, खूबसूरत गज़ल, हम दोस्ती एहसान वफा। जी हाँ, एक एल्बम है एहसास, जगजीत सिंह साहब की आवाज़ में सुंदर बेहतरीन गज़ल है, और गीत पेयम सईदी के हैं और संगीत से सजाया है कुलदीप सिंह ने। तो आइए सुनते हैं ये शानदार बेहतरीन गज़ल।

जी हाँ साथियों, बहुत ही गमगीन और दर्द भरी खूबसूरत गज़ल अभी आप सुन रहे थे जगजीत सिंह सिंह की आवाज़ में। जी हाँ, हमको किसी के गम ने मारा। जी हाँ, बहुत ही सुंदर बेहतरीन गज़ल है, हमको किसी के गम ने मारा। किसने मारा तो ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बता सकते हैं ये बहुत ही सुंदर गज़ल है और एल्बम का नाम है बज़्म-ए-लैला। अरुणा लैला की आवाज़ में बहुत ही सुंदर रचना है, बहुत ही खूबसूरत गज़ल है। बज़्म-ए-लैला जो एल्बम बनी थी वो थी सन 1996 में, तो वाकई बहुत ही सुंदर। और ये गज़ल जिन्हें सजाया था इस खूबसूरत गज़ल को वो थे निसार बाज़मी। तो आइए सुनते हैं एक और शानदार बेहतरीन गज़ल।

जी हाँ साथियों, हमको किसके गम ने मारा, ये कहानी फिर से ही, किसने तोड़ा दिल हमारा, ये कहानी फिर से ही, बहुत ही सुंदर बेहतरीन लाजवाब गज़ल रूना लैला की आवाज़ में। बढ़ते हैं एक और ख़ूबसूरत गज़ल की ओर। वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन गज़ल आ रही है आपके पास। जी हाँ, बहुत ही ख़ूबसूरत ये गज़ल अपने आप में बेहद लाजवाब है। जी हाँ दोस्तों, कहते हैं गज़ल, गज़ल का जो सिस्टम होता है, जो गज़ल सुनने वाले होते हैं, दिल तक, अंदर तक, रूह तक चली जाती हैं वो खुश कुछ ख़ास बातें, कुछ सुंदर एहसास, जज्बात। जी हाँ, एक सुंदर जज्बात, खूबसूरत रचना। वाकई बहुत ही अच्छा लगता है जब गज़लों का कार्यक्रम होता है तो वाकई बेहतरीन हो जाता है। गज़ल की गहराई समझना चाहते हैं तो बस क्या कहें, हमेशा गज़ल गज़ल होती है। गज़ल में सुख दुख दर्द अपनापन खूबसूरती सब कुछ समाहित होती है। तो वाकई मैं नसीब हूँ एक शायरी है, बहुत ही प्यारी बेहतरीन खूबसूरत शायरी के साथ ये सुंदर रचना सुनवा रहे हैं हम। तो आइए सुनते हैं एक और सुंदर और बेहद खूबसूरत गज़ल।

बेहतरीन लाजवाब खूबसूरत गज़ल अभी आप सुन रहे थे। मैं नसीब हूँ किसी और का, मुझे मांगता कोई और है। वाकई बहुत ही सुंदर गज़ल। बढ़ते हैं एक और शानदार गज़ल की ओर, और यह गज़ल है वाकई बहुत ही सुंदर बेहतरीन लाजवाब गज़ल। जी हाँ दोस्तों, इस गज़ल के बारे में यदि हम कहें तो वाकई बहुत ही सुंदर गज़ल है ये, और आसमान की परी। जी हाँ, आसमान की परी एक एल्बम है, कुछ दिल ने कहा, ललित्या मंशा सिंगर हैं, और जो एल्बम आई थी कुछ दिल ने कहा, वो साल था 2013। उसी एल्बम का सुंदर बेहतरीन नगमा आ रहा है बेहतरीन गज़ल के रूप में, आसमान की परी। संगीत अहमद मोहम्मद हुसैन का है। आइए सुनते हैं ये शानदार बेहतरीन गज़ल।

बेहतरीन अनमोल लाजवाब खूबसूरत गज़ल अभी आप सुन रहे थे। वाकई बहुत ही प्यारी सी गज़ल। बढ़ते हैं एक और खूबसूरत गज़ल की ओर, कितनी पलकों की नमी। जी हाँ, ये टाइटल है गज़ल का। एल्बम तस्वीर से लिया गया शानदार नगमा है, अहमद और मोहम्मद हुसैन की आवाज़ में सुंदर बेहतरीन रचना। तस्वीर एल्बम 1995 में प्रदर्शित हुई थी और गीत तस्नीम फारूकी के हैं और संगीत

0: लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है सुबह के 4 बजे। आइए सुनते हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना।
1: प्रस्तुत है अर्चना।

आज के इस कार्यक्रम में हम आपको श्री कृष्ण भक्ति रचनाएं सुनवा रहे हैं। पहले प्रस्तुत है त्यागराजा की एक तेलुगु रचना, सुनिए सहगान रूप में।

अब हम आपको श्री स्वाति तिरुनाल की एक भक्ति रचना सुनवा रहे हैं, जिसे स्वर दिया है महाराजापुरम संतानम में।

0: अब आज का अर्चना कार्यक्रम समाप्त होता है।
1: आप सुन रहे हैं EIR लाइव न्यूज 24/7। अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम अर्चना। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार सुबह के 4:21 हो चुके हैं। आइए सुनते हैं कर्नाटक संगीत का कार्यक्रम नाद ब्रह्म।

ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। मीडियम वेव 366.3 मीटर अर्थात 819 किलो हर्ट्ज, DRM 810 किलो हर्ट्ज पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के वैशाख मास की 28वीं तिथि, तदनुसार 18 मई सन 2026, सुबह के 4:54 और 2 सेकंड हुए हैं। हमारे कार्यक्रम आरंभ होते हैं।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। अब से थोड़ी देर में ठीक 5 बजे आप सुनेंगे हिंदी में समाचार। 5:05 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार। 5:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम आओ योग करें। आओ योग करें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग, भद्रासन और अश्वत्थासन। पाँच बजकर 20 मिनट पर आप सुन सकेंगे देशभक्ति गीत और 5:30 पर आप आनंद उठा सकेंगे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम स्वर रंजनी का। 6 बजे आप हिंदी समाचार सुनेंगे और 6:05 पर अंग्रेजी में समाचार। सुबह 6:10 पर समय होगा भक्ति संगीत के कार्यक्रम वंदना का। छः बजकर 40 मिनट पर आप सुन सकेंगे चिंतन। 6:45 पर आप सुनेंगे रामचरित मानस बालकांड का भाग 59 और 6:55 पर समय होगा संस्कृत समाचारों का। सुबह 7 बजे आप सुनेंगे हिंदी समाचार और 7:05 पर अंग्रेजी में समाचार। 7:10 पर समय होगा कार्यक्रम संगीतिका का और 7:30 पर आप सुन सकते हैं अपने मनपसंद फरमाइशी गीतों के कार्यक्रम गीतों भरी का। सुबह 8 बजे समय होगा हिंदी समाचारों का और 8:15 पर आप सुन सकेंगे अंग्रेजी में समाचार। 8:30 पर समय होगा उर्दू समाचारों का। 8:45 पर आप सुन सकेंगे शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर गंगा। उसके बाद 9:15 पर आप सुन सकेंगे कार्यक्रम अवर गेस्ट और 9:30 पर समय होगा ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। आइए सुनते हैं समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल रात गोथेनबर्ग में स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टर्सन से बातचीत की। श्री मोदी 2 दिन के स्वीडन दौरे पर कल गोथेनबर्ग पहुंचे। प्रधानमंत्री मोदी को भारत स्वीडन संबंधों में असाधारण योगदान और दूरदर्शी नेतृत्व के सम्मान में रॉयल ऑर्डर ऑफ द पोलर स्टार डिग्री कमांडर ग्रैंड क्रॉस से सम्मानित किया गया। प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के दौरान दोनों नेताओं ने भारत स्वीडन संबंधों के सभी पहलुओं की समीक्षा की। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की गई। उन्होंने व्यापार और निवेश, प्रौद्योगिकी और नवाचार, हरित परिवर्तन, अंतरिक्ष, उभरती प्रौद्योगिकियों, रक्षा और सुरक्षा, लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्यम, अनुसंधान तथा लोगों के बीच आपसी संबंधों में प्रगाढ़ करने के बारे में चर्चा की। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी अपने विचार साझा किए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र और बहुपक्षीय संगठनों में सुधार की आवश्यकता पर बल दिया। बहुपक्षीय मंचों में सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति व्यक्त की गई। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किए जाने पर बधाई दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा 79वीं विश्व स्वास्थ्य सभा में भाग लेने के लिए स्विट्जरलैंड पहुंच गए हैं। ये सभा आज से 23 मई तक आयोजित की जाएगी। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि इस वर्ष के विषय वैश्विक स्वास्थ्य को नया स्वरूप देना, एक साझा जिम्मेदारी, वैश्विक स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने में सामूहिक प्रयासों के महत्व को प्रदर्शित करता है। कांग्रेस नेता वीडी सतीशन के नेतृत्व में केरलम की नई सरकार आज तिरुवनंतपुरम में शपथ लेंगे। कांग्रेस ने 14 मई को वीडी सतीशन को केरलम का अगला मुख्यमंत्री घोषित किया था। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने केरलम विधानसभा चुनाव में 2/3 से अधिक बहुमत हासिल किया। रूस में हुए ड्रोन हमले में एक भारतीय मजदूर सहित चार लोगों की मौत हो गई है। पिछले एक वर्ष में मॉस्को और करीबी इलाकों पर यूक्रेन का ये सबसे बड़ा ड्रोन हमला है। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोब्यानिन ने बताया कि इन हमलों में 12 लोग घायल हुए। रूस के अधिकारियों ने दावा किया कि मॉस्को को निशाना बनाने वाले 81 ड्रोन को रोक दिया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने हमलों की पुष्टि करते हुए इन्हें पूरी तरह से सही ठहराया है। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में बरकाह परमाणु संयंत्र पर हुए हमले पर गहरी चिंता व्यक्त की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि इस तरह की कार्रवाई अस्वीकार्य है, इससे और खतरनाक स्थिति पैदा होगी। भारत ने संयम बरतने का आह्वान करते हुए बातचीत और कूटनीति से समाधान निकालने की बात कही है। ईरान ने घोषणा की है कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज जलडमरू मध्य से सैन्य पोतों को गुजरने की अनुमति नहीं देगा। ईरान के प्रथम उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा ओरफ ने कहा कि ईरान ने पहले इस जलमार्ग से सैन्य उपकरणों से लदे पोतों को गुजरने की अनुमति दी है, जो ईरान के विरुद्ध ही प्रयोग किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब ये नीति बदल जाएगी। भारत ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य में व्यावसायिक जहाज़ों पर हमले स्वीकार्य नहीं है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पर्वत नैनी हरीश ने कहा कि चालक दल के सदस्यों को निशाना बनाने और जहाज़ों की मुक्त आवाजाही में रुकावट को जायज़ नहीं ठहराया जा सकता। श्री हरीश ने ये बात वैश्विक ऊर्जा के संबंध में संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद की एक विशेष बैठक में कही। चेन्नई में आईपीएल क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे चेन्नई सुपर किंग्स और सनराइजर्स हैदराबाद आमने सामने होंगे। प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मुकाबला दोनों टीम के लिए बेहद अहम है। अंक तालिका में हैदराबाद तीसरे और चेन्नई छठे स्थान पर है। वहीं दिल्ली में कल हुए मुकाबले में दिल्ली कैपिटल्स ने राजस्थान रॉयल्स को 5 विकेट से हराया। एक अन्य मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराकर प्ले ऑफ में क्वालिफाई किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय आशीष एब्राहम। Prime Minister Narendra Modi held talks with his Swedish counterpart Ulf Kristersson in Gothenburg last night. Mr. Modi arrived in Gothenburg yesterday on a two-day visit to Sweden. PM Modi was awarded the Royal Order of the Polar Star, Degree Commander, Grand Crosses in recognition of his exceptional contribution to the India-Sweden relationship and his visionary leadership. During the delegation-level talks, the two leaders reviewed the full spectrum of India-Sweden relations and agreed to elevate the bilateral relationship to a strategic partnership, marking a major milestone in the relationship. They discussed ways to deepen cooperation in trade and investment, technology and innovation, green transition, space, emerging technologies, defense and security, SMEs, research and people-to-people ties. The two leaders agreed to identify new opportunities in the spirit of the India-EU strategic partnership and recently concluded the India-EU FTA for the benefit of their people. The leaders also exchanged perspectives on regional and global issues. PM Modi has invited Swedish companies to enhance their presence in India under initiatives such as Make in India, National Green Hydrogen Mission and National Critical Mineral Mission. During an interaction with select Swedish CEOs in Gothenburg, Mr. Modi made a strong pitch to Swedish companies to enhance their presence in India in manufacturing, green hydrogen mission, clean energy and other sectors. In the fourth leg of his visit, the PM will reach Norway today for the third India-Nordic summit and bilateral engagements. This will be the first visit of Prime Minister Modi to Norway and will mark the first prime ministerial visit from India to Norway in 43 years. Mr. Modi will call on King Harald V and Queen Sonja and hold bilateral talks with Prime Minister Jonas Gahr Støre. The new Keralam government led by Congress leader V.D. Satheesan will be sworn in Thiruvananthapuram today. Congress had announced Satheesan as the next Chief Minister of Keralam on the 14th of this month, putting an end to the suspense that lasted for 10 days. The Congress-led United Democratic Front secured a more than two-thirds majority in the Keralam Assembly elections. Union Home and Cooperation Minister Amit Shah has reinaugurated and laid the foundation stone for development works worth over 700 crore rupees in Gandhinagar, Gujarat. Mr. Shah, who is on a two-day visit to the state, launched projects worth over 600 crore rupees of Gandhinagar Municipal Corporation yesterday. He also inaugurated a newly built milk processing plant of Madhur Dairy in the city, built at a cost of around 128 crore rupees. Earlier in the day, Mr. Shah inaugurated the Innovation and Incubation Center at the National Institute of Design in Gandhinagar. Union Minister for Health and Family Welfare Jagat Prakash Nadda has arrived in Switzerland to participate in the 79th World Health Assembly beginning today till 23rd of this month. In a social media post, Mr. Nadda said that this year's theme, Reshaping Global Health, a Shared Responsibility, highlights the importance of collective action in addressing global health challenges. He said the assembly will bring together health ministers, dignitaries and public health experts from more than 165 countries, reaffirming the shared global commitment towards building stronger, more inclusive and resilient healthcare systems. Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath has allocated portfolios to the newly inducted and promoted ministers of his cabinet. The portfolio distribution follows the second cabinet expansion of the government, which took place on May 10. During the reshuffle, two cabinet ministers and four ministers of state were inducted into the government, while two ministers of state were elevated to ministers of state with independent charge. India has expressed deep concern at the attack targeting the Baraka nuclear facility in the UAE. In a statement, Ministry of External Affairs said such actions are unacceptable and represent a dangerous escalation. New Delhi has urgently called for restraint and a return to dialogue and diplomacy. In IPL cricket, hosts Delhi Capitals defeated Rajasthan Royals by 5 wickets at Arun Jaitley Stadium last night. Chasing a target of 194 runs set by Rajasthan Royals, Delhi Capitals made 197 for 5 in 19.2 overs. Today, Chennai Super Kings and Sunrisers Hyderabad will clash at M.H. Chidambaram Stadium in Chennai at 7:30 p.m. And that is the end of this news bulletin.
0: आप सुन रहे हैं EIR लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है सुबह के 5:10। आइए सुनते हैं कार्यक्रम आओ योग करें। आओ योग करें कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे योग भद्रासन और अश्वथासन।

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर हिमानी चौखन। मैं हूं आपकी योग विशेषज्ञ। बहुत बार देखा गया है कि प्रेगनेंसी यानी गर्भावस्था के समय प्रेग्नेंट लेडीज को कई सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है, जिसकी वजह से डिलीवरी के दौरान ऑपरेशन तक की भी नौबत आ जाती है।

और आजकल तो देखते हैं कि सिजेरियन केसेस भी दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। इसीलिए मेरा सभी गर्भवती महिलाओं से यह निवेदन है कि वह गर्भावस्था के दौरान भी पौष्टिक आहार का सेवन तो करें ही, अच्छी नींद लें और साथ साथ कुछ योग अभ्यास भी जरूर करें। योग अभ्यास में जैसे प्राणायाम, ध्यान के साथ साथ कुछ आप सिलेक्टिव आसन भी कर सकते हैं। और यदि किसी भी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी के दौरान आती है तो आप योग विशेषज्ञ के निर्देशन में योग अभ्यास को पहले अच्छी तरह से सीखें, फिर घर पर उसका अभ्यास करें। तो आइए देखते हैं दोस्तों कि प्रेगनेंसी के समय आप कौन कौन से आसन कर सकते हैं। तो आज हम करेंगे भद्रासन। आइए जानते हैं कि भद्रासन किस प्रकार प्रेगनेंसी के समय किया जा सकता है। दोनों पैरों को सामने की ओर सीधा फैलाकर पीठ और कमर को सीधा रखते हुए बैठ जाएं। दोनों हाथों को अपने नितंब के पास रखें। हथेलियां जमीन पर टिकी होनी चाहिए। इस स्थिति को हम दंडासन कहते हैं। अब श्वास भरते हुए दोनों पैरों के तलवों को आपस में मिलाने का प्रयास करें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़कर ढक लें। श्वास बाहर छोड़ते हुए पैरों की उंगलियों को हाथों से पकड़ लें। श्वास लेते हुए एड़ियों को अपने शरीर के बिल्कुल नजदीक लेकर आएं। जितना समीप हो सके उतना समीप लाने का प्रयास करें। यदि आपकी जंघाएं जमीन से टच नहीं हो रही हैं, जमीन से नहीं लग पा रही हैं, तो सहारे के लिए घुटनों के नीचे एक मुलायम तकिया आप रख सकते हैं। इस अवस्था में 10 से 30 सेकंड तक रुके तथा सामान्य रूप से श्वास पर श्वास लेते रहें। इस अवस्था में आप समय को भी बढ़ा सकते हैं। यह आसन गर्भावस्था में बहुत ही लाभकारी है तथा महिलाओं को मासिक धर्म के समय अक्सर होने वाले पेट दर्द से भी मुक्ति प्रदान करता है। इसके अन्य लाभ भी हो सकते हैं दोस्तों। यह आसन शरीर में दृढ़ता लाता है और मस्तिष्क को भी स्थिरता प्रदान करता है। तो आज हमने सीखा कि प्रेगनेंसी के समय आप भद्रासन किस प्रकार कर सकते हैं। पूरे दिन में कम से कम आप यह अभ्यास सुबह शाम के समय दोहरा सकते हैं। प्रतिदिन करें योग, रहें निरोग। नमस्कार।

नमस्कार, मैं योगाचार्य सुनील गौतम ऐसे आसन के बारे में बात करेंगे जिसको करने से हमारी कमर का दर्द दूर होता है। किसी भी प्रकार के कार्य को करते हुए, ऑफिस में बैठे हुए चेयर पर, पढ़ाई करते हुए, किचन में काम करते हुए हम थकान अनुभव करने लगते हैं, पीठ में अकड़न या जकड़न अनुभव करने लगते हैं, तो इस आसन का अभ्यास ऑफिस में भी किसी भी कार्य स्थिति में होते हुए थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, एक दो लंबी गहरी सांस भरें, दोनों हथेलियां थाइस के बराबर में रखें और सांस भरते हुए धीरे धीरे बाएं हाथ को सीधा ऊपर उठाएं, कान के बराबर में ले जाएं, सांस छोड़ते हुए दाहिना हाथ 90 डिग्री पर अपने कंधे की सीध में लाएं, पुनः सांस भरते हुए दाहिना पांव यानी कि जो पैर हम जो हाथ साइड में किया है उसी पांव को पीछे ले जाना है, धरती से ऊपर उठाना है बिना मोड़े यथासंभव, और तीन लंबी गहरी सांस लें।

चेस्ट ऊपर की ओर फूली हुई रहेगी, गर्दन हल्का सा पीछे की ओर, हाथ भी पीछे की ओर, और पूरे पीठ में तनाव अनुभव करें। अनुभव करेंगे लोअर बैक में इमीडिएटली हमको तनाव आता है, अर्थात लोअर बैक का पेन दर्द दूर करने में मदद मिलेगी। धीरे धीरे 3 श्वास पूरी होने के बाद वापस आएं और इसी आसन को दूसरी तरफ से दोहराएं, अर्थात श्वास भरते हुए दाहिना हाथ ऊपर की ओर सीधा ले जाएं, बायां हाथ 90 डिग्री कंधे के सीध में लाएं और बाएं पैर को पीछे की ओर ले जाएं। शरीर में तनाव देते हुए लंबी गहरी 3 श्वास का अभ्यास करें और उसी अवस्था में अभ्यास के दौरान लंबी गहरी श्वास प्रभाव को अनुभव करते रहें। कहां शरीर के किस भाग पर इंपैक्ट है, प्रभाव है, और धीरे धीरे 3 श्वास के बाद श्वास छोड़ते हुए वापस अपनी पुरानी स्थिति में आ जाए। यह हुई हमारी 1 आवृत्ति। इसी आवृत्ति को 2-3 बार दोहरा लें तो देर तक बैठे रहने की थकान, कमर का दर्द दूर हो जाएगा। बल्कि मैं सबको सलाह देना चाहूंगा, जो विद्यार्थी हैं, पढ़ने लिखने का काम करते हैं, जो ऑफिस में बैठकर लिखाई, कंप्यूटर, कोई भी काम करते हैं, और मेरी माता बहनें जो किचन में काम करते करते कमर में दर्द कर लेती हैं, वो कभी भी इस आसन को अवश्य दोहराएं। आपका कमर का दर्द निश्चित रूप से दूर होगा और लंबी गहरी श्वास से आपका शरीर और मन स्वस्थ व शांत रहेगा। धन्यवाद।

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है सुबह के 5:20। आइए सुनते हैं देशभक्ति गीत।

आप सुन रहे हैं AIR लाइव न्यूज 24/7। समय हुआ है सुबह के 5:30। आइए सुनते हैं हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का कार्यक्रम स्वर रंजनी।